वंदे मातरम, सुप्रभात, नमस्कार। ये है आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज़ पर और मैं हूँ आप सभी का रेडियो साथी सैकत चटर्जी। आप सभी स्वस्थ रहें, सानंद रहें, इसी मंगल कामना के साथ आपका स्वागत है आज की हमारी प्रातकालीन सभा में। आज है अंग्रेजी सन ईस्वी 2026 की सितंबर माह की 9वीं तारीख, तदनुसार शक संवत 1948 की भाद्र माह की 18वीं तिथि। अभी हमारी स्टूडियो की घड़ी में 5:59 होने को है। प्रारंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अब चिप से लेकर जहाज तक विनिर्माण के क्षेत्र में नया भविष्य तैयार कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश में उच्च तकनीक वाले इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर बड़े समुद्री जहाजों तक पूरी तरह आत्मनिर्भर आपूर्ति श्रृंखला विकसित की जा रही है। प्रधानमंत्री ने गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की। प्रधानमंत्री ने पश्चिमी समर्पित माल गलियारे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 3 महत्वपूर्ण खंड भी राष्ट्र को समर्पित किए।
1: 2,800 किलोमीटर से अधिक का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट पूरा हो गया। ये 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुआ है। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इस बात का साक्षी है कि बीते 12 साल में देश की काम करने की संस्कृति कैसे बदली है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ने फिनटेक क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इसमें नवाचार और वित्तीय समावेशन को सर्वाधिक महत्व दिया जा रहा है। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में उन्होंने कहा कि नई प्रौद्योगिकियां वित्तीय क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खोल रही हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत साइबर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले महीने यूपीआई से 2,400 करोड़ रुपए से अधिक लेन देन हुए। भारतीय यूपीआई अब 11 देशों में संचालित हो रहा है। श्री मोदी ने यूपीआई को फिनटेक क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि बताया।
2: भारत की फिनटेक स्टोरी अद्भुत रही है और इसका एक बड़ा चैंपियन है हमारा यूपीआई। मैंने पिछले साल भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब भी फिनटेक की चर्चा होगी तो वो यूपीआई के बिना अधूरी ही होगी।
0: प्रधानमंत्री मोदी नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि इन बैठकों के दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत युद्ध समाप्त करने के लिए किसी भी तरह की सहायता करने के लिए तैयार है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत और चीन सीमा संबंधी मुद्दे पर लगातार संवाद कर रहे हैं। रूस ने यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए भारत के शांति प्रयासों का स्वागत किया है। रूस की सरकार के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने कहा कि इस मुद्दे पर रूस का रुख भारत के जैसा ही है। श्री पेस्कोव ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज गोवा में पोरवोरिम एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग 66 पर बना ये 6 लेन का कॉरिडोर 5 किलोमीटर से अधिक लंबा है और इसे करीब 641 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। कॉरिडोर 11 सितंबर से वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय आज वाराणसी में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत करेगा। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में इस अभियान का शुभारंभ करेंगी। उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए राज्य के हिस्से में 4,000 रुपये प्रतिमाह और सहायिकाओं के लिए राज्य के हिस्से में 2,000 रुपये प्रतिमाह की अतिरिक्त बढ़ोतरी की गई है। एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल को कल नई दिल्ली में शानदार विदाई दी गई। इस अवसर पर युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया उपस्थित रहे। डॉक्टर मांडविया ने भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा, खेल सचिव हरि रंजन राव और भारतीय दल के प्रमुख सहदेव यादव के साथ मिलकर खिलाड़ियों और सहयोगी सदस्यों की उपस्थिति में आधिकारिक जर्सी का अनावरण किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आइए दोस्तों, अब दिल्ली के बाद हम फिर से एक बार जुड़ते हैं आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से और सुनते हैं खेती की बातें।
1: तमाम किसान भाई बहनों को हमारा नमस्कार। स्वागत है आपका कार्यक्रम खेती की बातें में। किसान भाइयों, कार्यक्रम में आज बातें जैव उर्वरक की। जी हाँ किसान भाइयों, मिट्टी में लगातार रसायनों के छिड़काव और रासायनिक उर्वरकों की बढ़ती मांग ने पर्यावरण को प्रदूषित करने के साथ साथ मिट्टी की उर्वरा शक्ति को भी घटाया है। इन रसायनों के प्रभाव से मिट्टी को उर्वरता प्रदान करने वाले सूक्ष्म जीवों की संख्या में अत्यधिक कमी हो गई है। जी हाँ किसान भाइयों, इस कमी की पूर्ति के लिए जैव उर्वरक का फसलों में इस्तेमाल किया जाता है। जैव उर्वरक हवा से नाइट्रोजन लेकर जमीन में स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु होते हैं, इसलिए मिट्टी में इन जीवाणुओं की संख्या बढ़ाने के लिए इनके कल्चर का उपयोग जैविक खादों के साथ मिलाकर किया जाता है, जिसे जैव उर्वरक भी कहते हैं। जैव उर्वरक मुख्यतः राइजोबियम, एजोबैक्टर, एजोस्पाइरम, फास्फेट और पोटाश घुलनशील जीवाणु वगैरह होते हैं। ग्रामीण भाइयों, जैव उर्वरक अनेक प्रकार की मिट्टी जनित रोगों के नियंत्रण में सहायक सिद्ध होते हैं। इसके अतिरिक्त जैव उर्वरकों से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलता है और इसका कोई दुष्परिणाम भी नहीं होता है, ना ही इसका प्रयोग करने वालों पर इनका कोई दुष्प्रभाव देखा गया है। जैव उर्वरकों के उपयोग करने से रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता में कमी आती है। जीवाणु कल्चर को बीज या जैविक खादों के साथ मिलाकर मिट्टी में मिलाने पर खेत में इन जीवाणुओं की संख्या में तेजी से वृद्धि होती है, जिससे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश आदि तत्वों की उपलब्धता में वृद्धि होती है। नाइट्रोजन के लिए राइजोबियम, एजोबैक्टर, एसिटोबैक्टर और फास्फोरस के लिए फास्फेट घुलनशील जीवाणु कल्चर का प्रयोग करते हैं। सभी प्रकार के पौधों की अच्छी वृद्धि के लिए मुख्यतः 16 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें नाइट्रोजन और फास्फोरस अति आवश्यक तत्व है। यह पौधों को तीन प्रकार से उपलब्ध होती है, रासायनिक खाद द्वारा, गोबर की खाद द्वारा और नाइट्रोजन स्थिरीकरण और फास्फोरस घुलनशील जीवाणुओं द्वारा। ग्रामीण भाइयों, प्राकृतिक रूप से मिट्टी में कुछ ऐसे जीवाणु पाए जाते हैं जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया में और स्थिर फास्फोरस को उपलब्ध अवस्था में बदल देते हैं। जीवाणु खाद ऐसे ही जीवाणुओं का उत्पाद है जो पौधों को नाइट्रोजन और फास्फोरस आदि की उपलब्धता बढ़ाता है। जैव उर्वरकों में अगर हम राइजोबियम कल्चर की बात करें तो यह एक नमी धारक पदार्थ और जीवाणु का मिश्रण है। राइजोबियम कल्चर का प्रयोग दलहनी फसलों में करते हैं। राइजोबियम एक गतिशील जीवाणु होता है। किसान भाइयों, राइजोबियम कल्चर का उपयोग दलहनी फसलों में 5 से 10 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से किया जाता है। राइजोबियम कल्चर का उपयोग मिट्टी और बीज के उपचार के लिए भी करते हैं। राइजोबियम कल्चर से चना, मसूर, उड़द, मूंग, अरहर, मटर, मूंगफली, सोयाबीन, ढैंचा, सनई, सेम और अन्य सभी दलहनी फसलों को लाभ होता है। राइजोबियम जीवाणु के प्रयोग से अनेकों लाभ प्राप्त होते हैं। इसके प्रयोग से फसल की उपज 15 से 20% की वृद्धि होती है। राइजोबियम के प्रयोग से पौधों की बढ़वार अच्छी होती है और जड़ों का विकास भी अच्छा होता है। इन फसलों के बाद बोई जाने वाली फसलों में भी भूमि की उर्वरा शक्ति अधिक होने से पैदावार अधिक मिलती है। किसान भाइयों, अब बातें एजिटोबैक्टर की। एजिटोबैक्टर मृदा में पाए जाने वाला एक मृत जीवी जीवाणु है जो कि अदलनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक है। इसका उपयोग मुख्यतः धान एवं गेहूं की फसलों में करते हैं। इसके प्रयोग से मिट्टी में 30 से 40 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर स्थिर हो जाती है। एजिटोबैक्टर का प्रयोग मिट्टी के उपचार, रोपाई और बीजों के उपचार के लिए भी किया जाता है। किसान भाइयों, अब बातें एसिटोबैक्टर की। एसिटोबैक्टर यह जीवाणु गन्ने की फसल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक है। एसिटोबैक्टर फसलों और पौधों की जड़ों के आसपास विखंडित होकर भूमि की नाइट्रोजन को नाइट्रेट बदलकर पौधों तक पहुंचाते हैं। एसिटोबैक्टर का प्रयोग मिट्टी एवं बीज उपचार के लिए किया जाता है। यह गन्ने और चुकंदर की फसल में उत्पादन वृद्धि के साथ साथ उसमें शर्करा की मात्रा को भी बढ़ाता है। जी हाँ किसान भाइयों, जैव उर्वरकों का भंडारण हमेशा ठंडे स्थान पर करें और इसे सूर्य की रोशनी से बचा कर रखें। इसे रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों से अलग रखें। इसका प्रयोग पैकेट पर अंकित तिथि से पहले करें। जैव उर्वरकों का प्रयोग विशिष्ट फसल के लिए होता है, इसलिए फसल के हिसाब से ही जैव उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, कार्यक्रम में ये हुई बातें जैव उर्वरक की। इसी के साथ कार्यक्रम से हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार
0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे खेती की बातें। विषय था जैव उर्वरक के प्रकार एवं महत्व। संकलन एवं वाचन स्वर रेडियो साथी प्रतिमा वर्मा का था। आइए दोस्तों, अब जुड़ते हैं रामचरित मानस गान से और सुनते हैं रामचरित मानस गान की कड़ी संख्या 262।
2: एपिसोड नंबर 262 262।

श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड के अंतिम चरण में राम कथा का वो प्रसंग आता है जहां श्री राम और लक्ष्मण पंपा नामक सुंदर सरोवर के तीर पर पहुंचते हैं। गहरे सरोवर में रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं जिन पर मधुर स्वर में भौरे गुंजार कर रहे हैं। चक्रवाक, बगुलों तथा जल निवासी पक्षियों का समूह देखते ही बनता है। इसी सरोवर के आसपास मुनियों के आश्रम हैं, जहां अनेक प्रकार के वृक्षों तथा लताओं ने अद्भुत सुषमा बिखेर रखी है। श्री राम तथा लक्ष्मण ने सरोवर के शीतल जल में स्नान किया और एक घने वृक्ष की छाया में दोनों भाई बैठ गए। वहां देवता तथा मुनियों ने उनकी स्तुति की। सीता हरण के कारण श्री राम के हृदय में विरह वेदना व्याप्त है, ऐसा सोचकर महर्षि नारद के मन में ये विचार उठा कि उन्हीं के शाप को स्वीकार करके श्री राम अनेक प्रकार के दुख उठा रहे हैं। इसी विचार में मग्न नारद जी हाथ में वीणा लिए हुए प्रभु के सम्मुख उपस्थित हुए।

दोस्तों आप सुन रहे थे कार्यक्रम रामचरित मानस गान। आइए अब जुड़ते हैं चिंतन से और रेडियो साथी निर्मला तिवारी की आवाज़ में सुनते हैं कल करे सो आज कर।

0: काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा, बहुरी करेगा कब। संत कबीर ने इस दोहे के माध्यम से समय के महत्व पर प्रकाश डाला है। वो कहते हैं, भविष्य का क्या भरोसा, ये कोई नहीं जानता कि कल क्या होगा, इसलिए कल के लिए किसी काम को छोड़ना उचित नहीं है। जो करना है अभी कर लो, क्योंकि पल भर में यदि प्रलय आ गया तो फिर क्या करोगे। इसका सार यही है कि समय के हर एक पल का सदुपयोग कर लेना चाहिए। जो कल करना है आज करो, आज करना है तो अभी कर लो। समय ठहरता नहीं है और जीवन का भरोसा नहीं है। समय की महत्ता जीवन में काफ़ी है, समय अमूल्य है। यदि एक बार हाथ से फिसल गया तो फिर वह समय दोबारा पकड़ में नहीं आता, जो बीत जाता है। इसलिए सफल जीवन के लिए समय का प्रबंधन आवश्यक है। जीवन में काफ़ी भाग दौड़ होती है, कई काम होते हैं, और यदि समय अनुसार काम ना किया जाए तो जीवन दिनचर्या अस्त व्यस्त हो जाती है और इंसान परेशान रहता है। जो लोग व्यवस्थित समय अनुसार हर काम को समय रहते पूरा कर लेते हैं, उन्हें दिक्कतें कम आती हैं, और ऐसे लोग हर कार्य समय रहते पूरा कर पाते हैं। यदि हम विद्यार्थियों की बातें करें तो जो बच्चे समय का सही प्रबंधन करके पढ़ाई करते हैं, वो शांतिपूर्वक अपना इम्तिहान दे पाते हैं और परेशान नहीं होते हैं। इसके विपरीत कई बच्चे समय का उपयोग सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, और जब समय बीत जाता है तब अफरा तफरी में पढ़ाई करते हैं, जिसके कारण मानसिक शारीरिक रूप से परेशान रहते हैं, और फिर वो उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं जितनी उनकी क्षमता होती है। इसी संदर्भ में संत कबीर ने कहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। जो लोग वर्तमान में जीते हैं, भविष्य की वो चिंता नहीं करते, उसमें अपना समय बर्बाद नहीं करते, ऐसे लोग तनाव रहित रहकर अपना काम करते जाते हैं। कुछ लोग जो बीत गया उसके बारे में सोच सोच कर अपना वर्तमान भी खराब कर लेते हैं, पछताते रहते हैं। ऐसे लोग भी तनाव से भरे रहते हैं, हमेशा दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। कुछ मनुष्य त्वरित काम करने के लिए बहुत सारे काम एक साथ ले लेते हैं, तो यह भी सही नहीं है। अपनी क्षमता अनुसार, समय अनुसार सभी कार्य किए जाने चाहिए, और ऐसा करने से परेशानी नहीं होती है। कछुआ और खरगोश की कहानी तो जग जाहिर है। कछुआ धीरे धीरे गति से चलता रहा और गंतव्य तक पहले पहुंच गया। खरगोश, जो तेज दौड़ने वाला है, तेज दौड़ा, लेकिन आराम के चक्कर में वह पिछड़ गया और कछुआ से हार गया। इसी तरह तेज भागना भी सही नहीं है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन समय के साथ साथ आगे बढ़ते रहने से सफलता भी मिलेगी और तन मन में किसी पर प्रकार का बोझ भी नहीं होगा। संत कबीर के दोहे के गूढ़ रहस्य को समझते हुए जीवन में संतुलन बनाते हुए आगे बढ़ना ही समझदारी है, और यही जीवन सार भी।
1: दोस्तों, आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन।

0: आइए दोस्तों, अब सुनते हैं स्वास्थ्य चर्चा। भेंटवार्ता का विषय है, लीवर को स्वस्थ रखना कितना ज़रूरी। भेंटवार्ताकार हैं डॉक्टर पी के राव, जब से इनसे बातें कर रहे हैं संजय कुमार मिश्रा।
1: संजय मिश्रा, नमस्कार। श्रोताओं, आज हम लीवर पे बात करेंगे। यकृत जिसे कहते हैं, शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसमें किसी तरह की खराबी आना ये अच्छी बात नहीं है और किसी भी व्यक्ति के लिए खतरनाक हो सकता है, ऐसा कहते हैं हमारे चिकित्सक। लेकिन चिकित्सक ये भी कहते हैं कि वक्त पे, बिल्कुल सही समय पर इसका इलाज किया जाए, ख्याल रखा जाए, तो इसमें होने वाली बीमारियों से बचा जा सकता है और अपने यकृत को, अपने लीवर को स्वस्थ रखा जा सकता है, खुद स्वस्थ रहा जा सकता है। आज इन्हीं सारे विषयों पर बात करेंगे, ढेर सारे सवाल के जवाब आपको दिलवाएंगे। हमारे कार्यक्रम में आमंत्रित हैं पलामू जिला अस्पताल में पदस्थापित चिकित्सक डॉक्टर रोहित पांडे। डॉक्टर साहब, हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार।
2: हाँ जी नमस्कार, और हमारे सभी श्रोताओं का बहुत बहुत

0: नमस्कार। डॉक्टर साहब, यकृत लीवर कितना महत्वपूर्ण है, यकृत या लीवर को स्वस्थ रखना कितना जरूरी है, आप सबसे पहले बताएं कि लीवर को स्वस्थ रखना वाकई कितना जरूरी है सभी के लिए।
1: देखिए, ये लीवर हमारे शरीर का सेकेंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है ब्रेन के बाद, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे शरीर के हर हिस्से को चलाने में हेल्प करता है। जितने भी तरह की मेटाबॉलिज्म है, ब्लड का बनना, क्लॉटिंग फैक्टर का बनना, प्रोटीन का बनना, ग्लूकोज का मेंटेन होना, खाना का पचना, आप ये समझिए ये सारा चीज़ लीवर के से ही रेगुलेट होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट लीवर को मेंटेन करना, ये इसलिए है क्योंकि हमारे कई आदतों के कारण मोस्ट कॉमनली लीवर ही डैमेज होती है। बहुत रेयर ऐसे बीमारियां होती हैं जो अनचाहे में हो जाती है जिसमें हमारा कंट्रोल ना हो, और मोस्ट कॉमनली हमारा जो हैबिट है, पुअर लाइफस्टाइल है, उससे लीवर डैमेज होती है। और एक बार वो डैमेज हो गई तो वो इरिवर्सिबल डैमेज है, उसको ठीक नहीं किया सकता है।
0: यकृत को, अपने लीवर को स्वस्थ रखने के लिए क्या एक बचपन से ही किसी बच्चे के यकृत को स्वस्थ रखने के लिए उस समय से ध्यान देने की आवश्यकता है, या फिर एक निश्चित उम्र के बाद इस पर ध्यान देना जरूरी हो जाता है?
1: नहीं, बचपन से ही हमें स्वस्थ हैबिट यूज़ करना पड़ेगा। जैसे तेल का सेवन कम करना पड़ेगा, तेल में भी चुनना होगा कौन सा तेल। अब सरकार बोलती है कि ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। सेकंड, अल्कोहल से दूर रहें, अल्कोहल या किसी भी नशीली पदार्थ जो लीवर को डैमेज करेगी उससे एकदम दूरी बना के रखें, क्योंकि अल्कोहल सबसे कॉमन लीवर को वो ख़राब करने में एक कॉज है। थर्ड है हेल्दी डाइट, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाना है, कैरेट्स खाना है, कॉलीफ्लावर खाना है, कैबेज खाना है, ये सब की इस्तेमाल ज़्यादा करें जो लीवर को हेल्दी मतलब बनाने में हेल्प कर सकता है। थर्ड, किसी भी तरह का बीमारी, जॉन्डिस, उल्टी या किसी तरह की छोटी बीमारी हो जिसमें शरीर पीला पड़ रहा हो या पेट में दर्द हो, अपने चिकित्सक से मिलके अगर वो लीवर की बीमारी तो उसके इलाज जल्द से जल्द कराना है, क्योंकि लीवर की कोई भी बीमारी को एट अर्लीस्ट आपको ध्यान देना होगा कि हम लोग समय रहते ही इसको ठीक कर सकें।
0: डॉक्टर रोहित पांडे, आप चूंकि जिला अस्पताल में पदस्थापित हैं, तो यकृत से जुड़ी समस्याओं को लेकर क्या अस्पताल में मरीज आते हैं तो उनका प्रतिशत कितना मान के चलते हैं, और क्या स्थिति है, क्यों इस तरह की परेशानियां दिखती हैं जो हमारे क्षेत्र में?
1: देखिए, अगर मैं कहूँगा तो जो लीवर की बीमारी है उसमें से मोस्ट कॉमन ये सिरोसिस है। अभी समझिए कि सिरोसिस वर्ल्ड में मोस्ट प्रिवलेंट डिजीज़ है, जो 1/3 अनडायग्नोस्ड या एसिम्टोमेटिक है, मतलब 1/3 लोगों को पता ना हो कि उनकी लीवर मतलब ख़राब हो रही है, क्योंकि ये स्लो ग्रोइंग डिजीज़ है। और ये 12वां मोस्ट कॉमन कॉज है डेथ का पूरे वर्ल्ड में। 5 तरह की मोस्ट कॉमन बीमारी होती है जो हम लोग वो समझते हैं। एक है NAFLD या नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़, एक है फैटी लीवर डिजीज़ जो अल्कोहलिक हेपेटाइटिस या अल्कोहल के कारण जो लीवर ख़राब होती है। थर्ड है हेपेटाइटिस सी और बी जो इन्फेक्शन है एक वायरस की। फोर्थ है सिरोसिस ऑफ लीवर, और फिफ्थ है हेपेटाइटिस ए जो इन्फेक्शन ट्रांसमिट होता है गंदे खाना और पानी से, जो आपके लीवर को ख़राब कर सकता है। तो ये 5 तरह की बीमारी है हम लोग अपने डे टू डे प्रैक्टिस में कॉमनली देखते हैं, और उसकी इलाज हमारे सदर अस्पताल में भी होती है।
0: अगर कभी किसी को यकृत से जुड़ी समस्या अगर होने लगती है तो शरीर में कौन से लक्षण आने शुरू होते हैं जिसे ये कहा जाए कि इनका लीवर जो है गड़बड़ हो रहा है, कहीं इसमें कुछ परेशानी आ रही है, इनको इलाज की आवश्यकता है?
1: देखिए, मोस्ट कॉमन है भूख का कम होना या भूख का नहीं लगना या उल्टी जैसा मतलब फीलिंग होना या उल्टी होना, और अगर ये लंबे समय तक रह गया तो पेट के दाएं हिस्से में पेट में दर्द होना या पेट का फूला फूलापन होना, पेशाब का पीला होना, आँखों का पीलापन होना जिसको जॉन्डिस बोलते हैं, और हल्का हल्का बुखार रहना, ये कॉमन ऐसे हैं सिम्टम्स जिनको अगर घर में कोई हैं जिनको लगता है तो अपने चिकित्सक को दिखाना चाहिए।
0: कोई भी व्यक्ति को क्या इससे संभल कर डर के रहने की आवश्यकता है कि अपनी आदतें, खान पान, रहन सहन और इस सारी चीज़ों को अगर ध्यान न रखें तो लीवर से जुड़ी समस्या उनके साथ भी हो सकती है, यानी किसी के साथ हो सकती है अगर गलती कहीं हुई तो?
1: जी हाँ, एकदम। अगर कोई भी इंसान, मनुष्य अगर अपने सेहत का ध्यान ना रखे, गलत हैबिट यूज़ करे, अल्कोहल या दारू की तरफ उनका रुझाव, तो लीवर डैमेज होना तो वो निश्चित होती है। और एक बात और बोलना चाहूँगा, कई बार बाहर में या गांव साइड में ना वो आयुर्वेदिक दवाई, होम्योपैथिक दवाई जो अनऑथराइज्ड है, उसकी सेवन करने से भी लीवर ख़राब होती है, उसको हम लोग बोलते हैं ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस। इसमें क्या होता है, वो लोग ऐसे जड़ी बूटियाँ यूज़ करते हैं जो हमारे जो आयुर्विज्ञान से प्रमाणित ना हो और वो लीवर को डैमेज करता हो, और बहुत सारे लोग ये मान के उसको खा लेते हैं कि ये तो आयुर्वेदिक है, कुछ होगा नहीं। तो हमारे ओपीडी में बहुत सारे पेशेंट वैसे भी आते हैं जो लीवर फेलियर लेके आते हैं, कम्प्लीटली लीवर फेलियर लेके आते हैं, जिनका हिस्ट्री होता है ये वैसा दवाई खाना जो अनऑथराइज्ड हो।
0: रोहित जी, आज के समय में इस तरह की कौन सी आदतें इंसान को लीवर की बीमारी की ओर आगे बढ़ाती हैं?
1: मोस्ट कॉमन है फैटी लीवर, जो नॉन अल्कोहलिक हो, जैसे ये अब तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक्स में भी आ गया है। इसके बोलने का मतलब ये है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलने का मतलब ये है कि जिनको शुगर हो, जिनको हल्का मोटापा हो, जिनका वेट बैलेंस ना हो, जिनका लिपिड प्रोफाइल ख़राब हो, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो, उस पेशेंट में फैटी लीवर होने का रिस्क बढ़ जाता है। फैटी लीवर एक ग्रेडिंग के बाद, ग्रेड 2 या ग्रेड 3 होने के बाद, लीवर का फंक्शन को डैमेज करना शुरू कर देता है, और ये एक तरह का नॉन रिवर्सिबल होता है, ये स्लोली प्रोग्रेसिव ही होता है, जिसको हम लोग आम भाषा में नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज बोलते हैं या NAFLD बोलते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जो बहुतों को मालूम नहीं होती कि उनको हो रही है, क्योंकि उनका जो शुगर रहता है वो हाई रहता है, उनका जो कोलेस्ट्रॉल है वो हाई रहता है, वो लोग तेल का सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं, तो ये एक्स्ट्रा फैट्स जाके लीवर में डिपॉजिट होता है। ये तो हो गया मोस्ट कॉमन। इसके बाद आता है आपको अल्कोहलिक लीवर डिजीज़, जो बहुत लोग ड्रिंक करने की हैबिट होता है, दारू पीने से लंबे समय से अगर लगातार कोई ड्रिंक करते आ रहे हैं तो लीवर में डैमेज होना शुरू हो जाता है, और ये भी एक तरह का इरिवर्सिबल होता है। नेक्स्ट आपको होता है हेपेटाइटिस सी या हेपेटाइटिस बी की इन्फेक्शन। ये हम लोग जानते हैं हेपेटाइटिस सी और बी जो अनप्रोटेक्टेड सेक्स के कारण होता है, और ये लीवर कैंसर का कारण भी बनता है। तो हेपेटाइटिस सी और बी के लिए कोई वैसा दवाई नहीं है, वैक्सीन तो बचाव के लिए है, लेकिन इस घातक इन्फेक्शन से बचना बहुत ज़रूरी होता है।
0: हमारे श्रोता जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, उनको आप ये बताएं कि वे अगर चाहते हैं कि अपने लीवर को स्वस्थ रखें तो अपने खान पान में किन चीज़ों को ज़्यादा शामिल करें और किन चीज़ों को खान पान के थाली से बिल्कुल बाहर करें।
1: देखिए, सबसे पहले है ऑयल कंट्रोल। ऑयल आप कुछ भी खाएं, एक आदमी की एक मंथ की कंजम्पशन ऑयल 450 से 500 ml पर मंथ होना चाहिए। ऑयल में भी ध्यान देना है कि वो जो ऑयल जमे उसको सेवन ना करें, जैसे वनस्पति हो गया, घी हो गया, इसकी सेवन ना करें। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की जो ऑयल होती है, जैसे हमारे जैसे ऑलिव ऑयल हो गया या रिफाइन हो गया, इसकी सेवन करें, बट इसकी भी सेवन कम करें। खाने में आपकी लहसुन होनी चाहिए, उसको आप सेवन करने से लीवर हेल्दी होता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल जो पत्तेदार होता है, जैसे कॉलीफ्लावर हो गया, कैबेज हो गया, इसका इस्तेमाल ज़्यादा करें। कैरेट का इस्तेमाल करें, इससे भी आपकी वो लीवर हेल्दी रहती है। अगर आप नींबू, जिंजर और ये ग्रीन टी पीते हैं तो आपकी लीवर भी हेल्दी होती है।
2: दोस्तों, आप सुन रहे थे स्वास्थ्य चर्चा। आइए अब जुड़ते हैं दिल्ली केंद्र से और सुनते हैं संस्कृत समाचार, हिंदी समाचार और अंग्रेजी समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के फिनटेक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की सराहना की है। उन्होंने कहा कि फिनटेक की सफलता की कहानी में एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई का निर्विवाद रूप से महत्वपूर्ण योगदान है। श्री मोदी ने मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन करते हुए ये बात कही।
1: भारत की फिनटेक स्टोरी अद्भुत रही है और इसका एक बड़ा चैंपियन है हमारा यूपीआई। मैंने पिछले साल भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब भी फिनटेक की चर्चा होगी तो वो यूपीआई के बिना अधूरी ही होगी।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि केवल अगस्त महीने में यूपीआई के माध्यम से 24 अरब से अधिक लेन देन हुए। श्री मोदी ने कहा कि इसी प्रभाव के कारण फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा था कि यूपीआई केवल तकनीकी नहीं बल्कि सभ्यतागत कहानी है। प्रधानमंत्री ने भारत की प्रमुख डिजिटल भुगतान प्रणाली के वैश्विक विस्तार का जिक्र करते हुए बताया कि यूपीआई अब 11 देशों में उपलब्ध है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय भुगतान के क्षेत्र में जिस गतिविधि की कभी कल्पना नहीं की जा सकती थी वो अब रोजमर्रा के वास्तविक बन गई है। छत्तीसगढ़ में कांकेर अदालत ने 2015 में सुरक्षा बलों पर हमले से जुड़े मामले में 5 माओवादियों को सजा सुनाई है। इनमें कुख्यात नक्सली प्रभाकर और उसकी पत्नी राजे कांगे भी शामिल हैं। दंडकारिणी स्पेशल जोनल कमेटी के कैडर प्रभाकर और डिविजनल कमेटी सदस्य उसकी पत्नी राजे कांगे को 7-7 वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई है। इस मामले में शामिल 3 अन्य माओवादियों को 5-5 वर्ष की जेल की सजा दी गई। वर्ष 2015 में माओवादियों के एक समूह ने सुरक्षा बलों की उस टीम पर हमला किया था जो कोरार इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही थी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि प्रभाकर और राजे कांगे पर कुल मिलाकर लगभग 60 आपराधिक मामले दर्ज हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज गोवा में पोरवोरिम एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग 66 पर बना ये 6 लेन का कॉरिडोर 5 किलोमीटर से ज्यादा लंबा है और इसे करीब 641 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। कॉरिडोर 11 सितंबर से वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय आज वाराणसी में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत करेगा। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में इस अभियान का शुभारंभ करेंगी। उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी किया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए राज्य के हिस्से में 4,000 रुपये प्रतिमाह और सहायिकाओं के लिए राज्य के हिस्से में 2,000 रुपये प्रतिमाह की अतिरिक्त बढ़ोतरी की गई है। अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कुल 12,000 रुपये प्रतिमाह और सहायिकाओं को 6,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। बढ़ा हुआ मानदेय सितंबर से लागू होगा और इसका भुगतान अक्टूबर में किया जाएगा। कनाडा ने अमेरिका के 600 से ज्यादा वस्तुओं पर 50% तक जवाबी शुल्क लगाया है। इससे इन दोनों पड़ोसी देशों के बीच व्यापार विवाद बढ़ गया है। अमेरिकी सामान पर ये शुल्क आधिकारिक रूप से कल रात से लागू हो गए। कनाडा के वाणिज्यिक उद्यम फेडरल सरकार के नए लागू किए गए डॉलर के बदले डॉलर शुल्क के तहत काम कर रहे हैं, जिसमें लगभग 28 अरब डॉलर मूल्य का अमेरिकी आयात भी शामिल है। अमेरिका के लगभग 700 उत्पादों पर 15 से 50% तक शुल्क लगाया गया है। प्रभावित सामानों में स्टील और एल्यूमिनियम जैसे औद्योगिक सामान, टॉयलेट पेपर जैसी रोजमर्रा की जरूरत की चीजें और क्वाइन ऑपरेटेड आर्किड मशीन जैसे विशेष उत्पाद शामिल हैं। एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल को कल नई दिल्ली में शानदार विदाई दी गई। इस अवसर पर युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया उपस्थित रहे। डॉक्टर मांडविया ने भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा, खेल सचिव हरि रंजन राव और भारतीय दल के प्रमुख सहदेव यादव के साथ मिलकर खिलाड़ियों और सहयोगी सदस्यों की उपस्थिति में आधिकारिक जर्सी का अनावरण किया। यूएस ओपन टेनिस में महिला सिंगल्स की मौजूदा चैंपियन और शीर्ष वरीयता प्राप्त अरीना सामालेंका तथा पुरुष सिंगल्स में फ्रांसिस टियाफो सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। अरीना सामालेंका ने रोमांचक क्वार्टर फाइनल में चेक गणराज्य की 6ठी वरीयता प्राप्त लिंडा नोस्कोवा को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। 11वीं वरीयता प्राप्त फ्रांसिस टियाफो ने 5 सेटों के रोमांचक मैच में अपने हमवतन अमरीकी खिलाड़ी एलेक्स मिशलिनसन को हराकर अंतिम 4 में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: गुड मॉर्निंग, दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साहिरा मुज्तबा।

दोस्तों, अभी आप हमारे दिल्ली केंद्र से जुड़कर सुन रहे थे संस्कृत हिंदी वो अंग्रेजी समाचार। ये है आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए दोस्तों, जान लेते हैं आगे प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। तो दोस्तों, अब से कुछ ही देर बाद यानी कि 7:15 पर आप सुनेंगे लोकगीतों का कार्यक्रम पलाश। पलाश के आज के हमारे कलाकार हैं शारदा सिन्हा। दोस्तों, इसके कुछ देर बाद यानी कि 7:45 से हम जुड़ेंगे सुगम संगीत पर आधारित हमारा कार्यक्रम स्वर सरिता से। स्वर सरिता में आज हम सुनेंगे अकबर इलाहाबादी के पुण्यतिथि पर आधारित कार्यक्रम। 8:00 हम फिर से एक बार जुड़ेंगे दिल्ली केंद्र से, सुनेंगे समाचार प्रभात। 8:15 में दिल्ली केंद्र से जुड़कर मॉर्निंग न्यूज सुनने के बाद 8:30 पे हम रांची केंद्र से जुड़कर सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और 8:45 पर हम वापस जुड़ जाएंगे आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से और सुनेंगे पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन। इसके बाद दोस्तों, हम 9:00 से सुनेंगे आकाशवाणी डाल्टनगंज केंद्र की प्रस्तुति जोहार पलामू। जोहार पलामू का प्रस्तुति स्वर होगा मेरा यानी कि आप सबका रेडियो दोस्त सायका चैटर्जी का, जबकि संयोजन है प्रशांत गौरव का। दस बजे दोस्तों, हम जुड़ जाएंगे दिल्ली केंद्र से, सुनेंगे हिंदी समाचार। 10:05 से दिल्ली केंद्र से ही रिले अंग्रेजी समाचार सुनने के बाद हम 10:10 पे जुड़ेंगे मुंबई केंद्र से और सुनेंगे विविध भारती की प्रस्तुति सेलुलॉयड के सितारे। 11:00 हम सुनेंगे विविध भारती की प्रस्तुति रंग तरंग और 12:00 सुनेंगे फिर से एक बार विविध भारती की प्रस्तुति यादों की महफिल। इसके बाद दोस्तों 1:00 से लेकर शायंग 5:30 तक हम लगातार बारी बारी से जुड़ते रहेंगे अपने दिल्ली, रांची और मुंबई केंद्र से, जहां से हम सुनेंगे हिंदी समाचार, अंग्रेजी समाचार, प्रादेशिक समाचार और विविध भारती से प्रस्तुत सुरीला सफर, दोपहर सभा, सदाबहार नगमे, सखी सहेली, आज के मेहमान और छाया गीत जैसे कार्यक्रमों को। उसके बाद दोस्तों 5:30 पे हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से फिर से एक बार जुड़ेंगे और हमारे रेडियो दोस्त आपको बताएंगे सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पलाश, ये है आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र। आइए पलाश की अगली कड़ी में हम फिर से एक बार सुनते हैं शारदा सिन्हा को।

नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी डाल्टनगंज से पेश है आपका अपना कार्यक्रम स्वर सरिता। आज 9 सितंबर है। हिंदुस्तान की उर्दू अदब की तारीख में यह दिन हमें एक ऐसे शायर की याद दिलाता है जिसकी शायरी में कहीं मुस्कुराहट है, कहीं तंज है, कहीं जमाने की नब्ज पर रखी हुई उंगली है, तो कहीं जिंदगी की तलख हकीकतों का एहसास। वो शायर जो अदालत में बैठकर इंसाफ करता था और जब कलम उठाता था तो समाज और सियासत को भी अपनी शायरी की अदालत में खड़ा कर देता था। जी हाँ दोस्तों, उसका नाम था सैयद अकबर हुसैन, लेकिन अदब की दुनिया उन्हें जानती थी अकबर इलाहाबादी के नाम से। 9 सितंबर 1921 को अकबर इलाहाबादी इस दुनिया से रुखसत हुए। उनकी जिंदगी के कुछ सफहे पलटेंगे, उनकी शायरी के कुछ रंग देखेंगे और सुनेंगे उनके कलाम को मौसिकी के पैरहन में। और शुरुआत करते हैं भाइयों बहनों उस गजल से जिसने अकबर इलाहाबादी के नाम को गजल की महफिलों में आज भी जिंदा रखा है और इस गजल को अपनी पुरकशिश आवाज में एक अलग ही मकाम दिया है गुलाम अली ने।

बरपा थोड़ी सी जो पीली है। श्रोताओं, अखबार की शायरी की यही तो खूबी है, बात शराब की हो रही है लेकिन बात सिर्फ शराब की नहीं है। लफ्जों की ऊपरी सतहों पर मुस्कुराहट है और उसके नीचे समाज की बंदिशों, दिखावे और दोहरे मयार पर एक महीन सा तंज है। अखबार इलाहाबादी की इब्तदाई तालीम घर पर हुई, अरबी और फारसी से वाकफियत हुई, लेकिन घर की माली हालात ऐसे नहीं थी कि वाकायदा तालीम बहुत दूर तक जारी रह सके। कम उम्र में ही रोजगार की तलाश शुरू करनी पड़ी, लेकिन जेहन में सीखने की जुस्तजू थी। उन्होंने अंग्रेजी सीखी, कानून की पढ़ाई की, वकालत का इम्तहान पास किया और फिर उनकी जिंदगी अदालत और अदब, इन दो दुनियाओं के बीच चलती रही। आगे चलकर वो मुंसिफ बने, फिर तरक्की करते हुए जज के ओहदे तक पहुंचे। लेकिन भाइयों बहनों, कमाल देखिए, जिस अंग्रेजी निज़ाम के वो मुलाजिम थे, उसी निज़ाम और उससे पैदा होती हुई नई सामाजिक सोच पर उनका तंज बड़ा बेबाकी से चलता रहा। दोस्तों, अकबर को नई तालीम से शिकायत नहीं थी, उनकी फिक्र थी उस अंधी नकल से जिसमें इंसान अपनी जबान, अपनी तहजीब और अपनी पहचान को ही कमतर समझने लगे। उनकी शायरी हंसाती जरूर है, लेकिन अक्सर हंसी खत्म होने के बाद एक सवाल छोड़ जाती है। उनकी गजलों में जिंदगी की उदासी, तन्हाई और बेनियाजी का रंग भी मिलता है। मिसाल के तौर पर उनका ये मशहूर शेर अर्ज करता हूँ दोस्तों, दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं।

अकबर इलाहाबादी एक ऐसा नाम जिसने उर्दू शायरी में तंज वो मिजाह को महज हंसी का जरिया नहीं रहने दिया बल्कि उसे समाज का आईना दिखाने का हुनर बना दिया। उनकी निगाह बड़ी पैनी थी, जमाने की कोई बात उनकी नजर से आसानी से बच नहीं पाती थी। दोस्तों, अंग्रेजी तालीम हो, पश्चिमी तहजीब की नकल हो, सियासत हो, मजहबी दिखावा हो या फिर नई पीढ़ी की बदलती हुई आदतें, अकबर सब पर लिखते थे। मगर उनके तंज में एक खास नफासत थी। वो चोट तो करते थे दोस्तों, मगर अक्सर मुस्कुराते हुए। उनका एक मशहूर शेर देखिए, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। जी हाँ दोस्तों, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता।

श्रोताओं, किसी शायर को समझना हो तो सिर्फ उसके अशयार नहीं, उसका जमाना भी समझना पड़ता है। अकबर इलाहाबादी का दौर हिंदुस्तान में बड़ी तब्दीलियों का दौर था। पुरानी और नई तहजीब आमने सामने थी। एक तरफ अंग्रेजी हुकूमत का असर बढ़ रहा था, दूसरी तरफ हिंदुस्तानी समाज अपनी पहचान और अपने मुस्तकबिल को लेकर बेचैन सा था। अकबर इस कश्मकश को बहुत करीब से देख रहे थे। वो पेशे से जज थे, लेकिन उनकी असली अदालत शायद उनकी शायरी थी। जहां कभी नई तहजीब कटघरे में होती, कभी सियासत, कभी समाज और कभी हम खुद, मगर अकबर का दूसरा चेहरा भी था, एक संजीदा इंसान का चेहरा। आइए सुनते हैं एक बार फिर से अकबर इलाहाबादी को, आवाज नुसरत फतेह अली खान।

दोस्तों आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वर सरिता। आज अकबर इलाहाबादी की पुण्यतिथि पर आपने सुना विशेष कार्यक्रम। आइए दोस्तों अब जुड़ते हैं दिल्ली केंद्र से और 8 बजे सुनते हैं समाचार प्रभात, 8:15 पे मॉर्निंग न्यूज़ और 8:30 से रांची केंद्र से जुड़कर सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। 8:45 पर हम फिर से एक बार वापस आएंगे आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से और सुनेंगे पुरानी फिल्म गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन। तो आइए सबसे पहले जुड़ते हैं दिल्ली केंद्र से और सुनते हैं समाचार प्रभात। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की फिनटेक सफलता की कहानी में निर्विवाद रूप से यूपीआई का महत्वपूर्ण योगदान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीलंका में भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण सेतु बताया। अमेरिका ने अपने युद्धपोत पर हमले के बाद फारस की खाड़ी में ईरान के 5 तेल टैंकर नष्ट किए। कनाडा ने 600 से अधिक अमरीकी वस्तुओं पर 50% तक जवाबी शुल्क लगाया। दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी शुरू होने से पहले 12 से 21 सितंबर के बीच केंद्रीय, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी भारत के बड़े

0: हिस्सों में तेज बारिश की आशंका और खेलों में टेनिस में आर्ना सबलेंका और फ्रांसिस टियाफो यूएस ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के फिनटेक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की सराहना की है। उन्होंने कहा कि फिनटेक की सफलता की कहानी में एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई का निर्विवाद रूप से महत्वपूर्ण योगदान है। श्री मोदी ने मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन करते हुए ये बात कही।
1: भारत की फिनटेक स्टोरी अद्भुत रही है और इसका एक बड़ा चैंपियन है हमारा यूपीआई। मैंने पिछले साल भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब भी फिनटेक की चर्चा होगी तो वो यूपीआई के बिना अधूरी ही होगी।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि केवल अगस्त महीने में यूपीआई के माध्यम से 24 अरब से अधिक लेन देन हुए। श्री मोदी ने कहा कि इसी प्रभाव के कारण फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा था कि यूपीआई केवल तकनीकी नहीं बल्कि सभ्यतागत कहानी है। प्रधानमंत्री ने भारत की प्रमुख डिजिटल भुगतान प्रणाली के वैश्विक विस्तार का जिक्र करते हुए बताया कि यूपीआई अब 11 देशों में उपलब्ध है। श्री मोदी ने कहा कि डिजिटल इंडिया की सफलता की कहानी अब एक नए अध्याय के लिए तैयार है।
1: डिजिटल इंडिया की सक्सेस स्टोरी अब एक नए अध्याय के लिए तैयार है। हमारी फिनटेक सक्सेस स्टोरी की अब तक की सफलता स्केल है, स्कोप है, सिक्योर सिस्टम है, डेमोक्रेटाइजेशन अब टेक्नोलॉजी है और जनता का ट्रस्ट है। इन्हीं कोर वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए फिनटेक सेक्टर को नेक्स्ट जनरेशन इनोवेशन पर फोकस करना है।
0: श्री मोदी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल भुगतान के लिए अगले रणनीतिक चरण की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए यूपीआई को साझेदार देशों की घरेलू भुगतान प्रणालियों के साथ तत्काल एकीकृत करने की आवश्यकता पर भी उन्होंने बल दिया। उन्होंने कहा कि जब दुनिया अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है और भारत इस दौर में भी 7.8% की दर से विकास करता है तो विश्व को एक नया भरोसा मिलता है।
1: दुनिया कॉन्फ्लिक्ट्स और अनसर्टेनिटी के दौर से गुजर रही है और इसमें भी जब भारत 7.8% से ग्रो करता है तो दुनिया को एक नया भरोसा मिलता है। भारत पर इस बढ़ते भरोसे का एक और उदाहरण हमारी सॉवरेन रेटिंग्स भी है।
0: प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि वैश्विक स्तर पर डिजिटल भुगतान प्रणालियों को एकीकृत करने से लोगों को स्वदेश में अपने परिवारों को धन भेजने में काफी तेजी आएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीलंका में रहने वाले भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच सेतु बताया है। उन्होंने कहा कि वो दोनों राष्ट्रों के बीच मित्रता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। श्री सिंह कल श्रीलंका के 3 दिन के दौरे पर कोलंबो पहुंचे। उन्होंने प्रवासी भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत में कहा कि भारत संकट के समय में हमेशा श्रीलंका के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि दोनों देशों के बीच संबंध साझा इतिहास, संस्कृति और आस्था पर आधारित हैं। श्री राजनाथ सिंह ने भारत के तीव्र आर्थिक परिवर्तन का जिक्र करते हुए कहा कि देश विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
2: आज भारत दुनिया के ग्रोथ में 16% से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। पिछले 10-12 सालों में अब हमारी इकोनॉमी की साइज 2 गुनी हो गई है और आज सारी दुनिया इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर जब चैलेंजेज का सामना कर रही है उस समय भारत की जीडीपी ग्रोथ अप्रॉक्सिमेटली 7.8% है।
0: श्री सिंह रक्षा और विदेश मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। बंदरनायके अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर श्रीलंका के उप रक्षा मंत्री सेवानिवृत्त मेजर जनरल अरुणा जयसेकरा ने रक्षा मंत्री का स्वागत किया। भारत और कुवैत विभिन्न क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी प्रगाढ़ करने पर सहमत हो गए हैं। कुवैत में कल 8वीं भारत कुवैत विदेश कार्यालय परामर्श बैठक में ये सहमति बनी। विदेश मंत्रालय के अपर सचिव असीम महाजन और कुवैत के विदेश मंत्रालय में एशिया मामलों के सहायक विदेश मंत्री नवाफ अब्दुल लतीफ सुलेमान अल अहमद ने बैठक की सह अध्यक्षता की। एक रिपोर्ट।
3: बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने कई क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। इन क्षेत्रों में राजनीतिक संबंध, व्यापार, निवेश, रक्षा, सुरक्षा, ऊर्जा, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संबंध शामिल हैं। दोनों पक्षों ने सहयोग के लिए संयुक्त आयोग के तहत संयुक्त कार्य समूह की बैठकों में हुई प्रगति की भी समीक्षा की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष नई दिल्ली में आपसी सहमति वाली तारीख पर विदेश कार्यालय परामर्श का अगला दौर आयोजित करने पर पर सहमत हुए हैं। मंत्रालय ने कहा कि भारत और कुवैत के बीच

0: लंबे समय से संबंध रहे हैं, जिन्हें दिसंबर 2024 में रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया गया था। मंत्रालय ने यह भी कहा कि कुवैत में रहने वाले 10.5 लाख भारतीय दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम कर रहे हैं। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
4: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका और ईरान के बीच लगातार हमलों के कारण पश्चिम एशिया में तनाव तेजी से बढ़ गया है। इससे व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की आशंका बढ़ गई है। अमेरिकी सैन्य बलों ने ईरान के कच्चे तेल के 5 टैंकर नष्ट कर दिए हैं। अमेरिका के अनुसार पिछले 2 दिनों में उनके एक युद्धपोत पर ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC ने हमले किए थे। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी। अमरीकी केंद्रीय कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये हमले पिछले 2 दिनों में अमरीकी युद्ध पोत पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करने के ईरान के 2 प्रयासों के जवाब में किए गए। ओमान की खाड़ी में नष्ट किए गए ईरानी जहाजों में केवेक, चारमीनार, होराइजन 1 और रिस्को शामिल थे। कनाडा ने अमेरिका की 600 से ज्यादा चीजों पर 50% तक जवाबी शुल्क लगाया है। इससे इन दोनों पड़ोसी देशों के बीच व्यापार विवाद बढ़ गया है। अमेरिकी सामान पर ये शुल्क आधिकारिक रूप से कल रात से लागू हो गए। एक रिपोर्ट।
5: कनाडा के वाणिज्यिक उद्यम फेडरल सरकार के नए लागू किए गए डॉलर के बदले डॉलर शुल्क के तहत काम कर रहे हैं, जिसमें लगभग 28 अरब डॉलर मूल्य का अमरीकी आयात शामिल है। अमरीका के 600 से अधिक उत्पादों पर 15-50% तक शुल्क लगाया गया है। प्रभावित सामानों में स्टील और एल्यूमिनियम जैसे औद्योगिक सामान, टॉयलेट पेपर जैसी रोजमर्रा की जरूरत की चीजें और कॉइन ऑपरेटेड आर्केड मशीन जैसे विशेष उत्पाद शामिल है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फेडरल एजेंसियों को आदेश दिया है कि वे सरकार के मुख्य खरीद कैटलॉग के जरिए कनाडाई उत्पादों की खरीद तब तक रोक दे जब तक कनाडा अमेरिकी कारोबारियों और किसानों को अपने बाजार में सामान की पहुंच नहीं देता। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: छत्तीसगढ़ में कांकेर अदालत ने 2015 में सुरक्षा बलों पर हमले से जुड़े मामले में 5 माओवादियों को सजा सुनाई है। इनमें कट्टर नक्सली प्रभाकर और उसकी पत्नी राजे कांगे भी शामिल हैं। दंडकारिणी स्पेशल जोनल कमेटी के कैडर प्रभाकर और डिविजनल कमेटी सदस्य उसकी पत्नी राजे कांगे को 7-7 वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई। इस मामले में शामिल 3 अन्य माओवादियों को 5-5 वर्ष की जेल की सजा दी गई। वर्ष 2015 में माओवादियों के एक समूह ने सुरक्षा बलों की उस टीम पर हमला किया था जो कोरार इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही थी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज गोवा में पोरवोरम एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग 66 पर बना ये 6 लेन का कॉरिडोर 5 किलोमीटर से ज्यादा लंबा है और इसे करीब 641 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। कॉरिडोर 11 सितंबर से वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा। एक रिपोर्ट।
6: इस कॉरिडोर से रोज करीब 75,000 से 80,000 वाहनों के गुजरने की उम्मीद है। इससे नीचे की मौजूदा सड़क पर करीब 60% ट्रैफिक कम होने की उम्मीद है। इससे मापुसा पणजी के व्यस्त रास्ते पर ट्रैफिक कम करने में मदद मिलेगी, साथ ही पर्यटकों और व्यावसायिक वाहनों की आवाजाही भी आसान होगी। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय आज वाराणसी में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में इस अभियान का शुभारंभ करेंगी।
7: इस वर्ष राष्ट्रीय पोषण माह की थीम हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी रखी गई है। पोषण माह 2026 में आहार विविधता और पर्याप्त प्रोटीन, आंगनवाड़ी केंद्रों पर ताजा गर्म पका हुआ भोजन, सामुदायिक स्वामित्व एवं जवाबदेही, पोषण एवं प्रारंभिक बाल विकास के लिए शिक्षा तथा प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना के 10 वर्ष पूरे होने को प्रमुखता दी जाएगी। वाराणसी में होने वाले शुभारंभ कार्यक्रम में पोषण मेले का आयोजन होगा। लाभार्थियों के अनुभव पर आधारित वीडियो का प्रदर्शन होगा। उसके साथ ही केंद्रीय मंत्री और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के बीच संवाद इसका प्रमुख आकर्षण होंगे। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर और प्रदेश की महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री बेबी रानी मौर्य भी मौजूद रहेंगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी कर दी गई है। राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए राज्य के हिस्से में 4,000 रुपये प्रतिमाह और सहायिकाओं के लिए राज्य के हिस्से में 2,000 रुपये प्रतिमाह की अतिरिक्त बढ़ोतरी की गई है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी शुरू होने से पहले 12 से 21 सितंबर के बीच केंद्रीय, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी भारत के बड़े भाग में वर्षा होने का अनुमान है। मौसम के मॉडलों ने संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में होने जा रही वर्षा कमजोर पड़ते मानसून चक्र को अस्थायी रूप से पुनर्जीवित कर सकती है। इसके कारण सितंबर के उत्तरार्ध में देश के कई भागों में बौछारें पड़ सकती हैं और गरज के साथ वर्षा हो सकती है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगई क्षेत्र, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज तेज वर्षा होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी तेज हवा के साथ गरज चमक की संभावना व्यक्त की है। खेलों में यूएस ओपन टेनिस में महिला सिंगल्स की मौजूदा चैंपियन और शीर्ष वरीयता प्राप्त अरीना सबालेंका तथा पुरुष सिंगल्स में फ्रांसिस टियाफो सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। अरीना सबालेंका ने रोमांचक क्वार्टर फाइनल में चेंग गणराज्य की छठी वरीयता प्राप्त लिंडा नोस्कोवा को हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
8: अपडेट रहे, आगे रहे। @AIRNewsHindi और Instagram पर AIR News Alerts को फॉलो करें।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
9: धन्यवाद फरहत। वडोदरा में माल ढुलाई गलियारे के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित की है। जनसत्ता लिखता है, प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा विपक्षी पार्टियां अब नए नए मुद्दे उठाएंगी। ब्रिक्स घोषणा पर सहमति बड़ी चुनौती, यूएई, ईरान आमने सामने, राजस्थान पत्रिका की खबर है। पत्र लिखता है, आतंक और द्वितीय मामलों पर भी जोर, कृषि, बीज और ऊर्जा पर साझेदारी को लेकर विशेष बातचीत होने की संभावना। देश भर में इमारतों की जांच पर विचार कर रहा शीर्ष कोर्ट, दिल्ली में 17 संपत्तियों पर चला बुलडोजर, अमर उजाला की खबर है। हिंदुस्तान ने श्रीनगर की शांत डल झील पर 4 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल के आगाज होने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, कश्मीर की डल झील पर शिकारी, ठहरी शाम और सिनेमा का जादू।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की फिनटेक सफलता की कहानी में निर्विवाद रूप से यूपीआई का महत्वपूर्ण योगदान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीलंका में भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण सेतु बताया। अमेरिका ने अपने युद्धपोत पर हमले के बाद फारस की खाड़ी में ईरान के 5 तेल टैंकर नष्ट किए। कनाडा ने 600 से अधिक अमरीकी वस्तुओं पर 50% तक जवाबी शुल्क लगाया। और टेनिस में अरीना सबालेंका और फ्रांसिस टियाफो यूएस ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेज यूपीआई इज अनडिस्प्यूटेड चैंपियन ऑफ इंडियाज फिनटेक सक्सेस स्टोरी। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह डिस्क्राइब्स इंडियन कम्युनिटी इन श्रीलंका एज इंपॉर्टेंट ब्रिज बिटवीन द टू कंट्रीज। U.S. says it destroyed five Iranian oil tankers in Persian Gulf after attacks on American warship. Canada imposes retaliatory tariffs of up to 50% on more than 600 U.S. goods. Rain likely to lash large parts of

0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहू का पसाव अच्छे से हो गया। क्या आप जच्चा बच्चा को घर ले जाएं?
1: अभी माँ बहुत कमजोर है, उसे दो दिन यहीं रहने दें। प्रसव के तुरंत बाद जच्चा बच्चा को संक्रमण और रोग का खतरा ज्यादा रहता है। सही देखभाल और संक्रमण से बचने के लिए माँ और बच्चे को प्रसव के बाद दो दिन अस्पताल में ही रहने दें। यह सुविधा सभी सरकारी अस्पताल में उपलब्ध है।
2: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी आज करेंगी राष्ट्रीय पोषण जागरूकता अभियान की शुरुआत। झारखंड के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में विशेष कार्यक्रमों का संचालन शुरू। परीक्षा गड़बड़ी मामले पर भाजपा का राज्यव्यापी आंदोलन दूसरे दिन भी जारी। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने सीबीआई जांच का किया दावा। मंत्री योगेंद्र साव ने लगाया राजनीतिकरण का आरोप। राज्य के 248 पीएम श्री विद्यालयों में आयोजित होगी मॉडल यूथ ग्राम सभा। छात्र मुखिया और वार्ड सदस्य बनकर सीखेंगे पंचायती राज व्यवस्था। मानव हाथी संघर्ष पर काबू पाने के लिए झारखंड को मिलेंगे 6 विशेष प्रशिक्षित कुमकी हाथी। कर्नाटक सरकार ने दी मंजूरी। और मौसम विभाग ने रांची, धनबाद और बोकारो सहित कई जिलों में आज भारी बारिश और वज्रपात का जारी किया अलर्ट। तेज हवाएं चलने की आशंका। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी आज राष्ट्रीय स्तर पर पोषण जागरूकता अभियान की शुरुआत कर रही हैं। इसके तहत आज से झारखंड के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में विशेष सामुदायिक कार्यक्रमों का संचालन शुरू हो रहा है। इस देशव्यापी अभियान का मुख्य उद्देश्य कुपोषण मिटाना और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। झारखंड भाजपा का राज्यव्यापी आंदोलन आज दूसरे दिन भी जारी है। आज बोकारो, पलामू और कोडरमा सहित 6 जिलों में डीसी कार्यालयों का घेराव किया जाएगा। बोकारो में पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और पलामू में दीपक प्रकाश प्रदर्शन का नेतृत्व संभालेंगे। भाजपा छात्रों पर दर्ज केस वापस लेने की मांग कर रही है। इस बीच रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने दावा किया है कि झारखंड में जेएसएससी और जेपीएससी परीक्षा घोटाले की सीबीआई जांच जल्द शुरू होगी। उन्होंने राज्य सरकार पर भर्ती परीक्षाओं में करोड़ों रुपए के बड़े लेन देन का आरोप लगाते हुए कहा कि परीक्षा रद्द करना समाधान नहीं है।
1: हेमंत सोरेन जी, आपकी बड़ी मछलियाँ जल्दी ही फुटवा जेल में जाने वाली हैं। आपके आधी कैबिनेट से ज्यादा फुटवा जेल में जाने वाली है, क्योंकि जल्द ही सीबीआई जांच भी होने वाली है।
0: भाजपा के आंदोलन पर राज्य के मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने पलटवार किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा अपने लोगों को बचाने के लिए आंदोलन कर रही है और छात्रों के प्रदर्शन का राजनीतिकरण कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य की एजेंसियां मामले की मुस्तैदी से जांच कर रही हैं।
2: उनसे पूछना चाहते हैं कि भाई पहली और दूसरी जेपीएससी का परिणाम अब तक सीबीआई का क्यों नहीं आया। वैसे लोगों को बचाना चाहते हैं जो निस्संदेह गलत तरीके से नौकरी पाया है, शायद उन लोगों को बचाना चाह रही है। भारतीय जनता पार्टी उन लोगों को बचाना चाह रही है। हमारी सरकार तत्परता से राज्य की एजेंसी काम कर रही है और कई ऐसे चेहरों को कटघरे में ला करके खड़ा करके जेल में डालने का काम किया।
0: गिरिडीह के बेंगाबाद में इजराइल से प्रशिक्षित उद्यमी सुमन कुमार ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से मछली पालन की नई मिसाल कायम की है। उन्होंने आर्थिक मदद से खुद की कार्प हैचरी और 32 तालाब बनाए हैं, जहां सालाना 150 टन मछली उत्पादन हो रहा है। सुमन कहते हैं कि इससे बंगाल पर निर्भरता खत्म हुई है और 40 ग्रामीणों को रोजगार मिला है।
3: प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत हमें कार्प हैचरी का निर्माण हेतु हमको मिला हुआ है। बंगाल से बच्चा लाते थे तो उसमें मॉर्टलिटी स्ट्रेस आता था, इसीलिए हमें एक रिक्वायरमेंट था कि एक हैचरी का डेवलप हमारे यहाँ तैयार हो, ताकि हम यहाँ प्रोडक्शन करके हम अपना यूज करें और यहाँ जितने भी फार्मर है उनको हम सरकारी दर से वो बीज का हम मुहैया करा पाए।
0: राज्य के सरकारी स्कूलों में छात्रों को पंचायत व्यवस्था सिखाने के लिए मॉडल यूथ ग्राम सभा आयोजित की जाएगी। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में पहले चरण में 248 पीएम श्री स्कूलों के कक्षा 9वीं से 12वीं के छात्र मुखिया और वार्ड सदस्य बनकर स्थानीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इससे छात्रों में नेतृत्व क्षमता विकसित होगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य में बढ़ते मानव हाथी संघर्ष को रोकने के लिए कर्नाटक सरकार राज्य को 6 कुमकी हाथी देगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आग्रह पर कर्नाटक सरकार ने इन विशेष प्रशिक्षित हाथियों को भेजने की मंजूरी दी है। कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट SR नतेश ने बताया कि ये कुमकी हाथी राज्य के हिंसक जंगली हाथियों को नियंत्रित कर ग्रामीणों को सुरक्षा प्रदान करेंगे।
4: कुमकी हाथी के ऊपर बैठ करके जाएंगे तभी हम दूसरे समस्या उत्पन्न करने वाले हाथी के पास तक पहुंच सकते हैं। इसी के लिए कुमकी हाथी हम लोगों ने कर्नाटक से प्राप्त करने के लिए पत्राचार किया था, वहां सहमति भी प्राप्त हुआ था। वहां का ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर भी विभाग को डायरेक्शन दिए हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का ओर से ही अपना बात रखे थे। पहले कर्नाटक सरकार ने 4 हाथी का सहमति किया था, बातचीत के दौरान 6 के लिए मान गए।
0: राज्य सरकार ने असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा नियमावली के प्रावधान स्पष्ट कर दिए हैं। नए नियमों के तहत विवादों का निपटारा 6 महीने में करना अनिवार्य होगा। कंपनियों को 1 फरवरी तक वार्षिक रिटर्न पोर्टल पर अपलोड करना होगा। नियमों की अनदेखी करने वाले संस्थानों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। झारखंड हाईकोर्ट ने रांची के नगड़ी गांव में करीब 3 एकड़ जमीन को अधिग्रहण मुक्त करने की याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि 1957-58 में कानूनी रूप से अधिग्रहित और मुआवजा दी गई भूमि को सार्वजनिक उपयोग के बाद वापस नहीं किया जा सकता। रांची नगर निगम ने डोरंडा के ग्वाला टोली में सरकारी भूमि पर कब्जे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। खाता संख्या 213 की 1 एकड़ 20 डिसमिल जमीन से 48 घंटे के नोटिस के बाद 2 अवैध गैरेज, 6 खटाल और दुकानें हटाई गई हैं। निगम ने चेतावनी दी है कि सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राज्य में सुखाड़ की तमाम आशंकाओं के बीच राहत की खबर है। कृषि विभाग के अनुसार राज्य में अब तक 70% से अधिक फसल कवरेज दर्ज किया जा चुका है। कृषि सचिव अबू बकर सिद्दीकी ने बताया कि भविष्य में सिंचाई संकट से निपटने के लिए राज्य भर में वाटर कैनाल का जाल बिछाने की बड़ी कवायद शुरू की जा रही है।
5: जुलाई अगस्त में हमारा अच्छा कवरेज हो गया, डेफिसिट लेवल से लगभग बाहर आता है। कुछ लेट सोइन अभी भी लोग कर रहे हैं, लोग का कवरेज का 100% तो नहीं हो पाया, फिर भी हम लोग 70 के ऊपर श्रेणी में चला गया। और क्रीसाइड करके एक संस्था है, ये ड्राई एग्रीकल्चर में ज्यादा काम करते हैं। हमारे राज्य में इवन पानी कम भी रहे उनको उस तरह का समय में भी किस तरह का खेती एक्टिविटी करना चाहिए उसको हम लोग उसको एजुकेट करने का प्रयास कर रहे हैं।
0: राज्य में अगले 5 दिनों तक मौसम का मिजाज बदला रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार आज और कल रांची, बोकारो, धनबाद और हजारीबाग सहित राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश, गरज चमक और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और वज्रपात की आशंका है। विभाग ने इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने धनबाद में भूधसान की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, धनबाद में फिर धंसी जमीन, 5 घर जमींदोज, 1 बच्चे की मौत। प्रभात खबर लिखता है, 57,000 करोड़ की निकासी के बाद भी खर्च सिर्फ 34,000 करोड़, सरकारी प्रक्रिया में फंस रही जनहित की योजनाएं। हिंदुस्तान के शब्द हैं, ख्यांगते ने लैपटॉप और पेन ड्राइव से मिटाए कई साक्ष्य। दैनिक जागरण ने लिखा है, पैसे देकर CGL परीक्षा पास करने वाले अफसरों पर CID की नजर। और अब अंत में मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी आज करेंगी राष्ट्रीय पोषण जागरूकता अभियान की शुरुआत। झारखंड के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में विशेष कार्यक्रमों का संचालन शुरू। परीक्षा गड़बड़ी मामले पर भाजपा का राज्यव्यापी आंदोलन दूसरे दिन भी जारी। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने CBI जांच का किया दावा। मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने लगाया राजनीतिकरण का आरोप। राज्य के 248 PM श्री विद्यालयों में आयोजित होगी मॉडल यूथ ग्राम सभा।

0: छात्र मुखिया और वार्ड सदस्य बनकर सीखेंगे पंचायती राज व्यवस्था। मानव हाथी संघर्ष पर काबू पाने के लिए झारखंड को मिलेंगे 6 विशेष प्रशिक्षित कुमकी हाथी, कर्नाटक सरकार ने दी मंजूरी। और मौसम विभाग ने रांची, धनबाद और बोकारो सहित कई जिलों में आज भारी बारिश और वज्रपात का जारी किया अलर्ट, तेज हवाएं चलने की आशंका। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: एक घंटे के भीतर पिलाएं माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध।
2: माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध यानी कोलेस्ट्रम या खिरसा दूध
1: नवजात शिशु के लिए सबसे अच्छा और पौष्टिक आहार है।
2: ये बच्चे को अनेक गंभीर बीमारियों से बचाने में मदद करता है
1: और बच्चे की रोग निरोधक क्षमता को बढ़ाता है।
2: जन्म से लेकर 6 महीने तक पिलाएं सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध,
1: पानी भी नहीं।
2: बच्चा दिन रात में जितनी बार जितनी देर तक चाहे माँ उसे स्तनपान कराए।
1: माँ का दूध सर्वोत्तम आहार,
2: स्वस्थ बच्चा खुशियाँ अपार।
3: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
4: अली अली अली मुन्ना, कैसे है ऋतु? तुम्हें तो दस्त हो रहा था,
1: अभी ORS और जिंक की गोली से बिल्कुल स्वस्थ है।
5: दस्त होने से बच्चे के शरीर में पानी और जरूरी तत्वों की कमी हो जाती है।
6: 5 ग्लास साफ पानी में 1 पैकेट ORS का घोल बनाएं।
5: 24 घंटे के बाद नया घोल बनाएं।
6: थोड़ी थोड़ी देर में बच्चे को पिलाएं।
5: साथ ही हर दिन 1 जिंक की गोली बच्चे को दें।
6: याद रखें, दस्त बंद होने पर ORS बंद कर दें,
5: पर जिंक की गोली 14 दिनों तक देते रहें।
3: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक

नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी डाल्टनगंज से प्रस्तुत है आपका अपना लोकप्रिय कार्यक्रम गीत गुंजन। आज का ये कार्यक्रम समर्पित है हिंदी सिनेमा के उस महान फिल्मकार को जिसने भारतीय सिनेमा के पर्दे पर सिर्फ कहानियां नहीं सुनाई बल्कि हिंदुस्तान के गांव, खेत, किसान, औरत, परिवार, प्रेम और संघर्ष इन सब को अपनी फिल्मों का हिस्सा बनाया। एक ऐसा फिल्मकार जिसकी फिल्मों में मनोरंजन के साथ साथ समाज की तस्वीर भी दिखाई देती थी। जी हाँ दोस्तों, आज 9 सितंबर है और आज हम याद कर रहे हैं महान फिल्म निर्देशक महबूब खान को। महबूब खान का जन्म 9 सितंबर 1907 को गुजरात के बीलीमोरा में हुआ था। सिनेमा के प्रति उनका जुनून उन्हें अभिनय से निर्देशन की ओर ले गया और आगे चलकर वे भारतीय फिल्म इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण निर्देशकों में शामिल हुए। उनकी फिल्मों की यात्रा औरत, अनमोल घड़ी, अनोखी अदा, अंदाज, आन, अमर और मदर इंडिया जैसी यादगार फिल्में शामिल है। तो आइए भाइयों बहनों, महबूब खान को याद करने की शुरुआत करते हैं उनकी फिल्म अनमोल घड़ी की एक बेहद लोकप्रिय गीत से।

फिल्म अनमोल घड़ी का सदाबहार गीत। भाइयों बहनों, 1946 में आई फिल्म प्रेम, दोस्ती और रिश्तों की कहानी थी। फिल्म में नूरजहां, सुरेंद्र और सुरैया जैसे कलाकार थे और इसकी कहानी एक प्रेम त्रिकोण के इर्द गिर्द बुनी गई थी। लेकिन महबूब खान की खासियत केवल प्रेम कहानियां कहना नहीं थी, वे समाज के बदलते चेहरे को भी बहुत गहराई से देखते थे। 1940 में उन्होंने बनाई थी फिल्म औरत। यही वो फिल्म थी जिसे बरसों बाद उन्होंने एक और विराट रूप दिया और वह बनी मदर इंडिया। और लगभग 17 साल बाद वही संवेदना, वही संघर्ष और वही मातृत्व भारतीय सिनेमा की महानतम फिल्मों में से एक मदर इंडिया के रूप में सामने आया। दोस्तों, हम मदर इंडिया के गीतों को तो सुनेंगे, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं महबूब खान की एक और यादगार फिल्म का गीत। फिल्म का नाम है अंदाज, गीत तू कहे अगर, गायक

जी हाँ भाइयों बहनों, फिल्म का नाम अंदाज। महबूब खान की इस फिल्म में पहली बार राज कपूर, दिलीप कुमार और नरगिस जैसे तीन बड़े सितारे एक साथ दिखाई दिए। फिल्म आधुनिक रिश्तों, प्रेम और बदलते सामाजिक मूल्यों के बीच पैदा होने वाले तनाव को सामने रखती है। और संगीत, वाह, संगीतकार नौशाद के संगीत ने फिल्म को अमर बना दिया। अंदाज के गीतों में तू कहे अगर, जो आपने अभी सुना, इसके अलावा हम आज कहीं दिल खो बैठे और झूम झूम के नाचो आज जैसे गीत शामिल हैं। महबूब खान की फिल्मों का दायरा अब और बड़ा हो रहा था। फिर आई 1952 की फिल्म आन, एक भव्य फिल्म जिसमें दिलीप कुमार, निम्मी, प्रेमनाथ और नादिरा जैसे कलाकार थे। रंगीन पर्दे पर महबूब खान ने इस विशाल और रोमांचक संसार को जिस तरह से रचा, वो उस दौर में अपने आप में खास था। और अब आइए सुनिए उसी फिल्म की, यानी कि आन की, एक और लोकप्रिय गीत, गायक मोहम्मद रफी।

महबूब खान की फिल्मों में एक बात लगातार दिखाई देती थी, वो है आम आदमी की जिंदगी। कभी प्रेम के रूप में, कभी गरीबी के रूप में, कभी सामाजिक संघर्ष के रूप में, और कभी एक माँ के त्याग के रूप में भी। और फिर आया वर्ष 1957। हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक ऐसी फिल्म आई जिसने महबूब खान को अमर कर दिया। फिल्म थी मदर इंडिया। नरगिस ने निभाया था राधा का किरदार, एक ऐसी माँ जो गरीबी, कर्ज, भूख, बाढ़ और जीवन के अनगिनत संघर्षों के सामने झुकती नहीं। मदर इंडिया की शुरुआत ही धरती और माँ के रिश्ते से होती है और पूरी फिल्म में खेत, मिट्टी, गांव और श्रम भारतीय जीवन के केंद्रीय प्रतीक बन जाते हैं। और इस फिल्म का संगीत, जी हां, नौशाद का संगीत, गीतकार शकील बदायूनी के गीत, और जो गीत हम सुनाने जा रहे हैं उसमें आवाजें हिंदी फिल्म संगीत के इतिहास की उन अनमोल आवाजों में शामिल है, रफी, आशा, मन्ना।

दुख भरे दिन बितेरे भैया अब सुख आयो रे। जैसे लगता है ये गीत केवल फिल्म के पात्रों की आवाज नहीं बल्कि उस दौर के पूरे ग्रामीण भारत की आवाज है। महबूब खान की फिल्मों में गीत कहानी से अलग कोई सजावट नहीं होते थे, वे कहानी का हिस्सा होते थे। खुशी हो तो गीत, दर्द हो तो गीत, मेहनत हो तो गीत और जीवन के संघर्ष में उम्मीद हो तो भी गीत। यही कारण है कि उनके फिल्मों के गीत आज भी हमारी स्मृतियों में बसे हुए हैं। और जब महबूब खान की बात हो और मदर इंडिया का जिक्र न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इस विशेष कार्यक्रम का समापन करते हैं मदर इंडिया के एक ऐसे गीत से जिसमें माँ, मिट्टी और मातृभूमि तीनों एक साथ दिखाई देते हैं। जी हाँ भाइयों बहनों, हम बात कर रहे हैं उस गीत के, वो जाने वालों जाओ ना घर अपना छोड़ के।

0: तो भाइयों बहनों, आज 9 सितंबर को हमने याद किया हिंदी सिनेमा के उस महान फिल्मकार महबूब खान को, जिन्होंने अपने सिनेमा में हिंदुस्तान की मिट्टी की खुशबू, गांव की जिंदगी, रिश्तों की गर्माहट और संघर्ष की सच्चाई को जगह दी। उनकी फिल्मों का सफर बहुत लंबा तो नहीं था, लेकिन उनकी बनाई तस्वीरें भारतीय सिनेमा की स्मृति में हमेशा जीवित रहेगी। महबूब खान को उनकी जयंती पर आकाशवाणी डाल्टनगंज की यह विनम्र श्रद्धांजलि थी। इसी के साथ आज के गीत गुंजन से मुझे, यानी कि आपका रेडियो दोस्त, रेडियो होस्ट सैक चटर्जी को दीजिए अनुमति। लेकिन हाँ, आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि आकाशवाणी डाल्टनगंज से प्रस्तुत होने वाले कार्यक्रमों का सिलसिला अभी आगे और भी है। जी हाँ दोस्तों, अभी हमारे साथ आप जुड़े रहें और शामिल हो जाएं जोहार पलामू कार्यक्रम से।
1: जोहार पलामू।

दोस्तों जोहार पलामू कार्यक्रम में प्रस्तुति स्वर है मेरा यानी कि आपका रेडियो दोस्त रेडियो होस्ट साइका चटर्जी का और प्रस्तुत करता है प्रशांत गौरव। दोस्तों जोहार पलामू कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए आइए सबसे पहले हम बात करेंगे ज्ञान की। जी हाँ, विज्ञान की और दूसरी कई रोचक जानकारियों की। तो आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं 9 सितंबर की महत्वपूर्ण घटनाएं। ऐसी कौन कौन सी घटी थी जो अपने बलबूते विश्व इतिहास के पन्नों पर अपना नाम दर्ज करवा लिया। लेकिन उससे पहले आपको एक और जानकारी साझा करूं कि ग्रेगोरी कैलेंडर के अनुसार 9 सितंबर वर्ष का 252वां दिन है और साल में अभी और 113 दिन शेष हैं। दोस्तों आइए अब जानते हैं महत्वपूर्ण घटनाओं को जो 9 सितंबर को घटी थी। हम बात करते हैं 1776 की 9 सितंबर की। उस दिन अमेरिकी सांसद कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर देश का नाम यूनाइटेड कॉलोनीज से बदलकर संयुक्त राज्य अमेरिका किया था। बात करें 1850 की 9 सितंबर की तो कैलिफोर्निया अमेरिका का 31वां राज्य बना था। 1867 के 9 सितंबर को यूरोपीय देश लक्जमबर्ग ने स्वतंत्रता हासिल की। और दोस्तों 9 सितंबर 1915 को प्रसिद्ध भारतीय क्रांतिकारी सचिंद्रनाथ सान्याल और अंग्रेजों के बीच उड़ीसा के काप्टेबाड़ा में संघर्ष हुई थी। 1920 के 9 सितंबर को अलीगढ़ का एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में रूपांतरित हो गया था। दोस्तों 9 सितंबर 1949 की बात करें तो भारत की संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। 1976 के 9 सितंबर को माओ त्से तुंग का देहावसान एवं कुओ फ्रेग राष्ट्रपति बने थे। 1954 के 9 सितंबर को अफ्रीकी देश अल्जीरिया में भूकंप से 1400 लोग 1400 लोगों की मौत हो गई थी जो पूरे विश्व के लिए शोक का विषय था। 1965 के 9 सितंबर को तिब्बत चीन का स्वायत्त क्षेत्र बना था। 1967 के 9 सितंबर को युगांडा ब्रिटेन से आज़ाद हुआ था और 1989 के 9 सितंबर को जोगेंद्रनाथ हजारिका ने असम की मुख्यमंत्री पद ग्रहण किया। 1991 के 9 सितंबर को तजाकिस्तान ने सोवियत संघ से स्वतंत्रता हासिल की। 9 सितंबर 1998 को अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और मोनिका लेविस्की प्रकरण पर स्वतंत्र वकील केनेथ स्टार ने अपनी बहुचर्चित रिपोर्ट कांग्रेस को प्रेषित किया। 1999 के 9 सितंबर को भारत के महेश भूपति तथा जापान की आर्क सुगियामा की जोड़ी ने अमेरिकी ओपन में मिश्रित युगल खिताब जीता। 2001 के 9 सितंबर को विनस विलियम्स ने अपनी छोटी बहन सेरेना विलियम्स को ग्रैंड स्लैम फाइनल में हराया। 2002 के 9 सितंबर को पीट सम्प्रास ने आंद्रे आगासी को हराकर अमेरिकी ओपन टेनिस खिताब जीता। और 2004 के 9 सितंबर को फिलिस्तीनी के प्रधानमंत्री अहमद कुरेई ने अपने पद से इस्तीफा दिया। 2005 के 9 सितंबर को चीन के बीजिंग स्थित छाओवांग पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। 2006 के 9 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय दबाव के मद्देनजर इसराइल द्वारा 8 सप्ताह से की गई लेबनान की 9 सैनिकी घेराबंदी को समाप्त किया गया। और इसी दिन यानी कि 9 सितंबर 2006 को अमेरिकी राज्य फ्लोरिडा के केप कैनरवेल स्पेस सेंटर से अंतरिक्ष जान अटलांटिस ने अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी। 2007 के 9 सितंबर को वेनिस फिल्म फेस्टिवल में हॉलीवुड एक्टर ब्रैड पीट को बेस्ट एक्टर तथा केट विंस्लेट को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड प्रदान किया गया। 2008 के 9 सितंबर को हिंदी साहित्य के मूर्धन्य रचनाकार तथा लोकवार्ताकार डॉक्टर अर्जुन दास केशरी को साहित्य महोपाध्याय अलंकरण प्रदान करने की घोषणा की गई। इसी दिन यानी कि 9 सितंबर 2008 को सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दो जजों निर्मल यादव और निर्मलजीत कौर से 15 लाख रुपए के घूसकांड में पूछताछ की इजाजत दी। 2009 के 9 सितंबर को रेल मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के तर्ज पर अपने कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली शुरू करने की घोषणा की।
2010 के 9 सितंबर को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देने का निर्णय लिया गया। 2001 के 9 सितंबर को पुराने विज्ञानियों ने एक अवशेष का पता लगाया था। ये मनुष्य का सबसे पुराना पूर्वज ऐसा कहा गया था, जो लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व पृथ्वी पर पाया जाता था। यह बंदर जैसा दिखता था और इसका नाम ऑस्ट्रेलोपिथेकस से डिबा के रूप में रखा गया था। दोस्तों, इसी दिन यानी कि 9 सितंबर 2011 को वैज्ञानिकों को ऑटिज्म से जुड़े दो अलग अलग जैविक तनाव का पता चला, जिसके बारे में उनका दावा है कि इसके बीमारी के प्रभावी इलाज का विकास हो सकेगा। इन खोजों की तुलना 1960 के दशक में हुई कैंसर के विभिन्न प्रकारों की खोज से की जा रही थी और उनसे उम्मीद जागी थी कि इनसे ऑटिज्म ग्रस्त बच्चों के संपर्क, समाजीकरण और अन्य समस्याओं को ज्यादा आसानी के साथ और जल्दी से निपटा जा सकेगा। दोस्तों, 2012 के 9 सितंबर को इराक में बम हमले से 100 से भी अधिक लोगों की मौत हो गई थी और 350 अन्य लोग घायल हो गए थे। यह घटना पूरे विश्व के लिए हृदय विदारक घटना थी। दोस्तों, जोहार पलामू कार्यक्रम जो है ना, वो एक तरफ जहां ज्ञान की बातें करता है, जानकारियों की बातें आपसे साझा करता है, वहीं मनोरंजन की दुनिया में भी गोता लगाता है। तो आइए चलते हैं साथ साथ गोता लगाने मनोरंजन की दुनिया में, और आपको बताते चले कि आज का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आज हमने फिल्म इंडस्ट्री की एक हस्ती महबूब खान की गीतों को सुना गीत गुंजन कार्यक्रम में, और जोहार पलामू कार्यक्रम में एक और बर्थडे बॉय है फिल्म इंडस्ट्री से, उनके गीत को सुनाऊंगा। वो और कोई नहीं है, हम सबके चहेते अक्षय कुमार। जी हाँ, आज अक्षय कुमार का जन्मदिन है। तो आकाशवाणी डाल्टनगंज की ओर से, हमारी ओर से, आप सब श्रोताओं की ओर से अक्षय कुमार को ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे अक्षय कुमार। आइए सुनते हैं अक्षय कुमार अभिनीत फिल्म सैनिक के उस गीत को, जिसे आवाज दिया है सानू और अलका याग्निक, गीत को लिखा है समीर और संगीत तैयार किया है नदीम श्रवण की जोड़ी।

0: तो इसी गीत के साथ फिर से एक बार जो हर पलामू कार्यक्रम से जुड़कर कुछ बात करेंगे जानकारियों की, तो आपको बताते चले दोस्तों कि 9 सितंबर 1998 को भारत की जूडो खिलाड़ी तुलिका मान का जन्मदिन है। महान रूसी उपन्यासकार लियो टॉल्स्टॉय का जन्मदिन 9 सितंबर 1828 है, तो प्रसिद्ध हिंदी लेखक और नाटककार भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 9 सितंबर 1850 है। महबूब खान के बारे में तो हम आपको बता ही चुके हैं कि 9 सितंबर 1907 को उनका जन्मदिन था, और भारतीय दार्शनिक हुसैन शाह का जन्मदिन 1905 ईस्वी के 9 सितंबर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिज्ञ और स्वतंत्रता सेनानी भान का जन्मदिन 1908 के 9 सितंबर है। भारतीय सैनिक के गौरव विक्रम बत्रा का जन्म 1974 के 9 सितंबर को है, और उड़िया भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार तथा भाषाविद गोपाल चंद्र प्रहराज का जन्म 9 सितंबर 1874 है। प्रसिद्ध साहित्यकार मणि मधुकर का जन्म 9 सितंबर 1942 है, तो हिंदी के प्रसिद्ध रचनाकार कांति कुमार जैन का जन्म 1932 के 9 सितंबर है। भारत की जानी मानी महिला हॉकी खिलाड़ी ज्योति सुनीता कुल्लू का जन्म 9 सितंबर 1978 है। भारत में भोपाल रियासत के अंतिम नवाब हमीदुल्लाह खान का जन्म 1894 के 9 सितंबर है। भारत के स्वतंत्रता सेनानी अर्जुन लाल सेठी का जन्म 9 सितंबर 1880 को है। और दोस्तों इसी के साथ आपको बताते चलें कि हिंदी फिल्म की तत्कालीन ब्लैक एंड व्हाइट ऑरा की प्रसिद्ध अभिनेत्री लीला चिटनिस का भी जन्मदिन आज ही है, यानी कि 9 सितंबर। उनका जन्म था 9 सितंबर 1909 को। तो आइए उस महान कलाकार को याद करते हुए हम उन्हीं के पर फिल्माए गए गीत को सुनेंगे। यह गीत हमने लिया है 1956 को आई फिल्म फंटूश से। इस पे फिल्माया गया था देवानंद और लीला चिटनिस पर। आवाज थी आशा भोसले और किशोर कुमार की, गीत लिखे थे साहिर लुधियानवी और धुन बनाई थी सचिन देव बर्मन।
1: ए हे, ए हे, ए हे, ए हे, ए हे।

0: छेड़ियो छेड़ियो
1: पूजियो पूजियो
0: ना छेड़ियो ना छेड़ियो
1: पूजियो पूजियो
0: ना छेड़ियो ना छेड़ियो
1: पूजियो पूजियो
0: ना ना ना ना ना ना छेड़ियो ना छेड़ियो
1: पूजियो पूजियो
0: छेड़ियो
1: पूजियो
0: छेड़ियो
1: पूजियो
0: छेड़ियो
1: पूजियो
0: छेड़ियो
1: पूजियो
0: छेड़ियो
2: छेड़ियो
3: जन्म और मृत्यु दोस्तों जिंदगी के दो अहम हिस्सा है। इसके बगैर जिंदगी नहीं। जन्म हुआ है तो मौत भी होगी। हमने 9 सितंबर को जन्मे व्यक्तियों के बारे में चर्चा किया। आइए दोस्तों अब जोहार पलामू कार्यक्रम के इस पार्ट में हम चर्चा करेंगे 9 सितंबर को निधन हुए व्यक्तियों के बारे में। तो आपको बताते चले दोस्तों कि 1999 के 9 सितंबर को असमिया भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकारों में से एक जोगेश दास का निधन हो गया था। कश्मीर के नेता शेख अब्दुल्ला का निधन 9 सितंबर 1982 को हो गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिज्ञ और उड़ीसा के 5वें मुख्यमंत्री सदाशिव त्रिपाठी का निधन 9 सितंबर 1980 को हो गया था। प्रसिद्ध पत्रकार तथा हिंद समाचार समूह के संस्थापक लाला जगत नारायण का निधन 1981 को 9 सितंबर को हो गया था। भारत के प्रसिद्ध उपन्यासकार कहानीकार निबंधकार नाटककार क्रांतिकारी पत्रकार और संपादक राम वृक्ष बेनीपुरी का निधन 9 सितंबर 1968 को हुई थी। प्रसिद्ध उद्योगपति एवं श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन का निधन 9 सितंबर 2012 और भारत के सुविख्यात कलमार्ग और चिंतक आनंद कुमार स्वामी का निधन 9 सितंबर 1947 को हो गया था। इसके अलावा दोस्तों हिंदुस्तानी जबान और हिंदुस्तानी तहजीब के बड़े मजबूत और दिलेर शायर अकबर इलाहाबादी की मौत 9 सितंबर को हो गई थी। दोस्तों अकबर इलाहाबादी मुख्य रूप से उर्दू के शायर थे और फिल्म गीतकार के रूप में उनकी पहचान नहीं थी, इसलिए उनके नाम से जुड़ी फिल्म गीतों की सूची नहीं के बराबर है। हाँ, बशर्ते कुछ फिल्मों में उनके गजलों को शेरो शायरियों को इस्तेमाल किया गया था। लेकिन एक बहुत ही पॉपुलर प्रसिद्ध गीत ऐसे थे दोस्तों जिनमें अकबर इलाहाबादी के नाम आए थे। कौन सी वो फिल्म थी, कौन सा गीत, आइए दोस्तों सुनते हैं। अभी सिर्फ इतना जान लीजिए फिल्म का नाम था अमर अकबर एंथोनी।

दोस्तों आप सुन रहे थे कार्यक्रम जोहार पलामू। आइए अब जुड़ते हैं प्रायोजित कार्यक्रम से। जी हां, हम सुनेंगे अब आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से प्रस्तुत प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सबको विमलेश का नमस्कार और जोहार। आज के उमंग कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। सुनते हैं आज का एक सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतनमाला सुरलकर जी ने। लिखते हैं, जीवन में वही आगे बढ़ता है जो अपनी गलतियों से सीखता है। अक्सर ठोकरें रास्ते की रुकावट नहीं बल्कि मंजिल की तैयारी का प्रशिक्षण होती हैं। धन्यवाद।

धन्यवाद आप दोनों का इस सुंदर विचार के लिए। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। गांव ठाणी कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी गुर्जर, अवाना, अवनी, प्रियांशी, रियांशी, ओजस, अनाया, गुरदीप और बेबी कीरत ने लिखा है, आदरणीय विमलेश जी एवं अजीत जी सादर नमस्कार। 13 अगस्त 2026 को 1857 के गुमनाम वीर स्वतंत्रता सेनानियों की श्रृंखला के अंतर्गत वीर सावरकर जी के जीवन को जानने का अवसर मिला। आपकी ये प्रेरणादायी प्रस्तुति हमें स्वतंत्रता के मूल्य और हमारे वीरों के त्याग एवं बलिदान से परिचित कराती है। इतिहास के ऐसे प्रेरणादायी प्रसंगों को जन जन तक पहुंचाने के लिए आप दोनों का हार्दिक धन्यवाद और साधुवाद। आपको भी हमारा बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। ग्राम पजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया जी ने लिखा है, आदरणीय अजीत जी और विमलेश जी, आज हमने उमंग कार्यक्रम के अंतर्गत ये भी जानिए मैं पिंगली वेंकैया जी के बारे में, अपने राष्ट्रध्वज के बारे में और आजाद हिंद फौज के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस के बारे में बहुत कुछ जाना। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और उमाराज, लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी। आप सबके संदेशों के लिए धन्यवाद। श्रोताओ, जैसा कि आप जानते हैं, इन दिनों हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं बहुत सारे प्रेरक प्रसंगों को। आज हम एक ऐसे व्यक्ति की कहानी लेकर आए हैं जिसने न कोई बड़ी मशीन इस्तेमाल की, न उसके पास कोई बड़ी टीम थी। उसके पास था एक हथौड़ा, एक छेनी और एक अद्भुत संकल्प। आज के प्रेरक प्रसंग का शीर्षक होगा, पहाड़ से भी ऊंचा आदमी। ये कहानी भी NCERT की हिंदी की कक्षा 8 की पूर्व पाठ्य पुस्तक वसंत से संदर्भित है। ये कहानी है दृढ़ संकल्प के धनी दशरथ मांझी जी की। श्रोताओ, ये कहानी शायद आपने भी सुनी होगी, लेकिन हम इसे आज एक अलग परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करेंगे। उनकी कहानी शुरू होती है बिहार के गया जिले के गहलोर गांव से। श्रोता मित्रों, ये वो समय था जब आज के युग के उन्नत यातायात, संचार और चिकित्सा के साधन नहीं थे। उन दिनों में गहलोर गांव के लोगों को अस्पताल और बाजार तक पहुंचने के लिए एक बड़े पहाड़ के चारों ओर घूमकर जाना पड़ता था। रास्ता बहुत लंबा और कठिन था। कहा जा सकता है कि पहाड़ मात्र एक प्राकृतिक बाधा ही नहीं था, बल्कि गांव के लोगों के जीवन में रोज की परेशानी भी था। दशरथ मांझी मजदूरी करते थे। एक दिन उनकी पत्नी फाल्गुनी देवी पहाड़ के दूसरे छोर पर काम कर रहे अपने पति दशरथ मांझी के लिए खाना लेकर जा रही थीं। पहाड़ पार करते समय वे दुर्घटनाग्रस्त हो गईं। चोट गंभीर थी, उन्हें समय पर चिकित्सा सहायता नहीं मिल सकी और उनकी मृत्यु हो गई। सचमुच बहुत दुखद घटना थी, लेकिन उस दुख ने दशरथ मांझी के भीतर एक ऐसा संकल्प पैदा किया जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी। उन्होंने फैसला किया, मैं इस पहाड़ को काटकर रास्ता बनाऊंगा। और ये फैसला उन्होंने अकेले ही किया। उनके पास था एक साधारण हथौड़ा और छेनी। दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने पहाड़ पर प्रहार करना शुरू किया। एक दिन, दो दिन, एक महीना, एक साल, समय बीतता गया। हो नहीं सकता मित्रों कि गांव वालों ने उनका मजाक नहीं उड़ाया होगा, लेकिन उन्होंने लोगों की बातों की चिंता नहीं की। वे रोज काम करते रहे। दशरथ मांझी जानते थे कि उन्हें एक ही दिन में पहाड़ नहीं काटना है, उन्हें बस हर दिन थोड़ा सा काम करना है। और श्रोता मित्रों, यही बात बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम कई बार बड़े लक्ष्य को देखकर डर जाते हैं। हम सोचते हैं इतना बड़ा काम कैसे होगा, लेकिन दशरथ मांझी ने सुनिश्चित कर लिया था कि वे अपने काम में निरंतरता बनाए रखेंगे। उन्होंने हथौड़ा उठाया और पहाड़ पर एक चोट की, फिर दूसरी, फिर तीसरी और फिर हजारों चोटें, लाखों चोटें, और धीरे धीरे वो पहाड़ टूटने लगा। श्रोताओं, आपको बता दें कि लगभग 22 वर्षों तक वे लगातार काम करते रहे। जी हाँ श्रोताओं, पूरे 22 साल। और उन्होंने अंततः पहाड़ के बीच से लगभग 110 मीटर लंबा और लगभग 9 मीटर चौड़ा रास्ता बना दिया। और जिस रास्ते के लिए लोगों को बहुत दूर घूमकर जाना पड़ता था, वो दूरी काफी कम हो गई थी। मुझे लगता है मित्रों कि आज की उमंग कार्यक्रम का यही संदेश है, विशेषकर विद्यार्थियों के लिए। हम सबके जीवन में कोई न कोई पहाड़ होता है, कोई न कोई कठिनाई अवश्य होती है।
सीखने में, समझने में, और कई बार हम उस पहाड़ को देखकर सोचते हैं ये मेरे बस की बात नहीं, लेकिन दशरथ मांझी की कहानी बताती है एक दिन में पहाड़ नहीं टूटता, लेकिन रोज की एक चोट उसे धीरे धीरे बदल सकती है। यानी सफलता का रहस्य केवल शक्ति ही नहीं, दृढ़ संकल्प के साथ निरंतरता भी है। श्रोताओं, कई बार हमारी छोटी छोटी कोशिशें हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन यदि निरंतरता बनी रहे तो हम वर्षों बाद पीछे मुड़कर देखते हैं तो पता चलता है कि हमने बहुत लंबी यात्रा तय कर ली है। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का प्रेरक प्रसंग। आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर भेजें। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है, दृढ़ संकल्प के धनी दशरथ मांझी जी को पहाड़ खोदकर रास्ता बनाने में कितना समय लगा? प्रश्न एक बार फिर से सुन लेते हैं। दृढ़ संकल्प के धनी दशरथ मांझी जी को पहाड़ खोदकर रास्ता बनाने में कितना समय लगा? आप 8800440559 पर अपने उत्तर हमें भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। और हाँ, ताज़ा जानकारी के लिए आप इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी CIT NCERT को लगातार फॉलो करते रहें। NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करने के लिए किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनने या हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों को सुनने के लिए आप NCERT ऑफिशियल यूट्यूब को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। पहला कार्यक्रम है कम बैक सून। ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर कविता पर आधारित है, जिसमें गीत के द्वारा यातायात के कुछ साधनों के बारे में जानकारी दी गई है।

0: जी हाँ, जन जन होगा अब साक्षर उल्लास के साथ। आइए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के इस अभियान में बटाएं हाथ उल्लास के साथ। उल्लास भारत सरकार की एक अनूठी पहल।
1: उस रात ऑफिस से निकलने में तुबा हो गई थी, आंखें भी भारी हो रही थी, पर सोचा 15 किलोमीटर ही तो है, निकल जाता हूँ। हाईवे पर एक ट्रक के पीछे चला गया। ट्रक के पीछे एक आयरन रॉड लगी थी, टेल लाइट दिखाई नहीं दे रही थी। मुझे लगा कि वो सीधा जा रहा है, पर जैसे ही उसने ब्रेक मारे, मुझे समझने में 1 सेकंड ज्यादा लग गया। नींद में गाड़ी चलाना और पीछे की रोशनी ना दिखना, दोनों ही गंभीर हादसे को बुलावा देना है।
2: थकान या नींद की अवस्था में वाहन चलाने से बचें। यात्रा के दौरान यदि थकान या नींद महसूस हो तो आगे बढ़ने के बजाय थोड़ी देर रुककर आराम करना सुरक्षित होता है।
3: और अब सुनते हैं कार्यक्रम रेलगाड़ी। इस कार्यक्रम में बच्चों को रेलगाड़ी, रेलवे स्टेशन और इससे जुड़ी कई बातों को बड़े ही मनोरंजक ढंग से बताया गया है। गीतों और ध्वनि प्रभावों का प्रयोग करके कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी बनाया गया है।
4: बच्चों, रेलगाड़ी तो तुमने देखी होगी, है ना? हाँ, पहचान गए ना? रेलगाड़ी में होता है एक बड़ा सा इंजन और उसमें जुड़े होते हैं बहुत सारे डब्बे, तभी तो बहुत सारे लोग रेलगाड़ी में बैठकर आते और जाते हैं। और हाँ बच्चों, कितना मजा आता है जब तुम रेलगाड़ी का खेल खेलते हो, है ना? कैसे? तो आओ चलते हैं राजू और संजू के घर, जहां हो रहा है रेलगाड़ी का खेल।
5: रेल चली भाई रेल चली, छुक छुक करती रेल चली। रेल चली भाई रेल चली, चुक चुक करती रेल चली।
6: अरे संजू, वो देखो, राजू तो पीछे छूट गया।
7: अरे हाँ, गाड़ी रुको गाड़ी रुको।
6: आ जाओ संजू, अब मुझे पकड़ लो, छूटना मत।
7: हाँ, अब बन गई रेल।
5: रेल चली भाई रेल चली, चुक चुक करती रेल चली।
6: अरे अरे, दादाजी आ गए, दादाजी आ गए।
7: दादाजी, आप भी हमारे संग खेलिए ना।
8: अच्छा भाई, पर मैं तो तुम सबसे बड़ा हूँ और भारी भी, तो ऐसा करते हैं, तब मैं इंजन बन जाता हूँ।
6: हाँ, हाँ दादाजी, ये ठीक रहेगा।
8: चलो।
5: रेल चली भाई रेल चली,
8: रेल चली भाई रेल चली, एक के पीछे एक आओ, रेल बनाओ रेल बनाओ। इंजन आगे डिब्बे पीछे, लोहे की पटरी पर खींचे, गांव गांव और शहर शहर में धूल उड़ाती रेल चली भाई रेल चली, चुक चुक करती रेल चली, चुक चुक करती रेल चली। अरे अरे भाई, मैं तो थक गया, अब रेलगाड़ी रोकनी पड़ेगी।
6: हाँ दादाजी, हम भी थक गए।
8: अच्छा तो फिर आओ यहाँ बैठते हैं, हैं?
6: अच्छा
8: अच्छा, अब ये बताओ, तुम में से किसने सचमुच की रेलगाड़ी देखी है?
7: दादाजी, मैंने देखी है।
8: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है।
7: जब माँ के साथ नाना जी को लाने स्टेशन गया था तभी देखी है बस।
8: अच्छा तो चलो मैं आज तुम लोगों को सचमुच की रेलगाड़ी दिखाऊंगा।
7: अरे वाह,
8: यही पास में तो है रेलवे स्टेशन।
7: हाँ, आज तो बड़ा मजा आ जाएगा, हम लोग रेलगाड़ी देखेंगे। चलो चलो जल्दी चले। हाँ
8: अरे ओ रामू भैया, कहाँ जा रहे हो?
9: अरे दादाजी, स्टेशन जा रहा हूँ सवारी लेने को।
8: अरे भैया, तब तो हमारे बच्चों को भी साथ लेते चलो, रेलगाड़ी देखाएंगे।
9: अरे हाँ हाँ दादाजी, आओ आओ बच्चों, आ जाओ बैलगाड़ी में चढ़ो।
8: बैठो बैठो, जल्दी करो, जल्दी करो, बैठो बैठो बैठो। चलो चलो चलो, उतरो बच्चों, जल्दी करो, गाड़ी आने ही वाली है।
9: उतरो उतरो
7: रानी, जल्दी चलो नहीं तो गाड़ी चली जाएगी।
8: हाँ हाँ उतरो बेटी।
4: बच्चों, रेलवे स्टेशन पहुंचकर दादाजी और बच्चों ने सबसे पहले खरीदे प्लेटफॉर्म टिकट और फिर झटपट पहुंचे स्टेशन के अंदर।
7: दादाजी, यहाँ तो बड़े सारे लोग हैं।
8: हाँ बच्चों, कुछ लोग तो रेलगाड़ी में चढ़कर आने वाले हैं और अच्छा, कुछ जाने वाले हैं।
7: अच्छा तो ये बात है।
8: अच्छा बच्चों, वो देखो, वो है लोहे की पटरी, इसी पर रेलगाड़ी छुक छुक करके चलती है। बच्चों जल्दी जल्दी पीछे आ जाओ।
10: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, बिलासपुर से रामपुर को जाने वाली सवारी गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर कुछ ही समय में आ रही है।
7: हो हो हो, रेलगाड़ी आ गई, रेलगाड़ी आ गई।
11: अरे वाह दादाजी, ये तो बहुत बड़ी गाड़ी है।
8: हाँ बच्चों, देखा, ये है सचमुच की रेलगाड़ी। वो सबसे आगे इंजन है और उसके पीछे डिब्बे।
7: दादाजी वो देखिए, एक आदमी हरी झंडी दिखा रहा है। वो हरी झंडी क्यों दिखा रहा है?
8: इसलिए क्योंकि हरी झंडी दिखाने से तो गाड़ी चलती है और लाल झंडी दिखाने से रुक जाती है।
7: अच्छा, अच्छा। अरे हाँ, रेलगाड़ी तो चल रही। दादाजी अब तो गाड़ी चली गई, सब लोग भी चले गए।
8: हाँ हाँ बच्चों, चलो चलो वापस घर चले।
7: हाँ हाँ दादाजी चलिए।
10: छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक रेलगाड़ी आती है। छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक रेलगाड़ी आती है। कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु सीटी बजाती है। कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु सीटी बजाती है। इंजन आगे डब्बे पीछे लोहे की पटरी पर खींचे। इंजन आगे डब्बे पीछे लोहे की पटरी पर खींचे। गांव गांव और शहर शहर तक वो सबको पहुंचाती है। गांव गांव और शहर शहर तक

कुकु सीटी बजाती है, कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु सीटी बजाती है, इंजन आगे डब्बे पीछे लोहे की पटरी पर खींचे। इंजन आगे डब्बे पीछे लोहे की पटरी पर खींचे, गांव गांव और शहर शहर तक वो सबको पहुंचाती है, गांव गांव और शहर शहर तक।

0: अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। अब आपकी मित्र विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
2: दोस्तों आप सुन रहे थे आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। आपने सुना उमंग की कड़ी संख्या 1368। दोस्तों अब से कुछ ही देर बाद यानी कि 10 बजे हम जुड़ेंगे दिल्ली केंद्र से और सुनेंगे हिंदी में समाचार। 10:05 में सुनेंगे दिल्ली केंद्र से ही रिले अंग्रेजी समाचार, जबकि 10:10 पर जुड़ जाएंगे मुंबई केंद्र से और सुनेंगे विविध भारती की प्रस्तुति सेलुलॉइड के सितारे, रंग तरंग और यादों की महफिल। फिर 1 बजे हम जुड़ेंगे दिल्ली केंद्र से, सुनेंगे हिंदी समाचार। 1:05 में अंग्रेजी समाचार। 1:10 पे रांची केंद्र से जुड़कर सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। उसके बाद 1:20 से 5:30 तक लगातार हम बारी बारी से दिल्ली, रांची व मुंबई केंद्र से जुड़कर सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, अंग्रेजी समाचार, हिंदी समाचार और आकाशवाणी के विविध भारती केंद्र से प्रस्तुत सुरीला सफर, दोपहर सभा, सखी सहेली, आज के मेहमान और छाया गीत जैसे कार्यक्रमों को। शाम 5:30 को हम फिर से एक बार जुड़ जाएंगे आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से, जहां से हमारे रेडियो दोस्त आपको बताएंगे सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। तो आइए दोस्तों जुड़ते हैं दिल्ली केंद्र से और सुनते हैं समाचारों को। कृपया कुछ

0: सभी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के फिनटेक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की सराहना की है। उन्होंने कहा कि फिनटेक की सफलता की कहानी में एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई का निर्विवाद रूप से महत्वपूर्ण योगदान है। श्री मोदी ने मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन करते हुए ये बात कही।
1: भारत की फिनटेक स्टोरी अद्भुत रही है और इसका एक बड़ा चैंपियन है हमारा यूपीआई। मैंने पिछले साल भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब भी फिनटेक की चर्चा होगी तो वो यूपीआई के बिना अधूरी ही होगी।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि केवल अगस्त महीने में यूपीआई के माध्यम से 24 अरब से अधिक लेन देन हुए। श्री मोदी ने कहा कि इसी प्रभाव के कारण फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा था कि यूपीआई केवल तकनीक नहीं बल्कि सभ्यतागत कहानी है। श्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल भुगतान के लिए अगले रणनीतिक चरण की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए यूपीआई को साझेदार देशों की घरेलू भुगतान प्रणालियों के साथ तत्काल एकीकृत करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि इससे लोगों को स्वदेश में अपने परिवारों को धन भेजने में काफी तेजी आएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीलंका में रहने वाले भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच सेतु बताया है। उन्होंने कहा कि वे दोनों राष्ट्रों के बीच मित्रता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। श्री सिंह कल श्रीलंका के 3 दिन के दौरे पर कोलंबो पहुंचे। उन्होंने प्रवासी भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत में कहा कि भारत संकट के समय में हमेशा श्रीलंका के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। भारत और कुवैत विभिन्न क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी प्रगाढ़ करने पर सहमत हुए हैं। कुवैत में कल 8वीं भारत कुवैत विदेश कार्यालय परामर्श बैठक में ये सहमति बनी। अमरीका और ईरान के बीच लगातार हमलों के कारण पश्चिम एशिया में तनाव तेजी से बढ़ गया है। इससे व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की आशंका बढ़ गई है। अमरीकी सैन्य बलों ने ईरान के कच्चे तेल के 5 टैंकर नष्ट कर दिए हैं। अमरीका के अनुसार पिछले 2 दिनों में उनके एक युद्धपोत पर ईरान ने हमले किए थे। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी। उधर कनाडा ने अमरीका की 600 से अधिक चीजों पर 50% तक जवाबी शुल्क लगाया है। इससे इन दोनों पड़ोसी देशों के बीच व्यापार विवाद बढ़ गया है। अमरीकी सामान पर यह शुल्क आधिकारिक रूप से कल रात से लागू हो गई। महिला और बाल विकास मंत्रालय आज वाराणसी में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में इस अभियान का शुभारंभ करेंगी। इस वर्ष राष्ट्रीय पोषण माह की थीम हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी रखी गई है। पोषण माह 2026 में आहार विविधता और पर्याप्त प्रोटीन, आंगनवाड़ी केंद्रों पर ताजा गर्म पका हुआ भोजन, सामुदायिक स्वामित्व और जवाबदेही, पोषण और प्रारंभिक बाल विकास के लिए शिक्षा तथा प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के 10 वर्ष पूरे होने को प्रमुखता से दी जाएगी। गृहमंत्री अमित शाह ने आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रणेता भारतेंदु हरिश्चंद्र की जयंती पर आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि भारतेंदु ने भाव, भाषा और शैली में नवीनता का समावेश कर हिंदी को आधुनिक स्वरूप दिया। इसके अलावा श्री शाह ने परमवीर चक्र से सम्मानित कैप्टन विक्रम बत्रा की जयंती पर भी आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि करगिल युद्ध में कैप्टन बत्रा ने न केवल रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चोटियों पर कब्जा किया बल्कि अपने उत्कृष्ट नेतृत्व और वीरता के जरिए सहयोगी सैनिकों का हौसला भी बढ़ाया। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी शुरू होने से पहले 12 से 21 सितंबर के बीच केंद्रीय, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी भारत के बड़े भाग में वर्षा का अनुमान है। मौसम के मॉडलों के ने संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में होने जा रही वर्षा कमजोर पड़ते मानसून चक्र को अस्थायी रूप से पुनर्जीवित कर सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: विनीत जी, जैसा कि आपने कहा कि जीना यहाँ मरना यहाँ, ये आपकी फिलॉसफी एक तरह से कि एक कला के रूप में कि उससे जुड़े रहना है किसी भी तरह से, लेकिन आमतौर पर हम ये देखते हैं कि अधिकांश अभिनेता ऐसे होते हैं जो अपने किरदारों में बंध जाते हैं। शुरुआत में उन्होंने जो किरदार किए तो उसी तरह के रोल बार बार मिलने लगते हैं। जैसे कभी कभी कुछ लोगों का मन में भी इस तरह से होता है कि पॉजिटिव किरदार ही मुझे निभाने, नेगेटिव कुछ नहीं करना है। लेकिन आपने कई तरह के रोल्स निभाए हैं, आपने नेगेटिव भी किए, पॉजिटिव भी किए, कॉमिक किरदार भी आपने किए, और फिर लार्जर देन लाइफ एक किरदार है, साईं बाबा का किरदार आपने निभाया। तो आपको अलग अलग तरह के किरदारों के लिए खुद ही ऑफर मिलते रहे या आपने कुछ इसके लिए कुछ किया खास? क्योंकि आमतौर पे कहते हैं कि टाइप कास्ट कर दिया जाता है और जैसा आपने निभाया वही निभाने के लिए बार बार कहा जाता है।
1: ये मेरा खुद का डिसीजन रहा हमेशा, क्योंकि मायका जैसा सक्सेसफुल शो करने के बाद जिसमें वीर खुराना का मैं किरदार निभा रहा था, वो बहुत लार्जर देन लाइफ, वो इतना हिट शो हो गया था और खासकर मेरी और शिल्पा शिंदे की जोड़ी, वीर सोनी की जोड़ी थी जो उसमें बहुत ज्यादा हिट हुई थी। उसके बाद मैं सेम चैनल पे एक और शो कर रहा था, हर घर कुछ कहता है
0: जी।
1: और उसमें भी मैं मुख्य भूमिका निभा रहा था, उसमें भी मैं हीरो ही था शो का, रति पांडे के साथ। और एज अ हीरो, एज अ चॉकलेट बॉय मैं ये दोनों शोज कर रहा था, ये कुछ 2-2.5 साल तक चलता रहा
0: जी।
1: और इसके बाद मुझे इसी तरह के शोज ऑफर होते गए, जैसा कि आपने कहा कि टाइपकास्ट कर दिया जाता है एक्टर्स को। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा, और मुझे बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा, तुम अगर यहां से हिल जाओगे, इस अपने हीरो वाले जोन से हट जाओगे तो कभी भी फिर तुम्हें हीरो नहीं माना जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं एज एन एक्टर, एज अ कलाकार, अगर मैं अलग अलग चीजों में एक्सपेरिमेंट नहीं करूंगा तो एज अ कलाकार मैं ग्रो कैसे करूंगा
0: जी।
1: अगर मैं म्यूजिक में हूं और अगर मैं अलग अलग जॉनर्स नहीं सीख पा रहा हूं और मैं एक ही जॉनर बजा रहा हूं तो, या एक ही जॉनर में सिर्फ मैं काम कर रहा हूं, अपनी कला को निखार रहा हूं, तो मैं ग्रो कैसे करूंगा? तो मेरा ये वॉलंटियरली डिसीजन था। और मैंने उसके बाद नेगेटिव रोल चुना जो माँ था जी टीवी पे, और मुझे ऑलमोस्ट पूरी इंडस्ट्री ने मना कर दिया था कि तुम मतलब खुद अपना करियर अपने हाथों से खत्म कर रहे
0: जी।
1: लेकिन वो शो आने के बाद मैंने जब उसके ऊपर तैयारी की, मैंने खुद से जब उसके ऊपर काम किया तो कितना सराहा गया, और उसके बाद मुझे सिर्फ नेगेटिव रोल्स ऑफर होने लग गए। तो उसके बाद मैंने पुनर्विवाह किया और उसके बाद मैंने काफी सारे शोज नेगेटिव में किए, और मुझे ऐसा लगा कि पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव किरदार को बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ती है। क्योंकि मेरा खुद का मानना है जिंदगी में कि अच्छा बनने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती इंसान को, लेकिन बुरा बनने के लिए बहुत एफर्ट है, बहुत एनर्जी ड्रेन करनी पड़ती है अपनी। तो वो मुझे मुश्किल लगा बहुत करना, और जब मुश्किल था तो मुझे चैलेंज एक्सेप्ट करना अच्छा लगा।
0: और मुश्किल आमतौर पर इसलिए भी नेगेटिव किरदार कि आप जब इतने पॉजिटिव दिख रहे हैं और जीवन में इतने पॉजिटिव हैं तो फिर नेगेटिव करना तो थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो जाता है।
1: देखिए, मुझे लगता है एक्टर ना एक गिरगिट की तरह है, अगर वो अलग अलग रूप नहीं बदलेगा तो हम कैसे एक्सप्लोर करेंगे कि कोई इंसान की स्किन में घुस के उसको पर्दे पर उतारना और लोगों को ये बताना कि ये कैरेक्टर रियल है।
0: जी,
1: अपने आप को ग्रो करने के लिए मुझे लगता है ये सबसे अच्छी प्रैक्टिस है कि बेधड़क होके, बिंदास होके रोल्स चुनने चाहिए, और इसी का नतीजा है कि मुझे लगता है आज मैं यहां तक पहुंचा। अगर मैं एक ही जैसी चीज कर रहा होता तो शायद मैं नेगेटिव रोल्स नहीं कर पाता, शायद मैं लापतागंज जैसा इतना बड़ा हिट शो एज अ कॉमेडी शो नहीं कर पाता, और फिर मुझे नेगेटिव से वापस साईं बाबा जैसा रोल करने का मौका मिलना, और आप सोचिए कि मेरी ऑडियंस कितनी मेरे साथ होगी।
0: जी, वो स्वीकार करना बहुत जरूरी है।
1: सिर्फ उनकी वजह से मेरे करियर में अगर कोई सबसे ज्यादा किसी का क्रेडिट है वो भगवान
0: जी।
1: मैं मानता हूँ यूनिवर्स, और मेरे ऑडियंस हैं, मेरे फैंस हैं, जिन्होंने हमेशा मेरे अतरंगे रोल्स की चॉइस को हमेशा साथ दिया, और मैं इसीलिए आज इनके साथ यहाँ पर बैठकर बात कर रहा हूँ।
0: तो जैसे आपको यकीन है कि आप अलग अलग किरदार निभाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कैसे कर सकते हैं, वैसे ऑडियंस को भी लगता है, आपके दर्शकों को भी लगता है कि नहीं, हम देख सकते हैं इनको, और स्वीकार भी कर रहे हैं, वो बड़ी बात है।
1: उन्होंने हमेशा मुझ पर विश्वास किया कि मैं जो भी करूंगा मैं कभी भी मतलब उन्हें गलत नहीं साबित करूंगा।
0: और सबसे ज्यादा किस किरदार के लिए आपको मेहनत करनी पड़ी?
1: साईं बाबा के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है
0: जी।
1: लेकिन उनकी तरह दिखना और मानसिक तौर पर अपने आप को शून्य तक ले जाना, जहां आपके सामने कोई भी कैरेक्टर कुछ भी अगर बोल रहा है तो जिस तरह बाबा सबको सिर्फ एक स्माइल देकर सबको समझा देते थे, एक आम इंसान के लिए इतना काम और कंपोज रह के हर वक्त, चाहे जिंदगी में कोई भी तूफान आ रहा हो फिर भी उसका स्माइल रख के, मुस्कुराते हुए उसका समाधान पे ध्यान दे के, प्रकृति पे, ईश्वर पे विश्वास रख के उस पे काम करना और उसको सॉल्व करना और फिर भी लोगों को खुश रखना, ये बहुत मुश्किल काम था। मानसिक तौर पे मुझे सबसे ज्यादा काम करना पड़ा
0: जी। तो इसके बाद कुछ निजी जीवन में कुछ बदलाव आए, क्योंकि कहते हैं पौराणिक किरदार हों या इस तरह के कोई किरदार हम निभाते हैं तो बहुत सा बदलाव आता है। आमतौर पे जिन भी अभिनेताओं ने इस तरह का किरदार निभाया, चाहे वो श्रीराम का किरदार हो, भीष्म का किरदार हो, इस तरह के जब भी किसी अभिनेता को ऐसे किरदार करने मिलते हैं उनके निजी जीवन में बहुत सारे बदलाव देखने मिलते हैं। तो क्या आपको भी ऐसा कुछ बदलाव अपने अंदर देखने मिला?
1: जी बिल्कुल, क्योंकि मैं साईं बाबा को मतलब अपने कॉलेज डेज से मानता आया हूँ
0: जी
1: और मैं उनके मंदिर जाया करता था और मैं उनको बहुत बहुत मानता आया हूँ। उनकी टीचिंग्स को, उनकी जो आइडियोलॉजी थी उनको मैं बहुत मानता हूँ, आज भी मानता हूँ। और इतने सालों के बाद आज एज एन एक्टर उनको जब पर्दे पे उतारने का मुझे मौका मिला तो मेरे लिए ये एक अनबिलीवेबल सा मौका था। और साई सच्चरित्र में पहले ही से ही पढ़ चुका था मैं, उनके बारे में बहुत पढ़ चुका था।
0: जी
1: और जब उन्हें पर्दे पर उतारने का मौका मिला और उनके जैसा कि मैं नंगे पैर चलता था, जिस तरह हम लोग शूट करते थे, जो हमारी सारी जो सेट हुआ करता था, उस तरह से जीने के बाद जो पर्सनल जिंदगी में इतनी सारी चेंजेस आई कि कितना हम्बल रहना है, कितना आपको शांत रहना है, जिंदगी में कुछ भी होता रहे लेकिन स्माइल रखते हुए ही उन चीजों को, आपको लाइफ को हैंडल करना है, ये सीखने का बहुत अच्छा अनुभव हुआ।
0: तो चलिए इस समय एक अच्छा सा गीत सुन ले, आपकी पसंद का कोई गीत।
1: मैं चाहता हूं कि मैं मन्ना डे जी का एक गाना सुनूं, जिंदगी कैसी है पहेली हाय।
0: आनंद फिल्म से
1: बिल्कुल
0: जी।

0: कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए।
1: तो विनीत, ये बताइए कि आमतौर पर एक्टर की जिंदगी तो बड़ी अच्छी मानी जाती है, सबको लगता है कि कितनी अच्छी तरह से वो अपना जीवन जी रहे हैं, कितने अच्छे, मतलब बस आते हैं, कुछ एक्टिंग करते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आमतौर पे क्या क्या मुश्किलें किसी एक्टर को झेलनी पड़ती हैं, और कोई ऐसा मुश्किल सीन हो जिसके लिए, या ऐसा कोई किरदार हो जिसे निभाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी हो, और ज्यादा से ज्यादा एक साथ आपने कितने घंटों तक काम किया, क्योंकि बड़ी लंबी लंबी शिफ्ट्स होती हैं।
2: जी हाँ बिल्कुल, एक डेली शो बनाने के लिए बहुत सारे लोग हम लोग मिलकर काम करते हैं, 100-150 लोग मिलकर एक एपिसोड तैयार करते हैं, और एक दिन में एक एपिसोड बनाना बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए। इसीलिए चाहे आप बीमार हो, चाहे कोई भी हालात हो, बारिश हो, तूफान हो, आपको शूटिंग करनी है और सेट पर पहुंचना ही है और उस एपिसोड को बनाना ही है ऑडियंस के लिए। तो मेरा मानना यह है कि जो भी मुंबई अपने सपनों को लेकर आता है एक्टर बनने के लिए, अगर वो शौकिया तौर पर आ रहा है तो उसका जाना तय है, क्योंकि आप अगर सिर्फ शौकिया तौर पे आ रहे हैं तो ये कोई भी आसान काम नहीं है। लेकिन अगर आपका पैशन है और आपने चुन लिया है कि अब मुझे एक्टर ही बनना है, तो ये बात गांठ बांध लेना बहुत ज़रूरी है कि आपने पूरी दुनिया का एक ऐसा प्रोफेशन आपने एक अडॉप्ट कर लिया है, एक ऐसा चुन लिया है जहाँ जो सबसे ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है
1: जी,
2: जब सबसे ज्यादा इनसिक्योर है, जिसमें आपकी इनकम कभी आएगी या नहीं आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, आपके रहने का बंदोबस्त, आपके खाने का बंदोबस्त, आपकी बाकी किसी भी चीज का बंदोबस्त, आप एक रेगुलर जॉब पे नहीं होंगे, ये एक अपॉर्चुनिटी बेस्ड प्रोफेशन है। तो जब आपको मौका मिलेगा, आप सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, आप सिर्फ अपनी कला पर ध्यान दे सकते हैं, उसके अलावा बाकी किसी हालात पे आपका काबू नहीं है, क्योंकि आप रोल नहीं चुनते हो। कोई कास्टिंग डायरेक्टर या कोई एक राइटर या प्रोड्यूसर्स बैठ के जब सोचते हैं कि हमारा कैरेक्टर इस एक्टर से जरूर मिलता है, तभी आपके पास वो मौका आपको मिलता है, और उस वक्त आप तैयार होने चाहिए, उस वक्त आपके तुणीर में बाण भी होने चाहिए और आपका धनुष जो है ना वो पूरा तैयार होना चाहिए। सो यही एक एक्टर का काम है, और बहुत ही मुश्किल एक प्रोफेशन है, लेकिन इसके लिए जुनून चाहिए, इसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए, इसके लिए डेडिकेशन चाहिए, इसके लिए पागलपन चाहिए, और इसके लिए खूब सारी मोहब्बत चाहिए कला के साथ, तभी आप सस्टेन कर पाते हैं।
1: तो आपने अपनी जो कला के प्रति मोहब्बत है उसे किस तरह से निभाया था? एक लंबा, बहुत लंबा शूट आपने किया था,
2: मेरा जो
1: कितने घंटों का
2: पॉपुलर शो था मायका, वहाँ कुछ ऐसे हालात हो गए थे कि चैनल का ये डिसीजन था कि हमारी 90% कास्ट को एक ही दिन में उन लोगों ने पूरा रिप्लेस कर दिया था। तो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, सब लोग कास्ट पूरी अगले दिन से अवेलेबल नहीं थी और सिर्फ मैं था।
1: सीरियल का ऐसा सीन उन्होंने किया जिसमें ब्लास्ट के थ्रू इनका,
2: और उसके बाद कोई भी एक्टर अवेलेबल नहीं था और सिर्फ मैं था, और हमारे पास कोई भी एपिसोड टेलीकास्ट करने के लिए नहीं थे, हमारे ऊपर और चैनल के ऊपर बहुत प्रेशर था, और मैंने लगातार बिना सूरज देखे, बिना सेट से बाहर आए कम से कम 56-60 घंटे लगातार शूट किया था, क्योंकि तब सिर्फ मंडे टू थर्सडे ही एपिसोड्स टेलीकास्ट हुआ करते थे और 3 दिन का हमारे पास गैप हुआ करता था। जब तक हम लोग बिल्कुल, हमारे पास एक दो एपिसोड का बैंक नहीं आ गया, तब तक मैं सेट से हिला नहीं, और फाइनली मैं बेहोश हो गया था सेट के ऊपर। और जब सब कुछ खत्म हो गया और मुझे बता दिया कि विनीत हमने ये कर लिया, हम अब सेफ हैं, तब मेरे मतलब पैर जैसे मतलब मैं गिर गया और मुझे उठा के वो घर ड्रॉप कर दिया, और मैं कम से कम एक दो दिन तक नींद से उठा नहीं हूँ। तो ये
1: और
2: बहुत,
1: तब तक बैंक खत्म हो गया होगा तो फिर वापस आ गए,
2: फिर ये 2 दिन मैं सोया हूँ, उसके बाद वापस से हम अपनी मैराथन में लग गए थे।
1: तो ये 60 घंटे, 56-60 घंटे का काम जो आपने किया, वो सुन के भी मुझे थोड़ी थकान सी होने लगी है।
2: सारी यूनिट परेशान हो गई थी कि कहीं कुछ और ही ना हो जाए, क्योंकि बहुत इमोशनल सीन्स थे, एक्टर्स अवेलेबल नहीं थे, सिर्फ वो लाशें थी और मेरे मोनोलॉग्स थे, मैं रो रहा हूँ हर लाश को देखकर, उनकी पुरानी यादें ताजा कर रहा हूँ, सो बहुत ड्रेनिंग था। लेकिन वही है कि इसके लिए जब जुनून आपके दिल में, जब मोहब्बत होती है कला के लिए, तो एक्टर्स कैन गो टू एनी एक्सटेंट।
1: तो इसी जुनून को बताता हुआ कोई गीत अगर आप हमें बताना चाहें जो आपकी पसंद का, हम सुन ले सब।
2: जी बिल्कुल, मैं इस मौके पे तो एक ही गाना आपको सुनाना चाहता हूँ और सभी श्रोताओं को, जो जीता वही सिकंदर फिल्म से, वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है।
1: तो चलिए, आप जिस तरह से सिकंदर की तरह काम कर रहे थे तो आपके लिए सुनते हैं ये गीत।
2: बिल्कुल।

विनीत जी, आपने जैसे हमारी बात हो रही थी उसमें आपने कहा कि एक एक्टर का जो काम है वो स्टेबल जॉब नहीं है, पता नहीं है, सैलरी नहीं मिलती है कि हर महीने आपको सैलरी मिलेगी। जब आपके पास

0: जाती है अगर लंबा काम नहीं मिला बाय चांस।
1: ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है जो आपने उठाई है, जो सारे एस्पायरिंग एक्टर्स को ध्यान में रखनी चाहिए, और
0: जी
1: यही चीज़ है जो उनको वो लिवरेज नहीं दे पाता, वो माइलेज नहीं दे पाता, जिसकी वजह से वो वापस अपने घर लौट कर चले जाते हैं।
0: जी
1: क्योंकि मुंबई कोई सस्ता शहर नहीं है, बहुत ही महंगा शहर है,
0: जी
1: और जो लोग घर से खूब सारे पैसे लेकर आते हैं वो भी कई बार मेरे ख्याल से बहुत आगे तक नहीं जा पाते हैं,
0: जी
1: क्योंकि कहीं ना कहीं आपका टैलेंट आपको साथ में उसको पॉलिश करते रहना जरूरी होता है, कि जैसे मैंने आपको बताया।
0: जी
1: लेकिन हाँ, उसी के साथ साथ क्योंकि मुंबई बहुत ही चकाचौंध से भरा हुआ शहर है, यहाँ दिमाग खराब होने के लिए बहुत सारे तरीके हैं और बहुत सारी चीजें भी हैं जहां पर आपका दिमाग भटक सकता है।
0: जी
1: लेकिन मुझे लगता है जब आप फोकस रहेंगे और जब आपको पता है कि आपको एक्टर ही बनना है, जो अब आपका शौक नहीं है, और अगर आप शहर आए हैं ये समझ के आ गए हैं कि ये एक चकाचौंध से भरा शहर है, तो जो दिखता है वो हमेशा होता नहीं है। चकाचौंध तो है, लेकिन वो चकाचौंध पाने के लिए उस एक्टर ने कितनी मेहनत की होती है, कितनी मुश्किलों से वो गुजरा होता है,
0: जी
1: वो लोगों को नहीं दिखता। जब वो पा चुका होता है, और वही पाता है जो बहुत दिमाग से अपने फाइनेंसिस को मैनेज करते हुए चलता है, और ये सिर्फ मैं ही नहीं, ये ज्यादातर लोग जो बड़े बड़े लोग हैं, जैसे शाहरुख खान जैसे लोग हैं, उन्होंने भी अपने एक इंटरव्यू में बोला था कि आप पैसे जो हैं उनको बहुत ही ध्यान से रखिए, क्योंकि आपके पास जो आपकी बैंक बैलेंस होती है वो आपको बहुत आगे तक ले जा सकती है। तो मुझे लगता है जितने भी एक्सपायरिंग एक्टर्स हैं, उनको जब वो यहाँ आते हैं और अपना काम करना शुरू करते हैं, अपने टैलेंट पे काम करते हुए, जितना भी पैसा वो कमाते हैं वो हमेशा उनको सेव करके रखना चाहिए, ना कि आते ही चकाचौंध से भरे
0: खुश होके तुरंत कि हमें ये
1: क्लब्स
0: सब
1: में
0: करना
1: जाते
0: है।
1: हुए या
0: जी
1: पार्टीज में जाते हुए उस पे ना जाएं शुरू में। करें, लेकिन ये चीजें तब करें जब आपका एक बैंक बैलेंस आप मेंटेन कर लें, आपको पता हो कि आपके पास इतना है कि आप अपनी, क्योंकि हो सकता है कि एक टेलीविजन सीरियल किसी को मिला और वो शायद 2 महीने में या 3 महीने में बंद हो जाए, सोचा होगा कि साल भर चलेगा, लेकिन और उस साल भर का सोच के आपने अपने बड़े बड़े खर्चे उठा लिए, या आपने लग्जरी कार्स ले ली, या आपने बड़े बड़े घर ले लिए, और उसके बाद जब वो काम अचानक बंद हो जाता है तो बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती हैं।
0: जी
1: तो मुझे लगता है कैरिड अवे ना हो, अपना मानसिक संतुलन बनाए रखें, फिजूल खर्ची ना करें, पहले अपने करियर पे ध्यान दें, एक स्टेबल करियर बनाएं, उसके बाद जब आप एक बार कमाना शुरू करेंगे, जब एक बार आपका करियर थोड़ा एस्टैब्लिश हो जाएगा, आप अपने आप वो चकाचौंध जो है आप उसमें आप हिस्सा ले पाएंगे, और आपको तब ये गम या ये डर नहीं होगा कि अगर मेरे पैसे खत्म हो गए तो क्या होगा। सो ये
0: कल क्या
1: बहुत
0: होगा,
1: जरूरी
0: पूरा दिन।
1: चीज है जो एक्टर्स को ध्यान में रखनी चाहिए।
0: जी और जैसे कि आप इन दिनों टीवी फिल्म ओटीटी वर्टिकल या इंटरनेशनल फिल्म्स में भी आपने काम किया है, तो किस तरह का आपका वर्क एक्सपीरियंस रहा, कौन सा आपको ज्यादा सरल लगा या सब एक जैसे ही आपको लगते हैं? और अब जो एआई आ रहा है, एआई की वजह से भी ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत से एक्टर का काम या बहुत से काम जो हैं वो बड़ी आसानी से हो जा रहे हैं, तो उस वजह से भी आपको क्या लगता है कि उसके फायदे ज्यादा हैं या कुछ नुकसान भी हो रहा है?
1: देखिए, मुझे नहीं लगता है कि कोई नुकसान तब तक होगा एआई से जब तक लोग उसका दुरुपयोग करना स्टार्ट नहीं करेंगे। अगर
0: जी
1: लोग उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे तो वो कभी भी किसी के लिए हार्मफुल नहीं होगा। वो हमारी ही सहूलियत के लिए बनाया गया है, हमारे ही काम को आसान करने के लिए बनाया गया है। ये वही बात है कि जब पहले चूल्हे पे खाना बनता था, लेकिन उसके बाद एलपीजी आ गया, और उसके
0: जी
1: बाद पहले माचिस से और किसी चीज से हमें चूल्हा जलाना पड़ता था, उसके बाद पहले गैस लाइटर आ गया, और उसके बाद अब ऑटोमेटिक लाइटर आ गया। तो
0: जी
1: ये फर्क हमें देखना पड़ेगा कि जो लाइटर हमें मिला है उससे हम सिर्फ चूल्हा ही जलाएं, उससे हम जाके दुनिया को जलाना शुरू कर दें। सो वो कोई भी जब इनोवेशन होती है या कोई भी जब नई चीज आती है, जहां उनका सदुपयोग किया जाए तब तक वो ह्यूमंस के लिए और बाकी अर्थ के लिए अच्छा रहेगा। जहां वो बुरे हाथों में लग गया है, जहां उसका दुरुपयोग स्टार्ट हुआ, वहां वो वरदान से अभिशाप बन जाता है।
0: जी
1: यही प्रकृति का नियम है। तो मुझे लगता है बाकी तो जितने मीडियम्स हैं, जैसे वो फिल्म हो या टेलीविजन शोज हो या वर्टिकल्स हो या बाकी कोई भी और मीडियम हो, चाहे ऑनलाइन हो या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो,
0: जी
1: देखिए सब लोग मिलके एक ही चीज कर रहे हैं। वही राइटर है जो कहानी एक बना रहा है, उसे वही डायरेक्टर जो है उसे पूरा बुन रहा है। कुछ यूनिट मिलके या सिर्फ एक इंसान मिलके आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बना के एक ऐसी कहानी बनाने का सहूलियत रखते हैं
0: जी
1: कि जिसके पास जो भी थॉट है वो उसको एक कहानी के माध्यम से, अगर वो अकेला भी होगा तो डिफरेंट डिफरेंट रोल खुद ही करके वो उस कहानियों को बता सकता है। तो मुझे लगता है कि बनाने का तरीका एक ही है, बस उसका फॉर्मेट अलग है। कभी कैमरा सीधा रख दिया जाता है, कभी कैमरा वर्टिकली रख दिया जाता है, कभी हॉरिजॉन्टली रख दिया जाता है, लेकिन स्टोरी टेलिंग जो है वो बिल्कुल सेम है। और मुझे लगता है गुड स्टोरी टेलिंग होनी चाहिए। हम अपनी स्टोरीज के माध्यम से, हम अपने रेडियो के माध्यम से जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर कर सकें, उनको एंटरटेन तो करना ज़रूरी हमारी जिम्मेदारी है ही, लेकिन एंटरटेन करते

0: उन्हें एक अच्छी दिशा दिखाना भी हमारी एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हमारी जिम्मेदारी बनती है। मुझे लगता है कि जितने ज्यादा मीडियम्स होंगे उतने ज्यादा कलाकार होंगे। कलाकार बहुत अच्छे लोग होते हैं, तो मुझे लगता है जितने ज्यादा कलाकार इस दुनिया में होंगे उतना ज्यादा प्यार मुझे लगता है फैलेगा।
1: तो यहाँ जब ऐसी बात हो रही, तो एक सिटीजन ऑफ इंडिया या भारतीय नागरिक होने के नाते आपने एक बड़ा ही गर्व वाला काम हमारे लिए किया है, जब आपने एक इंटरनेशनल फिल्म में काम किया। ऑन डिफरेंट ग्राउंड्स की बात हम कर रहे हैं
0: जी हाँ।
1: तो इसमें भी आपका किरदार तो क्या है वो आप हमें बताएंगे ही, लेकिन ये भी हम जानना चाह रहे हैं कि जब आप बाहर जाते हैं तो भारतीय जो ये टीवी सीरीज है इन सबका क्या क्रेज है, क्या लोकप्रियता है?
0: बहुत ज्यादा लोकप्रियता है हमारे टेलीविजन शोज की। और मैं जब भी आउट ऑफ कंट्री जाता हूँ, वो चाहे इंडोनेशिया हो, वो थाईलैंड हो, जहां भी हमारे इंडियन टेलीविजन शोज टेलीकास्ट होते हैं, वहां हमारे हिंदुस्तान के कलाकारों को इतना ज्यादा पसंद किया जाता है, खासकर इंडोनेशिया में
1: जी,
0: कि उनका प्यार देखकर मतलब इमोशनल हो जाता हूँ मैं जब भी यू नो मैं वहां जाता हूँ। और खासकर अभी जिस फिल्म की आपने बात की ऑन डिफरेंट ग्राउंड्स, वो अभी 12 जून को रिलीज हुई। उसकी निर्माता निकोलेट एंडिग्वे हैं और उसकी जो निर्देशक हैं वो मिल्ड्रेड ओको हैं, जो यूएस की काफी जानी मानी डायरेक्टर हैं। इसकी स्टारकास्ट बहुत विशाल है, अफ्रीका के बहुत जाने माने सब लेजेंडरी एक्टर्स हैं इसमें
1: जी।
0: एक इंडो नाइजीरियन शादी वेडिंग पे एक फिल्म है जिसमें मैं हिंदुस्तानी लड़का हूँ जो एक नाइजीरियन लड़की से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन कहानी में ऐसा ट्विस्ट है कि धीरे धीरे मुझे लगता है कि जब वो फिल्म यहाँ रिलीज होगी, क्योंकि वो अफ्रीका में बहुत अच्छा कर रही है, 28th of August को वो यूके में रिलीज हो रही है और उसके बाद वो ह्यूस्टन में रिलीज हो रही है, तो हमारे हिंदुस्तान के लिए भी राइट्स के लिए वो लोग काफी कोशिश कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि यहाँ आए। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था और वहां पर इंडिया को रिप्रेजेंट करना, क्योंकि हमारा वहां ग्रैंड प्रीमियर हुआ था जिसमें वहां की एम्बेसी के, हमारी इंडियन एम्बेसी के वहां पे ऑफिसर्स थे और सब लोग थे, हमारी इंडियन कल्चरल मिनिस्ट्री से लोग थे, उनको भी बहुत अच्छी लगी फिल्म और इंडिया को रिप्रेजेंट करके बहुत ही अच्छा और गर्व फील हुआ। और मुझे इतना ज्यादा ग्रैटिट्यूड फील होता है क्योंकि मैं कैसे बताऊं आपको कि मेरे लिए कितनी एक बड़ी बात है कि मैं एक बहुत ही छोटे से इंडिया के नॉर्थ से, कश्मीर से उठा हुआ एक कश्मीरी पंडित लड़का जो रातों रात जिसने अपना सब कुछ खो दिया और उसकी एक जर्नी एज एन एक्टर और आज एक अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करना और उनके साथ काम करना और उनको इंडियन कल्चर से अवगत कराना, मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की और गौरव की बात थी मेरे लिए। और वो लोग बहुत खुश थे। मजे की बात ये थी कि जब मैं नाइजीरिया गया और नाइजीरिया इतना दूर है यहाँ से, और जब मैं वहाँ, जब मेरी प्रोड्यूसर मुझे एक पासी में एक रेस्टोरेंट में, लागोस में एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, वहाँ खाना खिलाने के लिए मुझे लेकर गई, तो मेरी प्रोड्यूसर इतना आश्चर्यचकित रह गई देख के कि वहाँ का जो स्टाफ था जो सब खाना वगैरह बांट रहे थे
1: जी।
0: वहां पर यहाँ की एक चैनल वहां पर टेलीकास्ट होती है जिसपे सारे के सारे शोज, इंडियन शोज आते हैं, और मेरा एक बहुत ही पॉपुलर शो पुनर्विवाह वहां पर टेलीकास्ट होता है। और जब मैं वहां गया और वो इतना पॉपुलर शो है वहां कि जब मैं इस रेस्टोरेंट में गया तो लोगों ने मुझे, मेरे उस किरदार का नाम उस शो में प्रशांत है
1: जी,
0: तो मुझे लोगों ने प्रशांत प्रशांत कहकर, मतलब उन लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि मैं
1: वहां कैसे
0: इंडियन एक्टर वहां कैसे हूं। पहले तो उनको विश्वास नहीं हुआ, अब उन्होंने अपनी लैंग्वेज में मेरी प्रोड्यूसर को पूछा और मेरी प्रोड्यूसर was shocked कि ये कैसे है? मतलब यहाँ के लोकल लोग तुम्हें पहचान रहे हैं, वो मेरे लिए बहुत ही, मुझे बहुत प्राउड फील हुआ कि हमारे इंडियन शोज जो हैं वो कहाँ कहाँ तक फेमस नहीं है।
1: तो फैंस आपके लिए ऐसा कुछ करते हैं कई बार, और भी करते होंगे कुछ ना कुछ, आपके लिए फैन मोमेंट कब हुआ किसी ऐसे एक्टर से मिलना जिससे आप मिलने चाहते हो या जिन्हें आप एडमायर करते हो हमेशा, तो ऐसा कुछ हुआ आपके साथ कभी?
0: जी हाँ, मैं, हमारी एक बहुत ही फेमस मीडिया कंपनी है, मैं उनकी पार्टी में था, उनकी एक पार्टी थी, एनुअल पार्टी थी उनकी, और वहाँ पहली बार मैंने सलमान खान को देखा और बहुत ही एक बड़ा मोमेंट था मेरी लाइफ का। और उन्होंने मुझे देखा, मैंने उन्हें देखा एंड मैंने सिर्फ उनको एक हेलो का जेस्चर किया एंड सलमान खान बीइंग सलमान खान, उन्होंने भी मुझे वापस से एक एक ग्रीटिंग किया, एक इशारा किया एंड दैट वाज वन ऑफ द मोमेंट। और एक मोमेंट जो मेरी लाइफ टाइम का मेरा सबसे अच्छा मोमेंट रहेगा, मैं राजेश खन्ना साहब का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ बचपन से, काका का मैं मतलब बहुत फैन रहा हूँ, बहुत बड़ा फैन, और मेरे लिए उनको सिर्फ देखना मेरे लिए एक बहुत बड़ा ड्रीम था। लेकिन मुझे मौका मिला था, मैं एक दूरदर्शन का एक शो मुझे ऑफर हुआ था, वो पायलट बना रहे थे बेसिकली
1: जी।
0: और मैं जब सेट पे पहुंचा तो मुझे पता नहीं था कि इतने सारे लोग भीड़ बनाकर एक रूम के बाहर क्यों बैठे हुए हैं, और कोई खड़ा है कोई कुछ है। तो मैं गया सेट पे शूट करने के लिए, तो मेरी आदत है

0: मैं सेट पे डायरेक्ट मेकअप रूम में नहीं जाता, पहले पूरी यूनिट से मिलता हूँ
1: जी।
0: सो मैं पूरा यूनिट में जब गया, मैं देखा कि इतनी भीड़ क्यों है। जैसे ही मैं पहुंचा और सबने मुझे देखा तो बोला आइए, तो सब थोड़ा थोड़ा हट गए और मैंने देखा कि रूम में गोल्ड कलर के सिल्क की धोती और कुर्ते में काका बैठे हुए हैं। एंड ही वॉज द पार्ट ऑफ द शो
1: जी,
0: ही वॉज द पार्ट ऑफ द शो, ही वॉज प्लेइंग माई डैड इन दैट शो, इन दैट पायलट। व्हेन आई सॉ हिम, मेरे लिए वो मतलब मेरा एक मैं फ्रीज हो गया था कि जिनको मैं इतना मानता हूँ आज मैं उनके सामने खड़ा हूँ। और मैं गया और मैं सीधा उनके, वो बैठे हुए थे और मैं सीधा जाके उनके घुटने के पास बैठ गया और मैंने अपने हाथ उनके घुटने पे रखे और मैंने कहा काका मतलब मेरे लिए ये एक मेरी जिंदगी का एक सबसे बड़ा मैं अचीवमेंट मानूंगा कि मैंने आपको देखा। एंड आई वॉज वेरी इमोशनल दैट टाइम, मतलब मेरे आंसू भर आ गए थे काका को देखकर।
1: तो यहाँ फिर राजेश खन्ना का कोई गीत सुन ले।
0: राजेश खन्ना का आप कोई भी अगर आप गीत चला देंगी मैं उसको सुनूंगा, लेकिन एक गाना है उनका जो मैं गाता भी बहुत था, चिंगारी कोई भड़के,
1: तो वही सुन लेते हैं।
0: बिल्कुल
1: जी।

0: तो विनीत जी, जब आप अपने जिनके आप फैन रहे उनसे मिलने का आपको मौका मिला, तो कोई ऐसी फिल्में भी होंगी जिनमें आपको ऐसा लगता होगा कि ये फिल्म मुझे मिलनी चाहिए थी, मतलब पुरानी अगर आपने देखी हो जब आप एक्टर नहीं रहे हो या बनना चाहते रहे,
1: बावर्ची
0: बावर्ची
1: बावर्ची
0: तो बस
1: एनी डे, मुझे कोई भी प्रोड्यूसर मुझे कभी भी बोलेंगे कि बावर्ची फिल्म बना रहा हूँ और
0: हाँ
1: मेरे पास बजट ही नहीं है, मैं उनकी फिल्म जो है मैं फ्री में कर सकता हूँ, लेकिन वो एग्जैक्टली बावर्ची जैसी ही होनी चाहिए स्क्रिप्ट। तो मुझे वो फिल्म बहुत पसंद है, खासकर काका ने जो उसमें परफॉर्मेंस किया और जिस
0: हाँ
1: तरह से काम
0: जी
1: किया है काका ने, कुछ भी करते थे वो और बहुत अच्छा लगता था। एनी टाइप ऑफ रोल, हर किसी चीज में ढल जाते थे वो, लाइवली से लाइवली कैरेक्टर हो, चाहे वो आनंद का हो
0: हाँ
1: या फिर बावर्ची जैसा कोई हो, या फिर इवन जब वो थोड़े से बाद में मच्योर रोल करने लगे तो अवतार जो उनकी फिल्म थी,
0: जी
1: वो कितनी घर घर में देखी जाती थी कि देखो कैसे
0: हाँ बार
1: अपना
0: बार देखी जाती थी, बागबान
1: अपने
0: से पहले यही देखी
1: हाँ
0: जाती थी जी
1: बागबान से पहले अगर कोई
0: जी
1: फिल्म कल्ट फिल्म है इस परिवार के ऊपर तो वो अवतार ही है।
0: जी और जब वो हंसाना चाहे तो वो हंसा लेते थे, जब वो रुलाना चाहे तो अचानक ही अगले सीन में वो रुला सकते हैं,
1: हाँ
0: कुछ
1: बिल्कुल
0: भी कर सकते
1: बिल्कुल
0: हैं ऐसा लगता
1: बिल्कुल,
0: है वो
1: उनका
0: एक
1: स्टाइल जो हुआ करता था, अरे पुष्पा यू नो जो उनका स्टाइल था, इट वाज, वो कभी कहा जाता ना कि सबसे पहले और
0: हाँ
1: सबसे आखिरी सुपर डुपर बिग
0: स्टार
1: स्टार।
0: जी।

0: उनका एक अलग ही चार्म था, नमक हलाल, नमक हलाल देख लीजिए आप, उसमें वो आते हैं कुछ और बन के आते हैं और फिर उनके किरदार के साथ हम पूरी फिल्म में चले जाते हैं।
1: मुझे लगता है राजेश खन्ना जी, देवानंद साहब, अमिताभ बच्चन जी, दिलीप कुमार साहब, ये मुझे लगता है इन जैसे ना कभी कोई होगा ना कभी कोई था।
0: वो एक मील का पत्थर है, उनको हम देख के आगे बढ़ते हैं, उनको पता चलता है कि सही डायरेक्शन में जाना है, कहाँ जाना है, क्या क्या किया जा सकता
1: है। ये सब असली महानायक है हमारी इंडस्ट्री के, जिनको देख देख के हम सब बड़े हुए हैं।
0: तो एक अगर एक्टर के तौर पर हम देखें तो एक तो जीवन होता है जो आप पर्दे के सामने निभा रहे हैं, एक जीवन है जो आपका अपना निजी जीवन है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि निजी जीवन में बहुत सी कुछ परेशानियां चल रही हैं या कुछ अलग भाव है निजी जीवन का उस वक्त, लेकिन पर्दे पर तो आपको कुछ और ही निभाना है। तो निजी जीवन और करियर को अलग अलग रखना कैसे संभव है, क्या करते हैं आप, कैसे डील करते हैं कि हो सकता है कि कुछ पर्सनल लॉसेस हमने झेल रहे हो उस वक्त में, लेकिन आगे तो हमें जाके वहां कॉमेडी करनी है, तो कैसे वो दोनों चीजें कैसे अलग करते हैं?
1: बहुत मुश्किल होता है कई बार, लेकिन मैं पर्सनली बहुत इस चीज़ पे मैंने बहुत कोशिश की है और इस चीज़ पे मैंने बहुत प्रैक्टिस की है, और मैं चाहता हूँ कि जितने भी एस्पायरिंग एक्टर्स हैं वो अगर इस चीज़ को करें तो पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस में बहुत अच्छा फ़ायदा होने हो सकता है और थोड़ी शायद उनको मदद मिल जाए
0: जी।
1: वो ये कि मैंने हमेशा से अपना एक प्रिंसिपल, एक असूल बनाया कि विनीत रैना जो है वो, उसे जब कॉल टाइम मिलता है कि आप 9 बजे सेट पर पहुंचिए, तो जब तक उसकी आंख खुलती है वो तब तक नॉर्मल एक विनीत रैना है
0: जी।
1: और जैसे ही वो तैयार होना शुरू करता है और अपने करियर के इन 20 सालों से ज़्यादा अपने करियर में मैं कभी भी सेट पे लेट नहीं पहुंचा हूँ
0: जी,
1: मैं हमेशा 5 मिनट या 10 मिनट पहले ही पहुंच जाता हूँ हमेशा। तो जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान एक जन्म लेता है जिसको सेट पे जाना है, वो एक एक्टर, एक कलाकार विनीत रैना है। वो जैसे ही सेट पे पहुंचता है, जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है, उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं है
0: जी।
1: और जैसे ही वो मेकअप उतारता है और वापस गाड़ी में बैठ जाता है और जैसे ही वो मेकअप उतारता है और गाड़ी में बैठता है अपने घर जाने के लिए, वो वापस वो विनीत रैना है जो अपने वापस परिवार के पास जा रहा है उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, और वो अपने सेट से ना कुछ घर लेकर जा रहा है और ना वो अपने घर से कुछ सेट पर लेकर जा रहा है। ये स्विच ऑन स्विच ऑफ, इसको अगर अपनी जिंदगी का उसूल बनाया जाए तो बहुत ज्यादा आपको मदद मिल सकती है और बहुत ज्यादा क्लैरिटी आपको मिल सकती है, जहां आप अपनी निजी जिंदगी को और अपनी पर्दे वाली जिंदगी को, या आप कहीं भी कॉरपोरेट में काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, या आप सरहद पे काम कर रहे हैं, ये बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। और इस स्विच ऑन स्विच ऑफ बटन को अगर आप एक्टिवेट नहीं करेंगे, और ये हर इंसान के अंदर है, सिर्फ इतना है कि आप उसको अपने साथ कैरी करते हैं, मुझे लगता है अगर वो हर इंसान अपने अंदर एक्टिवेट कर ले तो ये किसी के लिए भी मुनासिब है।
0: फिर ये इतना संभव, इतना मतलब आसान नहीं है जितनी आसानी से आप बता रहे हैं, शायद इतने साल से काम करते करते आपको
1: मैं कहूंगा कि इतने सालों से मैं काम कर रहा हूं लेकिन हमेशा ये चीज काम नहीं आती, कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं। मुझे याद है जब मैं अपने मायका सीरियल की शूटिंग कर रहा था और मैं अपने शॉट के बीच में था और मुझे बार बार घर से कॉल आ रहा था, मेरी मॉम का कॉल आ रहा था, मेरे भैया का कॉल आ रहा था, तो क्योंकि मेरा फोन वाइब्रेशन पे बज रहा था और मैं उठा नहीं पा रहा था, तो जैसे ही मैंने अपना शॉट दिया और मैंने इमीडिएटली फोन निकाला तो उस पर काफी सारे मिस कॉल्स थे, तो मैंने जब घर पे कॉल किया तो मुझे पता चला कि मेरे डैड को हार्ट अटैक आया है।
0: अच्छा।
1: और मैं बिल्कुल सुन्न रह गया और उनको सर्जरी के लिए ले जाया जाने वाला था, तो मेरे लिए वो ऐसा एक पल था जहां पर मैं सब भूल गया और मैं कम से कम 15-20 मिनट तक मैंने अपने प्रोडक्शन को बोला कि मुझे थोड़ा वक्त चाहिए
0: जी,
1: और मैं थोड़ी देर के लिए बैठ गया, अपने आप को काम एंड कंपोज किया, पूरे दिन का काम खत्म किया, सीन पूरा खत्म करके मैं अपने मेकअप रूम में गया, मैंने थोड़ा ब्रेक लेकर अपने घर वालों से बात की, मैंने पूरा जितने दिन तक हमारा वापस बैंक नहीं बनते एपिसोड्स तब तक मैंने उन दिनों तक काम किया, काम खत्म किया, तब तक मेरे डैड को एडमिट कर चुके थे, वो सब हुआ और उसके बाद ही मैं पहुंच पाया। तो ये सब सैक्रिफाइसेस होते हैं जो इंसान करता है, तब ये स्विच ऑन स्विच ऑफ बटन काम नहीं आता, बट मुझे लगता है कि ज्यादातर जो ऐसे ओकेजन लाइफ में हो तो घर का काम अपने ऑफिस में ना लिया जाए और ऑफिस का काम जो है या अपने काम का काम जो है वो घर पे ना लिया जाए, तो बैलेंस मेंटेन करना आसान रहता है।
0: और एक जिम्मेदारी भी समझनी जरूरी है कि हम जिस काम के लिए रुके हैं तो उनको किस तरह से हम निभाएं। तो अब आपकी पसंद का एक गीत सुन लें क्योंकि ये भी तो हमारा ही काम है।
1: जी बिल्कुल। मैं चाहता हूँ एक चांदनी फिल्म का जो चांदनी टाइटल ट्रैक है वो सुनाया जाए।

0: तो विनीत जी, गाना तो हमने सुन लिया, लेकिन
1: हाँ।
0: आपने जो इतना सस्पेंस बना रखा है कि कहानी क्या बताने वाले हैं आप इससे जुड़ी हुई?
1: तो एक मैं जब बहुत छोटा था तो एक बहुत ही सुंदर सी एक लड़की रहती थी हमारे घर के पास, और कहते हैं ना चाइल्डहुड क्रश होता है
0: जी
1: कि आप किसी को देखते हैं तो आपको लगता है कि वो एक बचपना होता है, वो आप किसी को आप, और वो बाकी के बच्चों को ट्यूशंस पढ़ाया करती थी वो, और वो शायद कुछ स्कूल में पढ़ती थी, मैं बहुत छोटा था।
0: जी
1: तो ऐसा लगता था तब कि हमारे स्कूल में जितनी भी टीचर्स हों वो ऐसे ही हों, क्योंकि वो बहुत ही प्यार से सारे बच्चों को पढ़ाती थी।
0: जी
1: और ये जो लड़की थी जो ट्यूशंस लेके सबको पढ़ाती थी, ये बहुत कभी किसी बच्चे को नहीं डांटती थी। तो मैंने उनको देखता रहता था। तो उनका नाम चांदनी था,
0: जी
1: और वो अक्सर अपने घर में यही इसी फिल्म के, चांदनी फिल्म के ही गाने अपने घर में चलाया करती थी। तो जैसे ही वो गाने बंद होते थे तो पता चलता था कि वहां ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो गई। जैसे ही गाने दोबारा चलना स्टार्ट होते थे तो फिर ऐसा समझ में आता था सबको कि सारी क्लासेस बंद हो चुकी हैं। तो ये रिपीटेड हम सुनते थे, तो इसीलिए मुझे ये गाना बहुत
0: बचपन
1: याद
0: की
1: है।
0: उन यादों तक
1: जी
0: ये
1: हाँ
0: जाता है गाना।
1: जी हाँ
0: तो आपको, आपकी याददाश्त इतनी अच्छी है, बचपन की बातें तो आमतौर पे सबको याद रहती है,
1: बिल्कुल
0: लेकिन
1: बिल्कुल।
0: स्क्रिप्ट्स कैसे याद रखते हैं, संवाद कितनी जल्दी याद कर लेते हैं, क्या करते हैं उसके लिए?
1: मैंने प्रैक्टिस की है इसके लिए स्क्रिप्ट याद करने की, और मैं बहुत, आई एम अ डायरेक्टर्स एक्टर, तो मुझे, मैं ये बहुत जिम्मेदारी एज एन एक्टर समझता हूँ कि जो एक लेखक ने जो स्क्रिप्ट पे उतारा है, मैं एज एन एक्टर उसके साथ बहुत ज़्यादा चेंजेस ना करूँ,
0: जी
1: अनलेस एंड अंटिल इट इज़ रिक्वायर्ड, जब तक कि उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं खुद से नहीं वो करता, हमेशा अपने अपने प्रोजेक्ट्स के लेखक के साथ और निर्देशक के साथ डिस्कशन करने के बाद ही मैं उसको चेंज करता हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ हमेशा कि मेरी जितनी भी लाइन्स हों वो मैं पूरी बाय हार्ट याद करूँ, और याद करने से पहले मैं पहले उनको इतनी बार पढ़ता हूँ जब तक कि मैं वही ना बन जाऊँ जो ये लाइन्स बोल रहा है।
0: जी
1: मैं विनीत बन के उनको कभी भी नहीं याद कर पाता। जैसे मैं जब साईं बाबा शो भी कर रहा था तो शिरडी वाले साईं बाबा की जो स्क्रिप्ट थी उसमें हमारी इंस्ट्रक्शंस थी कि जो स्क्रिप्ट में लिखा गया है बहुत ही रिसर्च करके सब कुछ लिखा गया था, और बहुत ही जिम्मेदारी वाला कैरेक्टर है और बहुत जिम्मेदारी वाली एक कहानी है, तो हम लोग ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते। तो बड़े बड़े मोनोलॉग्स होते थे जो मुझे बोलने पड़ते थे, जब तक मैं उनको फील ना करूँ कि मैं एक्चुअली लोगों को ये चीज़ बोल रहा हूँ, वो याद करके नहीं हो सकता। तो मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि मैं अपने डायलॉग्स को पूरा फील करके उसको अपने अंदर याद करने के बजाय उसको एज ए कन्वर्सेशन अपने अंदर पूरा घोल लूँ, फिर वो नेचुरली अपने आप निकल जाता है।
0: बिल्कुल, क्योंकि आप फिर वही बन जाते हैं। और आप एक्टर के अलावा प्रोफेशनल ट्रेंड डिस्क जॉकी भी हैं, डीजे भी हैं,
1: जी
0: तो
1: हाँ।
0: अगर आपकी पसंद के कुछ गाने या ट्रैक आपको मिक्स करने कहा जाए तो वो कौन से गीत हो सकते हैं?
1: मुझे लगता है कि हमारे आरडी

0: बर्मन जो थे उनके ट्रैक्स रिमिक्स करना मतलब हर डीजे का मुझे लगता है सपना भी रहता है और एंजॉय भी करता है हर डीजे।
1: जी
0: उनके जितने भी ट्रैक्स हैं, आप उनके कितने भी पुराने गाने देख लीजिए, आइटम नंबर्स और तड़कते हुए भड़कते हुए गाने,
1: जी
0: उन्होंने ही यू नो डिस्को और इस तरह के गाने, एक आर डी बर्मन साहब और उनके बाद बप्पी लहिरी,
1: जी
0: इनके गाने जितने भी हम चाहें रिमिक्स करना चाहें हम कर सकते हैं। और म्यूजिक से मेरा बहुत ज़्यादा लगाव है, इसलिए इतने बिजी शेड्यूल के बाद भी मैंने डीजेइंग चूज किया और मैं गया,
1: जी
0: मैंने प्रॉपरली उसकी क्लासेस ली, मैं जाया करता था और मेरे पास प्रॉपर उसका सर्टिफिकेट है और मैंने कुछ गिग्स भी किए क्लब्स में जाके, लेकिन टाइम की कमी की वजह से मैं उसको प्रोफेशनली या बहुत ज़्यादा वक्त नहीं दे पाया। लेकिन अब शायद सोशल मीडिया पे मैं कुछ वीडियोस डालूं, लेकिन अगर मुझे रिमिक्स करना हो तो मैं यार बिना चैन
1: चैन
0: कहाँ
1: का
0: रहे
1: रहे
0: उसको 100% रिमिक्स करना चाहूंगा।
1: तो वही गीत यहां सुन भी लेते हम।
0: बिल्कुल

0: तो विनीत जी, आपके बारे में इतना कुछ हमने जाना और इतना कुछ आपने अपने बताया हमारे अपने बारे में, बस अगर हमारे श्रोताओं के लिए और आपके दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहें तो क्या होगा, वो क्या संदेश होगा उनके लिए?
1: मैं मेरे श्रोताओं से यही कहना चाहूंगा कि आज अगर मैं अपने आप पर, अपने सपनों पर विश्वास करते हुए, अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन के उसको सुनते हुए अगर उसकी दूसरी तरफ आकर बैठ सकता हूं, तो जिंदगी में कहीं पर भी कोई भी मुझे अगर सुन रहा है, तो मैं उससे यही कहना चाहता हूं कि अपने ऊपर और अपने टैलेंट के ऊपर, अपने ईश्वर के ऊपर भरोसा करके कदम आगे बढ़ाते रहिए। वो दिन दूर नहीं होगा जब आप भी शायद ऐसे ही रेडियो के इस तरफ होंगे और इसी तरह लोगों को शायद इंस्पायर कर रहे होंगे और अपने आप पर विश्वास करने की उनको प्रोत्साहन दे रहे होंगे और एनकरेज कर रहे होंगे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत ही अच्छे शब्दों में आपने ये बात कही विनीत जी। आपके भविष्य के जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हम आपको देते हैं, और उम्मीद है कि हम आपसे मिलते रहेंगे आपके किरदारों के माध्यम से भी और निजी जीवन में भी।
1: धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, मैंने श्रोताओं से बात की, बहुत मजा आया और दोबारा आना चाहूंगा और गाने सुनने के लिए और लोगों से बात करने के लिए। धन्यवाद।
0: धन्यवाद विनीत जी।
2: अभिनेता विनीत रैना से नेहा शर्मा की बातचीत अभी आपने सुनी। रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नाइक, संपादन सहयोग रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर। अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
2: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
3: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन रंग तरंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं। मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं आबिदा परवीन की आवाज से। कलाम है जिगर मुरादाबादी का।

जिगर मुरादाबादी का कलाम था और आज उनकी याद का दिन है। कुछ गजलें हमने उनके नाम पेश की। आवाज थी चित्रा सिंह की। विविध भारती से यह है प्रोग्राम रंग तरंग। लीजिए पेश है कव्वाली मुल्क फिल्म से। शफकत अमानत अली की आवाजें हैं, शकील आजमी के बोल, अनुराग साइकिया का संगीत है। सुनिए ये कव्वाली।

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में, सिर्फ विविध भारती पर।

विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की।

श्रृंगार शुरू का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता, सिर्फ विविध भारती पर।

0: ये कव्वाली आप सुन रहे थे यूसुफ आजाद कव्वाल और साथियों की आवाजों में। विविध भारती से ये है प्रोग्राम रंग तरंग। जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल।

0: लता मंगेशकर और तलत महमूद के स्वरों में ये था राजेंद्र कृष्ण का लिखा गीत। संगीत सी रामचंद्र का था और फिल्म ये एक फिल्मी रचना थी। फिल्म का नाम था मीनार।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 17 सितंबर से एक महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। नई दिल्ली में आज संवाददाता सम्मेलन में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अक्टूबर को जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करेंगे। प्रधानमंत्री ने 7 अक्टूबर 2001 को ही गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने इन वर्षों में जनसेवा से राष्ट्र सेवा के मंत्र के साथ सेवा की यात्रा को लगातार आगे बढ़ाया है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश की प्रगति केवल विकास तक सीमित नहीं रही, बल्कि भारत की सांस्कृतिक पहचान और विरासत भी मजबूत हुई है। सेवा संकल्प अभियान की शुरुआत रक्तदान शिविरों के आयोजन से होगी। श्री नवीन ने बताया कि 7 अक्टूबर को प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए सेवा ज्योति कलश यात्रा भी निकाली जाएगी, जो गांवों और शहरी क्षेत्रों को जोड़ेगी। उन्होंने कहा कि सेवा मेरा योगदान कार्यक्रम 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक जन भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा।
1: सभी लोगों से ये उम्मीद की जा रही है कि 25 मिनट का कम से कम श्रमदान वो दे। इसमें करीब 25 अलग अलग कार्यक्रम लिए गए हैं। हर व्यक्ति जो आम जनमानस से इसमें हम अपील करेंगे कि उनके भी योगदान से इस देश के विकास में योगदान मिले, परिवर्तन आए, इस दृष्टि से ये कार्यक्रम लिए गए हैं। इसमें समाज के जुड़े हुए विभिन्न विषयों को लिया गया है। सेवा सेतु अभियान 17 सितंबर से 17 अक्टूबर के बीच में प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर शिविर कैंप आयोजित किए जाएंगे।
0: भारत ने सऊदी अरब में हौसी विद्रोहियों के हमलों की निंदा की है। भारत ने आम नागरिकों और आर्थिक ठिकानों को निशाना बनाए जाने पर चिंता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे हमलों से बाब अल मंदीब जलडमरू मध्य में आवाजाही प्रभावित होती है और इन्हें बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के काठमांडू में भारतीय फोरेंसिक टीम ने अपने काम में महत्वपूर्ण प्रगति की है। टीम अब तक 1400 से अधिक डीएनए नमूनों की जांच कर चुकी है और 378 डीएनए प्रोफाइल तैयार किए हैं। इस बीच भारत की संयुक्त तकनीकी टीम ने आज चिले में स्थित सुरंग में जल निकासी और कीचड़ हटाने का काम जारी रखा। सुरंग की ढलान और सीमित पहुंच के कारण टीम को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। टीम नए और प्रभावी तरीकों का इस्तेमाल कर रही है। इस्माइली समुदाय के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान पंचम आज से 15 सितंबर तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। वे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के निमंत्रण पर भारत आए हैं। प्रिंस रहीम का कल उपराष्ट्रपति से मिलने का कार्यक्रम है। वे नई दिल्ली में राष्ट्र

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी मुलाकात करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश ने आशा व्यक्त की है कि हाल के कूटनीतिक प्रयासों से रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता फिर शुरू हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन ज्यूरिक ने कहा है कि इन प्रयासों से तत्काल, पूर्ण और बिना शर्त युद्ध विराम का रास्ता खुल सकता है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र शांति के लिए किए जा रहे सभी सार्थक प्रयासों का समर्थन करने के लिए तैयार है। न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी आज बंबई उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत की। इस वर्ष राष्ट्रीय पोषण माह का विषय है हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी। पोषण माह 2026 के दौरान आहार में विविधता और पर्याप्त प्रोटीन, आंगनवाड़ी केंद्रों पर ताजा और गर्म पका हुआ भोजन, समुदाय की भागीदारी और जवाबदेही, पोषण और बच्चों के शुरुआती विकास के लिए शिक्षा तथा प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के 10 वर्ष पूरे होने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अमरीकी ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में स्पेन के कार्लोस अल्कराज और अमरीका के बेन शेल्टन के बीच मुकाबला जारी है। वहीं अमरीका की जेसिका पेगुला ने महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं ये गीत, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज जाने माने अभिनेता अक्षय कुमार का जन्मदिन है। तो चलिए विविध भारती परिवार की ओर से देते हैं उन्हें ढेर सारी बधाइयां, और आज का ये कार्यक्रम उन्हीं के नाम, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, ये नाम फिल्म का है। इसी फिल्म का गाना आपको सुनवा रहे हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में। रानी मलिक के बोल हैं

खिलाड़ी 786 फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। श्रीराम, श्रेया घोषाल और साथियों की आवाजों में समीर अंजान के बोल थे। हिमेश रेशमिया का संगीत था।

0: हॉलीडे फिल्म का गाना आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह की आवाज में, इरशाद कामिल के बोल थे, प्रीतम का संगीत था।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का
1: मगर

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: संगीत सरिता कार्यक्रम में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना हम

0: चित्रित कलाकार हैं गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
1: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।

0: पैडमैन फिल्म का गाना आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह की आवाज में। कौशल मुनीर के बोल थे, अमित त्रिवेदी का संगीत था। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गडले,
1: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
3: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
4: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
5: चिट्ठी न कोई संदेह।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ

0: मोहरा फिल्म का गाना आप सुन रहे थे उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में। बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने, धुन बनाई थी विजू शाह ने। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा।

0: आप सुन रहे थे ये गाना देसी बॉयज फिल्म से। मीका सिंह और साथियों की आवाजें थी, कुमार के बोल थे, प्रीतम का संगीत था। इसी के साथ आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की। श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता, सिर्फ विविध भारती पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 17 सितंबर से एक महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। ये अभियान प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर शुरू किया जाएगा। नई दिल्ली में आज संवाददाता सम्मेलन में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अक्टूबर को जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करेंगे। प्रधानमंत्री ने 7 अक्टूबर 2001 को ही गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने इन वर्षों में जनसेवा से राष्ट्र सेवा के मंत्र के साथ सेवा की यात्रा को लगातार आगे बढ़ाया है।
1: जो आम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास रहा है, एक बहुत बड़ा योगदान नेतृत्वकर्ता के रूप में उन्होंने दिया है। उनका सफर एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में जो प्रारंभ हुआ और आज देश के प्रधान सेवक के रूप में जो उन्होंने काम को आगे बढ़ाया, ये केवल उनके स्पष्ट विजन, उनके दृढ़ संकल्प, सामाजिक जीवन में लगातार गुणात्मक कैसे परिवर्तन आए, कैसे उनके जीवन में बदलाव आए, इसका प्रयास उन्होंने किया।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसनायका से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और श्रीलंका के बीच सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने दोनों देशों के विकास और लोगों की भलाई के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री सिंह ने कहा कि दोनों देश क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और समृद्धि के लिए भी मिलकर काम करते रहेंगे। भारत ने सऊदी अरब में हौसी विद्रोहियों के हमलों की निंदा की है। भारत ने आम नागरिकों और आर्थिक ठिकानों को निशाना बनाए जाने पर चिंता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे हमलों से बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य में आवाजाही प्रभावित होती है और इन्हें बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के काठमांडू में भारतीय फोरेंसिक टीम ने अपने काम में महत्वपूर्ण प्रगति की है। टीम अब तक 1400 से अधिक डीएनए नमूनों की जांच कर चुकी है और 378 डीएनए प्रोफाइल तैयार किए हैं। इस बीच भारत के संयुक्त तकनीकी टीम ने आज चिले में स्थित सुरंग में जल निकासी और कीचड़ हटाने का काम जारी रखा। इस्माइली समुदाय के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान पंचम आज से 15 सितंबर तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। वे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के निमंत्रण पर भारत आए हैं। प्रिंस रहीम का कल उपराष्ट्रपति से मिलने का कार्यक्रम है। वे नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी मुलाकात करेंगे। न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी ने आज बंबई उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत की। इस वर्ष का विषय है हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी। जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए 27वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह कल नई दिल्ली के संसद भवन परिसर में आयोजित किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने परमवीर चक्र से सम्मानित कैप्टन विक्रम बत्रा की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। अमरीकी ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में स्पेन के कार्लोस अल्कराज और अमरीका के बेन शेल्टन के बीच मुकाबला जारी है। वहीं अमरीका की जेसिका पेगुला ने महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। मौसम विभाग ने कल बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। अगले दो दिनों तक उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आंधी तथा बिजली कड़कने की स्थिति बनी रहेगी। आज तटीय आंध्र प्रदेश, केरलम और माही में गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आप सभी सुनने वाले, कार्यक्रम सुनने वाले श्रोताओं का स्वागत खैर मकदम करती हूँ। मैं आप सभी की होस्ट और दोस्त प्रीति त्यागी, स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कार्यक्रम है आप सभी का पसंदीदा एक ही फिल्म से, और जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर रोज आपके लिए एक फिल्म चुनकर लाते हैं, और उसी कड़ी में आज हम आपके लिए चुनकर लेकर आए हैं 60 के दशक की एक वो खूबसूरत फिल्म जिसमें बहुत सी चीजों की जो धारणा थी उसको तोड़ा। जी हाँ, बात कर रहे हैं सन 1963 की फिल्म भरोसा के बारे में, जिसको निर्देशित किया था के शंकर ने। कलाकारों की बात करें तो गुरुदत्त साहब, आशा पारिक, महमूद, शोभा कोटे की अदाकारी से सजी ये फिल्म सिर्फ अपनी कहानी नहीं बल्कि अपने बेमिसाल संगीत और अपने बहुत से किस्सों के लिए जानी जाती है। तो आज का जो ये सफर है हमारा, उस सफर में हम करेंगे यही सब बातें, यही सब चर्चाएं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और लीजिए करते हैं शुरुआत इस कार्यक्रम की आशा जी की आवाज में इस खूबसूरत से गीत के साथ।

0: नेतृत्व में हजारों भाकपा माले कार्यकर्ताओं ने थाने पर धरना दिया, जिसके बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की और वीडियो पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। सरायकेला खरसावां जिले के नीमडीह प्रखंड के 53 गांवों के ग्रामीणों ने अपनी पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था को संवैधानिक पहचान देने की मांग उठाई है। ग्रामीणों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर पेसा अधिनियम के तहत पारंपरिक मुंडा, सरदार और नाया जैसे पदाधिकारियों को सरकारी अभिलेख में दर्ज कराने का आग्रह किया है।
1: सरकारी पद से अध्यक्ष हो, सचिव हो, कोषाध्यक्ष हो, जो ग्रामीण विकास के लिए जमीनी स्तर पर काम को चलाने के लिए, तो उसकी जानकारी हम लोग लिस्ट के साथ उपायुक्त महोदय को देने आए। सभी समाज के लोग को बैठा करके महत्वपूर्ण सुझाव रहा, समाज धरातल में उसका विकास कर पाएंगे। शिक्षा का स्तर हो, कृषि हो, स्कूल हो।
0: जमशेदपुर के XLRI और एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट के बीच वैश्विक अकादमिक सहयोग को मजबूत करने के लिए एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है। संस्थान में आयोजित 5 दिवसीय डॉक्टोरल कोलोक्वियम में देश विदेश के शिक्षाविदों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के कन्वीनर प्रोफेसर प्रशांत कुमार ने बताया कि इसका उद्देश्य शोधार्थियों को अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों से जोड़ना और उनके रिसर्च को बेहतर बनाने में मदद करना है।
2: PhD स्कॉलर्स को इनवाइट किया गया, ने रिसर्च आइडियाज सबमिट किए थे, 500 रिसर्च आइडियाज आए थे, 150 रिसर्च आइडियाज शॉर्टलिस्ट होकर के उनको यहाँ पर बुलाया गया है। फीडबैक के लिए हमारे एडिटर्स आए हैं जो एक्सपर्ट्स हैं। XLRI ने एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट के साथ MOU साइन किया है।
0: चतरा जिले के टंडवा थाना क्षेत्र के सिद्धपा गांव में प्रेम प्रसंग को लेकर 2 गुटों में हिंसक झड़प हुई। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। पूरे मामले में भारी पुलिस बल गांव में तैनात कर दिया गया है। पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा में पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 113 किलो गांजा बरामद किया है। ओडिशा से आ रही कार से तस्करी के आरोप में पुरी निवासी एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग 0.5% की गिरावट देखी गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 493 अंक गिरकर 75,085 पर आया, जबकि निफ्टी 116 अंक फिसलकर 23,520 पर पहुंच गया। इधर राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,43,500 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,45,000 रुपये प्रति किलो है। गोड्डा के गांधी मैदान में 3 दिवसीय नेटबॉल चैंपियनशिप रंगारंग कार्यक्रमों के साथ संपन्न हुई। प्रतियोगिता के सीनियर और सब जूनियर वर्ग में कुल 50 टीमों के 1500 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। राष्ट्रीय खिलाड़ी मोनालिसा ने गोड्डा में नए आवासीय प्रशिक्षण केंद्र की सराहना करते हुए कहा कि इससे स्थानीय प्रतिभाओं को निखारने में बड़ी मदद मिलेगी। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर 17 सितंबर से देशव्यापी सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी भाजपा। रक्तदान शिविर और सेवा ज्योति कलश यात्रा होंगे मुख्य आकर्षण। देश भर में आज से 9वें राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ जन जन से जुड़ने की अपील की। जमशेदपुर के मतदाता सूची में 3 अफगान नागरिकों के नाम मिलने पर भाजपा का हेमंत सरकार पर हमला। झामुमो ने पलटवार कर चुनाव आयोग की निगरानी का दिया हवाला। सरायकेला में उठी पारंपरिक स्वशासन को मान्यता देने की मांग। 53 गांवों के ग्रामीणों ने अपर उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। पेसा अधिनियम के तहत संवैधानिक पहचान की अपील। और चतरा में 2 गुटों में झड़प। बचाव करने पहुंची पुलिस टीम पर उग्र भीड़ ने किया पथराव। थाना प्रभारी गंभीर रूप से घायल। क्षेत्र में स्पेशल फोर्स की तैनाती। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। उप शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम अनुरंजनी में आइए सुनते हैं सिद्धेश्वरी देवी को।

भाई सभी ने लिखा है, बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि माली शब्द वाला गाना है, इबारत में माली है कि माली ने कहा कि घबराना नहीं, इस तरह की बात है। और उसमें एक शब्द और आता है पत्थर और शाम, तो इससे और सुनहरा शब्द, सुनहरी शाम, तो इस पर कोई गाना आपको याद आ रहा है तो ज़रा बताइए, क्योंकि आगे हम वो गाना भी सुनवाना चाहते हैं और आप जो सुनना चाहते हैं हम चाहते हैं वही सुनवाना, तो इसलिए आप ही लिखिए अगला गाना कि कौन सा हम सुनवाएं। और सभी श्रोताओं ने जवाब सही दिया है, लेकिन निर्देशक का नाम बहुत कम श्रोताओं की ओर से आया है। शाहिद लतीफ निर्देशक और गुरुदत्त प्रोड्यूसर थे, निर्माता धर्मेंद्र, माला सिन्हा और तनुजा इस फिल्म में कलाकार हैं। हमारे सभी श्रोताओं ने ये सही बूझा है। एक श्रोता ने लिखा है कि ये फिल्म गुरुदत्त साहब के चले जाने के बाद रिलीज हुई थी और धर्मेंद्र साहब ने इसमें काफ़ी मदद की थी। और बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं कि इसमें पत्थर शब्द भी आया है और माली शब्द भी आया है, फिर फूलों के लिए बहुत सारे गाने हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि फूलों की बात भी है, और शाम और सुनहरी शाम से जुड़ा हुआ कोई गाना आपको याद आ रहा है, मतलब जिसमें सुनहरा शब्द हो, धूप हो और पत्थर हो, वो गाना भी बताइए, इबारत में ये शब्द भी हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि तकरीबन 10 साल पहले जब मेरे पतिदेव इस दुनिया को छोड़कर चले गए, उनके जाने के बाद मेरी जिंदगी जैसे रुक गई थी, कहीं कुछ समझ में नहीं आता था कि क्या करूं, लेकिन मेरे पापा बहुत स्ट्रांग थे और वो हमेशा एक ही गाना गाते थे, नदियां चले चले रे धारा तुझको चलना होगा। मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा अनुभव था जो मेरी रुकी हुई जिंदगी उस गाने से आज चल पड़ी। आज जब भी मैं उस गाने को सुनती हूं तो मुझे वो वाक्या याद आ जाता है, और सचमुच गाने से आपको सहारा भी मिलता है। कई बार हम बहुत उदास बैठे हों, यूं ही अकेलेपन के एहसासात से घिरे हुए हों, तो कोई गाना हम सुन लेते हैं तो चेहरे पर मुस्कान तिराती है। कोई रूमानी सा गाना, कोई इंस्पायर करने वाला प्रेरणादायक गाना, तो हमें अच्छा लगता है। तो ऐसे ही कोई गाने आपके जहन में आ रहे हैं तो ज़रा बताइए। एक श्रोता ने लिखा है, राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, सुख है एक छांव ढलती आती जाती है, फिल्म दोस्ती के इस गाने में जीवन का फलसफा है और भी बहुत कुछ है जो हमें जीने की प्रेरणा देता है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि जिंदगी एक पुराने रेडियो पर बजते किसी मधुर गीत की तरह लगती है जो हमें अतीत की सुनहरी यादों में ले जाती है। कभी ये एक नए सफर की तरह होती है जहां अगला मोड़ अनजाना पर रोमांच से भरा होता है। इसमें सिर्फ खुशियां और सफलताएं ही शामिल होती हैं। इसमें कभी कभी दिल का टूटना, हार मान लेने का एहसास होता है। हमारे श्रोता जो लिख रहे हैं कि अगला मोड़ अनजाना, इस पर मेरे जहन में एक बात आ रही है, ज़रा बताइए कि जब हम छोटे होते हैं, बचपन के दिन होते हैं, कहीं जा रहे होते हैं, रास्ता भूल जाते हैं, भटक जाते हैं कि ये कौन सी वाली गली से हमें जाना है, और एक समय था जब गूगल नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, आपके पास फ़ोन नहीं था, माता पिता का बताया हुआ ही रास्ता होता था, भाई बहनों का बताया हुआ रास्ता होता था कि ऐसे सीधे जाना, फिर बाएं मुड़ना, फिर दाहिने मुड़ना, फिर सीधे जाना, वहाँ पर वो दुकान आएगी, उस दुकान से ये सामान ले आना, या फलाने जी का घर होगा, उनके घर जाके ये संदेशा देना। तो ऐसा कभी हुआ है कि आपके साथ आप रास्ता भूल गए हों? कभी तेज़ बारिश हो जाती थी और चारों ओर से पानी ही पानी, बूंदों की बौछार, रास्ता सूझता नहीं था, तो ऐसे में क्या करते थे? तो ये ज़माना अब अलग है, एक ज़माना ऐसा था जब कोई आपको बताने वाला मार्गदर्शक या पथ प्रदर्शक नहीं होता था, वो दिन याद कीजिए और बताइए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। फिलहाल फिल्म का नाम बताइए और गीतकार का नाम, संगीतकार का नाम बूझिए। कौन सी है फिल्म ये?

बहुत सारे श्रोता हमारे बहुत सारे गाने सुझा रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है एक अंधेरा लाख सितारे फिल्म आखिर क्यों, और एक श्रोता लिख रहे हैं एक हंसी शाम को दिल में रखो गया फिल्म दुल्हन एक रात की, और एक श्रोता ने लिखा है कि एक सुनहरी शाम थी सायरा बानो जॉय मुखर्जी की फिल्म आओ प्यार करें, और हमने फिल्म का नाम आपसे पूछा था। एक श्रोता ने लिखा है ये शाम की तन्हाई है ऐसे में तेरा गम, और एक आगे इन्होंने लिखा पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना। एक श्रोता ने लिखा है कि भाई बहुत बढ़िया बढ़िया गाने सुनने को मिल रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ बारिश बहुत हो रही है, बारिश का आनंद लेते रहिए, गाने सुनते रहिए। और बहुत सारे श्रोताओं ने फिल्म का नाम लिखा है, और हमारे एक सुधी श्रोता हैं जिन्होंने जानकारी दी है कि फिल्म बाहर है फिर भी आएंगी का निर्माण गुरुदत्त ने शुरू किया था, पर उनके पात्र को धर्मेंद्र से रिप्लेस करवाकर आत्माराम ने पूरा किया था। और एक श्रोता ने लिखा है कि 10 साल पहले की बात है, और एक इन्होंने यात्रा साझा की है, बहुत लंबी सी टिप्पणी है, और बहुत सारे श्रोताओं ने दुनिया पर गाने लिखे हैं, दुनिया करे सवाल तो हम क्या जवाब दें, रंग बिरंगी ये दुनिया रंग बिरंगी बाबा, और तुम पुकार लो तुम्हारा इंतजार 100 बार जन्म लेंगे, ये गाना तो हम आपको सुनवा चुके हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि दुनिया एक मेला है, उसमें खुशी गम आशा निराशा की बहुत सारी राहें नजर आती हैं, इस मोहजाल से भ्रमित मत होना, खुद पर भरोसा रखते हुए अपने सपने सच करते हुए जीवन पथ पर चलते जाना हे राही, आत्मविश्वास से चलते जाना। और अब दुनिया की बात है तो चलिए दुनिया वाला ही गाना एक और सुन लेते हैं। आपके जहन में इस समय सलामत रहने वाली कौन सी बात और कौन सा गाना आ रहा है बताइएगा, तो हम ये दुनिया के बाद दुनिया वाले गाने के बाद वो गाना सुनवाएंगे सलामत। फिलहाल ये दुनिया, दुनिया वालों से दूर फिल्म का नाम आपको पूछना है।

जबक फिल्म का गाना था। हमारे श्रोताओं ने जवाब इसका सही दिया, कम श्रोताओं को जवाब शायद पता था इसके बारे में, कम जवाब आए हैं। अब दुनिया और दुनिया से जुड़ा हुआ एक गाना और आपको सुनवा रहे हैं। हमने आपसे पूछा था सलामत शब्द जो इबारत में है उससे जुड़ा हुआ गाना आप याद कीजिए, तब तक हम ये गाना सुनवा रहे हैं फिल्म बहू बेगम। इसकी भी इस गाने का भी जिक्र हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने किया है और लिखा है इसमें इबारत के कौन कौन से शब्द आते हैं, कुछ श्रोताओं ने लिखा है, जरा आप भी बताइए फिल्म बहू बेगम और बताइए किस हीरोइन पर यह गाना फिल्माया गया है और साथ में बूझिए गीतकार और संगीतकार का नाम। फिल्म बहू बेगम

बहु बेगम फिल्म का गाना था लता मंगेशकर की आवाज, शब्दकार थे साहिल लुधियानवी और संगीतकार थे रोशन। और पूछा था हमने हीरोइन का नाम, सभी ने बताया सही बिल्कुल, मीना कुमारी और हीरो प्रदीप कुमार। और अब सलामत रहने के लिए तो हमारे श्रोताओं ने बहुत सारे गाने सुझाए हैं, लेकिन उससे पहले हम आपसे जरा पूछ लें कि कई श्रोताओं ने खामोशी फिल्म का गाना चुना है, वो शाम कुछ अजीब थी, और शाम के बहुत सारे गाने सुझाए हैं, तो आप सभी तय कीजिए कि कौन सा गाना शाम वाला सुनवाएं। अभी फिलहाल हम आपकी टिप्पणी आप तक पहुँचा दें। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरा ग्रेजुएशन कम्प्लीट हुआ था और मैं दुखी इस सोच में कन्फ्यूजन में था कि आगे क्या। मैं लेटा हुआ था, रेडियो पर विविध भारती के गीत बज रहे थे, उस समय गीत बजा आज फिर जीने की तमन्ना है गाइड फिल्म का। मैं उत्साह से भर गया और निर्णय लिया कि जॉब ही करना है। क्या बात है भाई, रेडियो विविध भारती आपका किस तरह से साथी होता है, बड़ा अच्छा लगा जानकर। और एक श्रोता ने लिखा है कि रोशन तुम्ही से दुनिया दूसरा गाना, अब तो सलामत, फिर फिल्म प्यार ही प्यार के दो शीर्षक गीत में से एक। और आगे एक श्रोता ने लिखा है कि सलामत से मुझे सिर्फ एक ही गाना बहुत पसंद है, मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा है और बहुत अच्छे दोस्त हैं, भगवान ने मुझे आशीर्वाद दिया है, मुझे मेरे दोस्त बहुत प्यारे हैं, इसलिए मैं हमेशा अपने दोस्तों को ये गाना सुनाती हूँ और गाती भी हूँ। अपने सभी दोस्तों को सुनवाना चाहूँगी, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। लेकिन अभी आपको ये गाना हम नहीं सुनवा रहे हैं, बल्कि ये गाना सुनवा रहे हैं। जरा फिल्म का नाम बूझिए और जल्द बूझिएगा फिल्म का नाम। गीतकार का नाम हम बता देते हैं इंदिवर, संगीतकार का नाम जरा आप बताइए, फिल्म का नाम, संगीतकार का नाम आपको बता

भाई, इस गाने का जिक्र तो बहुत सारे श्रोताओं ने किया था और हमें लगता है कि आपकी और यहाँ पर हमारे प्लेलिस्ट की बात गाने एक हो गए। फिल्म थी पारसमणि और गीतकार थे इंदिवर, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आवाज मोहम्मद रफी की थी। आप सभी ने जवाब बिल्कुल सही दिया है, बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत ही आसान सवाल था। एक श्रोता ने लिखा है कि दो रंग दुनिया के और दो रास्ते जिंदगी के, रंग कई रे मैं राही अनजान राहों का और मेरा नाम अनजाना, रुके रुके से कदम, गाने के बोल बहुत सारे लिखे हैं। और एक श्रोता ने लिखा है ये पर्वतों के दायरे, बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं गानों के बोल जो विविध भारती के फेसबुक पेज पर सुरक्षित रहता है। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं जब नए मकान में शिफ्ट हुई तो उस समय कॉलोनी काफी वीरान थी, लौटते समय रास्ता ढूंढने में बड़ी दिक्कत हुई। हमने आपसे पूछा था कि कभी ऐसा मौका आया जब आप राह भूल गए हों, क्योंकि एक जमाना था जब हम सबका बचपन था तब सोशल मीडिया या गूगल राह दिखाने वाला नहीं था। अब बात सपने वाली रह गई है, तो सपने वाला कौन सा गाना, ये जो हम सुनवाने जा रहे हैं या कोई और है? अगर कोई और गाना आपके जहन में तो बताइए। फिलहाल बुझिए फिल्म का नाम और गीतकार का नाम। आपके जहन में सपने वाले और कौन से गाने आए हैं इस समय?

नई रोशनी फिल्म का गाना था लता मंगेशकर की आवाज, राजेंद्र कृष्ण के बोल थे रवि का संगीत था। श्रोताओं ने इसका भी जवाब सही दिया और अतिरिक्त जानकारी भी दी है माला सिन्हा, धर्मेंद्र, अशोक कुमार, राजकुमार, तनुजा और अनवर हुसैन होते हैं फिल्म में कलाकार। और बहुत सारे श्रोता अगले गाने के लिए लिख रहे हैं, लेकिन क्या आपने ये गाना सोचा था जो हम सुनवाने जा रहे हैं? आपको बूझना है हीरो हीरोइन का नाम और फिल्म का नाम। एक सवाल यहाँ पर और बनता है, गायक का नाम भी जरा बूझिए।

कुछ श्रोताओं ने गायक का नाम बूझ लिया है, आपको पता है तो जरूर बताइए, और साथ में हीरो हीरोइन का नाम भी।

शबाना आज़मी होती हैं फिल्में, और नसीरुद्दीन शाह पर फिल्माया गया था ये गाना। साथ में हीरोइन सुप्रिया पाठक भी हैं, जुगल हंसराज बाल कलाकार के रूप में आते हैं। हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल सही जानकारी दी, और जो हमने खास सवाल पूछा था अनूप घोषाल की आवाज़ में ये गाना था, सभी श्रोताओं ने बहुत त्वरित पूछा। फिल्म थी मासूम, गुलजार के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत था, और एक श्रोता ने लिखा है कि जिंदगी की जटिलता को बताया गया था इस फिल्म में, और अब बिल्कुल वक्त नहीं है कि कोई गाना सुनवाएं, सिर्फ इतना बता देते हैं। और बहुत सारे श्रोताओं ने ये लिखा है कि हमेशा की तरह ये लाजवाब प्रस्तुति थी, तो हम ये भी आपसे कहते चलें कि हमेशा की तरह आपकी टिप्पणियाँ लाजवाब थी। अब आज का सुरीला सफ़र कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। सफ़र आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

नमस्कार श्रोताओं, आज हम जिस शब्द को लेकर जीवन के कुछ बातें करेंगे वो है मुसाफिर। जी हाँ, यानी चलने वाला, आगे बढ़ने वाला। लेकिन अगर गौर करें तो हम सब मुसाफिर ही हैं, है ना? जन्म से लेकर जीवन के अंतिम सांस तक हमारा सफर चलता रहता है। कभी रास्ते आसान होते हैं, कभी मुश्किल। कभी कोई हमारे साथ कदम मिलाकर चलता है और कभी भीड़ में भी हम अकेले रह जाते हैं। लेकिन हर रास्ता हमें कुछ न कुछ सिखा कर जाता है। जिंदगी की खूबसूरती शायद इसी में है कि हमें केवल मंजिल नहीं, सफर भी जीना है। तो आइए शुरुआत करते हैं उस मुसाफिर से जिसे न घर की चिंता है न ठिकाने की, बस चलते जाने का जुनून है। जी हाँ साथियों, एक मुसाफिर के पास शायद कोई स्थायी ठिकाना ना हो, लेकिन उसके पास रास्तों के अनुभव और यादें जरूर होती है। हम सभी जिंदगी में एक निश्चित मंजिल चाहते हैं। सोचते हैं कि जब सब कुछ हमारी इच्छा के मुताबिक हो जाएगा तभी खुश होंगे। लेकिन जिंदगी कभी पूरी तरह हमारे हिसाब से नहीं चलती। कभी रास्ते बदलते हैं, कभी रिश्ते बदलते हैं, और कभी हमारे सपने ही बदल जाते हैं। हाँ, इसलिए हमें अपने सफर की तुलना किसी और से नहीं करनी चाहिए। किसी की मंजिल जल्दी आ जाती है तो किसी को लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। हर मुसाफिर का रास्ता अलग होता है।

0: सार्थक प्रयासों का समर्थन करने के लिए तैयार है। अमरीका और ईरान के बीच लगातार हमलों के कारण पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ गया है। इससे व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की आशंका बढ़ गई है। अमरीकी सैन्य बलों ने ईरान के कच्चे तेल के 5 टैंकर नष्ट कर दिए हैं। अमरीका के अनुसार पिछले 2 दिनों में उसके एक युद्धपोत पर ईरान ने हमले किए थे। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइलें भी दागी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए एक्स पर @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आज अंतर्राष्ट्रीय रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर और उत्तर प्रदेश सरकार के अन्य मंत्री भी उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि 9वां राष्ट्रीय पोषण माह स्वस्थ और सशक्त भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने का अभियान है। उन्होंने कहा कि ये अभियान हर माँ के स्वास्थ्य, हर बच्चे के पोषण और हर परिवार की खुशहाली से जुड़ा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2014 से गरीबों, बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषण को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी केंद्रों में भी बड़े बदलाव किए गए हैं।
2: हमने पिछले 9.5 वर्ष में 70,000 से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों को एक नया स्वरूप दिया है और हमने प्रायोरिटी ली है। इसमें राज्य वित्त आयोग हो, केंद्रीय वित्त आयोग का हो या राज्य के स्वयं का अपने बजट का पैसा, आंगनवाड़ी केंद्र उसकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए उसके निर्माण की। वहां पर बच्चों के लिए टॉयलेट की, शुद्ध पेयजल की, ये उसकी प्रायोरिटी का हिस्सा है। आज वहां पे बाल वाटिकाएं चलती हैं। खेल खेल में कैसे अक्षर ज्ञान और कैसे अंकों का ज्ञान बच्चे वहां प्राप्त करते हैं।
0: इस वर्ष पोषण माह का विषय है हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 17 सितंबर से एक महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। ये अभियान प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर शुरू किया जाएगा। नई दिल्ली में आज संवाददाता सम्मेलन में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अक्टूबर को जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करेंगे। प्रधानमंत्री ने 7 अक्टूबर 2001 को ही गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने इन वर्षों में जनसेवा से राष्ट्र सेवा के मंत्र के साथ सेवा की यात्रा को लगातार आगे बढ़ाया है।
3: जो आम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास रहा है, एक बहुत बड़ा योगदान नेतृत्वकर्ता के रूप में उन्होंने दिया है। उनका सफर एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में जो प्रारंभ हुआ और आज देश के प्रधान सेवक के रूप में जो उन्होंने काम को आगे बढ़ाया, ये केवल उनके स्पष्ट विजन, उनके दृढ़ संकल्प, सामाजिक जीवन में लगातार गुणात्मक कैसे परिवर्तन आए, कैसे उनके जीवन में बदलाव आए, इसका प्रयास उन्होंने किया।
0: भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश की प्रगति केवल विकास तक सीमित नहीं रही, बल्कि भारत की सांस्कृतिक पहचान और विरासत भी मजबूत हुई है।
3: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम कह सकते हैं कि केवल विकास ही नहीं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भी जड़ों को मजबूत किया गया। आज हम भव्य राम मंदिर की बात करते हैं, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात करते हैं, सोमनाथ की बात करते हैं, महाकाल कॉरिडोर की बात करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि देश के सांस्कृतिक धरोहर को पूरी तरह से सृजित और विकसित करने में उन्होंने पहल किया।
0: भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि जब प्रधानमंत्री ने देश को संभाला उस समय भारत नीतिगत गतिरोध से जूझ रहा था और दुनिया की कमजोर मानी जाने वाली 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल था। उन्होंने कहा कि आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। श्री नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पूरे देश के लोगों की सोच को बदलने का भी प्रयास किया।
3: उन्होंने केवल इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट की बात नहीं की, उन्होंने इस देश के सोच को भी बदलने का प्रयास किया। उनके पूरे कालखंड को हम जब देख रहे हैं तो केवल युगांतकारी निर्णय ही नहीं हुए, आम लोगों के जीवन में बदलाव ही नहीं हुआ, आम लोगों के जीवन के सोच में भी बदलाव आया है। और 25 साल के ये सशस्त्र सेवा और समर्पण के जो उनके कार्यकाल रहे हैं, जो उनके

0: पाक जीवन लगातार शासन दुनिया भर के लोकतंत्र के इतिहास को एक अलग परिभाषा के साथ सामने लाया है।
1: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना के बाद राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने नगर निगम के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को कार्रवाई के दौरान मौके पर मौजूद रहने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने दिल्ली में पीजी आवासों का निरीक्षण करने और वहां अनधिकृत निर्माण की जांच के साथ साथ इमारतों से जुड़े रिकॉर्ड की भी जांच करने को कहा है। न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी ने आज बम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। मुंबई के लोक भवन में महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति त्रिपाठी बम्बई उच्च न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने कर्नाटक में 18 स्थानों पर छापेमारी की है। इनमें राज्य के लोक निर्माण मंत्री सतीश जारकीहोली, उनकी बेटी और लोकसभा सांसद प्रियंका जारकीहोली के आवास भी शामिल हैं। गुजरात विधानसभा का 3 दिन का मॉनसून सत्र आज गांधीनगर में शुरू हुआ। सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू हुई। इस दौरान सामान्य प्रशासन, राजस्व और पंचायती राज समेत विभिन्न विभागों से जुड़े तारांकित प्रश्नों पर चर्चा हुई। पुद्दुचेरी में तट्टान सावड़ी विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए आज नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 16 सितंबर है। राजस्थान में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान जारी है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
1: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 दिनों तक उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आंधी तथा बिजली कड़कने की स्थिति बनी रहेगी। आज तटीय आंध्र प्रदेश, केरलम और माही में गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। बिहार में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। गंगा, गंडक, कोसी, सोन, पुनपुन और दूसरी नदियों के जलस्तर में वृद्धि हो रही है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: गंगा नदी का जलस्तर पटना के गांधी घाट में खतरे के निशान से 171 सेंटीमीटर, दीघा घाट में 109 सेंटीमीटर और हाथीदह में 165 सेंटीमीटर ऊपर दर्ज किया गया। इधर मुंगेर, भागलपुर और कहलगांव में गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी की प्रवृत्ति बनी हुई है। तटबंधों पर दबाव की स्थिति को देखते हुए जल संसाधन विभाग और विभिन्न जिला प्रशासन की टीम लगातार निगरानी कर रही है। पटना, सारण, वैशाली, बेगूसराय, खगड़िया, समस्तीपुर, जहानाबाद और अरवल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर राहत कार्य चलाया जा रहा है। 456 सामुदायिक किचन का संचालन किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
1: वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए उसके निर्देशों को संबंधित एजेंसियों द्वारा प्रभावी ढंग से लागू करना जरूरी है। आयोग ने कहा है कि संबंधित एजेंसियों को उसके आदेशों का समय पर पालन सुनिश्चित करने के साथ निगरानी और कार्रवाई की व्यवस्था को भी मजबूत करना चाहिए। बेन शेल्टन ने अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल में आज शेल्टन ने कड़े मुकाबले में मौजूदा चैंपियन कार्लोस अल्कराज को हराया। सेमीफाइनल में शेल्टन का सामना अमरीका के फ्रांसिस डियाफो से होगा। दोनों अमरीकी खिलाड़ी पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंचने के लिए मुकाबला करेंगे। वहीं जेसिका पेगुला ने महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 437 अंक गिरकर 75,140 पर, जबकि निफ्टी 89 अंक फिसलकर 23,547 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्र की सुरक्षा, शांति और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई। ब्रिक्स के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की वित्तीय मामलों पर अंतिम बैठक मुंबई में। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने वाराणसी में राष्ट्रीय

पोषण माह का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी 17 सितंबर से एक महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में अगले 24 घंटों के दौरान मूसा

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 2:30 हुए और वक्त हुआ है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम एक ही कलाकार का। एक ही कलाकार कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का, आप सभी सुनने वालों का स्वागत खैर मकदम करती हूँ। मैं आप सभी के होस्ट और दोस्त प्रीति त्यागी, स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों आज है तारीख 9 यानी कि 9 सितंबर और आज बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के एक ऐसे सितारे का जन्मदिन है। अगर हम उसकी बात करें तो सबसे पहले हमारे दिमाग में बात आती है डिसिप्लिन की। जी हाँ दोस्तों, डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन, बेमिसाल टाइमिंग और बैक टू बैक सुपरहिट फिल्में देने की जिद और मार्शल आर्ट।

0: मदर इंडिया फिल्म का गाना आप सुन रहे थे शमशाद बेगम, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में। शकील बदायूनी के बोल थे, नौशाद का संगीत था। आइए अब सुने नौरंग फिल्म का गाना, आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजों में। लिखा है इसे भरत ब्यास ने, धुन बनाई है सी रामचंद्र ने।
1: अटक अटक झट पट पन घट पर चटक मटक इक नार नवेली, गोरी गोरी ग्वाल नकी छोरी चली चोरी चोरी मुख मोरी मोरी मुस्काए अलवेली। कंकरी गली में मारी कंकरी कन्हई ये ने पकड़ी बाह और की अटखेली, भरी पिचकारी मारी सरा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी के जो जो फिल्में बनी हैं सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी बंदिनी, वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में, सिर्फ विविध भारती पर।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: मदारी फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। फारूक कैसर के बोल थे, कल्याण जी आनंद जी का संगीत था।
1: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
2: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
3: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
1: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है।

0: छलिया फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर के स्वर में। रचना थी कमर जलालाबादी की, संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गडले
1: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
3: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
4: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
5: चिट्ठी न कोई संदेह।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ

सारंगा फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में। शब्दकार थे भरत व्यास, संगीतकार सरदार मलिक। आइए प्रोग्राम के आखिर में सुनते हैं अनपढ़ फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में। रचना है राजा मेहदी अली खां की, संगीतकार मदन मोहन। सुनिए ये प्रोग्राम का आखिरी गाना और इसी के साथ अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प को भी इस कार्यक्रम में लाने का प्रयास किया गया है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा विकसित भारत 2047 के संकल्प को लेते हुए हम भारत को आगे बढ़ाने में, देश को एक साथ लेकर चलने में और प्रधानमंत्री जी का जो मूल मंत्र रहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उस मूल मंत्र को इस कार्यक्रमों में हम लोगों ने लाने का प्रयास किया है।
0: केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आज से 9वें राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत की है। इस वर्ष का मुख्य संकल्प हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी रखा गया है। इसके तहत आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को प्रोटीन युक्त आहार और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाएगी। मंत्री ने देशवासियों से नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्रों को सशक्त बनाने में योगदान देने की अपील की है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अनुसार राज्य में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत अब तक करीब 6,40,000 से अधिक आवेदन और आपत्तियां प्राप्त हुई हैं। दावा आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तिथि 15 सितंबर है, जबकि अंतिम मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 19 अक्टूबर को किया जाएगा। जमशेदपुर के साक्षी आदित्यपुर मरीन ड्राइव पर गैस टैंकर से रिसाव के बाद अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने एहतियातन इलाके को खाली कराया और करीब एक घंटे तक यातायात रोक दिया। चालक के अनुसार किसी बड़े वाहन की टक्कर के बाद टैंकर से गैस रिसाव शुरू हुआ था। टैंकर को सड़क से हटाए जाने के बाद वाहनों की आवाजाही सामान्य हो सकी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। जेपीएससी जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी की सीबीआई से जांच और छात्रों पर दर्ज मामलों को वापस लेने की मांग को लेकर झारखंड भाजपा का राज्यव्यापी आंदोलन आज दूसरे दिन भी जारी है। आज बोकारो, पलामू और कोडरमा सहित 6 जिलों में डीसी कार्यालयों का घेराव किया जा रहा है। सरायकेला समाहरणालय के सामने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के नेतृत्व में प्रदर्शन किया जा रहा है। इस मौके पर श्री साहू ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी छात्रों के साथ हर कदम पर खड़ी है।
2: भविष्य मान वाले हमारे समय के इस राज्य की ताकत बनने वाले हैं। उनके रोजगार के साथ इस राज्य की सरकार जिस प्रकार से खेल करने का काम कर रही है, उनको तो आप नौकरी नहीं दे रहे हैं, उल्टे इनकी नौकरियों को बेचने का काम कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी इन सारे विषयों को लेकर के लगातार आंदोलन करते रही है।
0: गिरिडीह में एंटी करप्शन ब्यूरो की धनबाद टीम ने साइबर थाना के एसआई पुनित कुमार गौतम को 30,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। शिकायत के सत्यापन के बाद एसीबी ने यह कार्रवाई की। गिरफ्तारी के बाद टीम थाना प्रभारी को धनबाद ले गई। लोहरदगा जिले के कुड़ू थाना क्षेत्र के एक पेट्रोल पंप के पास भूसा लदे ट्रक से पुलिस ने लगभग 50 लाख रुपए की शराब जब्त की है। ट्रक से करीब 850 पेटी शराब बरामद हुई, जो चंडीगढ़ निर्मित है। पुलिस को शक है कि शराब रांची के अलावा बिहार भेजी जानी थी। पुलिस अधीक्षक सादिक अनवर रिजवी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। और अब मौसम का हाल। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज और कल रांची, बोकारो, धनबाद और हजारीबाग सहित राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश, गरज के साथ तेज हवाएं चलने और वज्रपात का पूर्वानुमान भी है। विभाग ने इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। साहिबगंज में गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर और बाढ़ की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं। एसडीओ अमर जॉन आइंद, अंचल अधिकारी बासुकीनाथ टूडू और एनडीआरएफ की टीम ने प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर जरूरतमंद परिवारों के बीच खाद्य सामग्री वितरित की। अधिकारियों ने प्रभावित लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याओं और जरूरतों की जानकारी ली तथा हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है।

0: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सबको विमलेश का नमस्कार और जोहार। आज के उमंग कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। सुनते हैं आज का एक सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतनमाला सुरलकर जी ने। लिखते हैं, जीवन में वही आगे बढ़ता है जो अपनी गलतियों से सीखता है। अक्सर ठोकरें रास्ते की रुकावट नहीं बल्कि मंजिल की तैयारी का प्रशिक्षण होती हैं। धन्यवाद आप दोनों का इस सुंदर विचार के लिए। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। गांव ठाणी कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी गुर्जर, अवाना, अवनी, प्रियांशी, रियांशी, ओजस, अनाया, गुरदीप और बेबी किरत ने लिखा है, आदरणीय विमलेश जी एवं अजीत जी सादर नमस्कार। 13 अगस्त 2026 को 1857 के गुमनाम वीर स्वतंत्रता सेनानियों की श्रृंखला के अंतर्गत वीर सावरकर जी के जीवन को जानने का अवसर मिला। आपकी ये प्रेरणादायी प्रस्तुति हमें स्वतंत्रता के मूल्य और हमारे वीरों के त्याग एवं बलिदान से परिचित कराती है। इतिहास के ऐसे प्रेरणादायी प्रसंगों को जन जन तक पहुंचाने के लिए आप दोनों का हार्दिक धन्यवाद और साधुवाद। आपको भी हमारा बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। ग्राम पजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया जी ने लिखा है, आदरणीय अजीत जी और

0: सभी सखियों, सहेलियों को, श्रोताओं को और मंदाकिनी जी आपको सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार।
1: सोनाली आपको भी, मंदाकिनी जोशी का बहुत बहुत प्यार और नमस्कार, और सभी सखियों और सखाओं को भी हमारा प्यार भरा नमस्कार।
0: और बताइए क्या हालचाल है
1: भाई? हालचाल तो अच्छी है। हाँ, थोड़ा सा मौसम का असर है,
0: सर्दी जुकाम।
1: हल्का मौसम का बदलाव आती ही ना, सबसे पहले शरीर पर उसका असर होता है, आपके मन पर उसका असर होता है, और थोड़ा सा आप प्रभावित हो ही जाते हैं।
0: पर ऐसा है ना कि जब हम इस मंच पर आते हैं तो उन सारी बातों को हम भूल जाते हैं।
1: हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा। जब आप बात करते हैं कि भाई पारिवारिक मिलन समारोह, तो ये हमारे एक तरह से पारिवारिक मिलन समारोह ही है,
0: यानी हर दिन होता है श्रोताओं और सखियों के संग में।
1: बिल्कुल, तो वो हमारे परिवार का ही हिस्सा हो गए हैं, तो हम सब एक तरह से रोज ही मिलते हैं इस कार्यक्रम के मंच पर, और हम ठीक हो जाते हैं। ये तो एक छोटी मोटी बातें हैं जहां हम अपनी बात साझा कर लेते हैं।
0: और ऐसा है ना कि ये तो हमारे पारिवारिक मिलन समारोह की बात हुई, पर आजकल ऐसा हो रहा है ना कि नए जमाने के जो युवा वर्ग है इतने व्यस्त हो गए हैं कि उनका इस तरह के मिलन समारोह में उपस्थिति कम हो जाती।
1: हाँ, ये बात आपने बिल्कुल सही कहा कि उनकी जिंदगी में जो है व्हाट्सएप या इंटरनेट या है ना ये ट्विटर, सोशल मीडिया ज्यादा उनके परिवार का हिस्सा बन गए हैं, और वो जो आभासी दुनिया है ना वो उनकी दोस्त ज्यादा बन गई,
0: वो उन्हें ज्यादा लुभाती है।
1: हाँ, तो पारिवारिक मिलन समारोह में वो कम से कम उपस्थित होना पसंद करते हैं। और एक बात मैं और कहना चाहूंगी सोनाली, कई जगह यहाँ पर माता पिता को भी मैं थोड़ा सा दोष देना चाहूंगी, जहाँ वो कहते हैं अरे हमारे बच्चे तो कहाँ आ पाएंगे, घर में बैठे हैं, बिजी हैं, पढ़ रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, तो वो क्यों नहीं लाते अपने बच्चों को किसी पारिवारिक मिलन समारोह में लेकर,
0: या उनके हिसाब से इस तरह का आयोजन हो, जैसे बच्चों को पसंद है कि कुछ गेम हो, कुछ अलग बातें हो, कुछ उनकी पसंद का खाना हो।
1: हाँ।
0: तो फिर वो भी आएंगे, उन्हें भी अच्छा लगेगा। और क्या होता है ना, कई बार जब बच्चे या युवा वर्ग खासकर मिलते हैं तो बड़े बुजुर्ग उन्हें सिर्फ सलाह देने लगते, भाई क्या है आजकल तो तुम्हारे बाल ऐसे हो रहे हैं, या फिर तो तुम्हारा ध्यान तो मोबाइल में ही होता है। उनसे कुछ अच्छे विचार व्यक्ति की है, अच्छी तरह से बात की, तो वे भी शामिल होंगे।
1: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने सोनाली, लेकिन मैं तो यहाँ ये भी कहना चाहूंगी कि बच्चों को आपको हरफन मौला बनाना चाहिए कि वो हर परिस्थिति में अपने आप को ढाल लें। उनकी शर्तों के अनुसार कार्यक्रम रखा जाएगा, उनकी शर्तों के अनुसार खाना रखा जाएगा, या उनकी शर्तों के अनुसार हमारी दादी नानियां या दादा वगैरह कुछ कहेंगे, ऐसा हर वक्त होता नहीं है। जिंदगी है तो सुझाव, उलहाना, शिकायतें, ये सब चलता रहता है, लेकिन एक युवा को, खासतौर से जो हमारे बच्चे युवा होते बच्चे हैं, उन्हें चाहिए कि इस माहौल में भी वो रच बस जाएं और अपनी उपस्थिति जो है छोड़ जाएं।
0: जी, यानी इस तरह के आयोजन अगर घर में बार बार होंगे तो युवा वर्ग आएंगे ही उसमें।
1: हाँ,
0: ना?
1: उन्हें आना पड़ेगा, और उनके अंदर एक जो है कहते हैं ना कि मिलने जुलने की भावना हमें पैदा करनी होगी कि अपने बड़े बुजुर्गों के साथ वो किस तरह से पेश आए, जो छोटे बच्चे हैं वहाँ उनके साथ किस तरह से पेश आए, और जो अपने समकक्ष हैं, अपने बराबर हैं, उनको किस तरह से वो ट्रीट करें, तब जाकर एक अच्छा मिलन समारोह बन सकता है। यूं कहें कि परिवार में सभी की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है।
0: जी, और ऐसा होता है जब हम मिलते जुलते रहते हैं और हमारे जीवन में कुछ विकट परिस्थितियां आई भी, तभी भी हमें ऐसा लगता है कि कोई है, एक विश्वास होता है कि कोई हमारे साथ है और हमें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो शब्द हमारा, विचार आपके, इसमें आज का शब्द है विश्वास।
1: विश्वास बहुत ही सुंदर शब्द है, बहुत ही विश्वास वाला शब्द है ये विश्वास।
0: जी, यानी हमारे मन को एक अलग ही सुकून मिलता है शब्द के साथ,
1: पॉजिटिव एनर्जी के साथ हम जब जिंदगी में कदम रखते हैं ना, तो ये विश्वास शब्द हमारे साथ हमेशा रहता है।
0: जी,
1: है ना?
0: और साड़ियों का संसार,
1: मेखला चादर,
0: आसाम ले चलेंगे सबको।
1: बिल्कुल, बहुत सुंदर साड़ियां हैं वहाँ की, मेखला चादर जब आप पहनते हैं तो उसके पहनने का तौर तरीका, उसके पहनने के जो अलग अलग तरीके हैं,
0: दो हिस्सों में होती है।
1: हाँ, और वो मतलब एक अलग ही लुक देती है आपको, और वहाँ का जो डिजाइन है, जो प्रिंट है, जो कपड़ा है, वो भी बिल्कुल अलग होता है। एक आप चादर के रूप में लपेटते हैं और दूसरा आप उसको मेखला जिसे कहते हैं
0: कमर में लपेटते हैं,
1: और उसका जो ब्लाउज है वो भी एक अलग ही तरीके की आपको इमेज देता है।
0: जी, और व्यंजन में साबुत अनाज के व्यंजन, यानी प्रोटीन से भरे साबुत अनाज जो होते हैं, ऐसा खासकर कहा जाता है कि शाकाहारी लोगों की जो थाली में प्रोटीन की मात्रा कम होती है, तो ये साबुत अनाज अगर हम अपने व्यंजन में शामिल करें तो प्रोटीन की कमी महसूस नहीं होगी हमें।
1: बिल्कुल, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जो हम खाना खाते हैं उसमें साबुत दालें खासतौर से अगर हम ले लेती हैं तो बहुत हद तक हम इस बात से दूर हो जाती हैं कि हम प्रोटीन इसमें नहीं खाते हैं।
0: और उसके अलग अलग तरह के जब व्यंजन बनाते हैं तब तो फिर वो हमारे स्वाद में और भी बढ़ोतरी होती है।
1: हाँ, खासतौर से हमारे बच्चे जो हर बात पर नाक घोंसी कोड़ते हैं और अगर उन्हें साबुत दाल दे दी जाए तो खाना पसंद नहीं करते हैं, तो साबुत दाल के चिल्ले बना के साबुत दाल के अन्य तरीके के व्यंजन बनाकर हम उन्हें कम से कम प्रोटीन युक्त भोजन जो है दे सकते हैं। और अब हम क्या दे सकते हैं?
0: एक सुंदर सा गीत दे सकते हैं
1: इसमें भी बहुत प्रोटीन होता है
0: सुनते हैं
1: ये गीत।

0: हाँ, तो बहुत ही एक क्लासिक गीत अभी आपने सुनवाया हमें, सुनाली।
1: और हम जो है भैया धरने की बात कर रहे हैं गाना ऐसा हो गया कि भैया ना धरो, बहुत सुंदर सा गाना हमने सुना सखियों के संग। और जैसे पारिवारिक मिलन समारोह की बात चल रही है मंदाकिनी जी, तो पारिवारिक समारोहों में त्योहार, लोकगीत, पारंपरिक भोजन, पूजा पद्धति, पारिवारिक रीति रिवाज और सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल किए जाते हैं। इससे हमारी परंपराएं केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं रहती है, बल्कि अगली पीढ़ी तक जीवंत रूप से पहुंचती भी है।
0: बिल्कुल सही कहा। अभी थोड़ी देर पहले जब हम बात कर रहे थे सोनाली कि पारिवारिक मिलन कितना जरूरी है हमारी जिंदगी में, और ये जो समारोह है ये एहसास कराता है कि व्यक्ति अकेला नहीं है, परिवार उसके साथ है, और परिवार उसके सुख में खुशी मनाने के लिए और कठिन समय में उसका साथ देने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, और यही भावना परिवार को भावनात्मक रूप से भी मजबूत बनाती है।
1: और ऐसा होता है ना मंदाकिनी जी, रिश्ते केवल खून से नहीं, समय देने और साथ निभाने से मजबूत होते हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में परिवार के सदस्य अपनी अपनी जिम्मेदारियों में इतने व्यस्त हो गए हैं कि साथ बैठकर बातचीत करने का समय ही कम मिलता है। ऐसे में पारिवारिक मिलन समारोह रिश्तों में नई ऊर्जा और अपनापन भरने का सुंदर अवसर बन जाता है।
0: बिल्कुल सही कहा। परिवार के साथ हंसना, बातें करना, साथ साथ भोजन करना, ये सभी चीजें हमें बहुत खुश कर देती हैं, और रोजमर्रा के तनाव और व्यस्तताओं से अगर कुछ समय हम निकाल लेते हैं अपने परिवार के साथ तो एक राहत भी मिलती है, और एक दूसरे की उपस्थिति से क्या होता है, व्यक्ति को या हम सभी को भावनात्मक सुरक्षा और संतोष का भी एहसास होता है।
1: कभी कभी ऐसा होता है ना कि नौकरी के कारण किसी को जो परिवार के सदस्य है उन्हें दूसरे शहर जाना पड़ता है, कोई पढ़ाई के लिए बाहर जाता है, तो कोई अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो जाते हैं। ऐसे में पारिवारिक मिलन समारोह एक ऐसे अवसर होते हैं जब सभी लोग अपनी व्यस्तताओं से समय निकालकर परिवार के साथ सुखद समय बिताते हैं।
0: बिल्कुल आपने सही कहा, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह के जब समारोह होते हैं तो हम सब बहुत ही खुशी के साथ उसमें शरीक होते हैं, और एक सफल पारिवारिक मिलन समारोह भी हमें ये संदेश देता है कि परिवार की शक्ति उसकी संख्या में नहीं बल्कि उसके प्रति प्रेम, एक दूसरे के प्रति सम्मान और सहयोग से होती है। तो जब परिवार एकजुट रहता है सोनाली, तो हम कठिन परिस्थितियों में भी थोड़ा सा अपने आप को सहज महसूस करते हैं।
1: हमारे साथियों ने भी बहुत सारे कमेंट्स लिखे हैं इस विषय पर। हमारे एक साथी कहते हैं, हमारे भारत में यहाँ बसे पारिवारिक समारोह यानी कि बच्चों का जन्म होना, मुंडन, शादी ब्याह, मृत्यु से लेकर ऐसे बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम होते हैं, कुछ परिवार और करीबी मित्र इकट्ठा होते हैं, इस तरह पारिवारिक मेलजोल बना रहता है और सामूहिक सौहार्द भी बना रहता है।

0: बिल्कुल सही कहा आपने। और कई बार हमने देखा होगा कई परिवारों में प्रेम ज्यादा नहीं महसूस करते, हमें लगता है कुछ परिवार ऐसे होते हैं जो बहुत कम मिलते जुलते हैं, आपस में कम समारोह में इकट्ठा होते हैं, तो हमें लगता है कि वहां शायद प्रेम कम हो गया है और रिश्ते कहीं कमजोर हो गए हैं। तो वो इसलिए नहीं होते कि उनमें संवाद नहीं हुआ है या एक दूसरे का साथ नहीं देते, बल्कि कहीं ना कहीं भावनात्मक दूरियां बढ़ गई हैं, विश्वास कम हो गया है, एक दूसरे को कहने सुनने की जो क्षमता है ना
1: वो कम
0: वो
1: हो
0: कम हो गई है। एक
1: जी,
0: दूसरे को हम शिकायतें तो
1: समझने
0: कर
1: की
0: देते
1: क्षमता।
0: हाँ,
1: हाँ
0: समझ नहीं पाते एक
1: जी।
0: दूसरे को और दूरियां बना लेते हैं।
1: और क्या कैसे होता है ना कि मंदाकिनी जी, कभी कभी ना हम कहते हैं ना जजमेंटल हो जाते हैं कि उनके प्रति हम एक धारणा बना लेते हैं
0: हाँ
1: कि वो तो, अब जैसे उसके घर की कुछ बातें होंगी कि वो शायद दूसरों से शेयर नहीं करना चाहते, पर हमें ऐसे लगता है कि देखिए उन्हें तो घमंड आ गया है, वो तो हमसे मिलना नहीं चाहते। पर ऐसा नहीं होता है, किसी किसी की परिस्थिति के कारण कुछ व्यक्ति इस तरह से व्यवहार करते हैं। वैसे हमारे एक साथी ने लिखा है कि परिवार के साथ पॉजिटिव रिलेशन होने से आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहती है और आप अपनी एंग्जाइटी और चिंताओं को दूर कर पाते हैं, और मुसीबत में होने पर आपको सही मार्गदर्शन और सलाह मिल पाती है। जो लोग आपसे प्यार करते हैं उनसे घिरे होने पर आपकी मानसिक स्थिति में सुधार आ सकता है और चुनौतियों से उबरने के लिए आपको एनर्जी मिल सकती है।
0: बिल्कुल
1: बहुत
0: सही
1: सुंदर
0: कहा, बहुत सुंदर लिखा है। और वहीं
1: जी।
0: एक श्रोता ये भी लिखते हैं कि पारिवारिक जो बंधन है उससे आप मजबूत होते हैं, बीते सालों की खूबसूरत यादों का सृजन होता है, घर के बुजुर्गों से बच्चों और युवाओं को अपने पूर्वजों से जुड़े पारिवारिक इतिहास के बारे में, उनकी जड़ों के बारे में जानकारी मिलती है। और मैंने भी हमारी पिछले 7 पीढ़ियों तक का वटवृक्ष बनाकर हमारे कंप्यूटर ट्री ऐप पर डाला हुआ है, जिसमें मेरे पोते से लेकर दादा परदादा तक की सारी जानकारियां हमने साझा कर रखी हैं।
1: वही एक साथी कहते हैं कि पारिवारिक मिलन समारोह केवल एक आयोजन नहीं बल्कि बिखरी हुई जड़ों को फिर से सींचने का अवसर है। जहां वर्षों से दूर रहे चेहरे एक ही आंगन में मिलते हैं तो समय जैसे थम सा जाता है। पिता की झुकी हुई पीठ में बचपन का सहारा दिखता है, माँ की आंखों में वही पुरानी ममता लौट आती है और भाई बहनों की हंसी फिर गूंज उठती है। ये मिलन हमें याद दिलाता है कि नौकरी, शहर और व्यस्तताओं ने हमें कितना भी दूर कर दिया हो, हमारा अस्तित्व आज भी उसी एक थाली, उसी एक कहानी, उसी एक आशीर्वाद से बंधा है, जो अगली पीढ़ी को भी सिखाता है कि परिवार वो अंतिम घर है जहां लौट कर आदमी फिर से पूरा हो जाता है।
0: बिल्कुल, बहुत
1: कितने सुंदर,
0: सुंदर
1: बहुत
0: शब्दों में
1: सुंदर
0: कहा,
1: जी
0: काश हम सभी ऐसा समझें,
1: जी
0: सोचें और इस तरह के जो जीवनचर्या बिताएं। तो हमें लगता है कि जो आजकल एकल परिवारों की जो प्रथा चल निकली है
1: जी
0: उसमें बहुत कमी फिर से आने लगेगी,
1: या
0: है ना।
1: उसमें उसमें जो है ना, जो सुधार हो जाएगा कि हम दूर दूर जाने लग गए हैं एक दूसरे से।
0: हाँ, हम अकेलेपन के आदी हो गए हैं, हम अकेलेपन में रहना चाहते हैं, मेरा परिवार मेरे बच्चे, जिस
1: जी
0: तरह की भावना हमने रख ली है, हम ये भूल जाते हैं कि जो हमारा परिवार है, हमारे जो सास ससुर हैं, माता पिता हैं, वो भी किसी न किसी से जुड़े हुए हैं
1: जी
0: और उन्हें भी उस साथ की जरूरत है।
1: और बच्चे भी ना शेयरिंग और केयरिंग सीखते हैं, क्योंकि घर में आजकल एक या दो ही बच्चे होते हैं, उनका सब चीज पर्सनल होता है,
0: बिल्कुल
1: उनका खिलौना अलग, उनका बिस्तर अलग, उनका कमरा अलग, उनकी किताबें अलग है। तो जब घर में परिवार के दूसरे लोग आते हैं गेट टुगेदर के बहाने, उस वक्त वो उनकी थाली में खाएंगे, उनके खिलौने खेलेंगे,
0: अपनी
1: तो उन्हें
0: चीजों को
1: भी।
0: देना सीखेंगे, जब आप
1: हाँ
0: उन्हें बताएंगे कि बेटा
1: जी
0: आप अपनी चीजें इन्हें भी दे सकते हैं, तो उनके अंदर ये भावना पनपती है कि
1: जी
0: हम मिलजुल कर रहे हैं, है ना।
1: जी
0: और एक श्रोता लिखते हैं कि रोजमर्रा की व्यस्त जिंदगी के कारण अक्सर लोग अपने ही परिवार के सदस्यों से दूर हो गए हैं। पारिवारिक मिलन समारोह सभी को एक जगह इकट्ठा होने का अवसर देता है, एक साथ बैठकर बातचीत करना, पुराने दिनों को याद करना, सुख दुख साझा करना, प्रेम विश्वास सौहार्द, ये सभी बड़ा अच्छा लगता है। आजकल के बच्चे अक्सर दूर के रिश्तेदारों जैसे चाचा चाची, बुआ मौसी, चचेरे भाई बहनों को ठीक से नहीं जानते। ऐसे समारोह के माध्यम से नई पीढ़ी को अपने परिवार के इतिहास, परंपराओं और मूल्यों को जानने का मौका मिलता है, और ये बच्चों में पारिवारिक संस्कारों को विकसित करने का एक बेहतरीन मंच भी है।
1: एक साथी कहते हैं कि पारिवारिक मिलन समारोह मैंने शहरों में देखा है, जहां पर हर त्योहार पर लोग एक पार्क में या किसी के घर के लॉन में मिलते हैं और अपने सुख दुख बांटते हैं। हमारे गांव में दिवाली के अगले दिन अक्सर सारे गांव के लोग इकट्ठा होते हैं, क्योंकि इस त्योहार पर जो बाहर नौकरी करते हैं वे सब भी परिवार सहित छुट्टी मनाने आते हैं, तो उनसे लोग ज्यादा घुलते मिलते हैं और बच्चे इनाम भी मांगते हैं। हाँ, दूसरा मौका होली का होता है, जब होली के दिन सारा गांव एक रंग में रंगा होता है और दोपहर के बाद नए कपड़े पहनकर अब एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते हैं और गुजिया खाते हैं, खिलाते हैं, फाग पर तरह तरह के गीत गाते हैं, पूरा गांव मस्ती में झूमता है। अब तो लोग ऐसे कुछ उन्होंने अलग बातें भी लिखी
0: लिखी हैं
1: जी।
0: एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी फैमिली में चाचा चाची उनके लड़के लड़की कुल मिला के 45 लोग हैं। हम सब हर साल समर वेकेशन में एक दिन की पिकनिक टूर पर जाते हैं, धार्मिक स्थल, दरिया का किनारा, फार्म हाउस, वहाँ सब एक दूसरे से मिलते हैं, बातें करते हैं, गेम्स खेलते हैं, टैलेंट दिखाते हैं, साथ में खाना खाते हैं, ग्रुप फोटोग्राफी करते हैं और उस दिन कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं होता, सब एक दूसरे की मजाक भी उड़ाते हैं, मस्ती भी करते हैं और बहुत मजा आता है। ऐसा टूर होते रहना चाहिए।
1: एक साथी कहते परिवार हमारी शक्ति है और आंतरिक ऊर्जा का केंद्र है, इसके बल पर ही हम सामाजिक जीवन का सर्वोच्च प्राप्त कर सकते हैं। ये संस्कृति और जीवन मूल्यों की प्राथमिक पाठशाला भी है। परिवार से ही हमारे भीतर सद्गुणों का विकास होता है। किसी भी व्यक्ति के विकास में उसके परिवार का बहुत बड़ा योगदान होता है।
0: बिल्कुल, बहुत बड़ा योगदान होता है। और एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे भारत में तो यहाँ पारिवारिक समारोह बच्चे पैदा होने में, मुंडन, शादी, विवाह, मृत्यु तक बहुत से होते हैं। कुछ परिवार और करीबी मित्र इकट्ठा होते हैं, इस तरह पारिवारिक मेलजोल बनता है और सामूहिक सौहार्द भी बना रहता है।
1: और अब गीत सुन लिया जाए।
0: बिल्कुल, सुनते हैं ये गीत।

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर, बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया।

0: जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी बंदिनी, वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
1: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में सिर्फ विविध भारती पर। हाँ तो सोनाली, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही असम की सांस्कृतिक पहचान मेखला चादर के बारे में।
2: चलते हैं असम की ओर।
1: हाँ बिल्कुल, चलिए।
2: मेखला चादर, असम के इसे मेखला चादर भी कहते हैं। असम की सबसे प्रसिद्ध पारंपरिक पोशाकों में से एक है। इसकी खासियत केवल इसकी सुंदरता नहीं बल्कि इसके पीछे छिपी सदियों पुरानी बुनाई कला और असम के जीवन से जुड़ी परंपराएं भी है।
1: बिल्कुल सही कहा। और मेखला चादर पर जब हम बात कर रहे हैं तो ये मुख्यतः दो हिस्सों से बनकर एक बड़ी सुंदर पोशाक बनती है, मेखला और चादर। तो मेखला इसका निचला हिस्सा होती है जिसे कमर के चारों ओर लपेटा जाता है और इसे विशेष ढंग से मोड़कर सामने की ओर इसकी प्लीट्स बनाई जाती हैं जो कि बहुत ही सुंदर लगती है।
2: और चादर जिसे कई बार सादोर या चादोर भी कहा जाता है, इसका ऊपरी हिस्सा है, इसे शरीर के ऊपरी भाग पर लपेटकर कंधे पर यानी कंधे पर रखा जाता है।
1: तो इस तरह दोनों हिस्से मिलकर क्या बनते हैं,
2: मेखला चादर। और मेखला चादर की सबसे बड़ी विशेषता इसकी हस्त बुनाई है। असम में बुनाई केवल रोजगार का साधन नहीं बल्कि पारिवारिक और सांस्कृतिक परंपरा भी रही है।
1: हाँ, और असम की बुनाई में प्रकृति की हमें झलक भी दिखाई देती है। इसमें फूल, पत्तियां, पक्षी, ज्यामिति आकृतियां और पारंपरिक प्रतीक इसके डिजाइनों में नजर आते हैं। इसीलिए हर सुंदर मेखला चादर अपने भीतर बुनकर की कल्पना और मेहनत की कहानी भी कहती है।
2: और मेखला चादर में असम के विभिन्न प्रकार के रेशम का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे मूंगा सिल्क या इसे मूंगा सिल्क भी कहते हैं। असम का मूंगा रेशम अपने प्राकृतिक सुनहरी चमक के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। ये मजबूत और टिकाऊ भी माना जाता है और मूगा सिल्क की मेखला चादर को बहुत प्रतिष्ठित भी माना जाता है।
1: हाँ, इसके अलावा पाट रेशम मुलायम और चमकदार होता है और उससे बनी मेखला चादर विशेष अवसरों पर खूब पसंद भी की जाती है।
2: साथ ही एरी सिल्क, एरी रेशम को असम की रेशम परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। इसकी बनावट अपेक्षाकृत गर्म और मुलायम होती है।
1: हाँ, और मेखला चादर में रंगों का जो संयोजन है वो बहुत ही सुंदर होता है सोनाली। लाल, क्रीम, सुनहरा, हरा, सफेद और गहरे रंगों के साथ पारंपरिक बॉर्डर बनाए जाते हैं। बहुत ही सुंदर बॉर्डर बनाए जाते हैं।
2: और इसके बॉर्डर और पल्लू जैसे हिस्सों पर पारंपरिक असमिया आकृतियाँ इसकी सुंदरता बढ़ाती है। फूल, पत्तियां, मोर, पक्षी और ज्यामितीय पैटर्न इसकी लोकप्रिय डिजाइन है।
1: हाँ बिल्कुल। और असम का जो प्रसिद्ध बिहू त्योहार है ना, मेखला चादर से गहराई से जुड़ा हुआ भी है ये त्योहार। विशेष रूप से बोहाग बिहू के अवसर पर महिलाएं जो हैं पारंपरिक मेखला चादर पहनती हैं और इस उत्सव में शामिल भी होती हैं। बिहू के गीत हैं, नृत्य हैं और पारंपरिक परिधान जब मिलकर असम की जो संस्कृति है उसकी सुंदर तस्वीर हमारे सामने एक पेश करते हैं।
2: और मेखला चादर का इस्तेमाल विवाह समारोह, धार्मिक कार्यक्रम और अन्य पारंपरिक अवसरों पर भी किया जाता है। दुल्हन की मेखला चादर पर अक्सर जटिल बुनाई, सुंदर बॉर्डर और पारंपरिक रूपांकन दिखाई देते हैं।
1: हाँ, और मेखला चादर इसके आधुनिक रूप भी अब आ गए हैं, थोड़ा सा मॉडर्न रूप भी आने लगे हैं जिनमें पारंपरिक बुनाई के साथ नए रंग आ गए हैं, नए डिजाइन आ गए हैं। और ये केवल पारंपरिक अवसरों तक नहीं बल्कि आम प्रोग्राम्स में या डेली रूटीन में भी वहाँ की महिलाएं जो हैं
2: पहन सकती हैं।
1: जो नौकरी में जाती हैं वो महिलाएं भी मेखला चादर पहनती हैं और वो कॉटन के बने जो मेखला चादर है वो पहनावा में है।
2: मेखला चादर को केवल एक वस्त्र कहना इसके महत्व को कम कर देना होगा। ये असम की पहचान, लोक कला, बुनकरों की मेहनत और महिलाओं की रचनात्मकता का भी प्रतीक है। इसके हर धागे में असम की प्रकृति की छाप दिखाई देती है। कहीं ब्रह्मपुत्र की विशालता, कहीं हरे भरे जंगलों की छटा और कहीं स्थानीय लोक कला की इसमें झलक दिखाई देती है।
1: बिल्कुल। और मेखला चादर असम की एक ऐसी विरासत है जिसमें पहनावे के साथ इतिहास, एक कला है, संस्कृति है। और ये केवल शरीर को सजाने के लिए कोई वस्त्र नहीं है सोनाली, बल्कि असम की पहचान को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे ले जाने वाली एक जीवंत परंपरा का भी नाम है मेखला चादर। और अब ले लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
2: जी,

0: तो बहुत ही सुंदर गीत लगा, ऐसा लगा कि हम मेखला चादर पहनकर ये नृत्य कर रहे हैं, है ना।
1: जी, और एक हमारे सखी ने लिखा है कि असम घूमने गई थी, तब वहां की महिलाओं को मेखला पहनते हुए देखा तो मुझे अच्छा लगा। दुकान में हर तरह के मेखला उपलब्ध है, सस्ती भी है और महंगी भी है, कॉटन में, चंदेरी सिल्क में, और ये उनका पारंपरिक ड्रेस है और बहुत अच्छा लगता है। मैंने अपने लिए तो नहीं, पर किसी ने मुझसे मंगवाया था तो मैं उनके लिए लेकर आई थी। हल्का क्रीम कलर का सिल्क पर रेड बूटी और बॉर्डर वाली बेहद खूबसूरत मेखला थी।
0: क्या बात है, तो आपने खुद के लिए क्यों नहीं खरीदा भाई।
1: हाँ ना, आज बोलती क्या, मेरे पास भी मेखला है।
0: हाँ, ये कहती ना कि मेखला
1: हाँ
0: है,
1: हाँ
0: यहाँ मैं कहूंगी मेरे पास मेखला है।
1: पर है आपके पास मेखला? अरे वाह, अभी पहनकर आइएगा।
0: बिल्कुल, मैं पहन के आई थी, आपने मुझे नहीं देखा शायद, आप उस दिन नहीं थी ऑफिस में। और अभी आपको एक बात बताऊं, जब मैं अपनी एक यात्रा में कहीं गई थी बाहर, तो मेरी एक दोस्त अचानक स्टेशन पर आई जहां पर ट्रेन रुकी हुई थी, और उन्होंने आते ही मुझे उठाया और बोले, अरे सो रही है, उठ, तेरे लिए मेखला लेकर आई हूँ।
1: ओहो।
0: हाँ सच में, तो ऐसा भी होता है कई बार कि जब आप नहीं सोच रहे होते, अनएक्सपेक्टेड उपहार आपको मिल जाते हैं।
1: तो अगले इसमें यही सब्जेक्ट ले लेंगे।
0: कि आपको न चाहते हुए भी बहुत कुछ मिल जाता है
1: सरप्राइज
0: जीवन में,
1: गिफ्ट।
0: सरप्राइज गिफ्ट मिल

0: आते हैं
1: जी
0: तो चलिए हमारे और हमने एक नया आज शब्द लिखा है विश्वास में, उस पर हम बात करने वाले
1: जी
0: हैं जो कि अपने आप में बहुत ही खूबसूरत शब्द है, भावार्थ लिए, और
1: जी
0: हमारे जीवन में इसका होना बहुत जरूरी है।
1: और ये श्रोताओं का सेगमेंट है, तो श्रोताओं ने भर भर के कमेंट्स लिखे हैं विश्वास
0: हाँ, तो उन्हें विश्वास है ना हम पर कि हम
1: पर
0: उनके सेगमेंट को पढ़ना पसंद करेंगे,
1: जी
0: और ये कार्यक्रम उन्हीं के लिए है,
1: जी
0: तो उन्होंने हमारे विश्वास को बनाए रखा
1: जी
0: है।
1: एक साथी कहते हैं, विश्वास दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, विशेष आस या विश्व आस। विश्व है तो आस है, अगर विश्व में हम आस रखते हैं तो ये बात खास है। संसार में हर कोई चाहता है हर इंसान उस पर विश्वास करे, लेकिन वो दूसरों पर जल्द विश्वास नहीं कर पाता। विश्वास किसी व्यक्ति, वस्तु, शक्ति या विचार के सत्य, क्षमता और चरित्र पर बिना किसी संदेह पूर्ण भरोसा करने की मानसिक स्थिति है। उदाहरण स्वरूप कहूँ तो मंदाकिनी जी और सोनाली बिटिया पर मुझे पूरा भरोसा है, विश्वास है कि हमारे कमेंट जरूर शामिल करेंगी। ये मानवीय संबंधों की नींव है जो आपसी रिश्तों, समाज और आध्यात्मिकता को आपस में जोड़कर रखती है। दूसरों की ओर से विश्वास रखने की आस रखने के साथ खुद पर विश्वास यानी आत्मविश्वास होना भी
0: बहुत
1: जरूरी है।
0: जरूरी है,
1: यस,
0: बिल्कुल
1: आई कैन डू इट।
0: बिल्कुल। आत्मविश्वास और विश्वास, ये दो
1: जी
0: शब्द बहुत जरूरी हैं जीवन में,
1: जी
0: खुद पर विश्वास होना और दूसरों पर भी विश्वास करना।
1: जी
0: हाँ, अंधविश्वास नहीं करना चाहिए,
1: जी
0: है ना, उससे हमें अपने आप को बचाए रखना चाहिए, लेकिन विश्वास जीवन में बहुत जरूरी है। एक श्रोता लिखते हैं कि शब्द हमारे विचार आपके में, कितना सुंदर आपने शब्द चुना है विश्वास। विविध भारती के शब्द जब श्रोताओं तक पहुंचते हैं तो उनके विचारों से मिलकर और भी खूबसूरत हो जाते हैं। कभी कोई गीत याद बन जाता है, कभी कोई बात दिल को छू जाती है, बस यही तो विविध भारती की खासियत है। आवाज आपकी और लिखा हुआ हमारा, जब दोनों मिलकर कुछ पढ़ते हैं तो कुछ मस्त सा रचते भी हैं। और एक श्रोता लिखते हैं कि विश्वासम फलदायकम, एक प्रसिद्ध सूक्ति है जिसका अर्थ है कि विश्वास हमेशा फलदायी यानी सार्थक और परिणाम देने वाला होता है। खुद पर और दूसरों पर भरोसा रखने से मानसिक शांति और जीवन के हर पहलू में सफलता मिलती है।
1: एक साथी कहते, विश्वास एक नींव की तरह होता है जिस पर हमारे सामाजिक और व्यावसायिक रिश्तों की इमारत खड़ी होती है। इंसान के सभी कार्यकलाप, लेन देन, आपसी व्यवहार विश्वास के सहारे चलते हैं। घर में माता पिता को अपनी संतान पर विश्वास रहता है कि वे कोई गलत काम नहीं करेंगे। दुकानदार भी पैसे बाद में आ जाएंगे के विश्वास पर ग्राहक को सामान उधार दे देता है। बिल पर जो भूल चूक लेनी देनी वाक्य लिखा होता है, व्यापारी और ग्राहक के आपसी विश्वास की लिखित गारंटी होती है। बैंक में, नौकरी में तो हर व्यवहार विश्वास के आधार पर ही होता है। सच भी यह है कि विश्वासघात भी वही होता है जहाँ विश्वास होता है। विश्वास के मामले में सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाला सिद्धांत लागू होता है। किसी पर इतना भी विश्वास न करके बाद में पछताना पड़े, और नहीं इतना अविश्वास दिखाए कि आप अपनी ही विश्वसनीयता खो बैठे।
0: बहुत
1: कितना
0: सुंदर,
1: सुंदर
0: बहुत
1: उदाहरण देखिए लिखा है,
0: बहुत सुंदर कि आप धोखा भी न खाएं और अविश्वास भी न करें। मतलब कितनी महीन रेखा है ना हर रिश्ते के बीच
1: में
0: जो हमें मेंटेन रखनी होती है।
1: जी,
0: बैलेंस बनाकर जीवन में चलना पड़ता है,
1: और जो बैलेंस बना के रखता है उसका जीवन
0: सफल होता है।
1: जी,
0: तो एक श्रोता लिखते हैं कि जीवन के हर क्षेत्र में विश्वास की आवश्यकता होती है, चाहे वो माता पिता, बच्चों का हो, मित्रों का हो, व्यापार का हो। सफलता की पहली सीढ़ी विश्वास ही है। आत्मविश्वास की जो कमी होती है, वो आत्मविश्वास व्यक्ति को कठिन से कठिन परिस्थितियों से लड़कर आगे बढ़ने की शक्ति देता है, जबकि दूसरों पर सही विश्वास सामाजिक जीवन को सुखमय बना देता है।
1: एक साथी कहते हैं, विश्वास एक ऐसा अदृश्य धागा है जो रिश्तों को मजबूती से बांधे रखता है। इसे न देखा जा सकता है न छुआ जा सकता है, लेकिन इसकी मौजूदगी हर रिश्ते में महसूस होती है। जहां विश्वास होता है वह शब्द कम और भावनाएं अधिक बोलती है। विश्वास पाने में समय लगता है, लेकिन इसे खोने में एक पल भी काफी होता है। इसलिए कि किसी के विश्वास को जितना जितना महत्वपूर्ण होता है उसे निभाना उससे भी अधिक जरूरी है।
0: बिल्कुल सही कहा,
1: कहते हैं
0: बहुत सुंदर हमारे श्रोताओं ने लिखा
1: पूरे
0: है,
1: पूरे जीवन का सारी लिख दिया।
0: सार लिख दिया है कि वाकई हम विश्वास जमाते हैं ना सोनाली, पूरी जिंदगी निकल जाती है किसी पर विश्वास बनाते। एक सेकंड लगता है उस विश्वास को
1: तोड़ने में,
0: है ना, टूटने में, तोड़ने में आप एक सेकंड लगाते हैं। तो ये कितना रिश्तों में सोचिए कदम कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता है।
1: एक साथ ही कहते हैं, एक विश्वास ही है जो एक बार टूट जाए तो जीवन भर नहीं टूटता, इसलिए सावधान रहे, इसे कभी टूटने न दे।
0: सबसे बड़ी बात यह है। एक श्रोता लिखते हैं कि विश्वास वो अद्भुत और अलौकिक अदृश्य धागे की डोर है जो हमें बांधती है, जिसके हम विश्वास पात्र होते हैं। और इस धागे में जब स्नेह, सद्भाव और प्रेम का मांझा चढ़ता है, फिर तो दो हृदय नहीं अभी तो उनसे अनुस्यूत समस्त विश्व की दुख दारिद्र्य से रहित हो जाए, और इसमें कोई आश्चर्य भी नहीं होना चाहिए।
1: और अब गीत सुन

0: हाँ तो सोनाली, हमारे श्रोताओं ने विश्वास जैसे शब्द पर बहुत अपने सुंदर विचार हम तक पहुंचाए हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि विश्वास एक ऐसा चमत्कारी शब्द है, ये अगर किसी इंसान के पास हो तो वो उस इंसान को खाक से उठाकर फलक पर बिठा देता है। वो इंसान असंभव को संभव कर सकता है। पहला अटूट विश्वास परम पिता परमेश्वर पर, माता रानी पर, दूसरा अटूट विश्वास खुद पर। और मैंने इसी अटूट विश्वास से जीवन में कई लक्ष्य हासिल किए हैं। मैं बताना चाहूंगा कि सखी सहेली की सखी यानी मेरी धर्मपत्नी का विश्वास कभी कभार डगमगा जाता है, तो मैं उनको हौसला बढ़ाता हूँ ये बताने पर। आज जरूर घर पर धर्मपत्नी की डांट सुननी भी पड़ सकती है।
1: जी, एक साथी कहते हैं कि जीवन के हर क्षेत्र में विश्वास की आवश्यकता होती है, चाहे माता पिता और बच्चों का रिश्ता हो, मित्रों संबंध हो या व्यापार हो। सफलता की पहली सीढ़ी विश्वास ही है। आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस व्यक्ति को कठिन से कठिन परिस्थितियों से लड़कर आगे बढ़ने की शक्ति देता है, जबकि दूसरों पर सही विश्वास और सामाजिक जीवन को सुखमय बनाता है।
0: बिल्कुल सही कहा। हमारे बहुत सारे श्रोता विश्वास जैसे शब्द पर अपने विचार लगातार हम पर भेज रहे हैं। और एक श्रोता लिखते हैं वही जो कि विश्वास एक नींव की तरह है जिसे हमारे सामाजिक और व्यवसायिक रिश्तों की इमारत भी खड़ी होती है, और इंसान के सभी कार्यकलाप लेन देन आपसी व्यवहार विश्वास के सारे ही चलते हैं।
1: एक साथी कहते हैं विश्वासम फलदायकम, एक प्रसिद्ध सूक्ति है जिसका अर्थ है कि विश्वास हमेशा फलदायी यानी सार्थक या परिणाम देने वाला होता है। खुद पर और दूसरों पर भरोसा रखने से मानसिक शांति और जीवन के हर पहलू में सफलता मिलती है।
0: बिल्कुल मिलती है। और यही विश्वास है जो सखी सहेली के मंच पर हम कायम रखते हैं, हमारे सखी और सखाओं के साथ विश्वास बनाए रखते हैं और वो भी अपने विश्वास पर पूरा खरा उतरते हैं। तो एक गीत सुन लिया जाए।
1: सुनते हैं
0: और फिर क्या करेंगे हम,
1: व्यंजन की ओर बढ़ेंगे।

0: मंदाकिनी जी, हमारे एक सखा मित्र, उन्होंने लिखा है कि मैं करीब 25 सालों से विविध भारती सुन रहा हूँ और विविध भारती से जुड़ा हूँ। आपने जो हमारे आसाम के मेखला चादर के बारे में विस्तार से जानकारी दी सारे सखियों को, मुझे बहुत अच्छा
1: अरे वाह, अभी
0: लगा।
1: उससे पहले भी सोनाली आप बता रही थी कि काफी लोग आसाम से सुन रहे हैं आज कार्यक्रम, और मेखला चादर पर हमने बातचीत की है तो वो काफी खुश भी हैं।
0: जी
1: अच्छा भी लगता है ना जब हम अपने प्रांत की कोई चीज, वेशभूषा या
0: या
1: खान पान,
0: व्यंजन।
1: हाँ, पर बातचीत सुनते हैं तो हमें बहुत खुशी भी होती है ना।
0: और एक जैसे साबुत अनाज की बात चली है तो हमारे एक सखी ने लिखा है कि साबुत अनाज से सबसे जो पौष्टिक है ना, उसमें थोड़े से हरे मूंग या काले चने भिगा दे और उसका पानी निकाल दे, और अंकुरित हो गए फिर उसमें प्याज, नमक, ककड़ी, टमाटर, नींबू मिलाकर मस्त सा सलाद बनाकर खाए, या फिर ऐसे ही खाए, हमने तो मस्ती में लिख दिया, पता ही नहीं आप पढ़ेंगी या नहीं
1: अरे
0: पढ़ेंगी।
1: देखिए, आपने मस्ती में लिखा और हमने इसको गंभीरता से ले भी लिया है ना, कि भाई ये एक

0: महत्वपूर्ण बात है जो हम रोजमर्रा की रूटीन के खान पान में शामिल कर सकते हैं। बहुत ज्यादा अगर हम नहीं बना सकते साबुत अनाज का कोई व्यंजन, तो हम इसे तो कम से कम शामिल कर ही सकते हैं।
1: और इसे बनाने में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं है, बस उसे रात को भिगोना है हमें
0: और सुबह ककड़ी और प्याज टमाटर धनिया डाल के उसको बना के हल्का बॉइल करके आप खा सकते हैं, नमक और काली मिर्च डालकर भी।
1: और अगर वो बच गए तो उसको पीस लिया, उसके चीले बन गए
0: क्या बात है। तो एक श्रोता लिखते हैं कि होल ग्रेन दलिया को यानी साबुत गेहूं का जो दलिया है, दूध या सब्जियों के साथ पकाकर एक पौष्टिक नाश्ता तैयार किया जाता है। ये पाचन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। मसालों ओट्स, ओटमील, साबुत जई को पानी या छाछ में सब्जियों के साथ उबालकर तीखा या नमकीन दलिया भी बनाया जा सकता है। और ओट्स को पीसकर उसमें बेसन, हरी मिर्च और सब्जियां मिलाकर तवे पर चीला बनाएं तो एक झटपट हेल्दी ब्रेकफास्ट तैयार हो सकता है।
1: साथ ही रागी या मड़ुआ भी कहते हैं, इसके डोसे, लड्डू, रागी कैल्शियम का बेहतरीन स्रोत है। इसके आटे से बने कुरकुरे डोसे, कम घी गुड़ वाले लड्डू भी बड़े चाव से खाए जाते हैं। वैसे ही जवार की रोटी, सर्दियों के मौसम में साबुत अनाज का खिचड़ा यानी जो जवारी है या फिर बाजरा है, इसका खिचड़ा कहते हैं, इसे खिचड़ी की तरह बनाया जाता है, उसे खिचड़ा कहते हैं। और गरम गरम इसकी रोटी भी बनाई जाती है बाजरा और जवार की, और इसे गुड़ और मक्खन के साथ परोसा जाता है।
0: बिल्कुल, जब खिचड़ी की बात चली है ना, तो हमारे राजस्थान में देखा जाता है कि एक अंगीठी पे बड़े पतीले पर इसको पानी में डालकर साबुत अनाज को पकाने छोड़ दिया जाता है। वो धीरे धीरे पकता रहता है घंटों। फिर उसमें नमक और देसी घी डालकर वो लोग खाते हैं, तो देसी भोजन के रूप में इसको इस्तेमाल करते हैं और काफी ताकतवर होता है।
1: बहुत ताकत होती है, बचपन में यही सब चीजें खा खा के हम लोग जो बड़े बुजुर्ग है ना, ताकतवान बने।
0: और इसके साथ वो दही या छाछ का प्रयोग भी करते हैं। हमने देखा हमारे पड़ोसी लोगों को कि वो एक बड़ा डोलू भरकर छाछ उसमें डाल के और उस खिचड़ी का सेवन करते थे, तो बाकी वो गायों का काम करते थे, तो उनकी शक्ति देखने लायक होती
1: जी। एक साथ ही कहते कि साबुत अनाज के व्यंजनों के में बाजरे के आटे के लड्डू बड़े ही पौष्टिक और स्वादिष्ट होते हैं, और बिल्कुल गेहूं के आटे के लड्डू की तरह ही बनाए जाते हैं, बस इसमें गुड़ डाला जाता है, तो गुड़ तो डालना ही चाहिए।
0: हाँ बिल्कुल, गुड़ डाल दीजिए, वो ज्यादा अच्छा है। एक लिखते हैं, साबुत गेहूं का दलिया आप बना सकते हैं और पाचन के लिए अच्छा है। और ज्वार की रोटी के बारे में भी लोगों ने काफी कुछ लिखा है। एक लिखते हैं, भिगोए हुए इन साबुत अनाजों को आप थोड़ा थोड़ा मोटा दरदरा पीस लें और उन्हें हींग, नमक, हरी मिर्च बारीक काटकर मिला लें। अब इसके छोटे छोटे टिकिया बनाकर या तेल लगे ट्रे या थाली में लगाकर आप इसे स्टीम कर सकते हैं। ठंडा होने पर इसे चकोर टुकड़े काट लें, या इन टिकियाओं का जो स्टीम है किया गया है उन्हें आप सेलो फ्राई करके भी खा सकते हैं। ये ऊपर से कुरकुरे और भीतर से सॉफ्ट होते हैं, इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें इन्हें ज्यादातर आप भाप दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
1: और अच्छी मजेदार सी चटनी बना लो तो भाप वाले भी बिना तले बिना भुने वैसे ही
0: अच्छे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि डीप फ्राई अगर आप रोज खाएंगे तो फिर वो नुकसान करने लगता है। और साथ में आप कह रहे हैं कि प्याज टमाटर ग्रेवी डालकर इसकी सब्जी भी बना सकते हैं।
1: एक साथी ने लिखा है कि साबुत अनाज के मूंग के लड्डू, एक कटोरी खड़ा मूंग ले, उसे अच्छे से धोकर एक सूखी कढ़ाई में भून ले, और जब मूंग लाल हो जाए तो धीमी आंच करके जब ठंडा हो जाए तो मिक्सी में पीस ले, छान ले, फिर आधा कटोरी शुद्ध घी में मूंग के आटे को 10 मिनट तक भूने और बाद में कटोरी पीसी चीनी और अपने मनपसंद सूखे मेवे डालकर लड्डू बांध ले। लड्डू बांधते समय घी कम लगे तो थोड़ा घी और डाल दे, अपने स्वादिष्ट लड्डू तैयार हो सकते हैं। साथ ही चना जोर गरम भी बना सकते हैं ना, कि काबुली चने को भिगो के उबाल लिया और बस उसको थोड़ा थोड़ा ऐसा दबा लिया, प्रेस कर लिया उसे, चपटा चपटा कर लिया, और बस उसमें सारे प्याज टमाटर डाल के और उसमें चाट मसाला डाल के और वैसे ही खा सकते हैं नाश्ते। उसको तलते भी हैं और कुछ कुछ लोग सेक लेते हैं,
0: सेक ले वो जैसा आपको पसंद हो, लेकिन अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से आप खा रहे हैं तो ज्यादातर उसको डीप फ्राई नहीं करें
1: जी,
0: है ना। तो आज तो बहुत शानदार और जानदार रेसिपी हमारे श्रोताओं ने हमें लिख भेजी और हम उम्मीद करते हैं घर पे बना के खाने वाले हम सभी, है ना
1: जी।
0: और अब एक गाना सुन ले
1: जी।

0: मंदाकिनी जी, हमारी एक सखी लिखती है कि हमने मेखला पहनकर स्टूडियो में फोटो खिंचवाई थी और वहां से एक आसामी रेशम सिल्क की साड़ी भर लेकर ले आए थे, और एक सखी ने कहा कि हमने मेखला नहीं खरीदी पर हमने आसाम सिल्क की साड़ी भी खरीदी थी और फोटो खिंचवाई तो हमेशा के लिए वो जो हंसता हुआ नूरानी
1: चेहरा था वो कैद हो गया है। और यकीनन सोनाली, तुम्हारी खूबसूरती पता है क्या है? तुम्हारा ये हंसता हुआ नूरानी चेहरा ही।
0: और आपका भी।
1: ये तो एक दूसरे की तारीफ करना हो गया। हमारे सखी और सखा कहेंगे कि सोनाली और मंदाकिनी बस एक दूसरे की तारीफ ही कर दी है।
0: हम श्रोताओं की भी तारीफ करते हैं और उन्हें शुक्रिया कहते हैं
1: बिल्कुल
0: कि आपके इतने सुंदर सुंदर कमेंट्स के कारण कार्यक्रम में चार चांद लग गए।
1: बिल्कुल, और उन्होंने हमें हंसने पर मजबूर भी कर दिया। तो चलिए, वो चाहे मेखला चादर पहने या किसी भी प्रांत का कोई भी आप वस्त्र पहने, लेकिन आपका चेहरा हमेशा हंसमुख होना चाहिए और
0: खिलता मुस्कुराता रहना चाहिए।
1: तो हंसिए और हंसाइए। और अब इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी और सोनाली
0: पाठक को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 17 सितंबर से एक महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। यह अभियान प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर शुरू किया जाएगा। नई दिल्ली में आज संवाददाता सम्मेलन में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प को भी इस कार्यक्रम में लाने का प्रयास किया गया है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आज से 9वें राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत की है। इस वर्ष का मुख्य संकल्प हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी रखा गया है। इसके तहत आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को प्रोटीन युक्त आहार और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाएगी। मंत्री ने देशवासियों से नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्रों को सशक्त बनाने में योगदान देने की अपील की है। रांची विश्वविद्यालय का 39वां दीक्षांत समारोह आज रांची में आयोजित किया जा रहा है। राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ समारोह में शामिल हुए। इस दौरान 58 मेधावी विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किया गया, वहीं 2 शिक्षाविदों को मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। रांची में एमएसएमई विकास कार्यालय की ओर से 2 दिवसीय विक्रेता विकास कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में राज्य के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में उद्यमी शामिल हुए। इसका उद्देश्य उद्यमियों को बाजार उपलब्ध कराना है। उद्घाटन सत्र में सीएमपीडीआई के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक चौधरी शिवराज सिंह ने एमएसएमई को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताया। गिरिडीह में एंटी करप्शन ब्यूरो की धनबाद टीम ने साइबर थाना के एसआई पुनित कुमार गौतम को 30,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज और कल रांची बोकारो धनबाद और हजारीबाग सहित राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: श्रोता जिन्हें हम बचपन से देखते सुनते प्रेम करते आ रहे हैं उन सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम और आपका बहुत अभिनंदन है।
2: विविध भारती में आके आपको कैसा लग रहा है?
1: मुझे विविध भारती में आकर अपने एक पुराने चिर स्वप्न को पूरे होने जैसा लग रहा है। मैंने शुरू से विविध भारती को सुना, इसके साथ ही सांसें ली और मेरे क्रिएशन के बहुत सारे जो लम्हे हैं वो विविध भारती के साथ ही बीते हैं।
2: जी जी,
1: शुरू से इसके सारे कार्यक्रम वंदनवार से लेकर हवा महल और अच्छा? छाया गीत, ये सभी देखते सुनते और ये साथ साथ हमारी पढ़ाई भी चलती थी और जब कार्टूनिंग की तब भी विविध भारती हमारा साथ ही रहा। तो आज यहाँ आकर और जब आप सब लोगों से मिल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे स्वप्न लोक में विचरण कर रहे हैं।
2: तो आपके लिए आपके सपने पूरे होने जैसा है ये।
1: जी बिल्कुल सही बात है।
2: तो देवेंद्र जी, मैं अभी आपकी किताब देख रही थी धूप छांव, आप तो लेखक भी हैं और आपने इसमें उन नाटकों को लिया है जो हमारे विविध भारती के हवा महल कार्यक्रम से भी आए हैं।
1: जी हाँ, जी
2: तो
1: हाँ।
2: मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कार्टून के बारे में तो आपकी बातचीत हमें करना ही है, तो लेखन की शुरुआत कब हुई?
1: लेखन की शुरुआत और ये कार्टून्स की ये कहना मुश्किल है कि कैसे, क्योंकि लगभग ये दोनों ही साथ ही चले। और शुरुआत में मैं कविताएं और लेख भी लिखा करता था अपनी समझ के हिसाब से, छोटे छोटे लेख कि लू लगने से अपने आप को कैसे बचाएं, या रक्षाबंधन के त्योहार का महत्व, या अखबारों जो आते हैं बाल स्तंभों में आई होली आई, उस तरह के ये रचनाएं ऐसी कविताएं लेख लिखते थे और साथ ही कार्टून्स भी बनाते थे। तो लिखने की शुरुआत का सिलसिला ऐसे जमा कि आकाशवाणी इंदौर से बच्चों की सभा प्रसारित होती थी हर संडे, तो उस वहां जाने का एक लिंक बना और मैं वहां पर जाने लगा नियमित। और वहां मैंने देखा किस तरह से बच्चे अपनी कविताएं पढ़ते हैं, अपनी बात कहते हैं धीरे धीरे धीरे। और वहां जो संयोजिका थी रंजी सतीश जी, उन्होंने विशेष मुझे स्नेह किया और उन्होंने कहा कि बेटा तुम कार्टून्स भी बनाते हो तो तुम रेडियो कार्टून बनाओ।
2: अच्छा।
1: हाँ, तो वो अपन प्रसारित करेंगे।
2: हाँ।
1: तो रेडियो कार्टून जो है उनकी उनके मार्गदर्शन में और कुछ अपनी सूझबूझ से हम लोगों ने डेवलप किया। तो एक बहुत जल्दी जल्दी जो पात्र बोलते थे बड़ी अपनी चुलबुली भाषा में, तो उस तरह से हमने नटखट्टू नाम का एक रेडियो कार्टून बनाया था और उसकी 2-3 कड़ियां प्रसारित हुई थी। तो इस तरह आकाशवाणी का माहौल जो है उसमें घुलने मिलने का अवसर मिला और ये सब साथ साथ ही चलता रहा सिलसिला। उसके बाद में फिर जब आगे चल के फिर ये महिला सभा में या युववाणी में, तो रीजनल प्रसारण के लिए फिर नाटिकाएं मैंने लिखी
2: अरे वाह
1: और बस ये रुचि बढ़ती गई,
2: जी
1: सिलसिला चलता गया।
2: तो हम कह सकते हैं कि बहुत पहले से ही रेखाओं और आकृतियों में आपकी दिलचस्पी थी जो
1: जी
2: लेखन और कार्टून के रूप में बाहर
1: बस
2: निकली।
1: बस यही समझ लीजिए। अब जैसे कार्टून्स में जो ऊपर कैप्शन लिखे होते हैं वो भी अपनी तरह का एक छोटा लेख ही होता है,
2: बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत कुछ
1: तो
2: गागर में सागर का काम करता
1: हाँ
2: है वो।
1: जी आपने बिल्कुल सही कहा।
2: जी, तो कार्टूनिस्ट बनने के लिए हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि किन-किन बातों का होना जरूरी होता है, मतलब कौन से गुण होने चाहिए कार्टून बनाते वक्त एक कार्टूनिस्ट में।
1: सबसे पहले तो उसको जिसे हम सेंस ऑफ ह्यूमर कहते हैं, हास्य की समझ, वो जरूरी है कि हमारे आचरण में वो चीज आ जाए कि

0: हम जब बात करें तो थोड़ा हंसें बोलें, या कोई अगर हंस भी रहा है या उसने हम पे कटाक्ष भी किया तो हम रोने ना लग जाएं या तुनक मिजाजी ना बताएं, बल्कि उस चीज़ को एक कहते हैं हेल्दी वे में लेना चाहिए। और उससे ही धीरे धीरे एक वो इंसान का एक लहजा विकसित होता है, स्टाइल बनती है कि किस तरह से हम किसी को चोट पहुंचाए बिना हम कार्टून बना सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हास्य की समझ, उसके बाद में ऑब्जर्वेशन, अपने आसपास की चीज़ों को देखना, अपने रीति रिवाजों को देखना, घटनाओं पर नज़र रखना। तो ऑब्जर्वेशन और फिर पढ़ना बहुत सारा कि पहले हमारे साहित्यकार क्या लिख गए हैं, क्योंकि हम जब कार्टून बनाते हैं उसमें खबरें तो ठीक है, हमें खबर मिल गई, ताज़ा खबर उस पर बनाना है, लेकिन जो एक सलीका होता है, जो सीमा होती है, उसके लिए हम साहित्य, जो हमारे पहले के लोग काम कर गए हैं अपने कथ्य से, अपनी भाषा से, उस सबका हमको एक समझ मिलती है और समावेश करते हैं कार्टून
1: बहुत
0: में।
1: बहुत गहरी बात कह दी आपने
0: जी
1: देवेंद्र जी कि सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत जरूरी है और आसपास की घटनाओं पर।
0: बिल्कुल ठीक है।
1: तो सबसे पहला कार्टून आपने कौन सा बनाया था और वो दिमाग में कैसे आया?
0: सबसे पहला कार्टून मैंने बनाया, उसका मतलब किस्सा ये है कि पहले मैं दीवारों पे, दरवाजों पे, सब तरफ कार्टून्स बनाया करता था,
1: अच्छा,
0: क्योंकि छोटे थे
1: तो घर की
0: तो
1: दीवारें आपने
0: घर
1: खराब
0: की दीवारें
1: करती
0: बहुत खराब करते थे। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो घर के बड़े थे, माता पिता, वो लोग उसको बहुत ही खेल भावना से लेते थे, कभी नाराज नहीं हुए।
1: अच्छा,
0: उन्हें लगा कि चलो एक कला जो है वो जन्म ले रही है और विकसित हो रही है दीवारों पर ही सही। तो ये सिलसिला चलता था और उन लोगों ने आगे बढ़ाया, लेकिन हमारे एक ट्यूटर थे, उन्होंने कहा कि भाई तुम कब तक ये दीवारें खराब करोगे, तो कुछ कागज पे बना के और अखबारों तक पहुंचो, तो ये छपने का सिलसिला होगा। तो उन्होंने ऐसी राह बताई, तो फिर हम 14 वर्ष के थे तो पहुंच गए अखबार में। तो वहां संपादक जी ने भी सब देखा, कार्टून्स देखे, कविताएं देखी, तो बोले कि हम तुम्हारे बेटा कार्टून भी छापेंगे और आज से तुम बच्चों के स्तंभ के संपादक भी हुए।
1: अरे क्या बात
0: तो
1: है,
0: मैंने पूछा कि संपादक क्या होता है,
1: बिल्कुल 12 साल का बच्चा है,
0: हाँ
1: उसका
0: वही
1: दिमाग
0: है।
1: यही होगा।
0: तो उन्होंने यही कहा कि जो रचनाएं आती हैं बॉक्स में इकट्ठी होती हैं, कविताएं, कहानियां, चुटकुले,
1: हाँ,
0: उनको तुम्हें देखना है और उन्हें बहुत ज्यादा, अगर वो लंबे चौड़े हों तो उन्हें थोड़ा छोटा करना है, उनकी अशुद्धियां दूर करना है, और सामयिकता के हिसाब से कि जैसे दिवाली आ रही है तो ऐसा नहीं हो कि तुम होली की रचना रिलीज कर दो, तो वो करना है
1: जी।
0: और कार्टून्स भी हम तुम्हारे छापेंगे। इस तरह सिलसिला शुरू हुआ। और पहला कार्टून जो था, चूंकि इन दिनों करवा चौथ आ रही थी तो मैंने सोचा क्या बनाऊं, तो मैंने बनाया कि एक व्यक्ति है वो घर में बैठा अखबार पढ़ रहा है, उस व्यक्ति के सिर पे बाल नहीं है
1: अच्छा,
0: और उनकी जो पत्नी देवी है वो खिड़की के बाहर खड़ी देख रही हैं, हाथ में पूजा की थाली है और वो चंद्रमा ढूंढ रही है चांद की
1: जी
0: तरह। तो छोटा बच्चा एक आया और वो आके कहता है कि माँ माँ आप बाहर चांद कहाँ ढूंढ रही हो, वो तो हमारे घर में मौजूद है। तो उसका इशारा पिता के सिर की तरफ
1: जी
0: था।
1: जी
0: ये इस तरह से कार्टून पहला बना था।
1: जी बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि आपका पहला कार्टून इस रूप में आया।
0: जी
1: जब बात पहले कार्टून की चली है तो इस कार्यक्रम का पहला गीत भी आपकी पसंद का सुन लेते हैं हम,
0: जी,
1: बताइए।
0: पहला गीत तकदीर फिल्म का, वो मुझे बहुत पसंद है, आइए बाहर को हम बांट लें, जिंदगी के प्यार को हम बांट लें।
1: क्या बात है, बहुत सुंदर गीत है, तो सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: तो देवेंद्र जी, आपने बताया कि 14 साल की उम्र में आप एक अखबार में संपादक के रूप में भी लग गए, बाल संपादक के रूप में, और आपने काम करना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे इस कला को आपने विकसित किया होगा। जब आप एक बाल संपादक बन गए, बहुत सारी चीजों के संपर्क में आए, खुद भी आपने कार्टून बनाना लगातार बनाए रखा, तो इस कला शैली को विकसित होने में आपकी नजर में आपको कितना समय लगा?
1: विकसित होने में इसे समय की अवधि में इसलिए नहीं मान सकते कि ये विकास होना एक सतत प्रक्रिया है जो चलती रहती है हमेशा
0: जी।
1: हम नई चीजों को अपने में समाहित करते हैं कला में, और वो फिर हर दिन एक नई ताजगी, नयापन उसमें महसूस होता है। और वैसे शुरू के कुछ शायद एक आध साल ऐसे लगे होंगे जब काम करते करते लगा कि ये मेरी शैली हो सकती है, मैं इस तरह ही कार्टून बनाऊं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, इसमें सब बात आ जाती है, प्रमुखता से किन पात्रों को उभारना है, बैकग्राउंड में क्या रखना है। और फिर मैं एक मेरी एक हमेशा कोशिश रहती है कि कार्टून का जो कोना कोना है उसमें से हास्य झलके, जाने कि एक गमला रखा है या कहीं ऊपर एक झाड़ फानूस भी है या कोने में एक पिल्ला बैठा हुआ है।
0: तो ये सब चीजें पात्र बहुत कुछ कहते हैं।
1: जी हाँ,
0: जब
1: बिल्कुल,
0: हम इन कार्टून्स पर नजर डालते हैं तो
1: ये
0: मतलब
1: बिल्कुल
0: वो जो
1: सही है।
0: पिल्ला बैठा हुआ है वो भी कुछ कह रहा ही होता
1: हाँ,
0: है।
1: हाँ कहता है कई बार उससे जो संवाद, मान लो हम किसी बड़े से नहीं कहलवा सकते है ना, और उसको इनडायरेक्ट वे में कहलवाना है, तो कहीं पिल्ला बोल देता है, कहीं ऊपर से उड़ती हुई चिड़िया आती है वो बोल देती है।
0: बिल्कुल सही कहा
1: जी।
0: तो आप जब एक खाली कैनवास या कागज आपके सामने होता है तो हर दिन की अगर हम बात करें तो पहला विचार क्या आता है आपको?
1: कागज और कैनवास जब खाली होता है, पहले तो विचार आता है, उसके बाद कागज आता है।
0: अच्छा।
1: और वैसे भी खाली कागज और कैनवास सहन नहीं होता, ऐसा लगता है कि अपने को बुला रहा है और कह रहा है कि आओ मुझ पर, आप कुछ ना कुछ बनाओ और रंग से आप भर दो मुझे, ताकि मैं पाठकों के अंदर में जो है रंग उसकी सृष्टि करूं, बिखेरूं रंग को।
0: बहुत सुंदर। जी जी जी। तो हर दिन आप एक कार्टून बना लेते हैं या हर दिन ये रचना होती है?
1: जी हाँ, हर दिन, क्योंकि ये समय के साथ चलना होता है। जैसे अगर आप अखबार में हैं, दैनिक अखबार में हैं, तो रोज आपको बनाना है, और अगर आप पत्रिका में हैं, पाक्षिक पत्रिका में, तो इंसान थोड़ा सा सुस्त सा हो जाता है कि आराम से आज नहीं तो अपन फिर बना दें, 15 दिन नहीं तो निकलनी है।
0: बिल्कुल।
1: तो मेरा कुछ मिजाज इस तरह से डेवलप हुआ कि, और स्पीड भी ऐसी बनी कि खूब सारे कार्टून एक दिन में। तो प्रदेश का सबसे बड़ा जो अखबार है उसमें जब मेरी एंट्री हुई तो वहां पर यही था कि जब शुरू शुरू में मैं गया तो एक पहला कार्टून बना कर दिया, संपादक जी खुश हुए कि हाँ इसको ले लेंगे। थोड़ी देर में हम दूसरा बना के फिर ले गए, वो बोले ठीक है इसे फलां पेज पे ले लेंगे। फिर पहुंच गए तो उन्होंने हंस के कहा, श्रीमान जिस गति से आप बना रहे हैं उस गति से हम नहीं छाप पाएंगे। तो
0: अच्छा।
1: आप थोड़ा आहिस्ता। तो मैंने
0: मतलब आप इतनी तेजी से, इतनी रफ्तार के साथ एक दिन में कार्टून?
1: जी हाँ जी हाँ, मेरा 17 कार्टून्स एक दिन में, इसका मतलब है हाईएस्ट जो रिकॉर्ड।
0: हाँ, 17 कार्टून आप एक दिन में बना?
1: एक दिन में बनाने का रिकॉर्ड है, मतलब कि वो भी बस तब हुआ था कि उस अखबार विशेष का जब दीपावली अंक आ रहा था, उन लोगों ने कहा कि हमें अब जल्दी से अंक निकालना है क्योंकि हम लेट हो रहे हैं। तो कल से शुरुआत, मैंने कहा आज से भी कर सकते हैं। तो उस दिन के जो अगले पन्ने का कार्टून, फिर एक जो साप्ताहिक मैडम मोहिनी आती थी, बड़ा पॉपुलर कार्टून कॉलम है वो, तो उसका स्ट्रिप उसकी तैयार की, फिर उसके बाद में अंतिम पत्र के साथ का कार्टून, फिर उसके बाद में राशि के 12 कार्टून, 12 सिंह राशि का हमने बना दिया। चपरासी आया, झट लेके अंदर पहुंचा, वो मशीन पे जा रहा है, तब तक हमने कन्या राशि का बना दिया। इस तरह से ये सब कार्टून।
0: अरे वाह, बहुत सुंदर। तो आपके विषय क्या रहते हैं इन कार्टून्स के, हर बार क्या विषय चुनते हैं आप?
1: विषय वही जो हमारे आसपास बिखरे होते हैं रोजाना के, जैसे खबरें अखबार की या जो बाहर की जो हम घटनाएं देखते हैं। हाँ, सामाजिक विषय होते हैं, राजनीतिक भी होते हैं, वही सब सारे विषय होते हैं। और बस वो पाठक को गुदगुदा दें, बस कोशिश यही रहती है कि बहुत ज्यादा दुरूह और जटिल ना हो।
0: हाँ।
1: और इतने भी सिंपलिसिटी उनमें ऐसे भी ना हो कि सड़क छाप नजर आए
0: जी,
1: वो चीज़ है।
0: मतलब चुटकुला भी ना लगे।
1: हाँ,
0: कि आप
1: वो
0: किसी जोक को सुना रहे हैं ना, ऐसा भी ना लगना चाहिए जोक्स नहीं है, क्योंकि ये एक बारीक अंतर है जोक्स और कार्टून के मध्य।
1: कार्टून्स में बिल्कुल,
0: कार्टून कला क्या है ये जानना बेहद जरूरी है। तो कई बार ऐसा भी होता होगा देवेंद्र जी, आपने कहा कि आप एक दिन में 17 कार्टून्स बना लेते हैं या लगातार बहुत तेजी के साथ बनाते हैं, कभी ऐसा आया कि दिमाग खराब है या गुस्सा है या परेशान है और कोई विचार सूझ ही नहीं रहा है, ऐसी स्थिति कभी आई आपके सामने?
1: ऐसी आ सकती थी, लेकिन पता नहीं ईश्वर ने मुझे श्राप देकर भेजा है। यानी कि घर में आप समझ लीजिए कि बुरी से बुरी दुर्घटना ऐसी कोई हुई हो,
0: हाँ
1: जबकि हमारे यहाँ पर नानी हमारी नहीं रही उस दौर में भी, और कोई हो तो 13 दिन छुट्टी लेके बैठ जाए, लेकिन हम दूसरे दिन गए। और फिर चूंकि अभी हंसी वाला मामला है तो पता नहीं कहाँ से कौन सी बत्ती जलती है और आप वही चीज बनाकर आते हैं, और लोगों को मालूम भी नहीं रहता कि इनके परिवार में क्या हुआ है। जाके अपना काम करते हैं हंसी खुशी, क्योंकि वो काम है ईश्वर ने सौंपा है तो करना है, वो बात है। और
0: बहुत
1: उसको
0: बड़ी बात, यानी आप पूरी तरह से समर्पित हैं अपनी कला के
1: जी
0: प्रति।
1: हाँ बिल्कुल।
0: तो इस कार्टून की अगर हम बात करें, आज मानव जीवन में क्या उपयोगिता है जब डिजिटल युग आ गया है, इतने प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, दुनिया भर की समाचार, दुनिया भर की खबरें और अनाप शनाप भरा हुआ है जहां।
1: हाँ
0: ऐसे
1: बिल्कुल
0: में एक छोटा सा कार्टून जो एक अखबार के कोने में, पत्रिका के कोने में कहीं होता है बैठा हुआ, उसकी क्या उपयोगिता लगती है आपको?
1: कार्टून की उपयोगिता मंदाकिनी जी शुरू से बहुत रही है, और आज के समय में तो उपयोगिता इसकी काफ़ी है, क्योंकि आज हर इंसान जिसे हम देखें वो अपने तनाव में, समस्याओं में घिरा हुआ है, उसको टेंशन है। ऐसे में अगर वो किसी कार्टून के टच में आता है तो उसके चेहरे पर जो एक हल्की सी मुस्कान आती है वो रिलैक्स हो जाता है। तो ये उस कार्टून की सफलता और उपयोगिता है, क्योंकि अगर वो हंस देता है तो उससे मतलब राहत तो मिलती है उसको, और अपने टेंशन से लड़ने के लिए, समस्याओं से लड़ने के लिए उसको एक नई शक्ति मिलती है, ताजगी मिलती है, वो
0: जी।
1: कार्टून की ही देन होती है।
0: यानी
1: और
0: आज भी इसकी उपयोगिता वही
1: उपयोगिता
0: है जो
1: इसकी
0: पहले
1: बिल्कुल
0: हुआ
1: बिल्कुल
0: करती
1: बनी
0: थी।
1: हुई, क्योंकि हम देखते हैं ना कि अगर हम हंस दिए तो माहौल कितना हल्का फुल्का हो जाता
0: हाँ
1: है
0: हाँ
1: ना,
0: जी।
1: और नहीं हंसेंगे तो बोझिल हो जाता है। और सबसे बड़ी चीज ये कि हंसने की जो देन है, हास्य का जो उपहार है, ईश्वर ने मनुष्य को ही दिया है। हमने कभी वॉल्ट डिज्नी के कार्टून के अलावा किसी कुत्ते को हंसते हुए नहीं देखा, या किसी चूहे
0: जी
1: को हंसते नहीं देखा है।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो जब हास्य की बात चली है तो क्या कार्टून में हास्य अधिक होना चाहिए या व्यंग्य?
1: हाँ ये प्रश्न भी आपका बहुत अच्छा है, और अक्सर लोग इस अनुपात को नहीं कायम रख पाते हैं, लेकिन मैंने इसको एक अनुपात मैंने अपना तय कर रहा है कि उसमें व्यंग्य भी होना चाहिए और उसमें हास्य भी होना चाहिए, ताकि सभी को कुछ ना कुछ मसाला मिलता रहे। और फिर अपन कहते हैं ना कि कोई कड़वी बात भी हो तो उसको मीठी चाशनी में अगर लपेट कर प्रस्तुत करते हैं तो उसका असर अधिक होता है और उसका आनंद भी रहता है। तो कार्टून्स में भी यही किया जाता है, जैसे कि कोई समस्या है मान लीजिए, उसको अगर व्यंग के माध्यम से हम कहें तो वो कड़वा भी हो सकता है, वो क्रूर भी हो सकता है, और उस शुष्क भी होता है वो,
0: जी
1: लेकिन अगर उसमें हास्य हमने डाला है तो फिर वो सरस हो जाएगा, और बात रहेगी वही लेकिन उसका कहने का एक तरीका बदल जाएगा, तो
0: बिल्कुल
1: लोग हंसते हंसते उस चीज को ग्रहण करेंगे।
0: जी
1: और सिस्टम सुधारने के लिए हमने जो सोचा है वो

0: आज जहां जानी है वो पहुंच भी
1: चली भी
0: जाएगी,
1: जाती
0: बस
1: है।
0: पहुंच
1: बिल्कुल
0: जाती।
1: सही कहा आपने। और बड़ा गुदगुदाते हैं ये कार्टून्स।
0: हाँ
1: तो
0: वो
1: एक
0: तो
1: दो
0: है।
1: अपने कार्टून्स के बारे में बताइए आप कि जहां आपको लगा हो कि मैंने इसमें हास्य और व्यंग का बहुत ही संतुलित प्रयोग किया है।
0: जी हाँ, जैसे हम सुनते हैं ना कि ये जो अक्सर देखा भी गया है कि किसी को कुर्सी मिल गई, मान लीजिए नेता को मिल गई, तो उस कुर्सी से उसको मोह हो जाता है, उसे सत्ता का मोह भी हम कहते हैं, प्रतीक में है कुर्सी। तो उस कुर्सी को मुश्किल से ही जब वो हासिल होती है तो छोड़ता भी इंसान मुश्किल से। इस पर
1: जी
0: मैंने एक कार्टून बनाया था कि एक नेता महोदय हैं, वो अपनी कुर्सी पर कस कर बैठे हुए हैं, उसके हैंडल वगैरह पकड़े हुए, इतने उनका नौकर आया कुर्सी झाड़ने के लिए कपड़ा लेकर, तो वो कह रहा है कि मालिक आप थोड़ा सा हट जाएं तो मैं कुर्सी को झाड़ दूं।
1: जी
0: तो नेताजी ने क्या किया, ये तीन फ्रेम्स में कार्टून, दूसरे फ्रेम में वो ऊपर उठ गए, कुर्सी के हत्थे उनने कस के पकड़ लिए हैंडल और पूरे ऊपर उठ गए हैं और कह रहे हैं कि लो भाई तुम कुर्सी झाड़ लो पर इसको छोड़ूंगा तुम्हें बिल्कुल नहीं। तो ये
1: जी
0: एक वृत्ति की तरह हमने संकेत भी दिया और हंसी हंसी में वो बात भी हो गई।
1: कह दी। तो
0: जी
1: चलिए अभी एक गीत आपकी पसंद का हम सुन लेते हैं।
0: हाँ, सागर फिल्म का गीत है जिसे SB बालासुब्रमण्यम ने गाया है, सच मेरे यार है बस
1: बस
0: वही
1: यही प्यार
0: प्यार है।
1: है,
0: हाँ
1: बहुत सुंदर और
0: जी
1: गहरा गीत है,
0: जी
1: एक दार्शनिक गीत है। कमल हासन साहब पर्दे पर दिखाई देते
0: हाँ
1: हैं,
0: बिल्कुल
1: बहुत
0: बिल्कुल
1: सुंदर।
2: सच।

0: तो देवेंद्र जी, आपके कार्टून्स के बारे में हम बात कर रहे हैं और बहुत ही शानदार कार्टून्स है जिन्हें हम जब जब पढ़ते रहे हैं तो लगता है कि गुदगुदाहट होती ही है। कार्टून्स बनाते समय एक कार्टूनिस्ट को कैसा माहौल चाहिए होता है, मतलब वो किस तरह का माहौल पसंद करता है?
1: जैसे हर रचनाकार की पहली शर्त होती है रचना करने के लिए कि एकांत हो, शांति हो, वही कार्टून के वक्त भी बनाते वक्त भी मुझे यही लगता है कि वहाँ शोरगुल ना हो थोड़ा, ताकि कंसंट्रेशन हो सके। और उसके लिए बस मैंने सोचा, हमेशा शांति तो महसूस नहीं होती, तो वहीं फिर आपकी विविध भारती काम आती है।
0: अच्छा, कैसे?
1: रेडियो एक छोटा छोटा सा ट्रांजिस्टर है मेरे पास में, वो बजता रहता है और उसमें जो संगीत की लहरियां निकलती हैं बस उसी परिधि में हमारा ध्यान होता है और बस आराम से कार्टून बन जाता है। और यही विधि जब मैं पढ़ाई करता था तब भी यही सब चलता था कि धीमे धीमे रेडियो बज रहा है और आप पढ़ाई कर रहे हैं, अपने पाठ याद कर रहे हैं। तो कार्टून के लिए भी एक तो संगीत हल्का हल्का मध्यम संगीत हो और मंदाकिनी जी की आवाज हो
0: और शुक्रिया और...
1: और साथ में अगर चाय का गर्म प्याला मिल जाए
0: अरे वाह,
1: तो ये बहुत अच्छी बात है।
0: आपने बहुत ही क्लासिक तरीके से बात समझाई है। वाकई ये एक माहौल एक कलाकार को चाहिए होता
1: जी,
0: है, चाहे
1: जी,
0: वो
1: जी,
0: लेखक है, चाहे कार्टूनिस्ट
1: है,
0: या वो सिंगर है, कोई भी कलाकार।
1: बहुत थोड़ी सी रिक्वायरमेंट होती है, एक छोटी सी जगह में बैठ के अपना काम बस हो जाता है कम्प्लीट बस।
0: तो क्या कार्टूनिस्ट के जरिए जब आप लोगों को हंसाते हैं तो आपको खुद भी क्या खुश मिजाज होना पड़ता है कार्टूनिस्ट को पहले?
1: बिल्कुल होना पड़ता है, उर्वर भूमि जो होगी उसी में तो फिर अच्छा पौधा खिलेगा, फूल खिलेगा। तो हंसना हंसाना तो बहुत जरूरी है, और बल्कि मुझे लगता है कि जब आइडिया हमने जब चित्रित कर लिया या आइडिया के टच में आए तो पहले हमारा खुश होना बहुत जरूरी है। अगर हमें लगता है कि हाँ हम खुल के हंस दिए, हमें रोम रोम पुलकित हो रहा है, तब लगता है कि ये अब वेल टेस्टेड हो गया और ये जाकर ये पाठकों को जरूर ये गुदगुदाएगा और बात जो हमारी कहना है वहां तक पहुंचेगी।
0: सबसे तो बड़ी बात
1: हाँ ये बहुत जरूरी,
0: मतलब
1: है
0: दिमाग की खिड़कियां खुली होनी चाहिए।
1: खुली होनी चाहिए, बिल्कुल सही है, उसमें ये नाप तोल के मुस्कान वाला काम नहीं चलता है।
0: सबसे बड़ी बात ये है कि जब आप किसी विधा पे काम करते हैं तो पहले खुद को उस विधा से जोड़ने के लिए वैसा बनना पड़ता है।
1: वैसा बनना पड़ता है, बिल्कुल जरूरी है।
0: बहुत अच्छी बात आपने बताई। जो श्रोता इस समय आपको सुन रहे हैं उनमें बहुत लोग ऐसा हो सकते हैं कि वो कार्टूनिस्ट हो, तो वो भी इस बात को ध्यान रखेंगे कि एक कार्टूनिस्ट को खुद भी वैसा मिजाज रखना पड़ता है पहले। तो अपने कार्टून में जान फूंकने के लिए देवेंद्र जी आप किन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं?
1: सबसे पहला तत्व तो है आइडिया, उसके बाद में कागज पर उसे उतारते हैं, वो पेंसिल की मदद से, पेंसिल पेन ब्रश ये सब चीजें होती हैं, और उसके बाद में जब कार्टून मुकम्मल हो जाता है फिर उसे कंप्यूटर में ले जाकर वो ट्रीटमेंट देते हैं और फिर वो आगे बढ़ता है। इस तरह से कार्टून ऐसे तैयार होता है, बस ये बेसिक तो यही है। बाकी जो कला जो है अगर देखा जाए तो कला हाथ में होती है, किसी टूल्स में नहीं होती है, मतलब हर वक्त नहीं होते हैं जरूरी, लेकिन जब आप अखबार के लिए काम कर रहे हैं, मैगजीन्स के लिए कर रहे हैं, हाँ जब कर रहे हैं उस वक्त में जो मैंने आपको बताया शुरुआत में कि पेंसिल से शुरू हो गई यात्रा ये कंप्यूटर पर खत्म होती है, ये चीज है।
0: तो आप तो राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हर तरह के विषयों पर कार्टून बनाते हैं, क्या कार्टूनों की कोई सीमा रेखा होती है जिसके अंदर ही एक कार्टूनिस्ट को काम करना होता है?
1: बिल्कुल होती है, और सीमा
0: थोड़ा हमें बताइए किस तरह की ये

0: ये एक सीमा रेखा है
1: हाँ,
0: आपके
1: ये
0: सामने।
1: सीमा रेखा है, किसी का असम्मान भी ना हो किसी का, ये चीज भी बिल्कुल ध्यान में रखना है। और कार्टून में भाषा, किस तरह की भाषा आप ले रहे हैं वो भी देखना है, कि कोई बहुत ज़्यादा क्लिष्ट ना हो और बहुत चलता हो लैंग्वेज भी ना हो, और कार्टून का जो कैप्शन होता है वो थोड़ा छोटा हो, बहुत ज़्यादा विस्तार भी उसमें ना हो, ये सब चीज़ें हैं। एक चीज़ इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि तरह तरह की जो प्रतिक्रियाएं मिलती रहीं, शुरू में बहुत मिली, अच्छी ज़्यादा मिली, जिनसे कि इंसान प्रोत्साहित होता है और आगे बढ़ता है। आपने बालकवि बैरागी जी का नाम सुना होगा, है ना, सुप्रसिद्ध गीतकार और सांसद। तो बालकवि जी ने मेरा एक कार्टून देखा था जब मैंने बनाया था मध्य प्रदेश की सरकार को लेकर तत्कालीन, तो उस कार्टून को देखकर उन्होंने, वो कार्टून अप्रिशिएट भी बहुत हुआ था, और बालकवि जी का मुझे पत्र मिला
0: जी,
1: प्रिय देवेंद्र तुम बहुत दुष्ट हो,
0: अच्छा
1: तुम्हें पता नहीं तुम्हारा यह कार्टून लोगों ने फ्रेम करवा कर रख रखा है, और किसी भी कलाकार के खाते में यह बहुत बड़ा जन प्रतिदान है।
0: अरे
1: मेरी तुम्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। मतलब बाल कवि बैरागी साहब आपको ये बात कह रही हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: और देखिए उनके कहने में भी कितना अपनत्व है और गहराई है।
1: हाँ बिल्कुल सही बात है।
0: बहुत अच्छा लगा ये सुनकर कि एक कार्टून जैसी छोटी सी विधा है, बहुत गहरी विधा है, उसे बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े साहित्यकार कलाकार भी
1: देखते
0: पढ़ते
1: हैं,
0: देखते सुनते हैं और सराहते हैं।
1: सही बात है।
0: चलिए आपकी पसंद का गीत सुनते हैं।
1: बस यहाँ बालकवि बैरागी जी का लिखा हुआ रेशमा और शेरा फिल्म का गीत कैसा रहेगा?
0: बिल्कुल अच्छा रहेगा।
1: तू चंदा मैं चांदनी।
0: आइए सुनते हैं बालकवि बैरागी का लिखा ये बहुत ही खूबसूरत गीत।
1: जी बिल्कुल।

0: तो देवेंद्र जी, बहुत ही सुंदर गीत हमने सुना अभी बैरागी साहब का लिखा हुआ। तो आप चूंकि इतने कार्टून्स बना चुके हैं, उस पर भी मैं आपसे बात करना चाहूंगी कि आपकी पसंद का कोई कार्टून जिसके बारे में आप बताना चाहें, जो आपको बेहद पसंद हो।
1: मेरी पसंद के तो बहुत सारे कार्टून्स हैं। अभी मैनेजमेंट पर बनाया कार्टून याद आ रहा है मुझे,
0: बताइए
1: कि एक दादाजी हैं, ये तीन फ्रेम्स में बनाया हुआ था ये, कि एक दादाजी हैं वो लेटे हुए और अपने पोते से बोल रहे हैं, कम उम्र का पोता है, कि बेटा मेरे पैर दबा दो, बहुत दर्द कर रहे हैं मेरे पैर। तो कहता है दादाजी मैं भी आता हूँ। और फिर वो जब लौटा तो उसके हाथ में आरी थी काटने वाली, आरी लेके आया वो। तो दादाजी सहम के बैठ गए पैर सिकोड़ के। आरी क्यों? बोले दादाजी हमारे मैनेजमेंट गुरु कहते हैं किसी भी काम को पहले छोटे छोटे टुकड़ों में बांटो, उसके बाद उस काम को पूरा करो।
0: वाह, बहुत खूब बहुत खूब।
1: और एक कार्टून और भी ध्यान आ रहा है कि जैसे कार्टून कई बार ये घटनाओं पर होते हैं, खबरों पे होते हैं, ट्रेंड्स पे होते हैं, मनोविज्ञान पे भी कार्टून बनाने मुझे अच्छा लगता है। जैसे कि किसी किशोरी का मनोविज्ञान, ये मैंने ऑब्जर्व किया था, तो उस पर कार्टून मैंने बनाया जो महिलाओं के स्तंभ में छपा था
0: जी,
1: कि एक टीनेजर कन्या है, वो अपने घर में बिस्तर पर औंधी लेटी हुई कुछ कविताएं वगैरह लिख रही है
0: जी।
1: पास में गुलाब के फूल भी हैं, डायरी है ऐसा, और वो अपने सपनों में खोई हुई है, और कुछ पंक्तियां भी हैं जो हम बाद में देखेंगे क्या वो कह रही है। और पंक्ति ये है कि सपनों में बस गई है एक मादक गंध, सपनों में बस गई है एक मादक गंध, मानो दूध उफन गया हो कहीं। और उस कार्टून में पीछे बताया गया है कि गैस पे वास्तव में दूध चढ़ा हुआ है और उफन के और बह रहा है और पूरे फर्श पे फैला है। और इसमें मजा और कि दरवाजा खुला और उनकी माता जी सब्जी वगैरह लेके आ रही हैं और उन्होंने दूध देखा तो अंगारा हो गई वो।
0: जी, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। कितनी गहरी बात आपने कही कि एक किशोरी मन की क्या जो है सोच होती है, मनोविज्ञान क्या होता है किशोरपन का, वो आपने इसमें बताया, बहुत सुंदर। तो एक साधारण स्केच से लेकर अंतिम प्रकाशित कार्टून तक की आपकी जो प्रक्रिया है वो क्या रहती है?
1: उस प्रक्रिया में सबसे पहले आता है विचार। उस विचार में ध्यान ये रखते हैं, क्योंकि कई बार विचार ऐसा भी आता है, मान लीजिए उसको पहले मैं कहा करता था साथियों में कि मुझे शेर जैसा विचार आता है और उसको मैं पीट पीट कर बकरी जैसा बनाकर पेश करता हूँ। तो ये जो बकरी जैसा बनाना जो है, ये दरअसल एक सामंजस्य वाली चीज है
0: जी।
1: और ताकि जिससे सब लोग खुश रहें और उतना तीखापन महसूस ना करें कि बात बिगड़ जाए, तो उस तरह से कार्टून बनता है। तो पहले विचार आया और विचार के बाद में, जैसे हाँ आर के लक्ष्मण साहब ने भी कहा था कि पहला विचार जो आता है उसमें मत आप उलझ जाओ, वो आपको लुभाता है और ललचाता है, इसलिए उससे आप और आगे चलो, सेकेंड थॉट, फाइनल थॉट, ऐसे करके, तो उसमें उसका रिफाइनमेंट होता है, आगे वो चीजें चलती हैं। तो ये प्रक्रिया मेरी भी है कि पहला विचार आया, उसको अलग रखा, फिर और उस पर सोच रहे हैं, अलग अलग कोण से सोच रहे हैं, अलग अलग उसमें सिचुएशंस भी बनती हैं, और फिर जब वो रिफाइन होकर वो आता है तो अच्छा लगता है, देख के मन खुद कहता है कि नहीं ये चीज बढ़िया है और ये आगे बढ़ना चाहिए।
0: जी, बहुत सुंदर। बिल्कुल यही काम करने का भी तरीका है कि आप अगर विचार पे अटक कर रह गए
1: पहले
0: तो वहीं खड़े हो जाते हैं।
1: बस बस बस।
0: तो आज के डिजिटल युग की हम बात कर रही हैं और इंस्टाग्राम जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, तो कार्टूनिस्ट के काम करने का क्या तरीका बदला है?
1: तरीका तो नहीं बदला है, ये है कि
0: विचार बदला होगा,
1: विचार भी बदला है, और उनमें विचारों में भी आज जो हम कहते हैं ना, एक गरिमा उतनी नहीं, आजकल जो हो रहा है वो गरिमा उतनी नहीं, उसको मेंटेन करके चलना चाहिए, क्योंकि भाषा की भी खूबसूरती एक होती है कार्टून के अंदर, वो है। और पात्रों की जो विविधता, जो जैसे हम चुनते हैं कि हर बार रोज एक ही एक तरह का आप बना रहे हैं, सूटेड बूटेड ये वो, उसके बजाय आप लोक जीवन में उतरें, बाहर देखें सड़क पे कितने तरह के पात्र दिखाई देते हैं, तो कभी बात उनसे भी कहलवाएं, ये होता है, अलग अलग पात्र अलग अलग बात कह रहा है, उसका मजा आता है।
0: तो लोक जीवन से जुड़ा कोई कार्टून आपको याद हो आपका बनाया हुआ?
1: लोक जीवन से जुड़ा मेरा कार्टून एक ध्यान आ रहा है मुझे, वो भी थोड़ा इस तरह का है कि जैसे जब वीमेन स्लिप का जो चला था शुरुआती जोर था, तो उसमें मैंने बताया कि एक खेत में किसान बैठा हुआ है, फुर्सत के लम्हों में हल चला के बैठा है, और पास में उसकी जो पत्नी है वो पोटली में रोटी वगैरह लेके आई है और प्याज और है ना मिर्ची ये सब अचार, तो वो खाना खा रहा है और वो पंखा चल रही है उसको बैठे हुए, है ना, कितना सुंदर दृश्य। तो इसमें तो एक तो आपने पूरा बैकग्राउंड दिखाया, झोपड़ी दिखाई, खेत दिखाया, हल दिखाया, उसका स्त्री और पुरुष का पहनावा, तो इसमें लोक जीवन की, लोक पहनावे की झलक मिली। अब उसके बाद वो सड़क से दो आधुनिकाएं जा रही हैं कार से, तो उनने कार रोकी और ये दृश्य देख के वो कह रही हैं कि ये कितनी अभागी औरत है ये, मतलब नारी स्वातंत्र्य के विचार से एकदम अनजान है, चलो इसे हम चल के और उसकी दास्ता से मुक्त कराएं पुरुष की दास्ता से। तो ये ऐसी चीजें
0: बहुत बड़ा व्यंग्य, बिल्कुल सही कहा आपने कि दो स्त्रियों की मनोदशा
1: हैं।
0: आपने
1: हाँ,
0: बताई कि
1: बस बस
0: जो
1: बस
0: ग्रामीण परिवेश की स्त्री जो सुख अनुभव कर रही है,
1: अनुभव कर रही है,
0: आधुनिक परिवेश की स्त्री उस सुख को नहीं जान पा रही है और
1: जी
0: उसको दास्ता बता रही है।
1: हाँ, तो ये जो विसंगति है, बस
0: हाँ,
1: उसको ये उसमें दिखाने की कोशिश
0: बहुत
1: हुई है।
0: सुंदर, बहुत सुंदर देवेंद्र जी, बहुत सुंदर। तो अगर मैं देवेंद्र जी से ये पूछूं कि इतने कार्टून्स आपने बना लिए, लगभग कितने कार्टून्स बना लिए होंगे?
1: ये 60,000 से ऊपर हो चुके हैं, ये
0: 60,000 से ऊपर
1: से
0: कार्टून आप
1: ऊपर
0: बना चुके हैं
1: हैं।
0: अब
1: जी
0: तक,
1: जी जी जी
0: और ये विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में छप रहे हैं या इन पर आपने किताब भी लिख ली है?
1: ये किताब में तो ये नहीं आ सकते अभी, मेरे तो करीब 6-7 व्यंग्य संकलन ही निकले हैं। बाकी ये है कि इनके ऊपर, हाँ आपको ये बता दूं, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो भी यूएसए का वो मिला है।
0: अरे वाह,
1: हाँ, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पब्लिश्ड कार्टून्स उसके ऊपर।
0: अच्छा, तो साठ
1: तो
0: हजार कार्टून आपने आज तक बना लिए हैं,
1: जी
0: इतने विचार, यानी 60,000 विचार तो आपको आ ही गए,
1: आ
0: और न
1: ही
0: जाने अभी
1: गए
0: कितने विचार और आने हैं।
1: बिल्कुल
0: कमाल,
1: सही बात है।
0: बहुत सुंदर, अद्भुत है ये बात, मतलब
1: हाँ
0: 60,000 कार्टून
1: हाँ
0: कोई छोटी मोटी बात नहीं है,
1: जी हाँ
0: है ना? 1,000, 2,000, 5,000, 6,000 के आंकड़े तो हम
1: हाँ
0: सुनते ही हैं 10,000 तक के, लेकिन 60,000 कार्टून बनाए रखना और उनको मेंटेन करना बिना किसी विवाद के,
1: हाँ जी,
0: ये कार्टूनिस्ट की बहुत बड़ी सफलता है। चलिए आपसे और बातचीत करने वाले हैं,
1: जी।
0: एक गीत सुन लेते हैं, गीत बताइए।
1: न बोले तुम न मैंने कुछ कहा, फिल्म का नाम है बातों बातों में।
0: बहुत सुंदर गीत है ये,
1: हाँ, अमित
0: आवाज
1: कुमार
0: है
1: और आशा भोसले जी की
0: जी।
1: आवाज है।
0: तो चलिए सुनते हैं
1: जी
0: आपकी पसंद का ये।

0: देवेंद्र जी, जैसा कि मैं ये जानना चाह रही थी, पहले हम बचपन में चंपक और लोटपोट जैसी पत्रिकाएं पढ़ा करते थे और
1: जी।
0: उसमें एक सीरीज चला करती थी कार्टून की, तो क्या ऐसी कोई सीरीज चलाने का आपने भी काम किया है कि एक लंबी सीरीज चल रही है किसी कार्टून पर, किसी विषय पर?
1: जी हाँ, मैडम मोहिनी नाम से एक सीरीज मैंने बनाई थी, वो 600 के लगभग उसकी आवृत्तियां छपी हैं, तो वो बहुत पॉपुलर था, वो परिवारों में, महिलाओं में, और सभी लोग उसे पढ़ते थे।
0: अच्छा,
1: तो उसमें मैडम मोहिनी एक बताई गई है, एक तरुणी, तो वो डबल डेकर स्ट्रिप होती है, जो एक स्ट्रिप ऊपर एक उसके नीचे स्ट्रिप, उस तरह से। तो उसके कुछ मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मैडम मोहिनी बैठी हुई हैं और वो अखबार पढ़ रही हैं, इतने में उनका भतीजा आता है कि मौसी मौसी मुझे जूते पहनना है, जल के जूते पहना दो। तो वो बोलती है कि नहीं नहीं जूते क्या पहनना, अब 4 दिन की तो ये बारिश है और ये वो इस तरह बरसाती जूते तुम बोल रहे हो, तो रहने दो। फिर वो कहता है कि अच्छा तो मुझे एक नया बस्ता ही दिला दो स्कूल जाने के लिए। तो बोले अरे 4 दिन का तो तुम्हारा सेशन है, उसमें क्या नया बस्ता लोगे? तो बोले आप ये क्या अखबार में क्या पढ़ रही हो? बोले अरे झपट मत, मैं तेरे लिए मौसा जी ढूंढ रही हूँ। तो अखबार लेके भाग जाता है और कहता है कि 4 दिन का तो जीवन है, इसमें जीवन साथी क्या ढूंढना।
0: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बिल्कुल।
1: ऐसी इस
0: ये
1: तरह से
0: सीरीज लंबी
1: ये
0: चली
1: सीरीज
0: है,
1: लंबी चली थी, हर हफ्ते
0: लोगों ने
1: उसे
0: काफी पसंद किया,
1: बहुत बहुत
0: खासतौर से
1: पसंद किया।
0: महिलाओं ने।
1: जी जी जी
0: तो क्या महिलाओं के खत आपके पास आए, महिलाओं के फोन आपके पास आए, कोई महिला आपसे मिलने आई कि देवेंद्र जी आपने इतनी खूबसूरत ये सीरीज चलाई है और इसे पढ़ के हम तो गुदगुदा जाते हैं?
1: हाँ, उन्होंने कहा बिल्कुल, और उसमें अखबार में जो प्रतिक्रियाओं का एक कॉलम था, उसमें बहुत प्रतिक्रियाएं आती थी, उसमें वो लिखते थे कि आज देवेंद्र जी ने राह बताई, ये किया वो किया, ऐसे अपनी अपनी टिप्पणियां सब करते
0: बिल्कुल
1: थे।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और हमें तो लगता है कि जब हम अखबार पढ़ते हैं या आज भी पढ़ते हैं या पढ़ते थे, तो वो कार्टून जरूर तलाशते थे सबसे पहले कि अखबार में क्या आया है, ये एक निगाह रहती थी कि आज कौन सा कार्टून आया है किसी का भी, तो ये
1: हाँ
0: निगाह हमेशा रही। तो आपके परिवार में जो और अन्य लोग हैं, आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं, क्या उनका भी कभी विरोध हुआ कि क्या दिन भर आप कार्टून बनाते रहते हैं और हमारी तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं, आप दिन में इतने अपने रिकॉर्ड तोड़ कार्टून बना लिए हैं? तो ऐसा कभी घर पर कोई कार्टून बनाया आपने पति पत्नी विवाद पर या बच्चों के विवाद पर?
1: उन लोगों से मतलब मतभेद का ऐसा अवसर आया नहीं, क्योंकि मैंने ये अखबार में जैसे जॉब रहता है तो उतनी देर के लिए आप बाहर गए, वहाँ कार्टून आप बना के चले आए, और फिर उस चीज को घर में मतलब फिर मैं बताता भी नहीं, कोई पूछे भी कि आप देवेंद्र हैं तो मैं कई बार सोचना पड़ जाता है कि क्या मैं हूं क्या। और फिर जैसे कि अपन लोग बात कर रहे थे कि सबका साथ और सबको लेके चलना, ये जो चीज होती है, तो बच्चों के साथ आप गए मान लीजिए स्कूल लेकर जा रहे हैं, उन्हें घुमा रहे हैं, तो उसमें से भी आपके लिए रॉ मटेरियल इकट्ठा होता है। पत्नी देवी को लेकर आप स्कूटर पे गए सब्जी खरीदने, तो कुछ तो भाव ताव होना, ये सब चीजें, तो वहां भी आप देखते हैं कुछ मिलता है मैटर। जैसे मैंने एक कार्टून बनाया था कि जैसे दल बदल वगैरह ज्यादा होता है ना, तो उसमें मैंने बनाया था कि एक सब्जी वाली बैठी हुई है और तो जो ग्राहक है वो उससे कह रहा है कि भाई आपके जो आलू हैं या विधायक हैं, वो देखो लुढ़क कर उधर टमाटरों में मिल रहे
0: जी
1: तो
0: जी
1: ऐसी चीजें बस ये रोजमर्रा की जो होती हैं
0: जीवन
1: उनसे
0: में,
1: बस।
0: बिल्कुल, यानी
1: हाँ
0: कि कार्टूनिस्ट को

0: बहुत ही पैनी दृष्टि रखनी पड़ती है और हर समय जागरूक रहना होता है कि कब कहाँ से क्या मैटर मिल सकता है और कहाँ कैसा कार्टून बनाया जा सकता है। तो कार्टून की दुनिया में जो आना चाहते हैं, कार्टूनिंग की दुनिया में कदम रखने वाले जो नए कलाकार हैं, युवा कलाकार हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे?
1: उन्हें बस मेरा यही संदेश है कि इस विधा को आप भले ही प्रोफेशनली ना अपनाएं, लेकिन शौकिया अगर आपके अंदर वो इंस्टिंक्ट है तो उसको आप लेकर चलें। और क्योंकि ये विधा सबसे पहले आपको खुश रखेगी, फिर आपके सराउंडिंग को खुश रखेगी, इसलिए आप खुश रहने का एक बहुत अच्छा है नुस्खा है, कैप्सूल है, तो इसको लेके आप साथ में चलें। और इस विधा को साइड में भी रख सकते हैं, लेकिन इसकी जरूरत हमेशा है, क्योंकि हंसी की जरूरत हमेशा है, अच्छे संदेशों की जरूरत हमेशा रहेगी।
0: बिल्कुल सही कहा देवेंद्र जी। आपके आदर्श कौन है? आपने इतना लंबा समय इस दुनिया में बिताया है, कार्टून की दुनिया में, आपके अपने आदर्श कौन रहे? किन से प्रभावित होकर आप आगे बढ़ते रहे?
1: मेरे आदर्श एक तो जीवन में सबसे पहले पिताजी से मैंने प्रेरणा ली, मेरे पिताजी जो हैं
0: जी,
1: और उन्हें मैंने कार्टूनों में बनाया भी है।
0: अच्छा।
1: क्योंकि घर में जब बच्चा देखता है तो सबसे पहले पिता ही नजर आते
0: जी,
1: हैं
0: जी।
1: तो जो कार्टून मैंने आपको अभी सुनाया था करवा चौथ वाला, उसमें हालांकि पिताजी के सिर पे बाल हैं तो उन्हें मैंने बनाया था वहां पर
0: जी।
1: और उन्हें पिताजी को लेकर कार्टून बनाने के अलावा उनसे बहुत सी चीजें मैंने सीखी। एक तो जो हास्य रस, उनमें काफी हर चीज में वो हंसते हैं, सामाजिक बहुत हैं, रिश्ते निभाते हैं। एक तो पिताजी से प्रेरित हुए, फिर उसके बाद जब आगे चलते हैं तो वही आर के लक्ष्मण जी जो सबके प्रेरणा स्रोत चाहते होते हैं, लक्ष्मण जी हुए, सुधीर दर और मारियो मिरांडा साहब ये, और बाहर के कार्टूनिस्टों में उडेर जो और डेविड लो और अपने वॉल्ट डिज्नी, वो तो हैं ही, ये सब चलते हैं। तो इन लोगों से कुछ ना कुछ देखकर और लगा, इनकी विशेषताओं को देख के लगा कि वो उनमें से कुछ हम सीखें।
0: तो क्या लगता है आपको कि जो ये हमारे विदेशी कार्टूनिस्ट हैं, उनमें और हमारे देश के कार्टूनिस्ट की विधा में, सोच में, विचार में कोई अंतर महसूस किया आपने?
1: हाँ, अंतर तो होता है, क्योंकि विदेशी लोग जो है उनके कार्टून्स भी विषय उनके उस तरह के होते हैं और वहाँ के लोग अप्रिशिएट बहुत करते हैं, क्योंकि वो हास्य प्रिय होते हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर उनमें काफ़ी डेवलप्ड होता है उसकी तुलना में। अच्छा, हमारे यहाँ विविधता ज़्यादा है, इतना हम लोग देखते हैं लोक जीवन में और सभी दूर,
0: वहाँ विविधता
1: हाँ,
0: नहीं है
1: उतनी नहीं,
0: लेकिन
1: है।
0: लोगों में जागरूकता बहुत,
1: जागरूकता बहुत है,
0: आम आदमी से जुड़े हैं वो।
1: हाँ, हाँ,
0: हमारे दैनिक जीवन में ये कार्टून नहीं होते हैं,
1: नहीं होते हैं। तो जैसे हम बता देंगे हमारी फिल्मों में और वहाँ की फिल्मों में जो फर्क होता है, हमारी फिल्मों में गाने भी डाले जाते हैं, ये सब चीजें, तो उसी तरह से कार्टून के लिए मैंने जो अपनी एक शैली विकसित की, तो उसमें सभी की थोड़ी कविता भी होती है, थोड़ा नाट्य भी होता है और भाषा का भी आनंद, और बाकी स्केच तो है ही, ताकि एक अच्छा भरा पूरा उसमें एक मटेरियल सबको मिले।
0: तो देवेंद्र जी, चलते चलाते हम बस आखिर में आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि भविष्य में आप अपने कार्टून के माध्यम से क्या नया संदेश देना चाहते हैं? कुछ ऐसे कार्टून्स जो अभी प्रकाशित नहीं हुए हैं जिस पर आप काम कर रहे हो?
1: हाँ, नया विचार यही है कि जो आजकल रिश्ते जो टूट रहे हैं और यानी हम देख रहे हैं कि पहले तो केवल शादियों का मौसम आता था, है ना, उसका भी सीजन होता था कि हाँ भाई अब देव जाग गए या सो गए,
0: बिल्कुल,
1: और अब देख रहे हैं कि हम तलाकों का मौसम चल रहा है और वो बारहमासी है। तो इन चीजों को लेकर कि ये रिश्ते ना टूटे, इंसान समझदारी से इन्हें सहेजे, और जो हम देख रहे हैं कि माता पिता अकेले होते जा रहे हैं, ये सब चीजें एक बड़ी एक सामाजिक समस्याओं के तौर पर छूती हैं मन को, तो इन्हें लेकर काम करने की मेरी इच्छा है कि कार्टूनों के माध्यम से एक सीरीज में ऐसी तैयार करूं और वो प्रदर्शित हो और शायद इससे कुछ असर हो, मेरा भी एक आहुति मेरी भी रहे इसमें
0: जी,
1: सुधार में
0: जी। बहुत ये बात बहुत ही शानदार और एक समसामयिक विचार और गहरी विचार हमारी भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखते हुए कि माता पिता हमारे लिए क्या मायने रखते हैं।
1: हाँ।
0: और हम जो है बड़ी फैमिली में रहने वाले लोग आज कैसे अलग अलग हो गए हैं और जिंदगी में अकेलापन महसूस कर रहे हैं। तो रिश्तों की बात आपने कही कि रिश्तों को बनाए रखना, सहेजना बहुत जरूरी है, इस पर आप काम करना चाहते हैं, स्वागत है, और आपको हम भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम,
0: शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज के मेहमान। आज इस कार्यक्रम में आपने सुनी कार्टूनिस्ट डॉक्टर देवेंद्र शर्मा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत, रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग अंबालिका सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज का आज के मेहमान कार्यक्रम संपन्न होता है। नमस्कार।
3: आज के मेहमान।

समाचार। नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। रांची विश्वविद्यालय का 39वां दीक्षांत समारोह आज रांची में आयोजित किया गया। राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ समारोह में शामिल हुए। इस दौरान 58 मेधावी विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए गए, वहीं 2 शिक्षाविदों को मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी की सीबीआई जांच और आंदोलनरत छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग को लेकर भाजपा का धरना प्रदर्शन आज दूसरे दिन जारी रहा। वहीं कोडरमा जिला मुख्यालय में हटिया विधायक नवीन जायसवाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली। भारत सरकार के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की पहल पर जामताड़ा समाहरणालय स्थित प्रशिक्षण भवन में एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। उपायुक्त आलोक कुमार ने कहा कि पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत 18 ट्रेडों से जुड़े कारीगरों और शिल्पकारों को प्रशिक्षण के साथ वित्तीय सहायता देकर आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। लोहरदगा के पेशरार प्रखंड में विधायक सह पूर्व मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव ने जनसंपर्क अभियान चलाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। जनसुनवाई में आवास, राशन कार्ड, पेयजल, पेंशन, सड़क, बिजली और जमीन से जुड़े मामले सामने आए। विधायक ने कई समस्याओं का

मौके पर समाधान किया और अन्य मामलों में अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए। साहिबगंज के उपायुक्त दीपक कुमार दुबे की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में 42 बच्चों को स्पॉन्सरशिप योजना का लाभ देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इनमें 20 बालक और 22 बालिकाएं शामिल हैं। प्रत्येक पात्र बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य और भरण पोषण के लिए 4000 रुपए प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जाएगी। देवघर एम्स में मरीजों और उनके परिजनों के लिए निःशुल्क शुद्ध पेयजल की सुविधा शुरू की गई है। गुड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने आज एम्स परिसर में नमो जल सेवा का उद्घाटन किया। सेवा के तहत आरओ से फिल्टर किया हुआ ठंडा पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार। मन अनायास कह उठता है, तुझे देखा लगता है तुझे चाहा, और शायद यही तो प्रेम की सच्ची और मासूम परिभाषा होती है। प्रेम को हमेशा शब्दों की जरूरत नहीं होती, कई बार एक नजर, एक मुस्कान और एक अनकही सी चाहत ही दिल की पूरी कहानी कह देती है। किसी को चाहना उसके साथ होने का नाम नहीं, बल्कि उसके ख्याल से ही मन का महक उठना है।

चलो वे एक ऐसा संसार बुने जहां सिर्फ प्यार की बारिश होती हो, झीलों पर एक हाउस बोट हो जहां गुजर जाए पूरी जिंदगी, जहां सुबह सुबह हाउस बोट की खिड़की पर कोई धर जाए फूलों की टोकरी, एक ऐसा जहां हो जहां सुबह खिले मुस्कानों के साथ, जहां प्यार भरी गुफ्तगू से नरम धूप खिल जाए, जहां सपनीली आंखों से आसमान की ओर देखें तो शाम खुशगवार हो जाए, मुस्कुराएं तो चांद खिल उठे।

जरा सी बात कहनी थी कि प्यार है तुमसे, पर सदी बीत गई, जुबान से शब्द नहीं फूटे, नहीं कह पाए प्यार है तुम्ही से। पलकों की पंखड़ी में ही बंद रही प्यार की पोटली, शायद सच्चे प्यार की यही है परिभाषा। वो प्यार ही क्या जिसका बार बार बखान किया जाए, वो याद ही क्या जिससे प्यार ना हो, वो याद ही क्या जो हर वक्त दिल के करीब ना हो।

दोस्तों, विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। बंद लिफाफे की तरह है सच्चा प्यार, लिफाफा खुलते ही आंखों को दिख जाती है कागज पर लिखी इबारत। मन की किवाड़ का सांकल खटखटाते ही खुद को खबर हो जाती है कि मन प्यार की गिरफ्त में है। प्यार का वही जमाना भला था जब चुपके से होता था प्यार, पलकों के भीतर रेशमी ख्वाब की तरह बंद, छुई मुई की तरह नाजुक होता था प्यार का वो जमाना। जमाना कोई भी हो, प्यार में इंतजार, समर्पण, किसी के लिए मर मिटने की तड़प हमेशा बाकी रहती है। प्यार में इंतजार बड़ा ही मीठा लगता है।

ढलती हुई रात से गुफ्तगू, चांद का सफर जारी है। चांद का मुस्कुराना उस रोज भी कुछ ऐसा ही था जब हुई थी मुलाकात उनसे। तारों की ओढ़नी पहनकर रात निकल पड़ी थी सैर पर। खूबसूरत हो रात, मनमीत हो साथ, तो बस जिंदगी में और क्या चाहिए।

आंसू और मुस्कान से मिलकर बनती है जिंदगी, पर दिल नहीं मानता। मुस्कानों को अपना हमसफर बनाकर उसी के गले लगना चाहता है, पर कभी कभी आंसू की लड़ियां भी दिल को सहलाती हैं। कई बार ये यादों की घाटी में ले जाकर खुली हवा में छोड़ देती हैं, जहां लम्हों के बेहिसाब फूल होते हैं, जिन्हें छूकर हम हौले से मुस्कुरा देते हैं। आंसू और मुस्कान से बनी जिंदगी से फिर से बे इंतहा मोहब्बत कर बैठते हैं।

अभी आप विविध भारती के कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। सायंकालीन सभा में श्रोताओं आपका स्वागत है। आइए हम एक नज़र डालते हैं इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर।

शाम 5:35 पर महिलाओं के लिए कार्यक्रम सुनेंगे घर आंगन। घर आंगन कार्यक्रम में आज चर्चा होगी बुजुर्गों का रखे विशेष ख्याल और बरसात के मौसम में खानपान। वार्ता में सुनेंगे महिला हिंसा का बदलता स्वरूप एवं कानूनी व्यवस्था। वार्ताकार होंगी दुर्गा कुमारी। 6 बजे का समय होगा प्रादेशिक समाचार का। 6:02 पर ग्रामीणों के लिए कार्यक्रम सुनेंगे खेतीबाड़ी। खेतीबाड़ी कार्यक्रम में आज चर्चा होगी खेतों को परती ना छोड़े किसान। साथ ही चर्चा में सुनेंगे कम पूंजी में सागों की खेती। भेंट वार्ता में

7 बजे का समय होगा प्रादेशिक समाचार का और 7:10 पर झीली में आज कल आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। 7:15 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुनिएगा एक रंग और 7:45 पर कल्याणी कार्यक्रम के अंतर्गत भेंटवार्ता में आप सुनेंगे मलेरिया कारण एवं निदान। भेंटवार्ताकार होंगे डॉक्टर अनिल कुमार श्रीवास्तव और भेंटकर्ता होंगे संजय कुमार मिश्रा। 8 बजे फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुन सकेंगे चित्रपट से।

रात्रि के 8:45 पर हिंदी में समाचार, 9:00 अंग्रेजी में समाचार, 9:15 पर उर्दू में खबरें आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 9:30 पर आज के फनकार आप सुन सकेंगे विविध भारती से। 10:00 का समय होगा फिल्मी गीतों का और कार्यक्रम होगा रजनीगंधा। 11:00 का समय होगा हिंदी में समाचार का और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार का। रात्रि के 11:10 पर हम अपने सभा का समापन करेंगे। तो ये थी संक्षिप्त रूपरेखा इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए प्रस्तुत है महिलाओं के लिए कार्यक्रम घर आंगन।

घर आंगन कार्यक्रम सुनने वाली तमाम श्रोता बहनों को सुनीता का नमस्कार। स्वागत है बहनों आज के इस कार्यक्रम में। बहनों आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत हम करेंगे एक बहुत ही प्यारे गीत के साथ।

बहनों, यदि हम अपने घर के बुज़ुर्गों की बात करें तो आज अधिकांश बड़े बुजुर्ग अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, या कहें कि उपेक्षित सा महसूस करते हैं। आखिर क्यों? जबकि हम ये जानते हैं बहनों कि परिवार हमारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत होती है, और परिवार में बच्चे, युवा, महिलाएं और बड़े बुजुर्ग सभी की अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। घर के बड़े बुजुर्ग हमारे अनुभव और संस्कारों के भंडार होते हैं। उन्होंने अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा परिवार की जिम्मेदारियों को निभाते और बच्चों के भविष्य को संवारने में लगा देते हैं। इसीलिए उनका सम्मान करना, उनकी देखभाल करना हम सभी की जिम्मेदारी होती है, कर्तव्य होती है। खास करके घर की बहनें और बेटियां अपने बड़े बुजुर्गों की देखभाल में महत्वपूर्ण भूमिका उन्हें अवश्य निभानी चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी कोशिशों से बुजुर्गों को स्वस्थ, सुरक्षित और खुश भी रखा जा सकता है। सबसे जो ज़रूरी बात है बहनों, वो ये कि जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं ना, वे समय और अपनेपन के वे खोज में होते हैं। बुज़ुर्गों को केवल दवा या भोजन देना ही काफ़ी नहीं होता है, उन्हें परिवार के लोगों के साथ मिलकर बैठकर गपशप करनी होती है, बातचीत करनी होती है। और बहनों, हम तो यही कहेंगे कि कुछ समय निकालकर आप ज़रूर उनके पास बैठें, उनकी बातों को सुनें और उनके पुराने अनुभव के बारे में भी पूछें। इससे उन्हें ये महसूस होगा कि उनका जो महत्व है परिवार में आज भी है, और मात्र उनका ये थोड़ा सा दिया हुआ वक्त उनके लिए बहुत बड़ी दवा के रूप में काम करती है। जी हाँ बहनों, अगर हम समय पर उन्हें खाना दे देते हैं, दवा भी दे देते हैं, लेकिन उनके साथ नहीं बिताते हैं, तो ये कमी उन्हें खलती है और अंदर ही अंदर वे अपने आप को काफ़ी अकेला महसूस करते हैं। बहुत बुज़ुर्गों को जो है बहुत देखभाल की आवश्यकता पड़ती है। समय पर उन्हें भोजन पानी तो देनी ही चाहिए, साथ ही साथ बीच बीच में आपसे ये भी पूछना होता है कि जो दवा ले रहे हैं वो उन्होंने लिया कि नहीं लिया। अगर नहीं लेते हैं तो उनके आप मदद अवश्य कीजिए, और साथ ही साथ उन्हें अकेले कहीं भी ना जाने दें, जैसे कि भीड़ भाड़ वाली जगह हो गई, या सड़क पार करनी हो, या फिर किसी पार्क में जा

तो इन सभी जगहों में आप कोशिश करें कि उन्हें अकेले ना भेजें। उम्र के साथ उनके खान पान पर भी विशेष ध्यान देनी होती है। बहुत ज़्यादा तली भुनी चीज़ें उनके लिए थोड़ा भारी हो जाता है और उन्हें पचा पाने में वे असमर्थ होते हैं। इसलिए उनके उम्र के ख्याल से उन्हें जो है खान पान होनी चाहिए, हरी साग सब्जियाँ होनी चाहिए, पौष्टिक आहार है उनमें फल सब्जियाँ इत्यादि होनी चाहिए, दाल होनी चाहिए, दूध होनी चाहिए, ये सब जो भी संतुलित आहार है वो सभी होनी चाहिए। इसके अलावा बहनों ध्यान रहे कि बुजुर्गों की भावनात्मक जो ज़रूरतें हैं उन्हें समझना बहुत ही आवश्यक है और उनके जो भी मनपसंद चीज़ें होती हैं, जैसे बहुत सारे बुजुर्ग जो है वो जो खास उनकी रुचि होती है, जैसे लोगों से मिलकर बातचीत करना या फिर किसी को गीत संगीत का शौक़ होता है तो किसी को कुछ भी शौक़ हो सकता है, तो उनकी शौक़ को आप समझें और उसे पूरा करने में मदद करें। इससे वे अपने आप को अकेला पल महसूस नहीं करेंगे। और बहनों, मान सम्मान तो हर कोई चाहता है और जो घर के इतने बड़े जो हमारे बुजुर्ग होते हैं वो काफ़ी अनुभवों से गुजर चुके होते हैं और उनका आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए और उनके आदर और मान सम्मान करने से हम छोटे नहीं हो जाते, बल्कि उनके सामने झुक जाने से हमारा जो है वो कद और भी बढ़ जाता है। इसीलिए हमेशा बड़ों के सामने झुक के रहें, नम्र से रहें, कभी भी ऊंची आवाज़ में बातें ना करें। अगर आप ऊंची आवाज़ में बातें करते हैं तो शायद उन्हें दिल बहुत दुख पहुंचता है। इसीलिए कोशिश करें कि बड़े बुजुर्ग के साथ हमेशा नम्रता से पेश आएँ और उनकी सभी चीज़ों का ख्याल बहुत ही अच्छी प्रकार से रखें, तो निश्चय ही घर के बड़े बुजुर्ग होंगे वो खुश होंगे और यदि वे खुश होंगे तभी हम भी खुश रह पाएंगे। तो चलिए बहनों, इस जानकारी के बाद अब हम आपको सुनवाते हैं एक वार्ता, महिला हिंसा का बदलता स्वरूप एवं कानूनी व्यवस्था। इस पर जानकारी देंगी दुर्गा कुमारी।

संस्कृति में क्या खूब कहा गया है, यत्र नार्यास्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा की जाती है, उनका सम्मान किया जाता है, वहाँ देवी देवताओं का वास होता है। मैं यह बात बड़े गर्व के साथ कह सकती हूँ कि मैं खुद भी एक नारी हूँ। आज का हमारा शीर्षक है महिला हिंसा का बदलता स्वरूप एवं कानूनी व्यवस्था। आज हमारा देश हर क्षेत्र में उन्नति के पथ पर चल रहा है, हमारे लिए बहुत ही सम्मान की बात है, लेकिन इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है कि इतने समय बाद भी हमारे देश में आज भी महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का कोई उचित समाधान नहीं मिल पाया। आज भी हमारे देश में महिलाओं की स्थिति में कोई खास सुधार देखने को नहीं मिल पा रहा है। महिलाएं घर या सार्वजनिक स्थानों, दफ्तरों, कहीं भी हिंसा का शिकार हो जाती हैं। भारतीय दंड संहिता के अनुसार बहला फुसला कर भगा ले जाना, बलात्कार, दहेज के लिए मार देना, शारीरिक शोषण, यौन उत्पीड़न और अपहरण जैसे गंभीर अपराध की श्रेणी में आते हैं, और यह सारे हिंसाग्रस्त अपराध महिलाओं पर किए जाते हैं। यह बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हिंसा का मतलब केवल शारीरिक चोट पहुंचाना नहीं, बल्कि किसी को अशब्द बोलकर उसे मानसिक तनाव देना भी एक तरह का हिंसा है। किसी भी राष्ट्र की तरक्की हेतु उस राष्ट्र की महिलाओं का शिक्षित होना बहुत जरूरी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहा करते थे, आप किसी राष्ट्र में महिलाओं की स्थिति देखकर उस राष्ट्र का हालात बता सकते हैं। कहा जाता है कि एक शिक्षित नारी ही राष्ट्र की सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति का आधार होती है। अतः नारी शिक्षा को नज़रअंदाज करने का अर्थ देश के भविष्य को अंधकार में डाल देना है। आज घरेलू हिंसा समेत बढ़ते अन्य महिला अपराध चिंता का विषय है। इसको लेकर अपने अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति महिलाएं जागृत हों, इसके लिए सबसे आवश्यक है उनका शिक्षित होना। इसके लिए माता पिता के साथ साथ घर के सभी सदस्यों को जागरूक होना पड़ेगा। उन्हें यह समझना ही होगा कि शिक्षा ही अंधकार को प्रकाश में बदलता है। महज पुलिस की भूमिका को केंद्र में रखकर महिलाओं के लिए समाज को सुरक्षित नहीं बनाया जा सकता है। हमें लैंगिक रूप से संवेदनशील सामाजिक और कानूनी न्याय व्यवस्था की जरूरत है। आज की बेटियां शिक्षित हो ताकि वो समाज व देश में अपना अधिकारों को जान सके। यही नहीं, शिक्षित महिला आर्थिक व पारिवारिक चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होती हैं। आज की पीढ़ी अगर शिक्षा से वंचित है तो इसका जिम्मेदार उनके माता पिता व परिवारजन ही हैं, कारण चाहे जो भी हो। आज महिला अपराध व घरेलू हिंसा अशिक्षित समाज व अवसादग्रस्त समाज की मानसिकता का परिणाम है। लगभग 3 दशक पूर्व एक प्रभावशाली आलेख में अमर्त्य सेन ने लिखा कि 10 करोड़ से भी अधिक महिलाएं लापता हैं। जीवन प्रत्याशा के मामले में महिलाओं की हर आयु वर्ग में पुरुषों पर बढ़त के बावजूद दुनिया के अनेक हिस्सों में महिलाओं व पुरुषों का अनुपात पुरुषों के पक्ष में है। अबला तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। महिलाओं के प्रति होती हिंसा में लगातार इजाफा हो रहा है और अब तो ये चिंताजनक विषय भी बन चुका है। हालांकि महिलाओं को जरूरत है कि वे खुद दूसरों पर निर्भर न रहकर अपनी जिम्मेवारी खुद लें तथा अपने अधिकारों सुविधाओं के प्रति जागरूक हों। इसके अलावा महिलाओं को भरपेट खाना न मिलना, सही स्वास्थ्य सुविधा की कमी, शिक्षा के पर्याप्त अवसर न होना, पत्नी से मारपीट, परिवार में वृद्ध महिला की अनदेखी आदि समस्याएं भी महिलाओं को सहनी पड़ती थी। भारत में महिला हिंसा से जुड़े केसों में होती वृद्धि को कम करने के लिए 2015 में भारत सरकार जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन बिल लाई। इसका साल 2000 के इंडियन जुवेनाइल लॉ के बदलने का था, क्योंकि इस कानून के चलते निर्भया केस के जुवेनाइल आरोपी को सख्त सजा नहीं हो पाई। इस कानून के आने के बाद 16 से 18 वर्ष के किशोर जो गंभीर अपराध में संलिप्त हैं के लिए भारत कानून के अंतर्गत सख्त सजा का प्रावधान है। सामाजिक अपराध एक गहरी जड़ वाली बीमारी की अभिव्यक्ति है, जिसे अहंकार कहा जाता है। अहंकार के कई कारण हो सकते हैं। छेड़खानी जैसे अपराध करने वाले अपराधियों को गोपियों को छेड़ने और यमुना नदी में उनके कपड़े चुराने वाली कहानियों से देवी प्रेरणा और बहुत ताकत मिलती है। किसी लड़की को परेशान करना, पीछा करना और लुभाना पितृसत्ता का सामान्य और जन्मसिद्ध अधिकार माना जाता है। यदि यह अधिकार लड़की द्वारा पूरा नहीं किया जाता है तो उसे निराश व्यक्तियों द्वारा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। किसी महिला का अपराध, अपहरण, चीरहरण या उसकी अग्नि परीक्षा दंडनीय अपराध है। सामाजिक अपराध का एक दूसरा कारण यह भी है कि महिलाएं ऊर्जा का एक पावर हाउस हैं और कठिन कार्यों
को धैर्य और सहन शक्ति के साथ करती हैं, इसलिए उन्हें गुलाम बनाने के लिए या अधीनस्थ बनाकर रखने के लिए नैतिकता की पौराणिक कहानियाँ महिलाओं के इर्द गिर्द बनाई जाती हैं, जिन्हें चतुराई से समाज में फैलाया जाता है और उन्हें अपने विरुद्ध हर अपराध और शोषण को सहने के प्रशिक्षण दिया जाता है। महिलाओं के खिलाफ अपराध के उदाहरणों का उद्देश्य उनकी आत्मबल को कमजोर करना और मनोबल को गिराना है, ताकि वह घर और बाहर हर जगह एक अधीनस्थ के रूप में कार्य करती रहें। महिलाओं के खिलाफ हिंसा आमतौर पर महिलाओं को अधीनस्थ स्थिति में रखने के लिए सामाजिक नियंत्रण का एक उपकरण है। हमें कुछ ऐसा करने की ज़रूरत है जो हिंसा के शिकार लोगों को हिंसा के बाद भी सबल बनने में मदद करें। कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। भारत में महिलाएं हर तरह के सामाजिक, धार्मिक, प्रांतिक परिवेश में हिंसा का शिकार हुई हैं। महिलाओं को भारतीय समाज के द्वारा दी गई हर तरह की क्रूरता को सहन करना पड़ता है, चाहे फिर वो घरेलू हो या सामाजिक, शारीरिक, मानसिक या आर्थिक। भारत में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को बड़े स्तर पर इतिहास के पन्नों में साफ देखा जा सकता है। वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति आज के मुकाबले बहुत सुखद थी, पर उसके बाद समय बदलने के साथ साथ महिलाओं के हालातों में भी काफी बदलाव आता चला गया। परिणाम स्वरूप हिंसा के होते इजाफे के कारण महिलाओं ने अपने शिक्षा के साथ सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक समारोह में भागीदारी के अवसर भी खो दिए। महिलाओं पर बढ़ते अत्याचारों के कारण उन्हें भरपेट भोजन नहीं दिया जाता था, उन्हें अपने मनपसंद कपड़े पहनने की अनुमति नहीं थी, उन्हें गुलाम बना के रखा जाने लगा। महिलाओं को सीमित तथा आज्ञाकारी बनाने के पीछे पुरुषों की ही सोच थी। पुरुष महिलाओं को एक वस्तु के रूप में देखते थे, जिसे वे अपनी पसंद का काम करवा सके। भारतीय समाज में अक्सर ऐसा माना जाता है कि हर महिला का पति उसके लिए भगवान के समान है। उन्हें अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखना चाहिए तथा हर चीज के लिए उन्हें अपने पति पर निर्भर रहना चाहिए। पुराने समय में विधवा महिलाओं के दोबारा विवाह पर पाबंदी थी तथा उन्हें सती प्रथा को मानने का दबाव डाला जाता था। मध्यकालीन युग में इस्लाम और हिंदू धर्म के टकराव ने महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को बढ़ावा दिया। नाबालिग लड़कियों का बहुत कम उम्र में विवाह कर दिया जाता था और उन्हें हर समय पर्दे में रहने की सख्त हिदायत दी जाती थी। इसी कारण महिलाओं के लिए अपने पति तथा परिवार के अलावा बाहरी दुनिया से किसी

0: भी तरह का संपर्क स्थापित करना नामुमकिन था। इसके साथ ही समाज में बहुविवाह प्रथा ने जन्म लिया, जिससे महिलाओं को अपने पति का प्यार दूसरी महिलाओं से बांटना पड़ता था। परंतु अब महिला हिंसा का स्वरूप बदलता जा रहा है। पहले महिलाओं को बाहर नहीं जाने दिया जाता था, अब उनको बाहर तो जाने दिया जाता है, लेकिन बाहर और घर दोनों जगह परेशान किया जाता है। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड रिपोर्ट के अनुसार लगभग 2/3 विवाहित भारतीय महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार हैं, और भारत में 15 से 49 आयु वर्ग की 70% विवाहित महिलाएं पिटाई, बलात्कार या जबरन यौन शोषण का शिकार हैं। हम सब जानते हैं सोशल मीडिया का क्रेज कितना बढ़ा हुआ है, उसके द्वारा भी महिलाओं का गलत उपयोग किया जाता है। उनके निजी तस्वीरों को वायरल करना, तरह तरह के मीम्स बनाना, फनी वीडियोस बनाकर उनका गलत उपयोग किया जाता है। इसका अर्थ ये है कि आधुनिक भारत में भी साइबर क्राइम के जरिए महिलाओं का अत्यधिक शोषण किया जाता है। ये ऐसा करना इसलिए भी संभव हो पाता है क्योंकि महिलाएं खुद भी जागरूक नहीं हैं, और दूसरा कारण जानकारी का अभाव होना भी है। हालांकि इसकी रोकथाम के लिए सरकार द्वारा अथक प्रयास किया जा रहा है, जैसे स्लोगन लिखना, इसके रोकथाम के लिए बहुत सारी धाराएं लागू की गई हैं। शोषण के खिलाफ अधिकार अधिनियम, संपत्ति पर महिलाओं का अधिकार, सती आयोग निवारण अधिनियम, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न निवारण निषेध अधिनियम, महिलाओं का अश्लील चित्रण प्रतिषेध अधिनियम इत्यादि। पर यह महज किताब के पन्नों में ही सिमट कर रह गया है। इसे हम धरातल पर अभी भी नहीं उतार पाए हैं। जिस दिन हम ये ठान लें तो निश्चित ही हमारा घर, परिवार, समाज, राज्य और देश बदलेगा। मीरा की अमर भक्ति जहर से मर नहीं सकती, झांसी वाली रानी है किसी से डर नहीं सकती, मदर टेरेसा कल्पना हो या सानिया मैरी, असंभव क्या है दुनिया में जो नारी कर नहीं सकती। आज के आधुनिक युग में भी महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले कमतर रखा जाता है। अगर महिलाओं को उचित शिक्षा ही नहीं मिल पाएगी तो वह आगे कैसे बढ़ेंगी। जिस घर की महिलाएं शिक्षित ना हो तो वो अपने आने वाली पीढ़ी को क्या शिक्षा देंगी। वैसे भी कहा गया है कि बच्चे की पहली गुरु उसकी माँ और पहला विद्यालय उसका परिवार होता है। एक पुरुष को शिक्षित करके हम एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं, परंतु किसी नारी को शिक्षित करके हम एक परिवार को शिक्षित करते हैं। ये बात तो हम सभी जानते हैं, पर इस बात पर अमल कुछ लोग ही कर पाते हैं। हम सभी जानते हैं कि शिक्षा के बिना मनुष्य जीवित पशु पक्षी के समान है, तो फिर समाज के अहम हिस्से से स्त्री को शिक्षा से क्यों वंचित रखा जाए। हमारे समाज में पुरुष और स्त्री एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तो फिर अधिकार भी दोनों को एक समान प्राप्त होना चाहिए। वैसे तो नारी शिक्षा हेतु राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। 2015 में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की शुरुआत बालिकाओं को शिक्षित करने की दिशा में एक सार्थक प्रयास है। यह हमारे लिए बहुत ही खेद की बात है कि स्वतंत्रता के 75 वर्ष बाद भी महिलाओं को उचित सम्मान नहीं मिलता है। आज भी पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को हर कदम पर रोक टोक किया जाता है। एक तरफ तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस, मातृ दिवस जैसे कई सारे दिवस मनाए जा रहे हैं, परंतु बात जब हमारे दैनिक जीवन में उतारने की हो तो लोग भूल जाते हैं। शायद महिला सशक्तिकरण का अर्थ ही है महिलाओं को पूर्ण रूप से शिक्षित करना एवं उन्हें स्वतंत्रता प्रदान करना। अगर उन्हें अवसर मिले तो वो जरूर निखरेंगी। बस जरूरत है हमें अपनी सोच बदलने की, उसे अपने जीवन में पहल करने की। अब जाते जाते बस मैं इतना ही कहूँगी कि हमें ना देवी सा मान चाहिए, ना दासी सा अपमान चाहिए। इस पुरुष प्रधान समाज में नारी को नारी सा सम्मान चाहिए। धन्यवाद।
1: बहनों, अभी आप सुन रहे थे वार्ता महिला हिंसा का बदलता स्वरूप एवं कानूनी व्यवस्था, इस पर जानकारी दे रही थी दुर्गा कुमारी। और चलिए बहनों, इसके बाद हम आपको सुनवाते हैं एक और

अभी हमारी बहनें सुन रही थी कार्यक्रम खैरांगन। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। अगला प्रसारण रांची केंद्र से होगा, जहां से आप सुनेंगी प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि एसआईआर के लिए विशेष रूप से नया जाति या आवासीय प्रमाण पत्र बनवाने की आवश्यकता नहीं है। सत्यापन का कार्य नागरिकों के पास पहले से उपलब्ध वैध दस्तावेजों के आधार पर किया जाना है। श्री कुमार राज्य के सभी सीएससी प्रबंधकों और उप निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की ऑनलाइन माध्यम से समीक्षा कर रहे थे। मेरा युवा भारत की ओर से युवाओं को राष्ट्र निर्माण से जोड़ने के लिए विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का आयोजन किया जा रहा है। राज्य निदेशक ललिता कुमारी और उपनिदेशक श्वेता सिंह ने आज रांची में बताया कि 30 सितंबर तक ऑनलाइन क्विज में युवा हिंदी और अंग्रेजी में भाग ले सकते हैं। चतरा में सशस्त्र सीमा बल की 35वीं बटालियन ने अपना स्थापना दिवस मनाया। चतरा कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में नागरिक कल्याण और महिलाओं के कौशल विकास पर जोर दिया गया। मुख्य अतिथि विधायक जनार्दन पासवान ने महिलाओं को ब्यूटीशियन प्रशिक्षण देने की पहल की सराहना करते हुए इसे आजीविका से जोड़ने वाला कदम बताया। रामगढ़ में खाद्य सुरक्षा विभाग ने अमानक, मिसलेबलिंग और भ्रामक दावों वाले खाद्य पदार्थों के खिलाफ औचक जांच अभियान चलाया। इस दौरान कई दुकानों का निरीक्षण कर कई उत्पाद हटाए गए। चतरा से लोजपा विधायक और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जनार्दन पासवान ने अपने बेटे सौरभ के साथ रांची में हुई मारपीट और कथित अपहरण प्रयास मामले पर पुलिस के बयान का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि उनके बेटे ने शराब का सेवन नहीं किया था और मामले को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। गिरिडीह नगर थाना में युवक से कथित मारपीट के मामले में एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने जांच के आदेश दिए हैं। एएसपी और डीएसपी मामले की जांच करेंगे। जांच प्रभावित ना हो इसके लिए नगर थाना प्रभारी रतन कुमार सिंह को लाइन हाजिर किया गया है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम 103 मेगाहर्ट्ज पर लीजिए प्रस्तुत है किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम खेती बारी।

0: खेतीबाड़ी कार्यक्रम सुनने वाले तमाम किसान भाई बहनों को सुनीता को नमस्कार। स्वागत है श्रोताओं आज के इस कार्यक्रम में। श्रोताओं यदि मिला जुला के देखा जाए तो इस वर्ष बारिश अच्छी रही और खरीफ फसलों की बुआई भी लगभग लगभग हो चुकी है, लेकिन खेतों के कुछ हिस्सा या भूमि अभी भी खाली छोड़ दी गई है। खाली छोड़ देने पर किसानों को नुकसान ही उठाना पड़ता है। ऐसा बिल्कुल भी ना करें हमारे किसान भाई, क्योंकि यदि किसान भाई इस ज़मीन का सही तरीके से उपयोग करते हैं तो वे बहुत अच्छी आमदनी का उन्हें जरिया मिल सकता है या बन सकता है। आज हम बातें करेंगे किसान भाइयों कि इन खाली पड़े भूमि का उपयोग आप किस किस प्रकार से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बातें करेंगे दलहनी फसलों की। जी हाँ श्रोताओं, खेती करना बहुत ही लाभदायक होता है दलहनी फसलों की। जी हाँ, दलहनी फसल जो होते हैं श्रोताओं, जैसे हम बता दें कि मूंग उड़द मसूर चना इत्यादि दलहनी फसलें होती हैं, और इनको जो सबसे बड़ी खूबी है वो ये है कि ये मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाते हैं, जिससे ज़मीन की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि अगले फसल के लिए ये मिट्टी में नाइट्रोजन उर्वरक की जो मात्रा है इसमें मिट्टी में बढ़ जाती है, तो हमारे किसान भाइयों को इससे लागत में कमी आती है क्योंकि उन्हें नाइट्रोजन की कम मात्रा डालनी होती है। तो ये एक बहुत बड़ी खूबी है श्रोताओं। और यदि जैविक तरीके से तैयार की गई तरीके से यदि मिट्टी में पोषक तत्व तैयार होते हैं तो निश्चय ही फसलों के लिए काफ़ी लाभदायक होते हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वो हरी खाद की खेती। तो हमारे किसान भाई चाहे तो अपने खाली पड़े खेतों में ढैचा से नई जैसे फसलें लगा सकते हैं और इन दलहनी फसलों को भी लगा सकते हैं हरी खाद के लिए। तो जब ये पौधे बड़े हो जाते हैं, जब उनमें फूल आने की अवस्था होती है, तो उसे पाटा चलाकर मिट्टी में मिला दिया जाता है। ऐसा करने से मिट्टी में जो जैविक पदार्थ है वो बढ़ जाते हैं और मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार होती है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति में सुधार होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे मिट्टी की उत्पादन क्षमता भी बढ़ जाती है और इसमें कीट पतंगे जो भी हो, बीमारियां भी हो, लगने की संभावना कम हो जाती है और अगले फसल के लिए ये काफ़ी लाभदायक सिद्ध होता है। और यदि हम बातें करें सब्जी की खेती पे, तो ये हम सभी जानते हैं श्रोताओं कि आज सब्जी की खेती करना किस प्रकार से लाभदायक व्यवसाय साबित हो रहा है सभी हमारे किसान भाइयों के लिए, क्योंकि सब्जी की मांग सालों भर होती है बाज़ारों में। और यदि मौसमी साग सब्जियों की खेती करते हैं हमारे किसान भाई सालों भर, तो उससे तो इन्हें अतिरिक्त कमाई होती ही होती है और सब्जियों से बहुत अच्छा मुनाफा भी इन्हें मिल जाता है। अभी समय है कि किसान भाई अपने खेतों में टमाटर बैंगन मिर्च गोभी इत्यादि लगा सकते हैं और अभी एक दो महीने में आने वाले समय में इनकी अच्छी मांग होगी और काफ़ी अच्छा ही वे मुनाफा भी कमा सकते हैं। लेकिन सब्जियों की खेती करते समय कुछ बातों का वे ख्याल जरूर रखें। जब भी उर्वरक का प्रयोग करें तो जैविक उर्वरक की प्रयोग करें और साथ ही साथ जल निकास की व्यवस्था भी अच्छी होनी चाहिए। अब हम बातें करेंगे चारा फसलों की। तो आज यदि हमारे जो भी किसान भाई ये अक्सर पशुपालक भी हैं और पशुओं के लिए हरा चारा उन्हें काफ़ी महंगी खरीदनी पड़ती है, तो यदि अपने खेतों में वे हरा चारा का खुद से खेती करते हैं जैसे बरसीम नेपियर घास ज्वार बाजरा, तो इससे उन्हें काफ़ी राहत मिलेगी। पशुओं के लिए तो हरा चारा मिलेगा ही, संतुलित आहार भी मिलेगा, साथ ही साथ उनकी लागत में भी कमी आएगी और जो पशु दूध देने वाले हैं तो उनकी दूध उत्पादन क्षमता भी बढ़ जाती है हरे चारे से। तो हरा चारा की खेती करना भी उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है। अब हम बातें करते हैं श्रोताओं फलदार वृक्ष की। तो खाली पड़े ज़मीन की सबसे अच्छा जो उपाय है वो ये है कि आप इसमें फलदार वृक्ष लगा सकते हैं। इसकी खूबी ये है श्रोताओं कि यदि एक बार आप फलदार वृक्ष लगा देते हैं तो दो तीन साल के बाद वो आपको फल देने शुरू कर देते हैं और जब एक बार फल देने शुरू हो जाते हैं तो काफ़ी लंबे समय तक ये उनसे जो है फल का उत्पादन मिलते रहता है और आप इसे हर वर्ष बेच के उसे अच्छा मुनाफा कमाते रहते हैं। तो हमारे यहाँ जैसे कि आम, अमरूद, नींबू, पपीता, बेल वगैरह वगैरह लगाए जा सकते हैं, जो बहुत कम मेहनत, बहुत कम पूंजी में और बहुत कम खर्च में आप चाहे तो इसे आसानी से उगा सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। खाली पड़े ज़मीन में आप मशरूम उत्पादन भी कर सकते हैं, बकरी पालन कर सकते हैं, बत्तख पालन कर सकते हैं, मुर्गी पालन कर सकते हैं, अनेक विकल्प हैं श्रोताओं। ये आपकी अपनी रुचि, क्षमता और क्षेत्र विशेष के अनुसार निर्भर करती है कि आप किस चीज़ का चुनाव करते हैं, लेकिन आप भूमि को प्रति बिल्कुल न छोड़ें, उसका किसी न किसी प्रकार से उपयोग करते हैं तो उसका लाभ आपको मिलता ही मिलता है। तो चलिए श्रोताओं, अब हम बढ़ते हैं भेंट वार्ता की ओर। तो आज हम भेंट वार्ता में आपको सुनाएंगे पपीता की खेती एवं उसकी देखभाल, इस पर जानकारी देंगे कृषि विशेषज्ञ दिलीप कुमार पांडे और इनसे बातचीत करेंगे संतोष कुमार। तो आइए सुनते हैं भेंट वार्ता।
1: तमाम किसान भाइयों को संतोष कुमार का प्यार भरा नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम किसान वाणी में। ग्रामीण भाइयों, कार्यक्रम में आज हम बातें करेंगे उद्यान की, और सर्वप्रथम उद्यान में हम बातें करेंगे पपीता की खेती हमारे ग्रामीण बंधु किस प्रकार करें कि वो अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर सकें, अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। और इस संदर्भ में जानकारी साझा करने के लिए आज हमारे साथ हैं पलामू जिला के कृषि विज्ञान केंद्र चियाकी के प्रक्षेत्र प्रबंधक दिलीप कुमार पांडे जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: सर्वप्रथम तो हमारे ग्रामीण भाइयों को ये बताया जाए कि हमारे ग्रामीण बंधु अगर उद्यान में पपीता का चुनाव करते हैं उसकी खेती प्रारंभ से किस प्रकार से करेंगे।
2: पपीता की खेती के लिए सबसे बड़ा चीज़ जो मुख्य बात है, हम लोग देखते हैं कि बहुत कम दिन का पौधा है। आप जब लगाएंगे तो 13 से 14 महीने के बीच में आपको अपना फलन प्राप्त हो जाएगा
1: जी।
2: और पपीता के साथ जो सबसे बड़ी खास बातें हैं कि जब हम सारे जो फल लगाते हैं जुलाई में और पपीता को हम लोग बरसात के बाद लगाते हैं, तो जो किसान भाई अभी के समय में अपने आप को, चूंकि जुलाई में बहुत ज़्यादा वर्क फोर्स अन्य खेती के कामों में लगा होता है और अभी के समय में वर्क फोर्स खाली है, तो उसका भी समुचित रूप से प्रयोग हो जाता है। अब बात आती है, सबसे पहला चीज़ होता है कि ज़मीन का चुनाव। तो पपीता के लिए ज़मीन के चुनाव की जब हम बात करते हैं तो हमको ऐसे ज़मीन का चुनाव करना चाहिए जिसमें पानी लगने की समस्या नहीं हो।
1: अच्छा।
2: और पीएच कि जब हम लोग बात करें तो पीएच 8 से 9 पीएच तक भी ये सस्टेन करता है।
1: अच्छा अच्छा।
2: क्योंकि इसको ज़्यादा डीप रूटेड प्लांट नहीं है और जब ऊपर में हम लोग खेत की जुताई करते हैं तो पीएच मेंटेन हो जाता है, और यदि किसी कारण से हाई पीएच होता है तो पीएच मेंटेन होकर के 8, 8.5 के नज़दीक में आ जाता है
1: जी।
2: दूसरा चीज़ ये है कि जो हम लोग ज़मीन का चुनाव करेंगे तो जमीन पानी लगने वाला नहीं करना है, यदि पानी लगने वाला है तो उसका इस तरीका से ढाल बनाएंगे और खेत की एक दो बार हल से गहरी जुताई कर लेंगे
1: जी।
2: उसमें जैसे हम और खेत तैयार करने के लिए कंपोस्ट का प्रयोग करते हैं, उस कंपोस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। और इसके अलावा जैसे यदि हम लोग को 1 एकड़ में पपीता की खेती लगानी है
1: जी,
2: तो हम लोगों को प्रत्येक पपीता के तौर पे शुरुआत में एक जो गड्ढा तैयार करेंगे, उस गड्ढा में तैयार करने के समय गड्ढा में मात्र हमको हर एक गड्ढा के लिए 100 ग्राम डीएपी और 5 से 10 केजी तक कंपोस्ट खाद देना है। इसके अलावा किसान भाई कोई भी कीटनाशक पाउडर के रूप में कम से कम 20 से 25 ग्राम मिला करके 5 दिन 10 दिन पहले मिला करके गड्ढा को छोड़ दें और उसमें पपीता को लगा सकते हैं।
1: इसके लिए मिट्टी किस प्रकार की होनी चाहिए?
2: देखिए, भारी मिट्टी नहीं होना चाहिए, हल्की मिट्टी हो, दोमट मिट्टी हो बहुत ज़्यादा फायदा करेगा, लाल मिट्टी हो बहुत अच्छा है। तो इसके लिए हमको ऐसा मिट्टी का नहीं है जो कि जिसमें हम बागवानी के लिए उपयुक्त, जिसको दोमट मिट्टी कहते हैं वो ज़्यादा उपयुक्त है।
1: अच्छा।
2: लेकिन लाल मिट्टी जैसे हमारे यहाँ टाण जैसा जो क्यारी है वो भी इसके लिए उपयुक्त है, उसमें भी हम पपीता की खेती अच्छे तरीका से कर सकते हैं।
1: ऐसे तो हमारे ग्रामीण बंधु अगर यदि अन्य फसल अगर खेतों में लगाए हुए हैं तो मेड़ों का भी सदुपयोग कर सकते हैं।
2: पपीता के खेत में हम लोग मेड़ तैयार बनाते हैं तो बहुत अच्छा फायदा है। पपीता के जो पौधा हम लगाते हैं वो 2 मीटर बाई 2 मीटर पे पुराना सिस्टम में लगता है,
1: जी।
2: लेकिन यदि हम आज के समय में इंटेंसिव कृषि की बात करें तो हम पपीता के लाइन में 1-1 मीटर की दूरी पे लगाएंगे, दूसरा लाइन जो है 2 मीटर के दूरी पे हम लोग लगा देंगे,
1: जी।
2: लेकिन हम यहाँ पे लाइन से लाइन की दूरी 2 मीटर रखें, लेकिन पौधा से पौधा की दूरी घटा दिए, आधा कर दिए, तो सघन खेती हो गई। और इसमें हम लोगों को ये ध्यान देना चाहिए कि कभी भी, जैसे मान लीजिए कि उपयुक्त समय है सितंबर के बाद पपीता लगाने के लिए, तो फिर भी कभी पानी यदि आ जाए तो वो जड़ को नुकसान करता है, धड़ उसका गल के खराब हो जाता है।
1: जी।
2: तो वैसी स्थिति में किसान भाई जो वहाँ पे तना है, तना से कम 1 बीता 10 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर तक दोनों बगल उसका ऊंचाई करके रखें,
1: अच्छा,
2: तो पपीता के लिए बहुत ही फायदेमंद और अच्छा है।
1: अच्छा, किस्मों की अगर हम बात करें तो हमारे किसान भाई को क्या यहाँ पे आवश्यकता पड़ती है?
2: जब यदि किस्म की बात हम लोग करते हैं तो पपीता में फूल और फल अलग अलग लगने वाले पौधे होते हैं, और कुछ पौधे होते हैं जिसमें फूल और फल एक ही में आते। तो किसान भाइयों को मार्केट की डिमांड के अनुसार, जैसे रेड लेडी ताइवान की वैरायटी है, सबसे अच्छी वैरायटी है, जिसका कि फलन जो है 7-8 महीने के बाद होना भी शुरू हो जाता है, कम समय में,
1: अच्छा,
2: कम ऊंचाई से फलन भी आने लगता है, पौधा भी ज्यादा ऊंचा नहीं होता है, तो आंधी तूफान से भी पौधे सुरक्षित रहते हैं। और उसमें नर मादा का जो हम लोग बोलते हैं कि नर और मादा का डिफरेंस पैदा होगा, तो ऐसा नहीं है, हर एक पौधा में आपका फल लगेगा।
1: अच्छा।
2: इसके अलावा भारत की और कुछ वैरायटी है, जैसे पूसा डेलिशियस, पूसा मैजेस्टी, ये भी है जिसमें नर मादा का भेद नहीं है, जो पौधा हम लगाएंगे उसी में वही फल आएगा। इसके अलावा किसान भाइयों को मेरा एक सलाह है कि उनका आप अपने वातावरण में यदि कोई पपीता का फल बहुत अच्छा लगता हो, मार्केट में उसका डिमांड हो, तो किसान भाई वैसे फल का भी चयन कर सकते हैं, उसको अपने घर में ट्यूब में पौधा लगाएं। लेकिन जब पौधा खेत में लगाते हैं तो हर एक गड्ढा में वो कम से कम 2 या 3 पौधे का चयन करें।
1: अच्छा, अच्छा।
2: हर एक गड्ढा में 2 से 3 पौधा करें, और जब नर और मादा फूल जब दिखने लगे, वैसी स्थिति में 4 से 6 महीना के बाद दिखने लगता है कि कौन नर है मादा है, आसानी से किसान पहचान लेते हैं, तो नर पौधे की संख्या को हम लोग का कुल जो पौधा लगाए हैं उसका 10% से ज्यादा नहीं रहना चाहिए।
1: अच्छा।
2: और उसका फील्ड में जहां तहां छोड़ देना चाहिए।
1: अच्छा।
2: उससे क्या होता है कि परागण अच्छा होता है और सही क्वालिटी का भी फल प्राप्त होता है, और बाजार में उसकी भी लंबे समय तक लोगों की मांग रहती है, तो किसान भाई यहाँ पे जो सीड का इन्वेस्टमेंट है वो बचा सकते हैं।
1: तो एक जगह जहाँ वो लगा दिए तो जब चुनाव बाद में जब वो देखते हैं 6 महीने बाद नर और मादा की जो पहचान करते हैं तो फिर वहाँ से वो हटा सकते हैं।
2: हाँ, नर पौधे को वो नीचे से काट के हटा देंगे।
1: अच्छा।
2: यदि नर पौधे की संख्या ज्यादा है तो उसको वहां से काट के हटा देंगे, और नर केवल मात्र 10% रहने देना है।
1: अच्छा, ये तो बात हुई। अगर हम अधिक उत्पादन लेना चाहते हैं तो इसमें क्या प्रयोग कर सकते हैं जिससे ज्यादा उत्पादन प्राप्त?
2: किसान भाइयों को मैं यहाँ मुख्य रूप से सलाह देना चाहूंगा कि पपीता में जब फल होता है तो इसका डिमांड भी ज्यादा होता है न्यूट्रिएंट की, तो न्यूट्रिएंट की डिमांड के लिए किसान भाइयों को समय समय पे पोटास उनको खेत में देना है।
1: अच्छा।
2: इसके लिए मैं किसान भाइयों को सलाह ये दूंगा कि शुरुआत के, जैसे आप यदि अक्टूबर में पौधे लगा रहे हैं तो आप 1 महीना बाद नवंबर में उसमें खाद डालें। खाद का आपकी मात्रा प्रत्येक गड्ढा में क्या होना चाहिए, 100 ग्राम नाइट्रोजन हो या 100 ग्राम आप DAP ले, 80 ग्राम यूरिया और 80 ग्राम से 85 ग्राम पोटाश आप डालें पर गड्ढा, और नवंबर में डालेंगे। दिसंबर और जनवरी में वो खेत में खाद का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि दिसंबर और जनवरी यहाँ ठंडा का समय होता है, और ठंडा का समय होने में पौधा की जो एक्टिविटी होती है वो कम होती है, और वैसे समय में किसान भाइयों को एक सलाह और दूंगा कि जड़ के पास, पपीता के जड़ के पास वो सूखी पत्ती घास वगैरह से उसको ढक दें।
1: अच्छा।
2: ढक देने से वो पलवार जिसको बोलेंगे, और यही प्रक्रिया बाद में मई के महीने में भी किसान भाई पलामू में कर सकते हैं। चूंकि हम लोग यहाँ देख रहे हैं 5-6 साल से कि ठंडी भी बहुत ज़्यादा है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है, तो पलवार उनके लिए एक कंबल का काम करता है। तो दिसंबर और जनवरी में खाद का प्रयोग नहीं करेंगे, फरवरी से फिर इस खाद की मात्रा को कंटिन्यू करेंगे
1: जी,
2: हर एक महीने में।
1: हाँ, हर एक महीने में इतने इतने खाद का प्रयोग करना है।
2: हर एक महीने में जब खाद का प्रयोग करेंगे तो उचित पोषण को मिलेगा। उचित पोषण मिलने से, चूंकि उसको हेवी पौधा हमको फल लेना है, तो इसमें चूंकि कंटिन्यू फल आता है, इसका कोई सीजन होता नहीं है, कंटिन्यू फल आता है, तो हमको हमेशा उसी अनुसार से कंटिन्यू हमको न्यूट्रिएंट भी देना जरूरी है। इसके बाद किसान भाई कर सकते हैं कि मार्च के महीने में वो उनके पास गोबर खाद हो, 10 केजी के हिसाब से प्रत्येक गड्ढे में गोबर खाद भी दे सकते हैं। तो 6 महीने के अंतराल पर एक बार गोबर खाद 10 केजी किसान भाई दे सकते हैं। इसका मार्च अप्रैल और जून जुलाई का समय उपयुक्त होता है
1: जी। अच्छा, हम फलन कब से लेना शुरू कर देते हैं?
2: देखिए, वैरायटी के अनुसार इसमें फूल और फल आपका 6-7 महीना के बाद होगा, लेकिन उसको फल को मैच्योर होने में, उसको बाजार में जाने लायक हरा और पकने में 4-6 महीना का समय लगेगा। 4 महीना में वो फूल फल बनेगा, 1-1.5 महीना के बाद जो है वो पका पपीता बनेगा। आप 12-13 महीने का एक क्रॉप है।
1: एक पपीता से हम कितने बार फल ले सकते?
2: देखिए, एक पपीता का यदि हम पौधा लगाते हैं तो 6-ठे महीना से इसमें फूल और फल कंटिन्यू लगेगा
1: जी।
2: और जब यदि पौधा अपने किसी कारण से गिर जाता है या आप देख रहे हैं कि फलन नहीं हो रहा है, तो आप उस पौधे को हटाना ही आपके पास एकमात्र समस्या का समाधान है
1: जी।
2: आप इसको 18 महीने तक, 22 महीने तक, 24 महीने तक एक पपीता का यदि पौधा लगाते हैं तो 24 महीने तक आप कर सकते हैं। जहां तक फल लेने की बात है तो इसमें कंटिन्यू फल आता है।
1: अच्छा।
2: सीजन के अनुसार फल नहीं आता है कि ठंडा में फल आएगा, इसके बाद गर्मी में आएगा। पपीता के साथ ऐसा नहीं है, इस सालों भर आपको बाजार को सप्लाई आप करते रह सकते हैं
1: जी।
2: इसकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि आप मार्केट एक बार पकड़ लिए हैं तो बीच में मार्केट आपको गैप नहीं होगा, और जहां आप सप्लाई चेन बना करके रखे हैं आप उनको कंटिन्यू सप्लाई कर सकते हैं। और जो हम लोग मुनाफा की बात करते हैं तो मुनाफा तब होता है जब सप्लाई चेन बना रहता है
1: जी। जी, ये तो बातें हुई पपीता की खेती की, जिसको अपना कर हमारे ग्रामीण भाई बहन अच्छी खासी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं, अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर सकते हैं। अब हम बातें करते हैं अभी शीत के मौसम में, जो हमारा जाड़ा का मौसम जो आने वाला है, हमारे ग्रामीण बंधु किस प्रकार उद्यान के लिए तैयारी कर लें जिससे उनको हानियां कम हो।
2: जो किसान भाई का पहले से बगीचा लगा हुआ है उनके पास अभी, जब हम लोग कहेंगे कि सितंबर के बाद बहुत क्रूशियल टाइम है, इम्पोर्टेंट समय है उद्यान के, जैसे हम आम फलन की बात करें तो आम का फलन किसान अप्रैल मई के बाद लेना शुरू करता है, लेकिन उसकी तैयारी अक्टूबर में है। जिनको अमरुद की फलन की बात हम करें तो जाड़ा में हमको फल मिलेगा, लेकिन ध्यान अभी से हम रखेंगे तभी उचित होगा। या नींबू की बात करें, किसी भी बागवानी फल की बात हम लोग करें तो यह सबसे क्रूशियल समय है। इस मामले में है क्रूशियल कि किसान भाइयों को अभी के समय में जो उनका डोज है, जो खाद देना है, तो सितंबर के बाद आप खाद दीजिए, आम में दीजिए, खासकर आम में सितंबर के बाद खाद दे दीजिए। अक्टूबर से बल्कि आप उसमें पानी देना बंद कर दीजिए।
1: अच्छा,
2: यदि अक्टूबर नवंबर के बाद आप जितना पानी देना शुरू करेंगे तो उनमें मंजर आने में उतना ही समय लगेगा
1: जी।
2: तो अक्टूबर महीना सितंबर के बाद बहुत क्रूशियल है। इसी तरीका से हम लोग आम में देखते हैं कि बहुत ज्यादा घनी पत्ती है, या किसी भी चीज में
1: जी, जी।
2: कि हम लोग छटाई की बात करते हैं तो बरसात में अक्सर हम सलाह देते हैं कि बरसात में आप लोग नहीं करें, यदि छटाई करते हैं हम उसकी तो रोग लगने की संभावना ज्यादा होती है और बाद में पौधा सूख जाता है
1: जी।
2: तो अभी के समय में हम लोग जो उचित छटाई और सधाई की बात करते हैं कि उसमें सही ढंग से धूप लगे, इसके लिए हम अभी के समय में ही हर एक दिशा में जाता हुआ 4 डाली शुद्धी डाली देख लेंगे और बाकी डालियों को छांट देंगे। तो ये काम अभी के समय में करना बहुत अच्छा होता है आगे के लिए। और दूसरा चीज़ ये होता है कि किसान भाई देखते होंगे कि उनके तना में कहीं कहीं कीड़ा लगने का प्रकोप हो जाता है, और ये काम अभी ब्रीडिंग कीड़ों में भी ब्रीडिंग का बहुत अच्छा समय होता है।
1: अच्छा।
2: तो उनके पॉपुलेशन को रोकने के लिए हम लोगों को, किसान भाई यदि संसाधन नहीं है तो कम से कम डाइक्लोरोभास, डाइमेथोएट या क्लोरोपाइरीफॉस ये दवा का वो बागवानी में एक बार छिड़काव, एक या दो बार छिड़काव कर दें,
1: अक्टूबर में कर दें,
2: अभी अक्टूबर में कर दें, अक्टूबर में दो बार कम से कम कर लें।
1: अच्छा।
2: इससे क्या होगा कि कीड़ा लगने की संभावना नहीं होगी। इसके साथ यदि कहीं उनको तना में छेद वगैरह दिख रहा है तो स्पॉक्स उसको डाल करके अभी उसको खत्म कर देंगे कीड़ा को, और पेट्रोल में डाइक्लोरोभास 1 लीटर में 2 ml मिला करके रुई के साथ भीतर डाल करके बंद कर देंगे। तो इस तरीका से जो पौधा अभी के समय में उसमें पावर आ जाएगा, मजबूती आ जाएगा, और वही अभी की मजबूती जो है से बाद में हमको फल लेने में फायदा पहुंचाता है
1: जी। और ऐसी कोई बात है जो छूट रही हो, जैसे नींबू वर्गीय पौधा हो गया, ये सब के लिए?
2: देखिये अभी जब हम लोग नींबू वर्गीय पौधा या किसी में बात करते हैं तो किसी भी तरीका का, जैसे ब्लू कॉपर का से हम लोग जड़ के, जड़ से नीचे से 1 मीटर तक व्हाइट वाश करते हैं, तो आप चूना का घोल में, 1 लीटर चूना के घोल में 3 ग्राम ब्लू कॉपर डाल करके और उसके जड़ के नीचे से 1 मीटर तक आप कर देंगे तो फफूंद रोगों से, जो साइट्रस डिक्लाइन की बात करते हैं उस रोग से मुक्ति मिलेगी। अन्य जो हमारे उद्यान के फसल हैं उनमें भी हम अभी व्हाइट वाश कर सकते हैं, जिससे अगल बगल कीड़े का प्रकोप कम होगा। दूसरी चीज़, किसान भाई यदि अपने खेत में साफ सुथरा रखते हैं, झाड़ू बहारों से किसी भी तरीका का वीडिंग, जो घास वगैरह हो गया है अभी घास साफ कर दें, चाहे उसके लिए वो वीडिसाइड का, केमिकल वीडिसाइड का प्रयोग करके घास वगैरह को साफ कर दें, बहुत ही फायदेमंद रहता है। 3 चीज़ों का ध्यान रखेंगे, 1 न्यूट्रिएंट का, दूसरा कीड़े का, और तीसरा वीड, जो खरपतवार नष्ट करने का, ये बहुत उपयुक्त समय है।
1: आप थे पलामू जिला के कृषि विज्ञान केंद्र चियांकी के प्रक्षेत्र प्रबंधक दिलीप कुमार पांडे जी। आप कार्यक्रम से जुड़े और उद्यान से संबंधित जानकारियां हमारे ग्रामीण भाइयों के साथ साझा की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
2: नमस्कार।
0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता, पपीते की खेती एवं देखभाल वार्ता, भेंट वार्ता कर थे दिलीप कुमार पांडे और इनसे बातचीत कर रहे थे संतोष कुमार। हमारे बहुत सारे किसान भाई फसल उगाने के लिए सामान्यतः नेत्रजन, फास्फोरस तथा पोटाशियम का उपयोग करते हैं, कैल्शियम एवं सल्फर का उपयोग नहीं करते, जिससे कि कैल्शियम एवं सल्फर की कमी की समस्या धीरे धीरे विकराल रूप धारण कर रही है, और इसकी कमी सघन खेती वाली भूमि, हल्की भूमि तथा क्षारीय भूमि में अधिक होती है। कैल्शियम एवं सल्फर संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन के लिए हम कैल्शियम सल्फेट के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, या फिर और भी इसके कैल्शियम की जो, जिप्सम की जो आवश्यकता है उसके और भी विकल्प हैं। तो रासायनिक रूप से जिप्सम कैल्शियम सल्फेट है, जिसमें कि 23.3% कैल्शियम होता है और 18% सल्फर होता है। तो इनकी जो आवश्यकता होती है श्रोताओं, वो क्यों होती है? कैल्शियम और सल्फर की आवश्यकता पूर्ति करने के लिए जिप्सम डाला जाता है। फसलों में जड़ों की सामान्य वृद्धि एवं विकास में सहायता देता है। जिप्सम का उपयोग फसल संरक्षण में भी किया जाता है, क्योंकि इसमें सल्फर उचित मात्रा में होते हैं। तिलहनी फसलों में जिप्सम डालने से सल्फर की पूर्ति होती है, जो बीज उत्पादन तथा पौधे व तेल से आने वाली विशेष गंध के लिए मुख्यतः उत्तरदायी होता है। जिप्सम देने से मृदा में पोषक तत्व सामान्यतः फास्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम तथा सल्फर की उपलब्धता में वृद्धि होती है। जिप्सम कैल्शियम का एक मुख्य स्रोत है, जो कार्बनिक पदार्थों को मृदा के कणों से बांधता है और जिससे मृदा कणों में स्थिरता प्रदान होती है तथा मृदा में वायु का आवागमन सुगम बना रहता है। इतना ही नहीं श्रोता, जिप्सम मृदा में कठोर परत बनने को भी रोकता है और मृदा में जल प्रवेश को बढ़ाता है। तो इस प्रकार से इसकी जो भूमिका है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ध्यान रहे श्रोताओं, जब भी फसलों में जिप्सम की कमी हो तो इसका ऊपर से जरूर इसका ऊपर से डाल के उसकी पूर्ति करें, और फसलों को जो बढ़ाने में इनका काफ़ी सहयोग होता है। तो चलिए, इस जानकारी के बाद श्रोताओं, अब सुनते हैं एक लोकगीत।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम खेती बारी। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर, और लीजिए प्रस्तुत है कृषक महिलाओं के लिए कार्यक्रम ग्रामीण सभा।

ग्रामीण सेवा कार्यक्रम सुनने वाली तमाम श्रोता बहनों को सुनीता का नमस्कार। स्वागत है बहनों आज के इस कार्यक्रम में। और बहनों, हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे आज सरकार द्वारा चलाई जा रही एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना से। और सच पूछा जाए तो ये जो योजना है आज हमारे सभी किसान भाई बहनों के लिए काफ़ी सहायक सिद्ध हो रहा है, उनके लिए लाभदायक साबित हो रहा है।

0: कि इस योजना की शुरुआत हुई थी 1 दिसंबर 2018 से, और ये जो अब तक ये योजना अभी तक लागू है। इसमें जो भी किसान भाई से जुड़ते हैं तो उन्हें 6,000 प्रतिवर्ष रुपए दिए जाते हैं। ये राशि 3 बराबर किस्तों में दी जाती है, 2-2 हज़ार करके, और 3 बार दी जाती है, और सीधे ये किसान के खाते में पहुंच जाती है। और इस राशि का उपयोग हमारे किसान भाई आवश्यकता पड़ने पर, यानी खेती कार्य में जब उन्हें रुकावटें आती हैं, बाधित होती हैं आर्थिक तंगी के कारण, तो उसमें इनका कार्य जो कार्य वो नहीं रुके, इसके लिए सरकार उन्हें बीज, खाद, कृषि दवा, सिंचाई इत्यादि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देते हैं। योजना के अंतर्गत भूमिधारी किसान इसके हकदार हो सकते हैं, या उनकी जो कृषक महिला हैं, उनके बच्चे हैं, वो सभी इसके पात्र हो सकते हैं। और इसके लिए लेकिन कुछ बातों पर ध्यान देने ज़रूरी है कि लाभ पाने के लिए हमारे किसान भाइयों को EKY का ये होना, सदस्य होना ज़रूरी है, और भूमि संबंधी रिकॉर्ड सही होने चाहिए, साथ ही साथ आधार कार्ड भी होने चाहिए, बैंक में खाता होने चाहिए जो कि अभी सक्रिय हो यानी जारी हो, बैंक खातों की जानकारी आधार सीडिंग में कोई समस्या ना हो, ये भी ज़रूरी है। साथ ही साथ PM किसान पोर्टल पर लाभार्थी की स्थिति भी समय समय पर जांच की जाती है, तो हमारे किसान भाइयों के लिए ये आवश्यक शर्तें हैं जो ज़रूर होनी चाहिए। और जो हमारे नए किसान भाई हैं, इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, इससे जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए आवश्यक है कि वे PM किसान के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपना न्यू फॉर्म रजिस्ट्रेशन कराएं, पंजीकरण कराएं, और अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर जैसी जो भी ज़रूरतें उसमें मांगी जाती हैं उसका वे प्रमाणीकरण दें, और उसका सदस्य बन सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। और हमारे किसान भाइयों के लिए ये जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, ये आर्थिक रूप से उन्हें मजबूत करने के लिए है, और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि ज़रूरत पड़ने पर हमारे किसान भाई साहूकार के चंगुल में ना फंसे, क्योंकि यदि वे एक बार साहूकार के चंगुल में फंसते हैं तो जीवन पर्यंत उससे उन छुटकारा नहीं मिल पाती है। इन्हीं सभी से बचने के लिए जो सरकारी योजनाएँ होती हैं किसानों को आर्थिक मदद पहुँचाने के लिए, उन्हें आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए, तो इन सब का लाभ हमारे किसान भाई बहनों को, खासकर बहनों को भी इसकी जानकारी जरूर होनी चाहिए ताकि समय पड़ने पर वे इसका लाभ ले सके। तो इस प्रकार से बहुत सारी महत्वाकांक्षी योजनाएं सरकार हमारी बहनों के लिए भी खोल रखी है, ज़रूरत है बस हमारी बहनों को आगे आने के लिए, तभी उसका पूरा लाभ ले पाएंगे। तो चलिए बहनों, इस जानकारी के बाद अब हम आपको सुनवाते हैं एक भेंट वार्ता, पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड से कृषकों को लाभ। इस पर जानकारी देंगे आदर्श ग्राम पदाधिकारी पलामू से डॉक्टर प्रमोद कुमार, और इनसे बातचीत करेंगे संतोष कुमार।
1: हमारे साथ हैं लातेहार जिला के बरवाडी प्रखंड के प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर प्रमोद कुमार जी, जिनसे आज हम विस्तृत बातें करेंगे पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड की। कुछ ऐसे पशु जिनको पालने से हमारी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है, उनकी बीमारियों से संबंधित बातें करेंगे। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: सर्वप्रथम तो हमारे किसान भाइयों को ये बताया जाए कि ये पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड क्या है।
2: पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड उन पशु पालकों के लिए है जो पशुपालक अपनी आर्थिक कमजोरी के कारण अपने पशुओं को ठीक से भोजन नहीं करा पाते हैं या बीमा नहीं करा पाते हैं, या अपना घर सही से नहीं बना पा रहे हैं, तो उनके लिए भारत सरकार की एक योजना आई है कि वो जो है इसको 7% इंटरेस्ट है, जिसमें 3% इंटरेस्ट का भारत सरकार के द्वारा दिया जाएगा और 3% झारखंड सरकार वहन करेगी। अंतिम में 1% मात्र ही इंटरेस्ट जो है वो पशुपालक देंगे। इससे किसान पशुपालकों को ये फायदा होगा कि अगर वो गाय रखे हुए हैं तो उन्हें 20,000 रुपये प्रति गाय कर करके ये ऋण मुहैया कराई जाएगी। वो 3 महीने तक गाय को खाना खिलाने के बाद

0: उससे दूध उत्पादन बढ़ेगी और उससे आमदनी करके इसको 10 महीने के अंदर अगर वो चुका देते हैं तो उन्हें मात्र 1% इंटरेस्ट देना पड़ेगा और 3% झारखंड सरकार देगी, 3% भारत सरकार देगी। इस तरह से हरेक जिले में गढ़वा, पलामू, लातेहार तीनों जिलों में योजना चलाई जा रही है पशुपालकों के लिए। इस तरह से पशुपालक चाहें तो जो मुर्गी रखे हुए हैं वो भी, खास करके मांस वाली मुर्गी रखे हुए हैं, तो एक लॉट निकालने में करीब करीब 500 मुर्गियों को निकालने का खर्च 60,000 रुपया होता है, तो उन्हें 60,000 रुपया प्रदान किया जाएगा। इसी तरह से कोई पशुपालक अगर 400 अंडे देने वाली मुर्गियां रखी हैं तो उनके लिए खर्च करीब 1.5 लाख रुपये आते हैं, तो उन्हें 1.5 लाख रुपये की सहायता ऋण राशि इससे मुहैया करा जा सकती है। इसी तरह से 4 बकरी 1 बकरा रखे हुए हैं तो उन्हें 25,000, और अगर 10 बकरी 1 बकरा रखे हुए हैं तो उन्हें 50,000 रुपये, और शुकर अगर रखे हुए हैं 4 मादा शुकर 1 नर शुकर तो उन्हें 50,000 रुपया, 1 गाय या भैंस पर 20,000 रुपये, 5 गाय पर करीब आपको 1 लाख रुपये, और 10 गाय या भैंस है तो आपको 2 लाख रुपये तक की ऋण राशि मुहैया कराई जा सकती है।
1: और इसका भुगतान का प्रक्रिया कैसे?
0: इसकी भुगतान की प्रक्रिया है कि आप 10 महीने के अंदर अगर इस लोन को और उसका इंटरेस्ट जमा कर देते हैं तो जो आपका किसान क्रेडिट का लिमिट है, जो भी 25,000 किसी के लिए है या 50,000 रुपए
1: तो उन्होंने निर्धारित किया है
0: तो अगर सही उनका साख बना रहेगा तो अगली बार जो है उससे ज्यादा रकम वो निकालेंगे और उससे अपना व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं।
1: और इसमें किसान जो हैं या फिर जो पशुपालक भाई जो हमारे हैं उनका क्या कवरेज किया जाता है?
0: किसान को अपना 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स लगाना पड़ेगा और जिस बैंक में उनका खाता है, खास करके जिस जिले में आप हैं उस जिले के अपना खाता रखें, और उसका बचत खाता का फोटोकॉपी, और जो आपका शेड है, गाय शेड हो सकता है, बकरी शेड हो सकता है, या सुकर शेड हो, मांस वाली मुर्गी के लिए मुर्गी शेड हो, उसके साथ अपना एक फोटोग्राफ्स कि आप वो व्यवसाय कर रहे हैं, गौशाला जिस पर बनाया हुआ है उस जमीन का रसीद अगर लगा करके किसान भाई वोटर कार्ड और आधार कार्ड अगर लगा देते हैं तो उन्हें वो बैंक के द्वारा एक आवेदन लगभग सभी जिलों के जिला पशुपालन पदाधिकारी और प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी के पास एक 9 पेज का आवेदन उपलब्ध है, उस आवेदन पत्र में भर करके इतने कागजात लगा करके वो अपने प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी को देंगे। प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी द्वारा ये संकलित आवेदनों को जिला के जो LDM लीड डेवलपमेंट मैनेजर जो होते हैं उनके पास ये प्रत्येक शुक्रवार को ये आवेदन दिया जाता है, और 15 दिनों के अंदर बैंकों की जवाबदेही तय की गई है कि वो किन कारणों से किसी आवेदन को अस्वीकृत कर रहे हैं, उसे लिखित रूप में वो LDM को सूचना देंगे और वो LDM के द्वारा वो सूचना जिला पशुपालन पदाधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी, और जिला पशुपालन पदाधिकारी अपने प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी को बताएंगे कि आपके इतने आवेदन पर जो है आपको आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है, उन्हें आवेदन स्वीकृत कर दिया गया है। इस तरह से उनके खाते में ये पैसा चला जाएगा, इस पैसे को खर्च करने के लिए उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं है, वो अपने ढंग अपने हिसाब से खर्च करेंगे, और जब उससे लाभ होगा तो 10 महीने के अंदर उस पैसे को जो सूद निर्धारित है उसके साथ जमा कर देंगे, तो उससे उनकी साख बनी रहेगी और किसान भाइयों को आगे भी इस योजना का लाभ मिलता रहेगा।
1: जी, और किसानों का क्या कवरेज दिया जाता है जैसे उनके एक्सीडेंटल केस वगैरह?
0: एक्सीडेंटल केस के लिए नहीं है, ये जो योजना हम उपलब्ध करा रहे हैं इसका उपयोग पशुपालक अपने पशुओं को भोजन कराने के साथ, पशुओं की चिकित्सा कराने के लिए, अपने पशुओं को बीमा कराने के लिए ये पैसा दी जाती है। इससे फायदा ये होगा कि अगर बीमा कराए हुए हैं अपने पशुओं का और उनकी मृत्यु होती है तो संबंधित बीमा कंपनी उन्हें इस पैसे का भुगतान करेगी। जैसे सपोज करिए कि कोई गाय 50,000 रुपए के इंश्योरेंस है और वो गाय बीमार है, उन्होंने पशु चिकित्सा से इलाज करवाया फिर भी गाय मर गई, तो उन्हें चाहिए कि तुरंत अपने बीमा कंपनी को सूचना दें और उस डॉक्टर को सूचना दें और पोस्टमार्टम रिपोर्ट उस कंपनी को जमा कर दें, वो कंपनी जो है इन्हें जो बीमा की रकम है उनके खाते में हस्तांतरित कर देगी।
1: अब हम आते हैं पशुओं के टीकाकरण से संबंधित बातों पर। बहुत सी कुछ खास बीमारियां भी हैं जो हमारे जो पशुधन हैं उनको प्रभावित करती हैं बीमारियाँ।
0: बिल्कुल सही आपने कहा कि पशुपालक भाइयों को जो बड़े पशु रखे हुए हैं गाय या भैंस उनमें 3 बीमारियां प्रमुख रूप से है। एक जो हमारे किसान भाई जानते हैं गनगटिया, दूसरा टंगर फुलवा और तीसरा डकहा कहते हैं। अच्छा। और जब भी आप टीका लगवाएंगे तो 14 दिन के बाद जो पशु इम्यूनाइज हो जाएंगे, जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी, उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। बकरी पालक भाइयों के लिए है PPR नाम की बीमारी, जिसमें कि बकरियों में सर्दी हो जाती है, जबड़े में घाव हो जाएगा और आँख से आंसू आएगा, फिर पतला दस्त होता है, बकरियाँ मरने लगती हैं, इन्हें PPR कहते हैं। इस PPR बीमारी का जो है टीका साल में एक बार कराना चाहिए। और इसके साथ एक दूसरी बीमारी है, इसका नाम इंट्रोटॉक्सिमिया है, इसमें बकरियाँ कुछ मौका नहीं देती है,

0: पता भी नहीं चलता है, ऑल ऑफ सडन बकरियां मरने लगती हैं।
1: अच्छा,
0: तो इसमें इंट्रोटॉक्सिमिया का वैक्सीन लगभग सभी जिलों में झारखंड सरकार को द्वारा उपलब्ध कराया गया है। किसान भाई अपने जिला पशुपालन पदाधिकारी और नजदीकी प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी, साथ में जो पशु चिकित्सालय हैं वहाँ पर जो पदाधिकारी उपस्थित हैं, उनसे संपर्क करके वो इंट्रोटॉक्सिमिया का वैक्सीन दिलवा सकते हैं। और PPR वैक्सीन बाजार में उपलब्ध हैं। 100 बकरियों की वैक्सीन का कीमत बाजार में लगभग 450 रुपये है। पशुपालक भाई उसे खरीद करके अपने पशुओं को दिला सकते हैं। इसके साथ ही ये वैसे पशुपालक जो शुकर पालन किए हुए हैं उन्हें भी चाहिए कि अपने शुकरों के लिए, उनमें शुकर ज्वर नाम का एक बीमारी होती है, उस बीमारी में शुकर जो है तेज बुखार होगा, खाने में अरुचि होगी, गंदा दस्त होगा, सांस लेने में कठिनाई होगी, चलने में डगमगाहट रहती है, शरीर पर लाल पीले रंग के धब्बे निकल आते हैं, और ये शुकर जो है 2 से 3 दिनों के अंदर उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में पशुपालक भाइयों से अनुरोध है कि अपने पशुओं को बचाने के लिए, शुकर ज्वर का अंग्रेजी में स्वाइन फीवर कहते हैं, आप झारखंड सरकार के द्वारा भी कुछ प्रखंडों में स्वाइन फीवर टीका उपलब्ध कराया गया है, वहाँ से वो टीका प्राप्त कर लगवाएं, या बाजार में जो है ये टीका उपलब्ध है, आप अपने नज़दीकी जो भी दवा दुकान है वहाँ पर आप बोलें कि स्वाइन फीवर या शुकर ज्वर के हमको टीका चाहिए। तो 10 पशुओं का एक साथ टीका आता है जिसका कीमत थोड़ा ज़्यादा है, 700 रुपये। तो आपके पास अगर 10 पशु हैं या नहीं है तो आप आपस में मिल करके 10 पशु के लिए टीका एक साथ लें और 10 पशु में टीका लगा दें, तो आपको ये शुकर जो बहुत जल्दी मर जाते हैं उन्हें ये बीमारी नहीं लगेगी और वो एक साल तक आपको कोई समस्या नहीं होगी। और दूसरी, शुकर में खुरहा चपका का वैक्सीन भी साल में 2 बार लगवाना चाहिए। अगर ये 2 टीके हमारे शुकर पशुपालक लगाते हैं तो उनके शुकर स्वस्थ रहेंगे और इससे उनको मुनाफा हो।
1: और कोई ऐसी बातें जो छूट रही हो?
0: इसी तरह से मुर्गी पालकों से अनुरोध है कि जो मुर्गी पालक भाई देसी मुर्गियों का पालन कर रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं अपने व्यवसाय को, तो उन्हें चाहिए कि जब भी देसी मुर्गी रखें तो कम से कम रानीखेत का जो 3 टीका है वो जरूर दिलवाएं। जो टुनकी से आप लोग परिचित हैं उसमें भी अकस्मात मुर्गियां मरने लगती हैं, उसमें आप चाहिए कि रानीखेत का पहला टीका का नाम F1 स्ट्रेन है जो कि हम लोग 4 से 10 दिनों के अंदर आँख में या नाक में एक एक बूंद देते हैं। दूसरी जो है दवा वो 21 दिन पर है R2B वैक्सीन, उसे पानी में घोल देते हैं, सुबह तक पानी नहीं पिलाते हैं, दोपहर में पानी पर छोड़ते हैं दवा मिली हुई पानी में, तो मुर्गियां पानी पी लेती हैं, उस तरह से दूसरा खुराक उनका हो जाता है। और तीसरी जो सुई है वो लसोटा जो है उनको सभी को हम 1-1 ml की सुई आती है जो प्रत्येक मुर्गी को देना होता है। दूसरा, उन्हें फाउल पॉक्स की वैक्सीन 2 महीने पर एक बार दी जानी है। अगर इतना पशुपालक भाई अपने मुर्गी पालकों के लिए इतनी वैक्सीन का इंतजाम कर लेते हैं तो उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी और उन्हें अपने व्यवसाय में सिर्फ लाभ ही लाभ होगा। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो थोड़े पैसे, क्योंकि वैक्सीन का दाम जो है बहुत कम होता है, आप देखेंगे तो मुर्गियों में ये 20 से 25 पैसे हैं, गायों में जो है वो 10-15 रुपये आ रहा है। खुरहा चपका का वैक्सीन थोड़ा महंगा है, 30-35 रुपये। शुकर का वैक्सीन जो है एक का बाजार से खरीदेंगे तो 70 रुपये, लेकिन सरकार के यहाँ से वैक्सीन आप प्राप्त करेंगे तो आपको निःशुल्क ही ये सारे वैक्सीन उपलब्ध हो जाएंगे।
1: आप थे लातेहार जिला के बरवाड़ी प्रखंड के प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर प्रमोद कुमार जी। आप पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड से संबंधित जानकारियां साझा की, पशुओं की बीमारियां से बचाव की जानकारियां साझा की, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड से कृषकों को होने वाले लाभ, इस पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर प्रमोद कुमार और इनसे बातचीत कर रहे थे संतोष कुमार। तो बहनों, हम बता दें कि पशुओं से तो निश्चित ही लगातार आय की प्राप्ति होती रहती है, लेकिन पशुओं की विशेष देख रेख करने की भी आवश्यकता पड़ती है और उन्हें जो है बदलते मौसम में भी उनका विशेष ख्याल रखना चाहिए। यदि हम बातें करें बकरियों की, तो बकरियां जो है बहनों वो बहुत ही आसानी से उनके लालन पालन की जाती है, यानी देखभाल हो जाती है, क्योंकि बकरियां जो हैं वो बहुत ही कम लागत में, बहुत ही कम मेहनत में आसानी से पाली जा सकती है और वो बहुत ही कम जगह में भी उसका जो है लालन पालन आप कर सकते हैं। तो बकरी पालन करना हमारे बहनों के लिए भी काफ़ी लाभदायक सौदा साबित हो रहा है, क्योंकि अधिकांश जो भी हमारी ग्रामीण बहनें हैं वो घर अपने घर की जिम्मेदारियों को निभाते हुए खेती बाड़ी में भी काम करना पड़ता है और उसके साथ साथ पशुओं के साथ भी उन्हें लगना पड़ता है। तो बकरियों के साथ जो है उन्हें बहुत ज़्यादा समय देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है क्योंकि बकरियां खुद ही चर लेती हैं और उन्हें खिलाने पिलाने के लिए भी बहुत ज़्यादा उन्हें दाना पानी देने की आवश्यकता नहीं होती है। बकरियाँ जो है वो खुद ही वो जंगलों में या फिर आसपास में वे हरी पत्तियाँ खा लेती हैं और बकरियों को रहने के लिए बस एक छोटे सी आवाज़ की आवश्यकता पड़ती है। और जो सबसे बड़ी बात है कि बकरियाँ जो हैं वो बीमार भी कम पड़ती हैं और पशुओं की बनिस्बत, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है बहनों को कि बहुत आसानी से उनका रखरखाव भी हो जाता है। लेकिन बहनों हम बता दें कि बकरी जो है उसे गरीबों की गाय भी कहा जाता है और चलता फिरता एटीएम भी कहा जाता है क्योंकि हमारी बहनें जब भी उन्हें कोई आवश्यकता आन पड़ती है तो फिर वह अपने बकरियों को बेचकर आसानी से नकदी पैसा पा सकती हैं। जैसे कि शादी ब्याह का मौसम हो, पर्व त्यौहार का मौसम हो, तो इन सब अवसर पर बकरियों की जो मांग है वो ज़्यादा हो जाती है और इनकी कीमत भी बढ़ जाती है। तो ऐसे समय में हमारी बहनें आसानी से बकरियों को बेचकर 3-4-5 हज़ार तक एक बकरियों से कमा लेती है, इसीलिए बकरियों को चलता फिरता एटीएम भी कहा जाता है। और हम बता दें बहनों कि बकरियाँ जो हैं वो प्रतिदिन आधे किलो से अधिक उन्हें दाना देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो इनकी देखभाल की क्रिया जो है बहुत सरल है। और हमारे यहाँ जो बकरियाँ हैं वो दूध देती हैं, तो बकरियाँ दूध जो देती हैं वो कम देती हैं लेकिन उनका दूध जो है वो काफ़ी पौष्टिक होता है और कहा जाता है कि दूध में बकरियों के दूध में रोग प्रतिरोधक क्षमता जो बहुत होती है, इसीलिए जो बीमार बच्चे होते हैं, कमज़ोर बच्चे होते हैं, उन्हें प्रतिदिन बकरियों के दूध देने से वे जल्दी हिस्ट पुष्ट हो जाते हैं और जल्दी स्वस्थ हो जाते हैं, इसीलिए बकरियों के जो दूध है वे काफ़ी महंगे बिकते हैं। और हम बता दें बहनों कि बकरियों के कुछ नस्लें होते हैं, तो यदि हमारी बहनें उन नस्ल का पालन करती है तो उन्हें अधिक मुनाफा मिलेगा, जैसे कि ब्लैक बंगाल, बारी बारी, बीटल, मालाबार, जागराना, जमुनापारी, सिरोही, मारवाड़ी, संगमनेरी, कश्मीरी इत्यादि इत्यादि। और इसके अलावा बहनों यदि आप जहाँ बकरियों को रखते हैं तो जरूरी है कि उसके रहने के आसपास के जो स्थान है वो काफ़ी साफ़ सुथरा होना चाहिए। बकरियों को सर्दी, गर्मी, वर्षा और जंगली जानवरों से सुरक्षित रखने के लिए एक छोटे से आवाज़ की आवश्यकता पड़ती है और बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े कमरे या जगह की आवश्यकता नहीं पड़ती। और अधिकांश जो हैं बकरियां वो चरने में ही अपना समय बिताती हैं और रात में उन्हें किसी कमरे में उन्हें रख दिया जाता है या फिर किसी पेड़ से भी उन्हें बांध दिया जाता है, लेकिन ठंड में ऐसा बिल्कुल ना करें, ठंड में उन्हें कमरे में ही रखें। किंतु बकरियों के लिए ज़रूरी है कि उन्हें आप समय समय पर उन्हें टीकाकरण भी करवाएं। वैसे तो बकरियां जल्दी बीमार नहीं पड़ती लेकिन फिर भी बकरियों में कुछ रोग, चेचक, निमोनिया ये सब हो सकते हैं, उनके रोकथाम के लिए ज़रूरी है कि आप उन्हें समय समय पर आवश्यकता अनुसार टीकाकरण अवश्य कराएँ ताकि जो उनमें संक्रमण होने की संभावना होगी वो नहीं होगी। इसके साथ साथ बहनों उनके खान पान पे भी आपको थोड़ी बहुत तो ध्यान, ऐसे तो खुद चर लेती हैं लेकिन फिर भी आपको थोड़ी बहुत जो है दाना पानी देने की आवश्यकता पड़ सकती है। और सुबह शाम बकरियों को चरने के लिए ज़रूर छोड़ें और बकरियों से आप दूध भी, बहुत बहनें जो दूध बेचने के लिए उसका पालन करती हैं, बहुत जो हमारी बहनें हैं मांस के लिए भी बकरियों का पालन करती है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा कि आप किस उद्देश्य से बकरी पालन कर रही हैं, दूध के लिए कर रही हैं या उसके मांस के लिए, क्योंकि दोनों के लिए जो उनकी किस्में होती हैं वो अलग अलग होती हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। और बहनों यदि बकरी पालन आप अपने सभी जिम्मेदारियों को निभाते हुए कृषि कार्य को करते हुए बकरी पालन भी करती हैं तो इससे आपको निश्चित अतिरिक्त कमाई हो सकती है। तो चलिए बहनों, अब देखिए समय हो चला है कि हम आपसे इजाज़त ले कार्यक्रम ग्रामीण सभा से, लेकिन जाने से पहले एक नज़र डालेंगे मौसम के मिजाज पे। तो बहनों, आज डाल्टनगंज शहर का अधिकतम तापमान रहा 28 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान रहा 25 डिग्री सेल्सियस। और इसी जानकारी के साथ अब हमें दे इजाज़त कार्यक्रम ग्रामीण सभा से। नमस्कार।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: वेक्टर जनित रोग मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, कालाजार और जापानीज इंसेफेलाइटिस से बचाव के लिए मच्छरों से अपना बचाव करें। अपने घर के आसपास सफाई रखें, जल जमाव न होने दें, पानी के बर्तनों को ढक कर रखें, पूरे आस्तीन के कपड़े पहनें और हमेशा मच्छरदानी के अंदर सोएं।
2: बुखार होने पर ओझागुनी के पास ना जाएं, अपने गाँव की सहिया को बताएं या नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, मुफ्त जांच और उपचार कराएं।
1: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: क्या बात है सुनीता, बहुत परेशान लग रही है।
4: बहन, मेरी बिटिया का बुखार उतर ही नहीं रहा और आज गांव का चिकित्सा केंद्र भी बंद है।
3: अरे बहन परेशान मत हो, 104 नंबर डायल कर जहां तुझे मिलेगी प्रशिक्षित सलाहकारों से चिकित्सा सलाह।
4: बहन पर इतनी रात में कौन बात करेगा इस नंबर पर?
3: अरे

0: झारखंड सरकार की ये 104 स्वास्थ्य हेल्पलाइन तो 24 घंटे खुली है।
1: 104 की सेवाएं 24 घंटे प्रतिदिन किसी भी फोन से डायल करें 104 और पाए स्वास्थ्य जानकारी।
2: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: हर दिन कमर तोड़ मेहनत करते हैं ताकि जो हमको ना मिला वो इनको मिले।
4: बात सिर्फ मेहनत की नहीं, बच्चों के लिए हमारा सबसे बड़ा तोहफा था सबसे आसान, बस बच्चों के बीच रखा 3 साल का अंतर। हमने इस्तेमाल की IUCD
5: कंडोम,
4: गर्भ निरोधक गोलियाँ।
6: खुशी का मंजर रखना यार, दूसरा बच्चा 3 साल बाद।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10,700 करोड़ रुपए की 3 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को दी मंजूरी। झारखंड ओडिशा समेत कई राज्यों में होगा विस्तार। राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों सहित देश भर में 9वां राष्ट्रीय पोषण माह शुरू। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने स्वस्थ और सशक्त भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने का किया आह्वान। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने SIR दावा आपत्ति सुनवाई के दौरान भीड़ नियंत्रण के लिए टोकन सिस्टम अपनाने का दिया निर्देश। रांची विश्वविद्यालय में 39वें दीक्षांत समारोह में 58 मेधावी विद्यार्थियों को मिले स्वर्ण पदक। राज्यपाल ने कहा, अच्छी पढ़ाई से विकसित भारत के लक्ष्य को मिलेगी दिशा। और राज्य की भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी की CBI जांच की मांग को लेकर भाजपा का राज्यव्यापी आंदोलन जारी। सरायकेला में प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के नेतृत्व में प्रदर्शन। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 10,700 करोड़ रुपए से अधिक लागत के 3 मल्टी ट्रैकिंग रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की 14 जिलों में फैली होंगी और इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने सभी 7 हाई डेंसिटी रेलवे कॉरिडोर को 4 लेन वाला बनाने का फैसला किया है।
1: रेलवे के मॉडर्नाइजेशन का जो काम पिछले 12 वर्षों में चल रहा है, उसमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कंप्लीट ओवरहॉलिंग जो रेलवे की हो रही है, कंप्लीट मॉडर्नाइजेशन हो रहा है उसके प्रोजेक्ट्स। रेलवे के 7 हाई डेंसिटी कॉरिडोर्स प्लस मेनी अदर कॉरिडोर्स जो कि बहुत ज्यादा भविष्य में ट्रैफिक लेने वाले हैं, उन सब कॉरिडोर्स को 4 लाइनिंग क्वाड्रुपलिंग कर रहे हैं। दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से वापस मुंबई, ये हो गया गोल्डन क्वाड्रिलेटरल।
0: झारखंड के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों के साथ देश भर में 9वां राष्ट्रीय पोषण माह आज से शुरू हो गया। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि राष्ट्रीय पोषण माह स्वस्थ और सशक्त भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने का अभियान है। उन्होंने कहा कि यह अभियान हर माँ के स्वास्थ्य, हर बच्चे के पोषण और हर परिवार की खुशहाली से जुड़ा है।
2: सुपोषित बचपन, स्वस्थ मातृत्व और समृद्ध परिवार ही विकसित भारत 2047 के संकल्प की सबसे मजबूत नींव है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप 9 सितंबर 2026 से 9वें राष्ट्रीय पोषण

0: माँ का शुभारंभ हो रहा है। हर वर्ष यह आयोजन हमें प्रेरित करता है कि हम पोषण के प्रति निरंतर जागरूक रहें और इसे अपनी नियमित दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। इस वर्ष पोषण माह का हमारा संकल्प है हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी, जिसमें हमारा विशेष ध्यान विविधतापूर्ण और प्रोटीन युक्त आहार, आंगनवाड़ी केंद्रों पर ताजा गर्म पौष्टिक भोजन ECCE और गर्भवती व धात्री माताओं की समग्र देखभाल पर केंद्रित रहेगा।
1: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान SIR दावा आपत्ति सुनवाई और मतदाता सेवाओं की समीक्षा करते हुए भीड़ नियंत्रण के लिए टोकन सिस्टम अपनाने का निर्देश दिया। उन्होंने 0 और 1 से 5 फॉर्म 6 वाले मतदान केंद्रों पर विशेष ध्यान देते हुए 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष पूरे करने वाले पात्र युवाओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ना सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही साहिबगंज जैसी अनियमितता की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सख्त निगरानी के निर्देश दिए। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव अबू इमरान ने जल जीवन मिशन के तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाली 8 जल सहियाओं को रांची के नेपाल हाउस में आयोजित कार्यक्रम में सम्मानित किया। सम्मानित जल सहियाओं में बोकारो की 5 और रांची की 3 जल सहिया शामिल हैं, जिन्होंने जलापूर्ति योजनाओं के संचालन और रखरखाव में सराहनीय योगदान दिया है। UIDAI क्षेत्रीय कार्यालय में PIB रांची द्वारा आयोजित IMPCC बैठक में अपर महानिदेशक अखिल कुमार मिश्रा ने कहा कि मानवीय संवेदना के साथ किया गया संचार अधिक प्रभावी होता है। बैठक में UIDAI ने बताया कि सितंबर तक आधार सेवा केंद्रों का विस्तार 3 से 14 जिलों में किया जा रहा है। वहीं रेलवे, स्वास्थ्य, मौसम और अन्य केंद्रीय संस्थानों ने अपनी जनहितकारी पहलों की जानकारी साझा की। मेरा युवा भारत की ओर से युवाओं को राष्ट्र निर्माण से जोड़ने के लिए विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का आयोजन किया जा रहा है। राज्य निदेशक ललिता कुमारी और उपनिदेशक श्वेता सिंह ने आज रांची में बताया कि 30 सितंबर तक ऑनलाइन क्विज में युवा हिंदी और अंग्रेजी में भाग ले सकते हैं। झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के लिए सतत औद्योगिकीकरण और संसाधन आधारित विकास विषय निर्धारित है। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची विश्वविद्यालय के 39वें दीक्षांत समारोह में आज 58 मेधावी विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। वहीं 2 शिक्षाविदों को मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। इस मौके पर राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ मौजूद रहे। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि अच्छी पढ़ाई से विकसित भारत के लक्ष्य को दिशा मिलेगी।
2: महिलाओं ने अच्छे ढंग से पढ़ाई की और उसका परिणाम भी सबको दिखाया। तो मेरी शुभकामनाएं सब बच्चियों के लिए है कि जिन्होंने अच्छे ढंग से काम किया और वास्तव में हमारे इस राज्य में अब शिक्षा के विषय में रुचि है और रुचि के हिसाब से बच्चे काम भी कर रहे हैं। पढ़ाई अगर अच्छी है तो निश्चित रूप से जो लक्ष्य है विकसित भारत की अच्छी दिशा मिलेगी।
1: सरायकेला खरसावां के आदित्यपुर स्थित NIT जमशेदपुर में 2 दिवसीय राष्ट्रीय महिला नेतृत्व सम्मेलन 2026 शुरू हुआ। सम्मेलन में 13 राज्यों से करीब 150 महिला शिक्षाविद, नीति निर्माता और नेतृत्वकर्ता शामिल हो रही हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य डॉ. आशा लकड़ा ने कहा कि शिक्षा और कुशल नेतृत्व से महिलाएं आत्मनिर्भर और सशक्त बन सकती हैं। JPSC और JSSC की भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी की CBI जांच और आंदोलनरत छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग को लेकर भाजपा का धरना प्रदर्शन आज दूसरे दिन जारी रहा। सरायकेला खरसावां जिले में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने उपायुक्त कार्यालय का घेराव किया। वहीं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में पाकुड़ समाहरणालय का घेराव किया गया। इस दौरान श्री मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से परीक्षा में गड़बड़ी की CBI से जांच कराने की मांग की।
3: झारखंड के बच्चे चाहते हैं कि पूरे मामले पे जांच, चाहे जेसीसी का इंतजाम रहा हो, चाहे

0: यीशु के द्वारा इन 6 वर्षों में हुआ है और सभी युक्ति की जांच सीबीआई से कराया है। सीबीआई से जांच होगी जो अपने और मेरिट पर जो बच्चे पास किया है उनकी नौकरी को कोई आंच नहीं आएगी।
1: झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी की सीआईडी से जांच कराई जा रही है। इस मामले में दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।
2: सीआईडी की जांच हो रही है और बहुत सघन जांच, कोई भी दोषी हो वो बचेगा। स्पष्ट संदेश है माननीय मुख्यमंत्री, पूछताछ में जो भी दोषी पाए जाएंगे कार्रवाई होगी। वैसा झारखंड में थोड़ी होगा, दोषी जो होगा वो नपेंगे। कई कोचिंग संचालक भी आ रहे हैं जज में और भी कई लोग संदेह के घेरे में।
1: और अब मौसम का हाल। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में आज दोपहर बाद जमकर बारिश हुई। मौसम विभाग ने कल भी रांची, बोकारो, धनबाद और हजारीबाग सहित राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10,700 करोड़ रुपए की 3 मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को दी मंजूरी। झारखंड, ओडिशा समेत कई राज्यों में होगा विस्तार। राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों सहित देश भर में 9वां राष्ट्रीय पोषण माह शुरू। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने स्वस्थ और सशक्त भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने का किया आह्वान। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने एसआईआर दावा आपत्ति सुनवाई के दौरान भीड़ नियंत्रण के लिए टोकन सिस्टम अपनाने का दिया निर्देश। रांची विश्वविद्यालय के 39वें दीक्षांत समारोह में 58 मेधावी विद्यार्थियों को मिले स्वर्ण पदक। राज्यपाल ने कहा, अच्छी पढ़ाई से विकसित भारत के लक्ष्य को मिलेगी दिशा। और राज्य की भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी की सीबीआई जांच की मांग को लेकर भाजपा का राज्यव्यापी आंदोलन जारी। सरायकेला में प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के नेतृत्व में प्रदर्शन। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: अंक में आप सुनेंगे बोकारो जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे बोकारो संवाददाता।
1: शिक्षक दिवस के अवसर पर बोकारो जिला प्रशासन के द्वारा झारखंड राज्य के आंदोलनकारियों को सम्मानित किया गया। उपायुक्त अजय नाथ झा ने बताया, सम्मान के माध्यम से राज्य सरकार और जिला प्रशासन ने आंदोलनकारियों का आभार व्यक्त किया है।
2: शिक्षक दिवस के दिन हम लोग आज एक विशेष अभियान के तहत झारखंड आंदोलनकारियों को सम्मानित करेंगे और उनका प्रमाण पत्र उनको वितरित करेंगे। हम सभी लोगों को प्रमाण पत्र उनका दे रहे हैं, जो उनका हक है उनको मिलना चाहिए। और ये झारखंड राज्य की तरफ से एक कृतज्ञता का बोध, पूरा प्रशासन, समस्त बोकारो वासी उनके प्रति कृतज्ञ है, समस्त झारखंड वासी उनके प्रति कृतज्ञ है।
1: बोकारो में संपन्न एनटीपीसी राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता के दौरान अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त तीरंदाज दीपिका कुमारी ने कहा, टूर्नामेंट में झारखंड के तीरंदाजों की संख्या काफी कम थी, जो चिंतनीय है।
3: झारखंड का प्लेयर मुझे दिख रहा है, क्योंकि प्लेयर्स तो है या नहीं है मुझे नहीं पता, या फिर वो अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नहीं मिल पा रही है उनको। बट धीरे धीरे मैं देख रही हूँ, क्योंकि जब मैं नई नई आई थी तब झारखंड के प्लेयर्स ज्यादा हुआ करते थे, अभी झारखंड के प्लेयर है ही नहीं।
1: भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने बताया, इंडोर आर्चरी के कॉन्सेप्ट पर काम किया जा रहा है, जिससे तीरंदाजों को अभ्यास करने में काफी सहूलियत होगी।
4: देश की सरकार का पूरा सहयोग इसमें है कि हमारे खिलाड़ी अच्छे आने चाहिए, तो यहाँ पर जो आयोजन हुआ है बहुत अच्छे ढंग से हुआ है, और इस समय आर्चरी का अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का नाम बहुत अच्छा से लिया जा रहा है, क्योंकि हमारे खिलाड़ी अच्छे उभर रहे हैं, देश भर के खिलाड़ी हमारे अच्छे ढंग से उभर रहे हैं और अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। इंडोर आर्चरी का एक कंसेप्ट अभी नया डेवलप हुआ है, इंडोर आर्चरी के पक्ष में हम लोग भी हैं, लेकिन उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर देश भर में कैसे बनेगा, किस तरह कैसे बनेगा, क्योंकि एक आउटडोर तीरंदाजी हमेशा आउटडोर के बारे में देखा गया है, लेकिन अब धीरे धीरे इंडोर के तरफ में भी हो रहा है, तो इंडोर में भी आउटडोर में भी कैसे हो।
1: बोकारो स्टील सिटी में सेल के जर्जर

0: आवासों के अचानक गिरने की घटनाएं हो रही हैं। उपायुक्त अजय नाथ झा ने बताया, जांच के दौरान पता चला है कि नियमित मरम्मत नहीं कराए जाने के कारण इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। जिला प्रशासन ने बीएसएल प्रबंधन को तकनीकी टीम के माध्यम से आवासों की तकनीकी जाँच कराने का निर्देश दिया है।
1: भवनों का नियमित मेंटेनेंस हुआ होता और हम रिव्यू करते कि कौन से भवन हमारे जर्जर हो गए हैं, कहां से लोगों को हमको रिप्लेस कर देना चाहिए, हटाना चाहिए था, ये अगर नियमित पर्यवेक्षण हो जाता तो शायद ये घटना नहीं घटती थी। जांच में यही आया है कि इसका एक नियमित मेंटेनेंस जो किया जाना था वो नहीं किया जा सका, पहली बात। दूसरी बात ये कि इनके पास एक एसओपी होना चाहिए कि अगर हमारे पास कोई क्वार्टर का कंडीशन खराब हो गया है और एक ऐसी टेक्निकल एजेंसी हो जो इसकी जांच अच्छे से कर सके, और वो टेक्निकल एजेंसी हमको ये बताए कि कौन कौन से भवन इनके असुरक्षित हैं, किस भवन में इमीडिएट इसको हटा देने की जरूरत है।
0: समय रहते अच्छी बारिश होने से जिले में 78% से भी ज्यादा धान की रोपनी हुई है, किसान खुश हैं। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो।
2: अभी आप सुन रहे थे बोकारो जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार जिले में आजकल। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:15 हो चुके हैं। हम लेकर हाजिर हैं अपने स्टूडियो से फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक रंग FM 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। तो आइए सुनते हैं फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम एक रंग।

I love you all. दोस्तों ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूं घर से, शायद जिसकी तलाश है वही साथी है वही मंजिल है।

आपने सुना जब प्यार किया तो डरना क्या, कमाल खां की आवाज़ में इस गाने को जतिन ललित के संगीत थे और समीर के बोल। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक रंग।

अभी आपने सुना फिल्म साजन के इस गाने को अलका याग्निक की आवाज़ में, नदीम श्रवण के बोल और संगीत और समीर के बोल। श्रोताओं, आप सुन रहे फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक रंग FM 103 MHz पर।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक रंग। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं फिल्म 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। अलका याग्निक की आवाज़ में आपने लज्जा फिल्म के गाने को सुना, समीर के बोल और अनु मलिक के संगीत थे। इसी गाने के साथ आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आइए हम सुनते हैं अगला कार्यक्रम, कल्याणी स्वास्थ्य चर्चा का कार्यक्रम। भेंटवार्ता में सुनेंगे मलेरिया कारण एवं निदान। भेंटवार्ता कारण डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव, मुख्य चिकित्सक पदाधिकारी पलामू।
1: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को संजय मिश्रा का नमस्कार। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम मलेरिया पर बात करेंगे। मलेरिया एक ऐसा नाम है जो हम समझते हैं कि ऐसा कोई नहीं है जो इस नाम को नहीं जानता होगा, लेकिन मलेरिया के लक्षण, मलेरिया कितना खतरनाक हो सकता है, मलेरिया को ठीक करने के लिए किस तरह से आपको काम करने की, इलाज कराने की ज़रूरत है, ढेर सारी बातें हैं जो आपको जानना जरूर, और ढेर सारे सवालों के जवाब देने के लिए हमारे आज के इस कार्यक्रम में आमंत्रित हैं पलामू जिला अस्पताल में पदस्थापित चिकित्सक डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव। डॉक्टर साहब, हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार
2: जी। नमस्कार
1: डॉक्टर साहब, आज हमारे श्रोताओं को आप बताएं कि मलेरिया क्या है और कैसे फैलता है।
2: मलेरिया एक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलता है जी। लेकिन मच्छर से नहीं होता है, मच्छर में एक परजीवी पाया जाता है जिसको प्लाज्मोडियम बोलते हैं। इसकी चार प्रजातियाँ हैं। ये मच्छर केवल इनका ट्रांसमिशन करता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक इनका है सो संवहन करता है। तो संवाहक मलेरिया का के लिए मच्छर हुआ और कारण उसका प्लाज्मोडियम हुआ
1: जी। तो डॉक्टर साहब, मलेरिया इसकी शुरुआत, जब मच्छर कहते हैं कि मच्छर काटने से बीमारी की शुरुआत होती है, तो इसका लक्षण सबसे मुख्य है, उसके बारे में चर्चा करें।
2: लक्षण तो बहुत चिर परिचित, बहुत पुरानी बीमारी है, जाड़ा का आकर के बुखार आना। हालांकि इसका ट्रेंड अब धीरे धीरे समाप्त प्राय है। बुखार लगातार भी हो सकता है, माथा में दर्द होना, ज़्यादा दिन पे रह जाने पे एनीमिया हो जाना, मतलब खून की कमी लगने लगना, धीरे धीरे कमजोरी आने लगना, ये सब इसके मुख्य लक्षण हैं।
1: डॉक्टर साहब, आजकल तो स्थिति ऐसी हो गई है कि पता नहीं कितनी तरह की बीमारियां हो गई हैं, और सुनने में भी आती हैं, नए नए नाम सुनने को मिलते हैं। तो कहने का मतलब कि जो हमारे क्षेत्र में जो बीमारी का आगमन नहीं था वो भी आगमन हो गया है, तो लोग बड़ा असमंजस में पड़ जाते हैं कि मलेरिया है या अन्य बीमारी है, अन्य बुखार है। तो एक निश्चित जगह पे पहुंच करके एक हमारे श्रोता, जो हमारे जो मरीज बन करके जब आते हैं डॉक्टर के पास, तो ये नहीं समझ पाते हैं कि उन्हें मलेरिया है। तो इस पर पहचान, एक निश्चित पहचान की आवश्यकता है, जो जान पाएँ कि हमें मलेरिया है और हमें किस तरह से अपने आचार व्यवहार विचार को बदलने की ज़रूरत है।
2: देखिए, मलेरिया में जो बुखार आता है वो एक लक्षण है। हम समझते हैं कि अगर बुखार जाड़ा देकर आ रहा है तो ज़रूर ये मलेरिया ही होगा, लेकिन बहुत से ऐसे बुखार हैं जो जाड़ा देकर आते हैं लेकिन वो मलेरिया के साथ साथ दूसरे चीज़ भी हो सकते हैं। तो जाड़ा देकर बुखार आना मलेरिया के लिए स्पेसिफिक नहीं है, डायग्नोस्टिक नहीं है। जाड़ा देकर बुखार आ रहा है तो हो सकता है मलेरिया हो, या हो सकता है कि दूसरी बीमारियां भी हों। तो केवल इस लक्षण पे मलेरिया की दवाई शुरू कर देना ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये दवा बहुत सेफ भी नहीं है। किसी भी दवा का कुप्रभाव होता है। अगर आपको मलेरिया नहीं है तो ठीक तो नहीं ही होगा, साथ ही जो मलेरिया के दवा आप जो खा रहे हैं उसका कुछ कुप्रभाव भी आपके शरीर पर पड़ेगा। इसलिए पहले पहचान कर लें, डायग्नोसिस करा लें, कंफर्म हो जाएं कि ये मलेरिया है, और डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करें उसी के अनुसार उसका ट्रीटमेंट करें।
1: डॉक्टर साहब, आजकल तो गांव-गांव में और गली मोहल्ले में सरकार ने व्यवस्था करवा दिया है कि यहाँ पे एक ANM जाकर बैठेगी और ग्रामीण लोगों की सेवा करेगी, अगर किसी तरह की बीमारी परेशानी हो तो उसका इलाज भरसक प्रयास करेगी, और नहीं हो सका तो अब जिला अस्पताल को भेज देगी। तो क्या वहाँ पे मलेरिया की जांच सही ढंग से हो पाता है, वहाँ कराना चाहिए लोगों को?
2: हमारे जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं, जो पहले हेल्थ सेंटर थे उनको कन्वर्ट किया जा रहा है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे। वहाँ पे CHO का प्रस्थापन किया गया है और धीरे धीरे सभी जो सेंटर हैं उनको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में कन्वर्ट करना है। तो सरकार की सोच है और ये सोच पूरे भारत सरकार की है, यह सो शुरू भी हो गया है, बहुत जगह उपलब्ध भी है। टोटल 14 तरह की बीमारियों से किट किट डायग्नोस्टिक किट है हमारे यहाँ, उसको वहाँ पर उपलब्ध कराया गया है और 105 तरह की दवाओं का वहाँ पर उपलब्धता सुनिश्चित कराई गई है या सुनिश्चित कराई जा रही है। उसके लिए ट्रेंड पढ़े लिखे जो उसके बारे में जानते हैं वो स्टाफ का पूरा वहाँ पे प्रस्थापन होगा या हो रहा है या है भी, उन पर विश्वास करें और जो वो आपको डायग्नोसिस करते हैं उस पर विश्वास करें। पूरा प्रोटोकॉल बना हुआ है, वहाँ से अगर आपको रिफ़र करते हैं तो PHC में जा कर के, यहाँ से फिर CHC में जा कर के, वहाँ से भी ना हो तो रिफ़र होने पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जा कर के टर्सेली हेल्थ सेंटर हमारे यहाँ उपलब्ध है, इसका उपयोग कीजिए। और आप हैं सो हम तो कहेंगे कि जो जो प्रशिक्षित नहीं है डॉक्टर उनके चक्कर में ना पड़े। स्वास्थ्य की तो हानि होती है, पैसे की भी हानि होती है। एक चीज़ और बता दें कि एक सुखद अनुभूति है कि मलेरिया आज से 5 साल पहले जितना होता था अब उससे उसका रेट बहुत ही घट गया है। जो बुखार होता है उसमें उसका उसकी संभावना बहुत ही कम हो गई है, इसीलिए किसी भी बुखार को जो जड़ा देकर आता हो उसको मलेरिया मान करके किसी से ट्रीटमेंट शुरू करवा लेना उचित नहीं है। उसकी जो मलेरिया की दवा आती है वो हानिकारक है और उसका सही डोज में और सही प्रकार से उसका चुनाव होना जरूरी है, नहीं तो मलेरिया तो ठीक बुखार जो तो ठीक नहीं ही होगा, उसके अलावा हमको बहुत से उसके साथ कुप्रभाव का भी सामना करना पड़ेगा। इसलिए हेल्थ सिस्टम जो है उस पर डिपेंड कीजिए, उस पर विश्वास कीजिए और डायग्नोसिस वहीं कराइए। प्राइवेट में इधर से उधर जा कर के जो रिकॉग्नाइज नहीं हैं उनके चक्कर में ना पड़ें, दोनों हानि है, पैसे की भी हानि है, शरीर की भी हानि है और आपको कुप्रभाव भी झेलना पड़ेगा। इसलिए अनुरोध है कि जो हमारी व्यवस्था है उसको सुदृढ़ कीजिए, आइए हमारी व्यवस्था का लाभ उठाइए।
1: यानी कि गांव में जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की चर्चा जो आपने की तो वहाँ पे ANM दीदी से जांच करवा करके उनके द्वारा दी गई दवा खा करके पूरी तरह इत्मीनान से आश्वस्त होकर मलेरिया को ठीक करने में मदद ली जा सकती है।
2: जो हमारा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है उसका प्रारूप ऐसा है कि वहाँ पे CHO कम्युनिटी हेल्थ अफसर उनकी प्रतिनिधि उनकी पदस्थापना करनी है या की गई है या की जा रही है। उनके साथ साथ एज ए टीम ANM होती हैं और उनके साथ साथ सहिया होती हैं। सहिया का काम होता है हमारे लोगों तक पहुंच करके उनको है सो केस को डिटेक्ट करना, ANM और वो दोनों मिल करके CHO को जा करके रिपोर्टिंग करते हैं, उनको लेकर आते हैं और उनका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं और सभी चीज़ का ऑनलाइन इंट्री करना जरूरी है। अब कुछ पेपर में नहीं है, ऑनलाइन पोर्टल बना हुआ है, आप वहाँ जाएंगे आपका पॉजिटिव निकलेगा, सरकार तक आपकी बात जरूर पहुँचेगी, आपका डाटा वहाँ तक पहुँचेगा और उसका मॉनिटरिंग वहाँ से होता है। केवल पेपर या रजिस्टर की अब बात नहीं रह गई, अब यह पूरे इंटरनेट का ज़माना है और पोर्टल से उस भारत सरकार तक पहुंचती है बात और उसका एनालिसिस किया जाता है।
1: डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव जी, कभी कभी लोग ये चर्चा करते पाए जाते हैं कि किसी को जब मलेरिया जैसा अंदेशा होता है तो काउंटर से किसी दुकान से दवा खरीद करके कि ठंड देख के बुखार और ये दर्द और परेशानी हो रही है तो दवा खाना शुरू कर देते हैं, जो 2-4 दिन समय जब बीत जाता है कष्ट बढ़ता है तब वो जाते हैं और मलेरिया की जाँच करवाते हैं। लोगों का कहना है कि दवा खाने के बाद जांच में परेशानी होती है, सही रिपोर्ट नहीं आ पाता है। आप एक चिकित्सक के रूप में हमारे तमाम श्रोताओं को बताएं कि अगर ये बात उनके मन में है तो कितना सही है और कितना गलत है।
2: अगर मलेरिया है कुछ भी दवा खाएंगे तो उस मलेरिया के स्टेटस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मलेरिया है और आपने मलेरिया की दवा नहीं खाई है तब आपको मलेरिया ही शो करेगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी दवा खा लेंगे, पैरासिटामोल खा लेंगे तो मलेरिया है सो आपको ब्लड में दृष्टिगोचर नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए सलाह है कि खुद से दवा ना खाएं, हॉस्पिटल में फ्री में उपलब्ध है, सहयोग करें ज़रूर आएं, लाभ उठाएं। कुछ कमी या कुछ बेशी लगे तो उसकी उसको है सो सही तरीके से उसको पोर्टल पे एंट्री करावें। सरकार आपके द्वार है और आपकी बात ज़रूर सुनेगी, और केवल एक दो दिन की बात नहीं है। सरकार आपके द्वार 15 दिन का कार्यक्रम हो सकता है, लेकिन ये कंटिन्यूस मॉनिटरिंग है पोर्टल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से।
1: डॉक्टर साहब, कभी कभी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में ये देखा जाता है कि लोग अगर बीमार पड़ गए तो किसी कारण से, मान लीजिए कोई उनको अस्पताल लेके जाने वाला नहीं है, या उनकी इच्छा नहीं है, या कमज़ोरी या पैसे की कमी, ये वाली स्थिति में वो डॉक्टर तक नहीं पहुंच पाते हैं और हफ्तों वैसे ही कुछ कुछ दवा खा करके और कराते हुए हफ्तों बिता देते हैं। क्या ये खतरनाक हो सकता है?
2: मजबूरी कुछ भी हो सकती है। बीमारी का जिस समय शुरू हो उस समय अगर उसका ट्रीटमेंट करेंगे तो जल्दी उसका फल पाएंगे। बीमारी बढ़ने के बाद उसका ट्रीटमेंट भी डिफ़िकल्ट होते जाता है और उसकी संभावना, ठीक होने की संभावना भी कम से कमतर होते जाती है। इसलिए अनुरोध है कि लेट ना करें, देर ना करें, ऐसा ना हो कि देर हो जाए और बात हाथ से निकल जाए। इसीलिए जल्दी से जल्दी बीमार पड़ने पे उसके हिसो जो भी उपचार है उपलब्ध है उसको शुरू करें।
1: मलेरिया एक हद तक कितना खतरनाक हो सकता है किसी व्यक्ति के लिए? शरीर का कौन सा पार्ट, कौन सी सिस्टम को ख़राब करता है, बर्बाद करता है?
2: मलेरिया सबसे पहले तो हमारे ब्लड पर इफ़ेक्ट करता है, ब्लड की कमी होने लगती है। मलेरिया लीवर को इफ़ेक्ट करता है, लीवर डैमेज होने लगता है, जॉन्डिस की संभावना हो जाती है। इसके साथ साथ मलेरिया ब्रेन पर भी इफेक्ट करता है, सेरेब्रल मलेरिया उसको बोलते हैं। मलेरिया है तो लंग को इफेक्ट कर सकता है, जिससे उसको निमोनिया जैसे लक्षण भी आ सकते हैं। और किसी भी अंग को ऐसा नहीं है कि मलेरिया छोड़ेगा, मलेरिया किसी भी अंग पर प्रभाव डाल सकता है, केवल समय की बात है। शुरू में ही अगर उसका इंटरवेंशन कर लेंगे, उसका ट्रीटमेंट कर लेंगे तो किसी पर प्रभाव नहीं डालेगा और बहुत ही सेफ़ है और क्यूरेबल है। अगर छोड़ देंगे, काफ़ी दिन हो जाएगा तो कुछ भी हो सकता है, प्रभाव उसका ज़्यादा होगा, समय ज़्यादा लगेगा, मेहनत ज़्यादा लगेगा, आपको ब्लड चढ़ाने की भी ज़रूरत पड़ सकती है, मलेरिया के चलते जो जॉन्डिस होता है उसके ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत पड़ सकती है। सेरेब्रल मलेरिया हो गया तो आप बेहोश हो सकते हैं, कन्वल्सन हो सकता है, कोमा में जा सकते हैं, आईसीयू में जा सकते हैं। डराने वाली बात नहीं है, ये समझने वाली बात है। अगर शुरू में इसका इंटरवेंशन करेंगे, सही जानकारी, सही तरह से इलाज और सही इसका अगर उपचार हो जाए तो ये कुछ भी नहीं है। इस पर हम लोग ज़रूर पार पा लेंगे और हम लोग बहुत हद तक इसके पार तक पहुंच गए हैं। केवल आपके सहयोग की ज़रूरत है कि एक एक मलेरिया, एक एक बुखार के पेशेंट, एक एक इफेक्टेड पेशेंट को पहचान कर आइए। जो सहिया दीदी जो कहती है, जो आशा हम लोग यहाँ बोलते हैं, जो कहती है उनकी बात मानिए, सहयोग कीजिए, ANM के साथ सहयोग कीजिए, CHO आपके साथ हैं उनके साथ सहयोग कीजिए, कोऑपरेट कीजिए, आपको हेल्प करने के लिए हैं। उनसे कुछ आपकी तकरार की ज़रूरत नहीं है, इनका वो काम है, आपका भी काम है कि उनके साथ सहयोग करें।
1: अगर किसी ने अनदेखी की इस तरह की परेशानी हुई और उनको सचमुच अगर मलेरिया है और नज़रअंदाज किया तो क्या मलेरिया जानलेवा हो सकता है, तो किन परिस्थितियों?
2: मलेरिया का अंतिम रूप जानलेवा ही होता है। अगर नहीं ट्रीटमेंट करेंगे, खुद से ठीक होने की संभावना छिन है। ट्रीटमेंट तो कराना पड़ेगा, जब तक ट्रीटमेंट नहीं होगा अंत तो वही होगा, जो सुखमय नहीं होगा, जो जो डिजास्ट्रस होगा। आप कोमा में जा सकते हैं, अंतिम तो उसका मृत्यु हुई है, एनीमिया में जा सकते हैं, हार्ट अटैक में जा सकते हैं, हार्ट फेल्योर में जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। इसलिए नज़रअंदाज न करें कि ये मलेरिया है तो का हुआ ठीक हो जाएगा, अपने से नहीं ठीक होगा, उसके लिए आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी।
1: उसी तरह अगर किसी को ठंड देके बुखार हो, सिर में दर्द हो और तुरंत वो डॉक्टर के पास चले जाएं, अस्पताल चले जाएं, जांच करवा करके और डॉक्टर द्वारा दी सही दवा खाना शुरू कर दें, तो कितनी जल्दी स्वस्थ होने की संभावना उनकी हो जाती है?
2: जल्दी पहुंचेंगे तो 3 दिन में स्वस्थ हो जाएंगे, और जल्दी पहुंचेंगे तो उनकी बुखार 1 दिन में उतर जाएगी। अगर लेट से पहुंचेंगे तो लेट से लाभ मिले, इसमें तो सिंपल नियम है।
1: तो डॉक्टर साहब, हमारे श्रोताओं को अब आप ये बता दें कि मलेरिया जैसी स्थिति को अपने आप से दूर रखने के लिए किन किन बातों का ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है, अपने आचार व्यवहार, अपनी आदतें, रहन सहन, खान पान, इन तमाम चीज़ों पर इतने अच्छे से ध्यान दें कि मलेरिया उनके पास आए ही नहीं, मच्छर काटने की नौबत नहीं आए।
2: ये तो बात हो रही थी जब हमको मलेरिया हो जाता है तो क्या करना चाहिए, डॉक्टर के पास जाइए, ट्रीटमेंट कराइए। अब हम लोग बात कर लेंगे कि ऐसा क्या करें कि मलेरिया हो ही नहीं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ट्रांसमिशन ना हो। तो यहाँ पर आता है बात कि ट्रांसमिशन कैसे होता है। तो ट्रांसमिशन मच्छर के थ्रू होता है। मच्छर न काटें, इसका उपाय करें, फुल स्लीव का, पूरे बांह का कपड़ा पहने, जहाँ मच्छर की संभावना हो मच्छरदानी का उपयोग करें, या रिपेलेंट या मॉस्किटो कॉइल या जो भी हो, अपने पास पड़ोस को अगर आप ड्राई रखेंगे, आप साफ सुथरा रखेंगे, तो मच्छर का वृद्धि नहीं होगा, उसका ब्रीडिंग नहीं हो पाएगा। मच्छर के अंडे स्थिर पानी में मच्छर अंडा देता है और गंदे पानी से ही फिर मच्छर का बढ़ाव होता है। तो एक मच्छर का लाइफ केवल एक हफ्ते है, एक हफ्ते 10 दिन में वो मच्छर समाप्त हो जाएगा, लेकिन इससे पहले इतनी ज़्यादा मच्छर को पैदा कर लेगा कि फिर उसको साइकिल चल जाएगा कि 1 से 100 हुए, 100 से 1000 हुए, 1000 से 1,00,000 हुए, बढ़ने में लेट ना लगेगा। इसलिए अड़ोस पड़ोस का जहाँ पर पानी जमा होता हो, जहाँ नाली बज बजाता हो, जहाँ गंदगी रहता हो, जहाँ उसको ऐसे सफाई रखिए। और अगर उसको देखते हैं कि हम सफाई नहीं रख सकते हैं, पानी जैसे तालाब में है तो पानी वहाँ तो सुखा नहीं सकते हैं, तो उसका उपाय ये है कि मच्छर का जो लार्वा होता है वो सांस लेने के लिए कुछ देर पे सरफेस तक आता है और वहाँ से अपना सूंड निकाल करके सांस लेता है, फिर नीचे चला जाता है। तो अगर उसमें हम छिड़काव कर दें मिट्टी तेल का, एक पतला सा लेयर, केवल थोड़ा सा मिट्टी तेल डालेंगे, पूरे सरफेस को, वाटर सरफेस को वो कवर कर लेगा और उसको लार्वा को सांस लेने की जगह नहीं मिलेगी और वो उससे है सो उसका बचाव हो सकता है। दूसरा है, कुछ कुछ मछलियाँ ऐसी होती हैं जो मच्छर के लार्वा को खाती हैं, उन तालाब में इस मच्छर के जो खाने वाली जो प्रजाति है उसको उसका पालन कीजिए, उससे भी मच्छर का कंट्रोल हो सकता है।
1: डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव जी, आप हमारे कल्याणी कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम कल्याणी, स्वास्थ्य चर्चा पर आधारित कार्यक्रम कल्याणी। भेंट वार्ताकार थे डॉक्टर अनिल कुमार श्रीवास्तव, भेंट करता थे संजय कुमार मिश्रा। मलेरिया कारण एवं निदान, इस पर आपने वार्ता सुनी। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं, FM 103 मेगाहर्ट्ज पर। और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम चित्रपट से। चित्रपट संगीत के आज के इस रंग को हमने सजाया है फिल्म विरासत के गाने को। अनु मलिक संगीतकार और जावेद अख्तर के बोल हैं, आइए सुनते हैं फिल्म चित्रपट में विरासत फिल्म के गाने को।

आप सुन रहे थे 103 मेगाहर्ट्ज़ पर फिल्म से लेकर गीत तक के, आपने सुना उदित नारायण अलका याग्निक की आवाज़ में, उदित नारायण कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में फिल्म विरासत की इस गाने को।

आप सुन रहे हैं फिल्म सईद का कार्यक्रम चित्रपट से। अभी आपने सुना फिल्म माचिस के इस गाने को, और अब आइए सुनते हैं फिल्म माचिस के गाने को लता मंगेशकर और संजीव अधिकारी की आवाज़ में। गुलजार के बोल हैं विशाल शेखर के संगीत। फिल्म का नाम है माचिस।

0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। भारत और श्रीलंका ने L-70 तोपों में सुधार और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। श्रीलंका ने भरोसा दिलाया, कभी भी अपनी धरती का इस्तेमाल भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ नहीं होने देगा। भारत ने सऊदी अरब में हौसी विद्रोहियों के हमलों की निंदा की, कहा ऐसे हमले बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य में आवाजाही के लिए खतरा। विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण संपन्न, भारत ने 4 स्वर्ण सहित 15 पदक जीते। और जूनियर एशिया कप हॉकी में भारतीय पुरुष टीम सेमीफाइनल में और महिला टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें 3 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं में 10,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया, ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में हैं। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी।
1: खड़गपुर से लेके उड़ीसा में झारसुगुड़ा तक का एक पूरा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे फोर्थ लाइन बनी। ये लाइन बन जाने से बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया में वो खत्म होगा, कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो। तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाएं। इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के, 367 किलोमीटर, 6528 करोड़ रुपीज का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है।
0: मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में 5 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 10,021 करोड़ रुपए से अधिक है। इन्हें वर्ष 2029-30 तक पूरा करने की योजना है। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने सभी 7 भीड़भाड़ वाले रेलवे कॉरिडोर को 4 लेन वाला बनाने का निर्णय लिया है।
1: रेलवे के मॉडर्नाइजेशन का जो काम पिछले 12 वर्षों में चल रहा है उसमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कंप्लीट ओवरहॉलिंग जो रेलवे की हो रही है, कंप्लीट मॉडर्नाइजेशन हो रहा है उसके प्रोजेक्ट्स। दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से वापस मुंबई, ये हो गया गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। 7 हाई डेंसिटी कॉरिडोर्स हैं, उन कॉरिडोर्स की 4 लाइनिंग का काम चल रहा है। तो करीब करीब 2000 किलोमीटर ऐसे हैं जो ऑलरेडी 4 लाइनिंग हो चुके हैं।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन सेवा अगले वर्ष शुरू हो जाएगी।
1: वापी से सूरत का 100 किलोमीटर का सेक्शन, पहला सेक्शन ओपन करेंगे 2027 में। कंस्ट्रक्शन करीब करीब दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा और जो ट्रेन बन रही है वो ट्रेन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। जो फर्स्ट कोच टेस्टिंग के लिए बन रहा है वो टेस्टिंग का कोच लास्ट वीक बन के रेडी हुआ है और उसको अब पहला टेस्ट होता है उसका स्क्वीज टेस्ट है, उसके बाद में उसका क्लाइमेट टेस्ट होगा, उसके बाद में फर्निशिंग और नेक्स्ट बाकी के कोच बनेंगे। अगले साल मई जून तक ट्रेन पटरी पे आ जाएगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के आज के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। श्री मोदी ने बताया कि 5 रेलवे परियोजनाएं दक्षिण भारत में बेहतर रेल संपर्क को बढ़ावा देंगी और इससे लाखों लोगों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं से रेलवे नेटवर्क बढ़ेगा और छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में संपर्क बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और संचालन की लागत भी कम होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress. सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनोर कुमार दिसानायक से मुलाकात कर भारत श्रीलंका के बीच बहुआयामी साझेदारी पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने श्रीलंकाई वायुसेना के लिए L-70 तोपों में सुधार और दोनों देशों के राष्ट्रीय कैडेट कोर तथा राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालयों के बीच सहयोग पर समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया। भारतीय रक्षा बलों द्वारा निर्मित 3 बेली पुलों का भी वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया गया। बैठक के दौरान राष्ट्रपति दिसानायक ने कहा कि श्रीलंका कभी भी अपनी धरती का इस्तेमाल भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ किसी भी गतिविधि के लिए नहीं होने देगा। श्री सिंह ने इस बैठक को सफल और सार्थक बताया।
4: आज मेरी हेज एक्सलेंसी द प्रेसिडेंट के साथ भी बहुत ही फ्रूटफुल और प्रोडक्टिव मीटिंग भी उनके साथ हुई है और उनका विजन और लीडरशिप हमारे दोनों देशों के बीच मैं समझता हूं कि पार्टनरशिप को और स्ट्रेंथन करने में को कंट्रीब्यूट करेगी।
0: श्री राजनाथ ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री हरणी अमरा सूर्या से भी मुलाकात कर विकास, सहयोग, शिक्षा तथा भारत श्रीलंका के बीच सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंधों से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श किया। भारतीय वायुसेना का 8वां विमान 35 टन राहत और बचाव का सामान लेकर नेपाल के काठमांडू के लिए रवाना हो गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस मदद में NDRF का सामान, बचाव कार्य के उपकरण, फोरेंसिक का सामान और सेना की टीम के लिए जरूरी सामान शामिल है। मंत्रालय ने कहा कि भारत अपने राहत और बचाव कार्य जारी रखे हुए है। मुंबई में आज ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की अंतिम बैठक हो रही है। इस वर्ष ब्रिक्स वित्तीय चर्चाओं का विषय है मजबूत नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। इससे पहले वित्त मंत्री और गवर्नर पिछले महीने जयपुर में बैठक कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन सेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 17 सितंबर से एक महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। यह अभियान प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर शुरू किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि सेवा मेरा योगदान कार्यक्रम 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक जन भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा विकसित भारत 2047 के संकल्प को लेते हुए हम भारत को आगे बढ़ाने में, देश को एक साथ लेकर चलने में और प्रधानमंत्री जी का जो मूल मंत्र रहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उस मूल मंत्र को इस कार्यक्रमों में हम लोगों ने लाने का प्रयास किया है।
0: महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लंदन में 3 बड़े सम्मान दिए जाएंगे। उन्हें हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कॉमनवेल्थ पब्लिक लीडरशिप रिकॉग्निशन और हाउस ऑफ कॉमन्स में स्टेट्समैनशिप अवार्ड दिया जाएगा। ये सम्मान उनके जन केंद्रित सुशासन और लोक कल्याणकारी योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री मांझी लाड़की बहन योजना, शासन अपल्यादारी और मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना के लिए दिए जा रहे हैं। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने कहा है कि जिला प्रशासन ही विकास, सुधार और परिवर्तन के असली इंजन हैं। श्री चौधरी ने ये बात महिलाओं के लिए सतत आजीविका का निर्माण विषय पर आधारित कौशल मंथन के उद्घाटन सत्र में कही। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
6: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की, आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
7: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, एक्स पर @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
8: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, एक्स पर @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: ये आकाशवाणी है। भारत ने सऊदी अरब में हौसी विद्रोहियों के कथित हमलों की निंदा की है। भारत ने आम नागरिकों और आर्थिक ठिकानों को निशाना बनाए जाने पर चिंता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि ऐसे हमले क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले अस्वीकार्य हैं और इनसे बाब अल मंदीब जलडमरू मध्य में आवाजाही प्रभावित होगी। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने दावा किया है कि उसने फारस की खाड़ी में 2 अमरीकी जहाजों और 8 तेल टैंकरों पर हमला किया है। ईरान ने यह कार्रवाई अमरीकी सेना द्वारा उसके 5 तेल टैंकरों को नष्ट किए जाने के जवाब में की है। एक रिपोर्ट।
9: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कल से और बढ़ गया है। पर्शियन गल्फ और उसके आसपास सैन्य ठिकानों के साथ साथ व्यापारिक जहाजों पर भी हमले हुए हैं। अमेरिका का कहना है कि ईरान के मिसाइल हमले के बाद उसने 5 ईरानी तेल टैंकरों को नष्ट कर दिया। वही ईरान का दावा है कि उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास 2 अमेरिकी नौसैनिक जहाजों और 8 तेल टैंकरों पर हमला किया। UKMTO ने पुष्टि की है कि गई रात कई व्यापारिक जहाजों पर हमला हुआ। इस बढ़ते तनाव का असर तेल की कीमतों पर भी पड़ा है। अगर जहाजों की आवाजाही और तेल के सप्लाई लंबे समय तक प्रभावित रहे तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। मनीष शिवा, आकाशवाणी न्यूज, दुबई।
0: थाईलैंड के गृह मंत्रालय ने कहा है कि साधारण पासपोर्ट धारक भारतीय पर्यटकों को वीजा अनिवार्यता से छूट दे दी गई है। ये छूट पर्यटकों को थाईलैंड में 30 दिन तक रहने की अनुमति देती है। ये छूट इस महीने की 15 तारीख से लागू होगी। गंगा, गंडक, कोसी, पुनपुन और सोन समेत अन्य नदियों के जलस्तर में कमी आने के बावजूद बिहार के लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। एक रिपोर्ट।
10: आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार 14 जिले पटना, भोजपुर, सारण, वैशाली, भागलपुर, बेगूसराय, बक्सर, समस्तीपुर, मुंगेर, कटिहार, लखीसराय, खगड़िया, पूर्णिया और अरवल जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। प्रभावित क्षेत्रों में 793 सामुदायिक रसोई केंद्रों का संचालन किया जा रहा है। इसके अलावा 15 राहत शिविर भी संचालित किए जा रहे हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की सुविधा के लिए 1872 नावों का परिचालन हो रहा है। राहत और बचाव कार्य में NDRF की 10 और SDRF की 27 टीमों की तैनाती की गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
0: अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण आज संपन्न हो गया। भारत ने 4 स्वर्ण, 3 रजत और 8 कांस्य सहित कुल 15 पदक जीते। प्रतियोगिता के अंतिम दिन आज भारत ने 2 स्वर्ण और 4 कांस्य पदक हासिल किए। भारतीय पुरुष हॉकी टीम जूनियर हॉकी एशिया कप के सेमीफाइनल और महिला टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। चीन की मोकी में आज भारतीय पुरुष टीम ने कप्तान अनमोल इक्का के शानदार 6 गोल की मदद से चीनी ताइपे को 15-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की। वहीं भारतीय जूनियर महिला टीम ने अपने आखिरी पूल मैच में चीन के साथ गोल रहे ड्रॉ खेला। अब क्वार्टर फाइनल में कल भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
11: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांकों में आज गिरावट आई और वे लगभग 3 महीने पहले के स्तर पर आ गए। सेंसेक्स 813 अंक गिरकर 74,764 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 204 अंक नीचे आकर 23,432 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 की तुलना में 28 पैसे गिरकर 95.11 रुपए पर बंद हुआ।
0: भारत इस वर्ष 21 से 23 अक्टूबर तक नई दिल्ली में 7वें एग्री वोल्टेक्स विश्व सम्मेलन की मेजबानी करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। भारत और श्रीलंका ने L-70 तोपों में सुधार और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। श्रीलंका ने भरोसा दिलाया कभी भी अपनी धरती का इस्तेमाल भारत की सुरक्षा हितों के खिलाफ नहीं होने देगा। भारत ने सऊदी अरब में हौसी विद्रोहियों के हमलों की निंदा की। विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण संपन्न। भारत ने 4 स्वर्ण सहित कुल 15 पदक जीते और जूनियर एशिया कप हॉकी में भारतीय पुरुष टीम सेमीफाइनल में और महिला टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
12: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Union Cabinet approves 8 railway multi-tracking projects worth over 20,800 crore rupees across 9 states to boost connectivity. New Delhi and Colombo sign MOUs on upgradation of L-70 guns and defense cooperation. Sri Lanka assures it will never allow its territory to be used against India. India condemns attacks by Yemen's Houthi rebels on Saudi Arabia, says strikes threaten freedom of navigation in Bab al-Mandeb Strait. In sports, India end campaign at stage 3 of World Archery Para Series with 15 medals, comprising 4 gold, in Ahmedabad. And in Junior Asia Cup hockey, Indian men's team enters semi-final with 15-0 victory over Chinese Taipei. Indonesians advance to quarter-final after goalless draw against hosts China. The Union Cabinet, chaired by Prime Minister Narendra Modi, has approved 8 railway multi-tracking projects worth over 20,800 crore rupees across 9 states. The projects will cover around 1,196 kilometers and are expected to improve rail connectivity, ease congestion on existing routes, and facilitate faster movement of passengers and freight. They are targeted for completion by 2029-30. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav gave details of the decisions taken by the Union Cabinet during a media briefing in New Delhi today. Mr. Vaishnav said the Cabinet has approved 5 multi-tracking projects covering 17 districts across Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka and Telangana. The total estimated cost of these 5 projects is more than 10,021 crore rupees. Mr. Vaishnav said the government has also approved 3 multi-tracking railway projects at a total estimated cost of more than 10,700 crore rupees. These projects will cover 14 districts across West Bengal, Jharkhand, Odisha, Madhya Pradesh and Chhattisgarh. The minister further informed that the government has decided to undertake 4-laning and quadrupling of all 7 high-density railway corridors.
13: Railway ke 7 high density corridors.
14: The 7 high density railway corridors, along with several other corridors that are expected to carry significant traffic in the future, are being upgraded to 4-line. This also includes the Golden Quadrilateral, Delhi to Mumbai, Mumbai to Chennai, Chennai to Kolkata, and Kolkata to Mumbai routes. In addition, its 2 diagonals, the Delhi to Chennai and Mumbai to Chennai routes, are also being quadrupled, along with the Delhi to Guwahati corridor.
12: In reply to a question on the Mumbai-Ahmedabad bullet train project, Information and Broadcasting Minister informed that the bullet train service will commence next year.
13: Bullet train ka inauguration 2027 mein fix hai.
14: The inauguration of the bullet train is scheduled for 2027, with construction work progressing at a very rapid pace. Initially, the plan was to open a 50-kilometer section between Surat and Bilimura. However, this has now been extended to a 100-kilometer section from Surat to Vapi. At the same time, work on the bullet train itself is also progressing rapidly. The first coach for testing was completed and made ready last week, and the train is expected to be brought onto the tracks for testing by May or June next year.
13: Agle saal Mai June tak train patri pe aa jayegi testing ke liye.
12: Prime Minister Narendra Modi in a social media post highlighted that the 5 railway projects approved today will foster better rail connectivity in South India and also benefit lakhs of people. Mr. Modi said the decision pertaining to 3 multi-tracking projects will encourage tourism, especially heritage and wildlife-related tourism, and lower logistic costs. New Delhi and Colombo today exchanged memoranda of understanding on upgradation of L-70 guns for the Sri Lankan Air Force and cooperation between National Cadet Corps and National Defence Colleges of both the countries. The upgradation of these air defence guns will strengthen the air defence architecture of critical assets in Sri Lanka. The MOU on academic cooperation will facilitate knowledge sharing to further strengthen the academic bonds between them and formalise the NCC Youth Exchange Programme between India and Sri Lanka. The pacts were signed in the presence of Defense Minister Rajnath Singh and President of Sri Lanka Anuradhakumara Dissanayake in Colombo. Both leaders virtually inaugurated three Bailey bridges constructed by the Indian Defense Forces. During the meeting, the two sides reaffirmed their commitment to work together for development of both nations while working jointly to ensure the safety, security, peace and prosperity of the region. President Dissanayake recalled his interactions with Prime Minister Modi and reiterated that Sri Lanka would never allow its territory to be used for any activities inimical to India's security interests. Later, Mr. Singh also met Sri Lankan Prime Minister Harini Amarasurya and exchanged views on several issues. Defence Minister Singh addressed Sri Lanka's military leadership at the Island Nations Defence Ministry in Colombo. Speaking on India-Sri Lanka maritime cooperation in the Indian Ocean region, Mr. Singh described India as Sri Lanka's Vishwamitra. He said the two countries were well positioned to serve as the closest partners in safeguarding peace, security and stability across the Indian Ocean region.
15: It is this spirit of interdependence that shaped India's approach to Sri Lanka as a true Vishwamitra, a trusted global friend. For India and Sri Lanka, holistic maritime security and a mutual prosperity are two sides of the same coin. Together, India and Sri Lanka are well positioned to serve as the closest partners in safeguarding peace, security and stability across the Indian Ocean region.
12: The Defence Minister arrived in Colombo yesterday on a three-day visit to Sri Lanka. This is Akashvani giving you the news.
8: Stay updated, stay ahead. Follow us on X at AIR News Alerts and on Instagram at AIR News Alerts.
12: Welcome back. You're listening to the news at 9. An 8th Indian Air Force aircraft carrying 35 tons of relief and rescue supplies has departed for flood-hit Nepal. In a social media post, the External Affairs Ministry said the assistance includes NDRF equipment, rescue gear, forensic supplies and army team replenishment supplies. Meanwhile, the death toll from the devastating flash floods in the Himalayan nation has reached 1,365 as more bodies were recovered from the affected areas. The rescue teams continued to search for over 5,000 people who remain missing. Thailand's Interior Ministry has said Indian tourists holding ordinary passports are exempted from visa requirements and permitted to stay in Thailand not exceeding 30 days. The exemption will be implemented with effect from the 15th of this month. The Indian Embassy in Thailand in a social media post said visitors must carry a valid passport with at least 6 months validity from the date of arrival. It added that visitors are required to complete the Thailand Digital Arrival Card within 72 hours before arrival through the official immigration website. India has condemned the reported Houthi attacks on Saudi sovereign territory, especially the targeting of civilian and economic facilities. In response to a media query on the attacks in Saudi Arabia, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said such attacks that undermine regional security and stability and threatened freedom of navigation in the Bab al-Mandeb were unacceptable. Yesterday, Saudi Arabia accused Iran-backed armed group Houthi in Yemen of dangerous escalation after a series of attacks targeting the energy sector facilities and installations in the kingdom, leaving 73 people injured. Meanwhile, the U.S.-Iran conflict has sharply escalated, with both sides reporting attacks on military targets and commercial shipping. The latest incidents mark some of the most serious attacks on vessels since the conflict began, raising fresh concerns over the security of vital shipping routes and global energy supplies. More from our West Asia correspondent.
9: The U.S. says it has destroyed 5 Iranian oil tankers following Iranian missile attacks on a U.S. Navy ship. Iran has claimed that it attacked 2 U.S. Navy ships and 8 oil tankers near the restricted zone around the Strait of Hormuz. The U.K. MTO has confirmed that several merchant vessels were hit by disabling fire during the overnight military activity. The escalation has also pushed oil prices higher. Brent crude has crossed $100 a barrel today, while WTI has moved above $95. raising concerns that prolonged disruption to shipping and energy supplies could put further pressure on the global economy. Manish Shiva, Akashwani News, Dubai.
12: This is Akashwani. You are listening to News at 9.
8: Stay connected with AIR News. Follow us on X at AIR News Alerts and visit newsonair.gov.in for the latest updates.
12: Welcome back. Ahead of the BRICS Leaders Summit to be held in New Delhi later this week, the two-day final BRICS Finance Ministers and Central Bank Governors meeting began in Mumbai today. The meeting follows the successful gathering of finance ministers and central bank governors in Jaipur last month. The finance track is being guided by the theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. The BJP will launch a month-long Seva Sankalp Abhiyan from the 17th of this month to mark Prime Minister Narendra Modi's birthday and the completion of 25 years of his public life. Addressing a press conference in New Delhi today, BJP President Nitin Naveen said Prime Minister Modi will complete 25 years in public service on the 7th of October this year. The month-long campaign will highlight the Prime Minister's journey in public life and his commitment to serving the people and the nation. Benchmark domestic equity indices declined today, falling to levels last seen nearly 3 months ago. We have a report.
16: The Sensex plunged 813 points to close at 74,764, while the Nifty shed 204 points to settle at 23,432. Meanwhile, in the broader market on the National Stock Exchange, the Mid-Cap 100 and Small-Cap 100 indices declined 0.5% each. In the Forex market, the rupee depreciated by 28 paise to close at 95 rupees and 11 paise against the US dollar. With Intercarb's report, this is Lalema Aneja Dang for Akashwani News.
12: Moving to sports, India ended their campaign at Stage 3 of World Archery Para Series in Ahmedabad on a high note, winning a total of 15 medals, including 4 gold, 3 silver and 8 bronze. Double Paralympics medalist Harvinder Singh and reigning world champion and world number 1 Sheetal Devi led the charge as India signed off their campaign on a high, winning 2 gold and 4 bronze medals. We have a report.
17: World number 1 Sheetal Devi held her nerve in a dramatic shoot-off against Kazakhstan's Ezada Sidan to win the para compound women's individual gold medal, adding to her bronze in a compound mixed team event alongside Toman Kumar. In the para recover mixed team event, double Paralympic medalist Harvinder Singh teamed up with Bhavna to sweep past China's Liang Qurong and Xia Li to grab the gold. Bhavna later secured a bronze medal in the para recover women's individual category by defeating fellow Indian archer Rajashree Rathod. India collected 2 more bronze medals with Sarita edging out China's Wang Huiting in a para compound women's individual event and Toman Kumar defeating Iraq's Abbas Kadim in the para compound men's individual playoff to pick up his second medal of the tournament. Aparna Khond, Akashwani News, Ahmedabad.
12: In Junior Asia Cup hockey, the Indian men's team today advanced to the semi-finals after a dominant 15-0 victory over Chinese Taipei at Moxi in China. Defending champions and 5-time winners India finished at the top of Pool A with 10 points from 3 wins and a draw. The Indian women's team played out a goalless draw against China in its final elite pool match to enter the quarterfinals. The Indian Eves will take on Pakistan in the next round. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Union Cabinet approves 8 railway multi-tracking projects worth over 20,800 crore rupees across 9 states to boost connectivity. New Delhi and Colombo sign MOUs on upgradation of L-70 guns and defence cooperation. Sri Lanka assures it will never allow its territory to be used against India. India condemns attacks by Yemen's Houthi rebels on Saudi Arabia, says strikes threaten freedom of navigation in Bab al-Mandeb Strait. In sports, India end campaign at Stage 3 of World Archery Para Series with 15 medals, comprising 4 gold in Ahmedabad. And in Junior Asia Cup hockey, Indian men's team enters semi-final with 15-0 victory over Chinese Taipei. That is all in the news at 9. Good night.
0: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। मरकजी काबीना ने 9 रियासतों में कनेक्टिविटी को फरोग देने की खातिर 20,800 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के रेलवे के 8 तौसीई प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है। भारत और श्रीलंका ने L-70 तोपों को बेहतर बनाने और दिफाई इश्तराक से मुतालिक मफाहमत नामों पर दस्तखत किए हैं। श्रीलंका ने यकीन दहानी कराई है कि वो भारत के खिलाफ अपनी सरजमीन का कभी इस्तेमाल नहीं होने देगा। भारत ने सऊदी अरब पर यमन के हूसी बागियों के हमलों की मजम्मत की है। भारत ने कहा है कि इन हमलों से आबनाए बाबुल मंदेब में आजादाना जहाज रानी को खतरा लाहक होगा। भारत ने अहमदाबाद में आलमी पैरा तीरंदाजी सीरीज के तीसरे मरहले के अख्ताम तक कुल 15 तमगे जीते हैं, जिनमें सोने के 4 तमगे शामिल हैं। और जूनियर एशिया कप हॉकी में मर्दों की भारतीय टीम चीनी ताइपे पर 15-0 से शानदार जीत दर्ज करके सेमीफाइनल में पहुंच गई है। खवातीन की भारतीय टीम भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में मरकजी काबीना ने 20,700 करोड़ रुपए से ज्यादा की कुल तखमीना लागत के रेलवे की वजारत के 8 तौसीई प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है। इत्तेलात व नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में मीडिया को तफसील बताते हुए मरकजी काबीना की जानिब से किए गए फैसलों के बारे में मालूमात फराहम की। जनाब वैष्णव ने कहा कि काबीना ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों का अहाता करने वाले 5 तौसीई प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है। इन प्रोजेक्टों से भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में तकरीबन 540 किलोमीटर का इजाफा होगा। इन 5 प्रोजेक्टों की कुल तखमीना लागत 10,021 करोड़ रुपए से ज्यादा है और साल 2029-30 तक इनका काम मुकम्मल होने का इम्कान है। मंजूरशुदा तौसीई प्रोजेक्टों से तकरीबन 2,100 गांवों तक कनेक्टिविटी बेहतर होगी, जिनकी मजमूई आबादी तकरीबन 52 लाख है। जनाब वैष्णव ने कहा कि हुकूमत ने 10,700 करोड़ रुपए से ज्यादा की कुल तखमीना लागत के रेलवे के 3 तौसीई प्रोजेक्टों को भी मंजूरी दी है। ये प्रोजेक्ट मगरबी बंगाल, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों का अहाता करेंगे और रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में तकरीबन 656 किलोमीटर का इजाफा होगा। इन तौसीई प्रोजेक्टों से रेल खिदमात के मौसर होने और मसरूफ रास्तों पर भीड़भाड़ को कम करने में मदद मिलेगी। वजीर मौसूफ ने मजीद मुतल्ला किया कि हुकूमत ने ज्यादा भीड़भाड़ वाले सभी 7 रेलवे कॉरिडोर्स को 4 लेन या उससे भी ज्यादा करने का फैसला किया है। कुल मिलाकर ये रूट रेलवे नेटवर्क के तकरीबन 11,000 किलोमीटर का अहाता करते हैं। नए मंजूर शुदा प्रोजेक्ट ज्यादा भीड़भाड़ वाले रेलवे नेटवर्क पर सलाहियत को बढ़ाने और रेल खिदमात की मजमूई कारकर्दगी को बेहतर बनाने की हुकूमत की कोशिशों का हिस्सा हैं।
13: रेलवे के मॉडर्नाइजेशन का जो काम पिछले 12 वर्षों में चल रहा है, उसमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कंप्लीट ओवरहॉलिंग जो रेलवे की हो रही है, कंप्लीट मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, उसके प्रोजेक्ट्स दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से वापस मुंबई, ये हो गया गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। 7 हाई डेंसिटी कॉरिडोर्स हैं, उन कॉरिडोर्स की 4 लाइनिंग का काम चल रहा है, तो करीब करीब 2000 किलोमीटर ऐसे हैं जो ऑलरेडी 4 लाइनिंग हो चुके हैं।
0: मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर एक सवाल के जवाब में इत्तेलात और नशरियात के वजीर ने इत्तला दी कि बुलेट ट्रेन खिदमात का आइंदा बरस आगाज होगा। उन्होंने कहा कि इस कॉरिडोर पर तामीराती काम तेजी से आगे बढ़ रहा है और शुरुआत में गुजरात में सूरत से वापी तक 100 किलोमीटर के हिस्से पर खिदमात दस्तियाब होंगी।
13: वापी से सूरत का 100 किलोमीटर का सेक्शन, पहला सेक्शन ओपन करेंगे 2027 में। कंस्ट्रक्शन करीब

0: करीब दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा और जो ट्रेन बन रही है वो ट्रेन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। जो फर्स्ट कोच टेस्टिंग के लिए बन रहा है वो टेस्टिंग का कोच लास्ट वीक बन के रेडी हुआ है और उसको अब पहला टेस्ट होता है उसका स्क्वीज टेस्ट है, उसके बाद में उसका क्लाइमेट टेस्ट होगा, उसके बाद में फर्निशिंग और नेक्स्ट बाकी के कोच बनेंगे। अगले साल मई जून तक ट्रेन पटरी पे आ जाएगी।
1: इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि काबीना के आज के फैसले मुसाफिरों की तेज नकल व हरकत, मुस्तहकम कनेक्टिविटी और इजाफी माल बरदार सलाहियत को यकीनी बनाते हैं। सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि इससे खास तौर से विरासती मकामात और जंगलाती जिंदगी से मुतालिक सियाहत को फरोग हासिल होगा और लॉजिस्टिक्स की लागत में कमी आएगी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज कोलंबो में श्रीलंका के सदर अनुरा कुमार दिस्सानायके से मुलाकात की और दोनों मुल्कों के दरमियान कसीर रुखी शराकत दारी के वसी तर पहलुओं पर तबादला ख्याल किया। मीटिंग के दौरान तरफैन ने खित्ते में सलामती, सिक्योरिटी, अमन खुशहाली को यकीनी बनाने की खातिर मिलकर काम करने के साथ साथ दोनों मुल्कों के तरक्याती कामों के सिलसिले में इश्तराक के अपने अहद का भी इदा किया।
2: आज मेरी हेज एक्सलेंसी द प्रेसिडेंट के साथ भी बहुत ही फ्रूटफुल और प्रोडक्टिव मीटिंग भी उनके साथ हुई है और उनका विजन और लीडरशिप हमारे दोनों देशों के बीच मैं समझता हूं कि पार्टनरशिप को और स्ट्रेंथन करने में वो कंट्रीब्यूट करेगी।
1: दोनों मुल्कों ने श्रीलंका की फिजाइया के लिए L-70 तोपों को बेहतर बनाने और दोनों मुल्कों की नेशनल कैडेट कोर और नेशनल डिफेंस कॉलेजों के दरमियान इश्तराक के सिलसिले में भी मफाहमतनामों का तबादला किया। मीटिंग के दौरान सदर दिस्सानायके ने यह बात दोहराई कि श्रीलंका कभी भी अपनी सरजमीन को ऐसी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देगा जिनसे भारत के सिक्योरिटी मफादात को खतरा लाहक हो। जनाब राजनाथ सिंह ने श्रीलंका के वजीर आजम हरिनी अमरासुरिया से भी मुलाकात की और भारत और श्रीलंका के दरमियान तरक्याती इश्तराक, तालीम और करीबी सकाफती और तहजीबी राबतों से मुतालिक मामलात पर नजरियात का तबादला किया। नई दिल्ली में इस हफ्ते होने वाले ब्रिक्स लीडर्स समिट से पहले मुंबई में ब्रिक्स वज़राए खजाना और सेंट्रल बैंक के गवर्नरों की आखिरी मीटिंग हो रही है। इस साल ब्रिक्स के मालियाती मामलों का मौजू है लचक, जिद्दत तराजी, इश्तराक और पायदारी की तामीर। इससे पहले गुज़श्ता महीने जयपुर में वज़राए खजाना और गवर्नरों की मुलाकात हुई थी। मुंबई में होने वाली आखिरी मीटिंग से पहले खजाना और कॉरपोरेट उमूर की मरकजी वज़ीर निर्मला सीतारमन ने ब्रिक्स फाइनेंस ट्रैक के कलीदी नतायज का जायजा लिया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में थाईलैंड के नायब वजीर आजम और कॉमर्स के वजीर सुफाजी सुथुमपुम से मुलाकात की। कॉमर्स और सनत की वजारत ने कहा कि दोनों वजीरों ने भारत और थाईलैंड के दरमियान इकतसादी शराकत दारी को मजीद मुस्तहकम करने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल किया जिसमें बाहमी तिजारत और सरमायाकारी में इजाफा करने, कारोबारी इम्कानात में वसत पैदा करने और दोनों मुल्कों के दरमियान कारोबार से कारोबार के राबते मजबूत करने पर तवज्जो मरकूज की गई। उन्होंने दो तरफा तिजारत के सिलसिले में मुतवाजिन और पायदार तरक्की को फरोग देने की खातिर मजीद इश्तराक पर भी बातचीत की। भारत ने सऊदी खुद मुख्तार जमीन पर हूसी हमले की मजम्मत की है जिसमें शहरियों और इकतसादी मराकज को निशाना बनाया गया है। सऊदी अरब में हमलों से मुतालिक पूछे गए मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने बताया कि बाबुल मंदेब में इस तरह के हमले जिनसे इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम की पामाली होती है और जहाजरानी की आज़ादी खतरे में पड़ जाती है पूरी तरह नाकाबिले कबूल हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान जारी तनाज़े में उस वक्त अचानक तेजी आ गई जब दोनों फरीकों ने एक दूसरे के फौजी ठिकानों और तजारती बहरी जहाजों को निशाना बनाया। हालिया हमलों को तनाजे की शुरुआत के बाद से तिजारती जहाजों पर अब तक के सबसे संगीन हमले करार दिया जा रहा है जिससे अहम बहरी रास्तों की सलामती और तवानाई की आलमी सप्लाई से मुतालिक ताज़ा खदशात पैदा हो गए हैं। मजीद तफसील हमारे मगरबी एशिया के नुमाइंदे से।
3: अमरीका और ईरान के दरमियान जारी तनाजे में कल उस वक्त अचानक शिद्दत आ गई जब खलीज फारस में और उसके अतराफ फौजी ठिकानों और तजारती बहरे जहाजों को हमलों का निशाना बनाया गया। इन हमलों को तनाज़े की शुरुआत के बाद से इसलिए भी इंतहाई शदीद माना जा रहा है क्योंकि महज चंद घंटों में कई बहरी जहाज़ों पर सीधे हमले किए गए। अमेरिका ने कहा है कि अमेरिकी बहरिया के जहाज़ पर ईरान के मिज़ाइल हमलों के बाद उसने 5 ईरानी तेल टंकरों को तबाह कर दिया है। वहीं ईरान ने दावा किया है कि उसने आबनाए हुरमुज के अतराफ ममनुआ खित्ते के करीब अमरीकी बहरिया के 2 जहाज़ों और 8 तेल टंकरों पर हमले किए हैं। तजारती बहरी जहाज़ों और फौज के दरमियान राबते के तौर पर काम करने वाली तंजीम

0: यूके एमटीयू ने तस्दीक की है कि रात भर चली फौजी कार्रवाई के दौरान कई तजारती बहरी जहाजों को निशाना बनाया गया। इन वाकयात के सबब तेल की कीमतों में इजाफा हो गया है और ब्रेंट खाम तेल $100 फी बैरल से तजावज कर गया है। वहीं WTI भी 95 अमरीकी डॉलर से ऊपर रहा, जिससे इस बात पर तश्वीश बढ़ गई है कि जहाजरानी और तवानाई की फराहमी तवील अरसे तक महदूद रहने से आलमी मईशत पर मजीद दबाव पड़ सकता है। दुबई से मनीष शिवा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं महताब आलम।
1: थाईलैंड के दाखिले उमूर की वजारत ने कहा है कि आम पासपोर्ट रखने वाले भारतीय सयाह वीज़ा की ज़रूरियात से मुस्तस्ना रहेंगे और उन्हें थाईलैंड में क़याम की इजाज़त होगी, लेकिन वो 30 दिन से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। इसका इतलाक़ इस महीने की 15 तारीख से होगा। थाईलैंड में भारतीय सफारतखाने ने सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा है कि सयाहों के पास वहाँ आमद की तारीख से कम अज़ कम 6 महीने की मुद्दत तक का लाजमी तौर पर एक जायज़ पासपोर्ट होना चाहिए। उनके पास तस्दीक शुदा वापसी के टिकट, होटल की बुकिंग और वाज़े सफ़र के मंसूबे भी हों। उसने मजीद कहा कि सयाहों को इमिग्रेशन की सरकारी वेबसाइट के जरिए आमद से पहले 72 घंटों के अंदर अंदर थाईलैंड डिजिटल अराइवल कार्ड मुकम्मल करने की ज़रूरत होगी। भारतीय महकमे मौसमियात ने कल ओडिशा में कुछ मकामात पर शदीद से बहुत शदीद बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसमियात की एजेंसी ने अगले 2 से 3 दिन में आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, गंगा की तराई वाले मगरबी बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरला, माहे और उत्तराखंड में शदीद बारिश की पेशगोई की है। इस दौरान तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, जैली हिमालयी मगरबी बंगाल और सिक्किम में इतवार तक गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और तेज हवाएं चलने का इम्कान है। बलूचिस्तान में मजीद 2 अफराद पाकिस्तानी फोर्सेज के हाथों जबरी गुमशुदगी का शिकार हो गए हैं, जिसे बलूच अफराद की गुमशुदगी और मुतासर खानदानों को दस्तियाब मालूमात को लेकर तश्वीश एक बार फिर नुमाया हो गई है। बलूचिस्तान पोस्ट के मुताबिक 23 अगस्त को रात तकरीबन 3 बजे पाकिस्तानी फोर्सेज ने मस्तूंग में अली बलोच को मुबैना तौर पर हिरासत में ले लिया। इसके बाद अली बलोच का कोई पता नहीं चल सका। एक दूसरे वाकये में शकील बलोच के अफराद खानदान ने कहा कि उसे क्वेटा के किल्ली गौहराबाद से 16 अप्रैल की आधी रात उसके मकान से उठा लिया गया। उसके कुंबे ने पाकिस्तानी ISI और इंसदाद दहशतगर्दी महकमे CTD पर उसकी गुमशुदगी का इल्जाम आयद किया है। भारत ने आज अहमदाबाद में आलमी पैरा तीरंदाजी सीरीज के तीसरे मरहले में आखिरी दिन 2 सोने और 4 कांसे के तमगे जीतकर अपनी मुहिम खत्म कर दी। पैरालंपिक में 2 बार तमगा जीतने वाले हरविंदर सिंह और मौजूदा आलमी चैंपियन और आलमी नंबर 1 शीतल देवी ने भारत के तमगों की मुहिम की क्यादत की। शीतल देवी ने खवातीन के कंपाउंड इनफरादी मुकाबले में सोने का तमगा जीता। उन्होंने कजाकिस्तान की आयजदा सैदान को एक सनसनीखेज शूट ऑफ में शिकस्त देकर यह तमगा हासिल किया है। हरविंदर सिंह ने भावना के साथ मिलकर रिकर्व मिक्स टीम मुकाबले में सोने का तमगा जीता है। भारतीय जोड़ी ने फाइनल में चीन के लियांग कुईरोंग और जियाई ली को 6-0 से शिकस्त दी। भावना एक और कांसे का तमगा भी जीती हैं। उन्होंने खवातीन के पैरा रिकर्व ब्रॉन्ज मेडल प्लेऑफ में अपनी हरीफ राजश्री राठौड़ को 6-0 से शिकस्त दी है। उन्होंने मुकाबले में एक दूसरा मेडल भी हासिल किया है। उन्होंने इससे कबल कंपाउंड मिक्स्ड टीम इवेंट में तोमन कुमार के साथ कांसे का तमगा जीता था। भारत की सरिता ने खवातीन पैरा कंपाउंड इनफरादी इवेंट में एक दूसरा कांसे का तमगा हासिल किया है। इस नतीजे के साथ अहमदाबाद में भारत की मुहिम का इख्तिताम मजबूत और शानदार अंदाज में हुआ है। मर्दों की भारतीय जूनियर हॉकी टीम चीन के शहर मोकी में जारी जूनियर हॉकी एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। 5 मरतबा के चैंपियन भारत ने आज चीनी ताइपे को 15-0 से शिकस्त देकर पूल ए में पहली पोजीशन हासिल की है। भारत ने 3 कामयाबियों और 1 ड्रॉ के जरिए 10 पॉइंट हासिल किए हैं। कप्तान अनमोल एक्का मैच के हीरो रहे और उन्होंने 6 गोल किए और ये तमाम गोल पेनल्टी कॉर्नर के जरिए किए गए। अरियान जेस ने हैट्रिक की जबकि हरपाल ने 2 गोल किए। प्रभदीप सिंह, गुरुसेवक सिंह, अर्जुन संतोष हरगुदे और अजीत यादव ने 1-1 गोल किया। भारतीय खवातीन की टीम ने अपने आखिरी इलीट पूल मैच में चीन के खिलाफ बगैर गोल के ड्रॉ खेला और क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। भारतीय खवातीन की टीम अगले मरहले में पाकिस्तान का मुकाबला करेगी। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। مرکزی کابینہ نے 9 ریاستوں میں کنیکٹیویٹی کو فروغ دینے کی خاطر 20,800 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے ریلوے کے 8 توسیع پروجیکٹوں کو منظوری دی ہے۔ بھارت اور سری لنکا نے L-70 توپوں کو بہتر بنانے اور دفاعی اشتراک سے متعلق مفاہمت ناموں پر دستخط کیے ہیں۔ سری لنکا نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ بھارت کے خلاف اپنی سرزمین کا کبھی استعمال نہیں ہونے دے گا۔ بھارت نے سعودی عرب پر یمن کے حوثی باغیوں کے حملوں کی مذمت کی ہے۔ بھارت نے کہا ہے کہ ان حملوں سے آبنائے باب المندیب میں آزادانہ جہاز رانی کو خطرہ لاحق ہوگا۔ بھارت نے احمد آباد میں عالمی پیرا تیر اندازی سیریز کے تیسرے مرحلے کے اختتام تک کل 15 تمغے جیتے ہیں، جن میں سونے کے 4 تمغے شامل ہیں۔ اور جونیئر ایشیا کپ ہاکی میں بھارت کی مردوں کی ٹیم چینی تائپے پر 15-0 سے شاندار جیت درج کر ہے۔ خواتین کی بھارتی ٹیم بھی کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं, क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियां आती थी विविध भारती में।
1: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
0: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
1: पल पल दिल के
0: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
2: हम इंतजार करेंगे।
0: तो फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19,750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।

0: आज ही कार्यक्रम केंद्रित है फिल्म जगत के जाने माने अभिनेता और निर्माता अक्षय कुमार पर। भारतीय सिनेमा हर दौर में बदलता आया है और हर दौर की उसकी एक कहानी है। 90 का दशक वो दौर था जब सिनेमा ने रुपहले पर्दे के नए सितारों, उनके एक्टिंग और उनके फन से लोगों को रूबरू कराया। अभिनेता अक्षय कुमार इसी दशक के मशहूर अभिनेताओं में से एक हैं। ऊंची कदकाठी, असरदार डायलॉग डिलीवरी,
1: निकर, दिस इज अक्षय कुमार, 1180 छत्ता मदन गोपाल, परांठे वाली गली, लाल किला, चांदनी चौक, दिल्ली 6। तुहाडे सामने लैके आया एक रोमांचक गाना, सुनने वाले नु 101 रुपए इनाम। सुनो,

कुछ समय बाद अक्षय कुमार के पिता अपने परिवार को लेकर मुंबई के कोलीवाड़ा आ गए। यहाँ माटुंगा के स्कूल से कुमार ने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और उच्च शिक्षा के लिए बम्बई विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। बॉक्सिंग से खासा लगाव होने की वजह से पिता को मनाया, बैंकॉक गए और यहाँ थाई बॉक्सिंग और यहीं मार्शल आर्ट भी सीखी। पैसे कमाना भी जरूरी था, इसलिए बैंकॉक में ही शेफ के काम में लग गए।

0: भारत लौटने के बाद कोलकाता, ढाका और दिल्ली में भी थोड़े दिन तक अलग अलग काम करने के बाद वापस जब उनका मुंबई आना हुआ तो यहाँ उन्होंने मार्शल आर्ट सीखना शुरू किया।
1: हम तो

अक्षय कुमार के मार्शल आर्ट के क्लासेस में एक छात्र के पिता ने उन्हें मॉडलिंग के लिए सुझाया और कुमार ने अपना पहला पोर्टफोलियो बनाने के लिए 18 महीने तक फोटोग्राफर जयेश सेठ के सहायक के रूप में काम किया। जरूरत के मुताबिक फिल्मों में बैकग्राउंड डांसर के रूप में भी काम करते रहे, जो उनका पैशन भी था। सिलसिला आगे बढ़ा और 1987 में फिल्म आज में कराटे प्रशिक्षक के रूप में कुमार ने अपनी पहली स्क्रीन उपस्थिति दर्ज की और बाद में अक्षय कुमार ये मंच नाम अपनाया। एक ऐसी ही सुबह विज्ञापन शूट के लिए अक्षय कुमार को बेंगलुरु जाना था, लेकिन उनकी फ्लाइट छूट गई। फ्लाइट तो मिस हो गई, लेकिन इसी शाम एक फिल्म स्टूडियो में निर्माता प्रमोद चक्रवर्ती से उनकी मुलाकात हुई। अक्षय कुमार की कदकाठी और उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर निर्माता प्रमोद चक्रवर्ती ने उन्हें फिल्म दीदार में बतौर लीड एक्टर साइन कर लिया, जिसमें अक्षय कुमार और करिश्मा कपूर के साथ अनुपम खेर भी नजर आए।

गंध में बतौर मुख्य अभिनेता उन्हें चुन लिया गया। इसी वर्ष अक्षय कुमार की फिल्म डांसर भी आई, जो बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास करिश्मा न कर सकी। बाद में अब्बास मस्तान द्वारा निर्देशित सस्पेंस थ्रिलर फिल्म खिलाड़ी अक्षय कुमार के लिए सफल रही और उनकी भूमिका को भी सराहा गया। इस फिल्म में उनकी को स्टार थी आयशा जुल्का।

इसी दरमियान राष्ट्रीय द्वारा निर्देशित फिल्म मिस्टर बॉन्ड, जो जेम्स बॉन्ड पर आधारित थी, रिलीज हुई। 1993 में केशुराम द्वारा निर्देशित फिल्म अशांत में अक्षय कुमार, डी आर विष्णुवर्धन और अश्विनी भावे के साथ नजर आए। फिल्म दिल की बाजी, कायदा कानून और सैनिक व्यावसायिक रूप से असफल रही, लेकिन फिल्म वक्त हमारा है कुछ हद तक कामयाब भी रही। समीर मलकान की फिल्म में मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी और राजीव रॉय की मोहरा, इन दोनों ही फिल्मों ने 1994 में अच्छा प्रदर्शन किया और सफल रही। फिल्म मोहरा में इंस्पेक्टर अमर सक्सेना के किरदार को एक नई पहचान तो जरूर मिली। रवीना टंडन के साथ अक्षय कुमार की फिल्म मोहरा ने एक तरह से अक्षय कुमार को सफल अभिनेताओं की श्रेणी में ला खड़ा किया और अक्षय कुमार का करियर ग्राफ तेजी से आगे बढ़ने लगा।

यश चोपड़ा की फिल्म ये दिल लगी में अभिनेत्री काजोल के साथ उन्हें अभिनय का मौका मिला। इस फिल्म की सफलता ने फिल्मी गलियारों में अक्षय कुमार को एक ऐसे अभिनेता के तौर पर पहचान दिलाई जिस पर फिल्म के चलने का भरोसा किया जा सकता था। फिल्म सुहाग और ऐलान जैसी कम बजट वाली एक्शन फिल्में भी अक्षय कुमार ने इसी दौरान की और इन्हें भी सफलता मिली। इन फिल्मों ने अक्षय कुमार को सफल अभिनेताओं की श्रेणी में शुमार कर दिया। 1995 में सबसे बड़ा खिलाड़ी और 1996 में खिलाड़ियों का खिलाड़ी जैसी फिल्में उन्होंने की। दोनों का ही निर्देशन उमेश मेहरा ने किया। फिल्म खिलाड़ियों का खिलाड़ी में अक्षय कुमार का स्क्रीन अपीयरेंस बहुत अलग था। पोनीटेल, लंबे कोट और खूंखार अंडरटेकर से कुश्ती कर उन्होंने फिल्म में खूब शोहरत पाई।

1997 में यश चोपड़ा द्वारा निर्देशित रोमांटिक ड्रामा फिल्म दिल तो पागल है डेविड धवन की फिल्म मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी, जो खिलाड़ी श्रृंखला की पांचवी फिल्म थी। इसमें कुमार की जोड़ी जूही चावला के साथ भी पसंद की गई। कमाई के नजरिए से ये फिल्म औसत थी। दोहरी भूमिका वाली फिल्म अफलातून ने एक बार फिर कुमार को सफलता दिलाई। कुछ कमोबेश प्रदर्शन के बाद अक्षय कुमार

ने ट्विंकल खन्ना के साथ फिल्म इंटरनेशनल खिलाड़ी में अभिनय किया। प्रीति जिंटा के साथ फिल्म संघर्ष और करिश्मा कपूर के साथ फिल्म जानवर को बॉक्स ऑफिस पर आलोचनात्मक प्रशंसा मिली।

0: है।
1: सन 2000 में रामजी राव स्पीकिंग की रीमेक फिल्म हेरा फेरी, जो प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित एक कॉमेडी फिल्म थी, कुमार के साथ साथ सुनील शेट्टी के करियर में भी एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई और बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। सन 2000 में आई फिल्म धड़कन, 2003 में अंदाज, जो रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी, इसमें लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा के साथ अक्षय कुमार ने अभिनय किया। 2004 में ऐतराज और मुझसे शादी करोगी। इन फिल्मों के अलावा राजकुमार संतोषी की एक्शन ड्रामा फिल्म खाकी में अक्षय कुमार की जोड़ी अमिताभ बच्चन, अजय देवगन और ऐश्वर्या रॉय के साथ एक तरह से कहें तो सफल रही, जिसमें उन्होंने इंस्पेक्टर शेखर वर्मा की भूमिका निभाई। अमरीश पुरी, रवीना टंडन और राज बब्बर के साथ क्राइम फिल्म पुलिस फोर्स एन इनसाइड स्टोरी बॉक्स ऑफिस पर चर्चित रही। सलमान खान और प्रियंका चोपड़ा के साथ फिल्म मुझसे शादी करोगी अच्छी कमाई वाली फिल्म साबित हुई।

0: मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी।
1: 2006 में फिर हेरा फेरी, सिंह इज किंग। 2007 में नमस्ते लंदन। अक्षय कुमार की अन्य फिल्में भूल भुलैया बॉक्स ऑफिस पर सफल रही एक तरह से। डॉक्टर आदित्य श्रीवास्तव एक मनोरोग विशेषज्ञ का किरदार अक्षय कुमार ने निभाया, जो उनकी बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाता था। उनके साथ फिल्म में थी विद्या बालन। फिल्म में अक्षय कुमार के मजाहिया किरदार को पसंद किया गया। ये कॉमेडी हॉरर फिल्म कल्ट फिल्मों में शुमार है श्रोताओ, जिसे लोग बार बार देखना पसंद करते हैं। इस फिल्म के गीत संगीत को भी खूब पसंद किया गया।

खिलाड़ी 420 में अक्षय कुमार ने दोहरी भूमिका निभाते हुए खतरनाक स्टंट्स किए, जो हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए विमान पर थे। इनके अलावा भी कुछ और स्टंट्स के लिए फिल्म में उन्हें मिली जुली प्रतिक्रियाएं मिली। फिल्म अजनबी में कुमार नकारात्मक भूमिका में नजर आए। 2005 में आई फिल्म गर्म मसाला के लिए उन्होंने हास्य भूमिका अदा की और फिल्म फेयर पुरस्कार को अपने नाम किया। वर्ष 2007 की अगर बात करें तो उनकी चार फिल्में लगातार हिट रहीं। 2009 में रोहन सिप्पी के बैनर तले बनी फिल्म चांदनी चौक टू चाइना दीपिका पादुकोण के साथ आई।

वैसे इस दौरान अक्षय कुमार की फिल्में व्यावसायिक रूप से उतार चढ़ाव वाली रहीं। 2012 राउडी राठौर, 2014 में फिल्म हॉलीडे, 2012 में ही आई फिल्म ओ माई गॉड, 2015 में बेबी, 2016 एयरलिफ्ट, 2017 में जॉली एलएलबी। इस फिल्म में अक्षय कुमार के अभिनय की काफी सराहना हुई। 2016 में रिलीज क्राइम थ्रिलर रुस्तम, जिसके निर्देशक थे तीनू सुरेश देसाई, पटकथा विपुल के रावल ने लिखी। अक्षय कुमार ने कमांडर रुस्तम का किरदार अदा किया। इलियाना डिक्रूज ने रुस्तम की पत्नी का किरदार अदा किया। नौसेना अधिकारी रुस्तम पावरी की भूमिका को काफी सराहना मिली और अक्षय कुमार को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके बाद भूमि पेडनेकर और अक्षय कुमार 2017 में फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा में नजर आए।

फिल्म स्वच्छता और खुले में शौच उन्मूलन पर विशेष ध्यान आकर्षित करती थी। ये फिल्म एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी जो अक्षय कुमार की स्वयं निर्मित फिल्म थी। इसके साथ फिल्म पैडमैन भी चर्चाओं में रही। 2019 में केसरी, मिशन मंगल और हाउसफुल 4, गुड न्यूज और 2021 में एक्शन फिल्म सूर्यवंशी ने मिलीजुली प्रतिक्रियाओं के साथ व्यवसाय किया। 2021 की ये सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई। इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ कैटरीना कैफ भी थीं। रोहित शेट्टी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में जैकी श्रॉफ, अजय देवगन और रणवीर सिंह ने भी काम किया। एटीएस प्रमुख डीसीपी वी सूर्यवंशी यानी अक्षय कुमार मुख्य किरदार की भूमिका में थे। 2023 में ओ माई गॉड 2

अक्षय कुमार की कुछ और फिल्में जैसे भागम भाग, एनिमेटेड फिल्म जंबो, दे दनादन, कमबख्त इश्क, प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित फिल्म खट्टा मीठा, फराह खान द्वारा निर्देशित फिल्म तीस मार खान, फिल्म पटियाला हाउस, देसी बॉय, सिंग इज ब्लिंग, इन सभी फिल्मों में अक्षय कुमार ने बड़े ही अलग अलग किरदार निभाए। अक्षय कुमार की फिल्मों को देखें तो आज भी उनके द्वारा निभाए गए तमाम किरदार ऐसे हैं जो लोगों के दिलों में जगह पाते हैं। कुमार ने फिल्मी दुनिया में खुद को एक बड़े ही वर्सटाइल एक्टर के रूप में स्थापित किया है। उन्होंने पर्दे पर हर तरह के किरदार अदा किए और यही वजह है कि अक्षय कुमार की अदायगी को लोग भूल नहीं पाते।

अपने लंबे करियर में कुमार ने स्टंट अभिनेता के रूप में पहचान बनाई। 2008 में उन्होंने फियर फैक्टर खतरों के खिलाड़ी की मेजबानी 4 सीजन तक करी। टीवी रियलिटी शो डेयर टू डांस लॉन्च किया, महिलाओं की सुरक्षा के लिए मार्शल आर्ट प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना की। अक्षय कुमार सामाजिक संस्थाओं के लिए भी बढ़ चढ़कर कार्य करते रहते हैं। कुमार को उच्चतम करदाता सम्मान पत्र से भी सम्मानित किया गया है। इनके अलावा अक्षय अपने फिटनेस का विशेष ध्यान रखते हैं। व्यायाम, किक बॉक्सिंग, बास्केटबॉल, तैराकी, पार्कौर के संयोजन के साथ खुद को फिट रखते हैं अक्षय कुमार। भारतीय कबड्डी लीग में बंगाल वॉरियर्स टीम के मालिक भी हैं। फिल्म जगत के सुपरस्टार राजेश खन्ना और सुप्रसिद्ध अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया की बेटी ट्विंकल खन्ना उनकी पत्नी हैं।

अक्षय कुमार के बेटे का नाम आरव और बेटी का नाम नितारा है। कुमार को दो फिल्म फेयर पुरस्कार फिल्म अजनबी और गरम मसाला के लिए दिए गए। रुस्तम और एयरलिफ्ट के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार।

अक्षय कुमार विंडसर विश्वविद्यालय द्वारा भारतीय सिनेमा में मानद डॉक्टरेट की उपाधि और 2009 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया।

आज के फनकार ये कार्यक्रम श्रोताओ आज केंद्रित था सुप्रसिद्ध अभिनेता अक्षय कुमार पर। शोध आलेख और स्वर था संगीता श्रीवास्तव का। संपादन सहयोग प्रभा भटनागर और इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।

प्रस्तुत है छाया गीत। सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। सामिन, मैं आजकल सब कुछ भूल जाती हूँ। मैं अपना प्रेम कहीं रख कर भूल गई हूँ। हाँ, मैं अपना प्रेम कहीं रख कर भूल गई हूँ। ढूंढ रही हूँ उसे। दुख का दरवाजा खुला, करुणा के कमरे में झांका, हंसी को हटाकर देखा, सपनों की भी तलाशी ली, कहीं न मिला तो आज ही थाने में जाकर रपट लिखा दी है कि प्रेम के बगैर भला कोई कैसे जी सकता है। हाँ, प्रेम के बगैर भला कोई कैसे जी सकता है एक भी पल।

अभी अभी विद्या भारती की प्रसारण सेवा सुन रहे थे छाया गीत। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं फिल्म 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम लेकर हाजिर हैं अपने स्टूडियो से फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। अभी से लेकर लगातार 11 बजे तक श्रोताओं बने रहे हमारे साथ।

श्रोताओं, आप सुन रहे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। अभी आपने सुना फिल्म काइट्स किस गाने को, केके की आवाज़ में। नासिर फर्ज के बोल थे, राजेश रोशन के संगीत, समीर के बोल राजेश रोशन के संगीत, और मोहित चौहान की आवाज़ और अलीशा चिनाई की आवाज़ में। ये सुनते हैं फिल्म कृष का ये नगमा।

आप सुन रहे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। अभी आपने सुना फिल्म दुकान के इस गाने को अभिजीत भट्टाचार्य, अलका याग्निक की आवाज़ में, अल्ताफ राजा के संगीत थे, अरुण भैरव के बोल। और अब आइए सुनते हैं श्रोताओं फिल्म तुमको ना भूल पाएंगे कि इस गाने को अलका याग्निक और कमाल खां की आवाज़ में, साजिद वाजिद के संगीत हैं और जयशील राशिद के बोल।

आपने सुना फिल्म दुकान के इस गाने को? शुक्रिया फिल्म के इस गाने को उदित नारायण कायक ने की आवाज़ में, विशाल शेखर के संगीत और समीर के बोल थे। और अब आइए सुनते हैं कुमार सानू की आवाज़ में, आदेश श्रीवास्तव के संगीत, समीर के बोल हैं। फिल्म का नाम है शिकारी।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम रजनीगंधा की आखिरी पेशकश फिल्म सिर्फ तुम के इस गाने को। इसी के गाने के साथ आज का फिल्म संगीत का सफर यहीं थमता है। रात्रि 11 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार, 11:05 में अंग्रेजी में समाचार, और हमें दीजिए कार्यक्रम रजनीगंधा से इजाज़त।

0: आठ रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में हैं। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी।
1: खड़गपुर से लेके उड़ीसा में झारसुगुड़ा तक का एक पूरा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे फोर्थ लाइन बन, ये लाइन बन जाने से बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया में वो खत्म होगा, कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो, तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाए। इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के, 367 किलोमीटर, 6528 करोड़ रुपीज का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है।
0: मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में 5 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 10,021 करोड़ रुपए से अधिक है। इन्हें वर्ष 2029-30 तक पूरा करने की योजना है। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने सभी 7 भीड़ भाड़ वाले रेलवे कॉरिडोर को 4 लेन वाला बनाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के आज के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। श्री मोदी ने बताया कि ये 5 रेलवे परियोजनाएं दक्षिण भारत में बेहतर रेल संपर्क को बढ़ावा देंगी और इससे लाखों लोगों को लाभ होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुर कुमार दिसानायके से मुलाकात कर भारत श्रीलंका के बीच बहुआयामी साझेदारी पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने श्रीलंकाई वायुसेना के लिए L-70 तोपों में सुधार और दोनों देशों के राष्ट्रीय कैडेट कोर तथा राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालयों के बीच सहयोग पर समझौता ज्ञापनों का भी आदान प्रदान किया। भारतीय रक्षा बलों द्वारा निर्मित 3 बेली पुलों का भी वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया गया। बैठक के दौरान राष्ट्रपति दिसानायके ने कहा कि श्रीलंका कभी भी अपनी धरती का इस्तेमाल भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ किसी भी गतिविधि के लिए नहीं होने देगा। रक्षा मंत्री ने श्रीलंका की प्रधानमंत्री हरिणी अमरासुरिया से भी मुलाकात कर विकास सहयोग, शिक्षा तथा भारत श्रीलंका के बीच सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंधों से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श किया। भारत ने सऊदी अरब में हूती विद्रोहियों के कथित हमलों की निंदा की है। भारत ने आम नागरिकों और आर्थिक ठिकानों को निशाना बनाए जाने पर चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले अस्वीकार्य हैं और इससे बाब अल मंदेब जल डमरू मध्य में आवाजाही प्रभावित होती है। दिल्ली नगर निगम ने शहर के सभी 12 जोन में खतरनाक इमारतों, अवैध निर्माण और दिल्ली मास्टर प्लान व निर्माण नियमों के उल्लंघन के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। आज चलाए गए अभियान के तहत दिल्ली नगर निगम के सभी 12 जोन में 34 जगहों पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई। इसके अलावा 17 प्रॉपर्टीज को सील किया गया, 22 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। राजधानी में पीजी इमारतों के एक बड़े सर्वे के तहत लगभग 1,243 ऐसी इमारतों की पहचान की गई है जहां पीजी की सुविधाएं चल रही हैं और जिनमें लगभग 24,000 लोग रह रहे हैं। यह सर्वे पूरी दिल्ली में जारी है, इसे कल तक पूरा करने के निर्देश हैं। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने आज कहा कि जिला प्रशासन ही विकास, सुधार और परिवर्तन के असली इंजन है। श्री चौधरी ने यह बात महिलाओं के लिए सतत आजीविका निर्माण विषय पर आधारित कौशल मंथन के उद्घाटन सत्र को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि जिला आधारित योजना पद्धति के माध्यम से मंत्रालय यह सुनिश्चित कर रहा है कि कौशल विकास पहल स्थानीय जरूरतों से प्रेरित हो और उद्योग, विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की आवश्यकताओं के अनुरूप हों। अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण संपन्न हो गया। भारत ने 4 स्वर्ण, 3 रजत और 8 कांस्य सहित कुल 15 पदक जीते। प्रतियोगिता के अंतिम दिन आज भारत ने 2 स्वर्ण और 4 कांस्य पदक हासिल किए। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।